आज केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सतीशन। मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री। राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नीटगांड में पेपर सेटर ही निकले चीटर। केमिस्ट्री के लेक्चरर के बाद बॉटनी की टीचर मनीषा मंधाने पर कसा शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और महिला की मौत से हड़कंप। किडनी फेल होने से अब तक 5 ने तोड़ा दम। जांच के लिए पहुंची दिल्ली एम्स की टीम। योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र दिलेर की बात करें तो राजस्व, तो हंसराज विश्वकर्मा को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचहरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी। इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सदमे आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुए है, सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए, मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
1: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
1: कोई बुल्डो कभी कोई नोटिस,
2: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक, आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर रहा दिए।
3: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जाए।
1: कहाँ तक दिया गया?
3: या आगे आगे तक दिया गया, इसके आगे जो भी है। अच्छा। इसके आगे
1: लगभग हाईकोर्ट के आदेश
3: दिया गया जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
1: कितने गिराने के, कितने गिरा रहे हैं?
3: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
4: चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
5: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
1: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है, तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
6: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
1: हाईकोर्ट के आदेश पर गिराया गया
6: जी जी।
1: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराए जा
6: रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
1: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर लिया,
6: आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
7: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
8: चुनाव नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
7: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है।
9: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे? अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए।
7: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर एक्शन जारी। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट, बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जा कर चलाए जा रहे दुकान

0: होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
1: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया है, इसे विवादित गीत बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति की दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मदनी का गुस्सा फूटा, मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार हो रहा है।
2: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए, लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा। जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बापदादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहाँ रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। इस देश में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
1: नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इन गिरफ्तारियों के साथ एनटीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस केस में बीते दो दिनों में जिन दो लोगों पर शिकंजा कसा है उनका एनटीए से सीधा वास्ता है। वो पेपर सेटिंग की प्रक्रिया से जुड़े थे और इसका फायदा उठाकर पेपर लीक की साजिश रची गई। अब तक इस केस में कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं एनटीए प्रक्रिया में शामिल 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के हमले भी तेज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। क्या एनटीए के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया, ये सवाल बीते दो दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने वाली टीम में जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

दो टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े, पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे, वो पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी।

0: ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक दो ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दो दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो दो अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 किरदार सबसे अहम है। 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक कराया और तीसरी वो जो दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगी थी।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस के आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है इसकी जानकारी सिर्फ एनटीए को होती है।

0: लीड पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं।
0: पर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत तूफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दे। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट एमबीबीएस बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है, और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं, पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
5: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मतलब टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल की कटौती करने वाली अपील के बाद दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। तय किया है कि आज से दिल्ली में अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें चलेंगे। डीएमआरसी के मुताबिक रोजाना मेट्रो ट्रेनों के 24 अधिक फेरे रोजाना लगेंगे। इसके लिए 6 अधिक मेट्रो ट्रेनें लगाने का फैसला किया है। मेट्रो ने यह फैसला पीएम मोदी की उस अपील के बाद किया है जिसमें उन्होंने तेल की खपत करने के लिए देशवासियों से अपील की है। कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए, इसी मकसद से मेट्रो ने यह फैसला किया है। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किया गया सम्मानित। भारत स्वीडन संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा, दोनों देशों में कई अहम समझौते। केरलम में आज 20 मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन। मुस्लिम लीग के कोटे से 5 मंत्री शपथ ग्रहण में खड़गे, राहुल, प्रियंका होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय को भी न्योता।

बाद यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। आज कैबिनेट की बैठक में मिशन 2027 की रणनीति पर मंथन। नीट पेपर लीक मामले में लातूर के 100 करोड़ कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच, मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल नीट पेपर से मैच। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान को अमेरिका की नई धमकी, ट्रंप ने कहा तेजी से गुजर रहा है वक्त, ईरान पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं, यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट ड्रोन अटैक।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की एक बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और ग्लोबल सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। जी हां, स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया। इस सम्मान को पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है। स्वीडन दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में वहां पर उनको सम्मानित किया गया पीएम मोदी के नाम एक और ग्लोबल सम्मान। स्वीडन ने अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है, यानी एक और ग्लोबल सम्मान प्रधानमंत्री के नाम हो चुका है। और पीएम ने यहां पर स्वीडन दौरे पर, क्योंकि पीएम मोदी हैं तो ऐसे में आतंकवाद मानवता के लिए चुनौती है, यानी आतंकवाद का जिक्र पीएम मोदी ने किया, ये भी उन्होंने कहा। अभी फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के नाम एक और ग्लोबल सम्मान दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि उनको रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है।
1: सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टन से उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केरल की। केरल में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज 20 मंत्रियों के साथ वीडी सतीशन सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। सुबह 10 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। खास बात यह है कि ये करीब 60 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि जब पूरा यूडीएफ मंत्रिमंडल एक साथ शपथ लेगा। वीडी सतीशन ने शपथ लेने वाले विधायकों की लिस्ट कल शाम राज्यपाल को सौंप दी। नए मंत्रिमंडल में कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल होंगे। जिन मंत्रियों के नाम शामिल हैं, उनमें रमेश चेन्नीथला, साथ ही के मुरलीधरन और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सनी जोसेफ शामिल है। सीनियर विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को केरल विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। वहीं शानिमोल उस्मान डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य संभालेंगे। तो आपको ये बता दें कि आईयूएमएल से 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। ऐलान के बाद वीडी सतीशन ने कहा है कि कैबिनेट की सूची गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। सतीशन के मुताबिक शपथ ग्रहण से पहले ही गठबंधन के सहयोगियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी लगभग पूरी हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके अलावा सिद्धरमैया, रेवंथा रेड्डी और सुखविंदर सुक्खू और डीके शिव कुमार भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन वो शामिल होंगे या नहीं अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो आज सतीशन शपथ लेंगे और आज बड़ा दिन है केरल में। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां अब लगभग मानो पूरी हो चुकी है, लेकिन तमिलनाडु के सीएम को भी इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है।
2: नाउ आफ्टर 60 इयर्स द यूडीएफ complete cabinet is going to be sworn in tomorrow at 10 o'clock. After 60 years, a complete cabinet. And we have discussed with the coalition partners. We have interacted with all the Congress leaders within the party. And we are very much delighted to say that we have completed the entire process within 24 hours, which is the fastest one in the history of Kerala. This is because even after the election, the team UDF is team UDF itself. The leaders are respecting each other. I know that Congress is having 11 cabinet ministers. We have 63 MLAs. There are so many persons now not in the cabinet. Those who are more eligible than many others. But unfortunately, we have to consider the social balance, the regional balance, and the women representation, the Dalit representation, many things. So we are not able to include all the eligible persons in the cabinet. We have included two members from the SC community. There are two women in the cabinet, one deputy speaker also. Three women are accommodated in this. We have done our maximum.
3: The new government will take oath on tomorrow. It will be the we will fulfill our promises to the people. Tomorrow will be a new start from the history in the Kerala.
4: What are the priorities of UDF government?
3: We will implement our five guarantees, especially the free journey of ladies. That will be the first step. Step by step, we will fulfill our promises.
5: Tomorrow, 10 o'clock, is the swearing in ceremony. See, there are so many. We have Congress party has got 63 MLAs. Very senior people are there. We cannot accommodate everybody in the cabinet. But we try to accommodate most of the people. The point is, the spectacular victory which has been given by the people of Kerala should be respected. So we will give a good governance to the people of Kerala. That is our prime motto. So I feel that there won't be much difference in the party or in the UDF.
0: आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूपी की। शपथ ग्रहण के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो गया है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजित सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर समेत 8 मंत्रियों को विभाग बांटे गए। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई और मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अजित पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसादन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कृष्ण पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी मिली है। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई। विभागों के इस बंटवारे को सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है, जिसमें नए मंत्री भी शामिल होंगे। तो ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिन कारण से देश का विभाजन हुआ, उन कारणों को फिर से कांग्रेस ने भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।
6: आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में यह भी कहा है कि बच्चों से अगर शिक्षक स्कूल में काम करवाते हैं तो शिक्षकों को नोटिस मत भेजिए बल्कि उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि बच्चों को छुईमुई नहीं बनाना है।
7: बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे, सफाई परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे? अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुईमुई मत बनाइए।
0: वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी और इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दे दिया, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, फिर पुलिसकर्मियों से हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

0: हंगामा है, पत्थरबाजी है, बवाल है और इस बवाल पर पुलिस का लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस कर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सदमे आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
1: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुई है सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैंबर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैंबर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे, और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैंबर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है, और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं, और वहीं पर ये वकीलों के चैंबर बने थे।
0: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैंबर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
2: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए, मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
1: पिताजी,
2: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
1: कोई बुल्डो कभी कोई नोटिस,
2: कभी कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
1: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैंबर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे, और उसके बाद जब यहां पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
0: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैंबर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैंबर रहा दिए।
3: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है।
1: कहाँ तक दिया गया?
3: या आगे आगे तक दिया गया, इसके आगे जो भी है। अच्छा। इसके आगे
1: लगभग हाईकोर्ट हाईकोर्ट के आदेश दिया गया
3: जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
1: कितने गिराने थे, कितने गिरा रहे हैं?
3: अरे लगभग 32 चैंबर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैंबर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
4: चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैंबर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैंबर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
5: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैंबर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
1: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया, लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है, तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
0: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
6: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
1: हाईकोर्ट के आदेश पे गिराया
6: गया जी जी।
1: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराया जा
6: रहा है। नहीं ऐसा, सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
1: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैंबर में बंद कर
6: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
7: तो इधर लखनऊ में तो उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी नई बीजेपी सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। बीती रात हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जे कर चलाए जा रहे दुकानों पर बुलडोजर चला। कई साल से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में आईओडब्ल्यू विभाग, आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकारी भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाकर पूरे इलाके को खाली कराया। तो वहीं शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि जहां भी अतिक्रमण होगा वहां अभियान चलाया जाएगा। देखिए,
8: ये बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
7: वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा रहा है। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया और इसे विवादित गीत कहा है। जमीयत उलेमा हिंद की कार्य समिति के दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद मदनी का गुस्सा फूटा। मगर अब बीजेपी की ओर से मदनी पर पलटवार किया जा रहा है।
9: ऐसा हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का ही मदनी जैसे लोगों का आदत है। वंदे मातरम की गूंज से इस देश को आजादी मिली और वो लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेस के लोग थे, वो वोट के चलते कंप्रोमाइज कर लिए। लेकिन हम लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वंदे मातरम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखा। जब बंकिम बाबू लिखे थे तो उस समय क्या मामला था, कौन से नारे के साथ जो लोग क्रांतिकारी थे वो कौन से नारे के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, मदनी के बाप दादाओं ने क्या किया था उस समय। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने रेफरेंडम देके अलग पाकिस्तान का नाम मांग किया और आज वो यहाँ रह गए। हम लोगों ने तो कभी उनके साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों नहीं गए। ठीक, इस जेस्ट में जो है सभी लोग इस देश के सम्मानित नागरिक है और हिंदू मुसलमान करना उनके फितरत में है।
7: आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल की कटौती करने वाली अपील के बाद दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। तय किया गया है कि आज से दिल्ली में अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। डीएमआरसी के मुताबिक रोजाना मेट्रो ट्रेन के 24 अधिक फेरे रोजाना लगेंगे और इसके लिए 6 अधिक मेट्रो ट्रेन भी लगाने का फैसला किया गया है। मेट्रो ने यह फैसला पीएम मोदी की उस अपील के बाद किया है जिसमें उन्होंने तेल की खपत करने से देशवासियों से अपील की है और कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी किया जाए और इसी मकसद से मेट्रो ने यह फैसला किया है। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
11: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
13: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
14: कब कुंडली में दो विवाह के योग बन जाते हैं? कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति की दूसरी शादी करा देते हैं? अगर दूसरा विवाह करने में आ रहा है व्यवधान, तो क्या होगा इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
15: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
17: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किया गया सम्मानित। भारत स्वीडन संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा, दोनों देशों में कई अहम समझौते। केरलम में आज 20 मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन। मुस्लिम लीग के कोटे से 5 मंत्री शपथ ग्रहण में खड़गे, राहुल प्रियंका गांधी होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय को भी न्योता। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। आज कैबिनेट की बैठक में मिशन 2027 की रणनीति पर मंथन। नीट पेपर लीक मामले में लातूर के 100 करोड़ कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच, मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल नीट पेपर से मैच। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान को अमेरिका की नई धमकी, ट्रंप ने कहा तेजी से गुजर रहा है वक्त, ईरान पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं, यूएई भी में न्यूक्लियर पावर प्लांट ड्रोन अटैक।

आज तक मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की नीट की खबर के साथ, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र का एक बड़ा कोचिंग संस्थान सीबीआई की जांच के घेरे में आ गया है। इस कोचिंग संस्थान का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। लातूर के इस कोचिंग संस्थान के दफ्तर पर सीबीआई ने छापेमारी कर कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। इंस्टीट्यूट के मालिक शिवराज से सीबीआई ने करीब 11 घंटे की पूछताछ भी की और आगे की पूछताछ के लिए शिवराज को पुणे आने का नोटिस भी थमाया गया है। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी भी लातूर का ही रहने वाला है, जो कि एनटीए से जुड़ा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक कुलकर्णी और शिवराज के बीच पहले से ही संबंध है। सीबीआई ये कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई है और एक शिकायत में दावा यह भी किया गया था कि इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट के ज्यादातर सवाल नीट पेपर से मैच भी होते थे। तो वही नीट पेपर लीक की जांच के बीच एनटीए में 4 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हालांकि अब भी 16 में से आधे शीर्ष पद खाली है। 2024 में पेपर लीक के बाद निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के कुल 16 पद सृजित किए गए थे, लेकिन अब तक इन पर पूरी भर्ती नहीं हो पाई है। क्या एनटीए के इंसाइडर्स ने ही नीट का पेपर लीक कराया? ये सवाल बीते 2 दिनों में हुई 2 गिरफ्तारियों के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीट की पेपर सेटिंग करने जो सेटिंग वाली टीम है उससे जुड़े हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए से जुड़े कुछ और लोग भी उनकी साजिश में शामिल थे।

टीचर जो नीट का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े पूरी प्रक्रिया में सीधे हिस्सेदार रहे वो अब पेपर लीक मामले के आरोपी बन गए हैं। दो दिन पहले महाराष्ट्र से केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई। जांच बढ़ी तो सीबीआई की टीम पुणे के बॉटनी की सीनियर टीचर मनीषा मंधारे तक पहुंच गई और दिल्ली से उन्हें अरेस्ट कर लिया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही नीट परीक्षा का पेपर बनाने वाली टीम से जुड़े थे और इसी का फायदा उठाकर इन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का।

0: एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए, नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए और जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। पेपर लीक मामले में मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी अहम है और बेहद गंभीर भी। सूत्रों के मुताबिक पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर मनीषा पिछले 5 से 6 साल से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। ये जानकारी एनटीए की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रही है, क्योंकि इस केस में अब तक 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो पेपर सेट करने में शामिल थे और उन्होंने ही पेपर लीक कराकर लाखों छात्रों के सपनों का सौदा कर दिया। दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो फिर से यही भरोसा दिया कि एनटीए सुरक्षित हाथों में है।
1: सुधार में मानता हूँ एक कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन, बस एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
0: लेकिन शिक्षा मंत्री के इस दावे के बाद पेपर लीक मामले में जो 2 अहम गिरफ्तारी हुई है उसने एनटीए को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान नीट 2026 का परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर एनटीए से जुड़े लोग शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या पीवी कुलकर्णी और मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक करीब 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 किरदार सबसे अहम है। 2 वो आरोपी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक करवाया और 3रा वो जो कि दोनों से जुड़ी थी, छात्रों तक नीट के सवाल जवाब पहुंचाने की साजिश में लगे थे।

0: एनटीए से जुड़े दो टीचर, एक करियर काउंसलर और नीट पेपर लीक की साजिश। इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ जांच अब तीन किरदारों पर टिक गई है। तीनों गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां एक एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने, सीबीआई ने आपके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए।
0: पहले आपको उन दोनों टीचर्स के बारे में बताते हैं जो एनटीए की पेपर सेटिंग में शामिल थे और इस जिम्मेदारी की आड़ में उन्होंने पेपर लीक का खेल किया। पहली आरोपी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, और उन पर बायो पेपर लीक करने का आरोप है, जिन्हें एक दिन पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया। वहीं केमिस्ट्री के पेपर लीक के आरोपों में जांच एजेंसी ने पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार किया था।
2: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं।
0: अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों का काउंसलर मनीषा वाघमारे से क्या कनेक्शन है?
2: क्या एनटीए का और भी कोई आपके साथ?
0: दरअसल पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते हैं। माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही ये पूरी साजिश रची। पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर रह चुका है, जो फिलहाल कोचिंग चलाता है। इसने केस के आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से छात्र जुटाए, क्लासेस में छात्रों को सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बताए।
3: पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में, जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के पहले, 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है और इसलिए पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में शामिल है।
0: बड़ी बात यह है कि मनीषा वाघमारे के जरिए ही मनीषा मंधारे ने भी छात्र जुटाए और फिर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाकर छात्रों को सवाल जवाब बताए। अब सवाल ये भी है कि पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इस बीच पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे को कोर्ट ने 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि कुलकर्णी के वकील की ओर से दलील दी गई कि कुलकर्णी पेपर बनाने की टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन कौन सा पेपर सेलेक्ट होगा इसका फैसला एनटीए करता है। ऐसे में एनटीए कौन सा पेपर सेलेक्ट कर रहा है,

0: के बाद पेपर लीक से जुड़े कई और राज के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। मुंबई से दिव्येश सिंह, जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने आ चुके हैं।
0: पर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, छात्र गुस्से में हैं और सियासत तूफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
2: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
2: नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है।
3: ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्जाम देता है, एग्जाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दो। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट MBBS बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
4: तो मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। शिक्षा में इसी तरह का कोई ऐसा पेपर फूटेगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी 12th का पेपर फूटता है, कोई और कोई पेपर फूटी होती है और इसमें पढ़े लिखे लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, वही ऐसा प्लान करते हैं। तो जिस तरह कुलकर्णी को पकड़ा है और जो भी जहाँ जहाँ लोग पूरे देश भर में मिले हैं, इसका एक पूरा जाल है और इस जाल में ये लोग मतलब ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, ब्लैक मनी भी कमाते हैं और एक शिक्षा को बहुत बड़ा धक्का देने का काम इनका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉपी करने के लिए या मतलब पेपर फूटी जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
0: विपक्ष के हमले जारी हैं। पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
5: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है,

0: गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
1: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो
2: की राजधानी लखनऊ में जमकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल कैसरबाग में कचरी परिसर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत हुई थी और इस शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दे दिया, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, फिर पुलिसकर्मियों से हाथापाई हुई, पत्थर चले और अंत में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।
1: देखिए, पुलिसकर्मियों ने इन हंगामा करने वाले लोगों की पीठ को पायदान बना दिया है। जो भी सद में आया उसके शरीर पर लाठियों के निशान छप गए। पुलिस प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन इस बवाल की शुरुआत हुई इन तस्वीरों से जब प्रशासन का बुलडोजर वकीलों के अवैध चैंबर को ढहाने पहुंचा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित कचहरी में अवैध तौर पर बनाए गए वकीलों के चैंबर को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने वकीलों को नोटिस दिया, चैंबर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और थोड़ी ही देर में अवैध अतिक्रमण हटाया जाने लगा।
3: लखनऊ में आज बुलडोजर एक्शन हुआ और ये बुलडोजर एक्शन हुआ वकीलों के चैंबर पर, जो स्वास्थ्य भवन चौराहे से और कोर्ट परिसर के जो सड़क किनारे जो बने हुए है, सड़क है जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, वहां पर जो चैम्बर्स बने थे उन सभी पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, तमाम जो वकीलों के नाम थे, अधिवक्ता चैम्बर, यूनिवर्सल लीगल सीट और सभी के नाम थे और ये बुलडोजर एक्शन, ये तमाम कहा जाए कि ये जो चैम्बर्स बनाए गए थे ये तोड़े गए। ये पूरी सड़क है, ये कलेक्ट्रेट की तरफ जाती है, डीएम ऑफिस की तरफ जाती है और इसके दूसरी तरफ एनआईए स्पेशल कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, लखनऊ कोर्ट परिसर है, पुराना हाई कोर्ट भी कहते हैं और वहीं पर ये वकीलों के चैम्बर बने थे।
1: इस एक्शन के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ तो सड़क पर नारेबाजी करने उतरे, लेकिन कई वकीलों ने विरोध में खुद को अपने चैम्बर के अंदर बंद कर लिया। प्रदर्शन में कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ी।
4: अभी हम लोगों को ना नोटिस मिली, ना कोई निशान वगैरह जो लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब देख लीजिए मेरे पिताजी, देखिए इनकी हालत क्या है।
3: पिताजी,
4: ये मेरे पिताजी, बताइए सालों की मेहनत कैसे काम चलेगा, बताइए।
3: कभी
4: कुछ नहीं, कभी कहीं कुछ नहीं दिया गया। 30 साल की वकालत इनकी हो गई है, बताइए। अभी हमको तो 7-8 साल हुए भाई, ये बताइए इनका हालत है, देखिए किस तरीके से तड़प रहे हैं। देखिए,
3: ये जाहिर सी बात है कि वकीलों के चैम्बर पर जो एक्शन हो रहा है, अब ये वकील हैं 30 साल से लगभग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक ही यहीं पर उनके मुवक्किल आते हैं, यहीं पर उनके पास एक आप लोगों का एक जगह होती है, वहीं पर एड्रेस होता है कि यहीं पर आएंगे और उसके बाद जब यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो अब ये तबीयत खराब हो रही है तमाम उनके साथी।
1: वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 72 चैम्बर हटाने के आदेश दिए थे, मगर प्रशासन ने अवैध तरीके से 240 से ज्यादा चैम्बर रहा दिए।
5: यहाँ नहीं लगा हुआ है क्रॉस का निशान, फिर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है।
3: कहाँ तक दिया गया?
5: यह आगे तक दिया गया, इसके आगे जो भी है। अच्छा। इसके आगे
3: लगभग हाईकोर्ट के आदेश दिया गया
5: जी, हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है सर।
3: कितने गिराने के, कितने गिरा रहे हैं?
5: अरे लगभग 32 चैम्बर के लिए जो है उन्होंने, हाँ 72 चैम्बर के लिए हुआ था, अनुराधा जी ने दिया था, लेकिन अवैध कार्रवाई की जा रही है।
6: क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था 72 चैम्बर गिराने का, लेकिन नगर निगम ने अपनी मनमानी करके 240 चैम्बर जबरदस्ती चिन्हित करके बरगलाने का काम कर रहे हैं।
7: 72 को ही जो फुटपाथ पे बने गए चैम्बर थे उन्हें गिराने की बात कही गई थी, उन्हें प्रॉपर जो है चिन्हित किया गया, प्रॉपर नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस देने के पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
8: आपने हमको हटाने का नोटिस दिया लेकिन विस्थापित करना जिम्मेदारी थी, और हम जो है जनहित का कार्य करते हैं, कोई यहाँ हम लोग घर बना के तो नहीं बैठे हैं ना भाई, बाधकारियों के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ अपना जो है बाधकारियों के लिए सुनवाई करते हैं। अब इस समय अधिवक्ता जो है खुद प्रताड़ित है तो हम लोग दूसरे को क्या मदद करेंगे।
1: हालांकि प्रशासन वकीलों के आरोपों को निराधार बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है।
9: सभी को पहले ही नोटिस दे दी गई थी, निशान लगा दिया गया था, कई बार नोटिस दी जा चुकी है, सारी चीजें नियमानुसार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं।
10: हाईकोर्ट के आदेश पर
9: जी
10: उनका कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, जिनको दिया गया उनके अलावा भी गिराए जा
9: रहे हैं। नहीं नहीं, सभी को वही बस गिराए जा रहे हैं जिनको नोटिस दिया गया है।
10: अभी फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ वकीलों ने अपने आप को चैम्बर में बंद कर
9: लिया, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
1: दरअसल नगर निगम को कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निगम ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के अवैध चैम्बर्स पर बुलडोजर गरजा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
2: यहाँ वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किया गया सम्मानित। भारत स्वीडन संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा, दोनों देशों में कई अहम समझौते। केरला में आज 20 मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन। मुस्लिम लीग के कोटे से 5 मंत्री शपथ ग्रहण में खड़ गए, राहुल प्रियंका होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय को भी न्योता। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य, राज्य मंत्रियों को भी मिले प्रभार। आज कैबिनेट की बैठक में मिशन 2027 की रणनीति पर मंथन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी एक शादी टूट जाती है, दूसरी शादी की नौबत आ जाती है, या कुछ लोगों के प्रारब्ध में भाग्य में ऐसा लिखा ही होता है कि भाई दो विवाह होगा। आखिर ज्योतिष दो विवाह के बारे में क्या कहता है? और अगर आपकी पहली शादी टूट चुकी है, आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, उसमें अड़चन आ रही है, तो उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं? आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 मई 2026 दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम के 5:53 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:05 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, अब ऐसा तो होता नहीं है कि हर व्यक्ति का दो विवाह हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की दो शादियां भी होती हैं। पहली टूटती है, दूसरी शादी होती है, ऐसी संभावना भी बहुत लोगों के जीवन में होती है। आखिर इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? देखिए, कुंडली का जो सातवां भाव है, सप्तम स्थान है, वो आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है। सप्तम भाव में अगर द्विस्वभाव की राशि हो, मिथुन, कन्या, धनु या मीन, तो दूसरे विवाह की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी अगर द्विस्वभाव की राशि में बैठे तो भी जीवन में दो विवाह होने की या जीवन में दूसरे पुरुष या स्त्री के आने की संभावना होती है। सबसे ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है राहु। सप्तम भाव का स्वामी अगर राहु से पीड़ित हो या सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव हो, तो दो विवाह की संभावनाएं जरूर बनती हैं। अगर किसी कुंडली में पाप ग्रह ज्यादा मजबूत हो जाएं, तो भी दो शादियों की नौबत जिंदगी में आ जाती है। मंगल या चंद्रमा अगर कुंडली में ज्यादा प्रभावशाली हो, खास तौर से 8वें स्थान को या दूसरे स्थान को प्रभावित करें, तो दो विवाह हो सकता है। मूलांक 2, 4, 6 या 8 होने पर जीवन में दो विवाह की थोड़ी संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात जरूर है।
कुंडली के सातवें भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठे, एकादश भाव में बैठे या तृतीय भाव में बैठे तो ये मल्टीपल मैरिज करा सकता है। खास तौर से सप्तम का कनेक्शन इलेवेंथ से हो या इलेवेंथ का कनेक्शन सप्तम भाव से बने तो ये बहुविवाह की स्थितियां भी जीवन में बना सकता है। और महिलाओं की कुंडली में खास तौर से ऐसा देखा गया है कि अगर गुरु चांडाल योग प्रभावशाली हो तो उनके जीवन में भी एक से ज्यादा शादियों की संभावना बन जाती है। दो विवाह पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब अगर आपकी कुंडली में दो विवाह के योग हैं और आपने पहले से इस बात को ऑब्जर्व कर लिया है, पहले से देख लिया है, या घर में किसी बेटे बेटी की कुंडली में दो विवाह के योग हैं, तो पहले से क्या उपाय किया जाए? सही दशा में और सही अंतर दशा में ही विवाह करिएगा। सही महादशा हो, सही अंतर दशा हो, तब ही विवाह करिएगा। जिस ग्रह की वजह से दो विवाह के योग बन रहे हैं या जिस ग्रह की वजह से समस्या आ सकती हो उसकी शांति कराइएगा। विवाह जब आपका हो जाता है उसके बाद किसी धर्म स्थान पर जल्दी से जल्दी जा करके एक बार और फेरे ले लीजिएगा तो दो विवाह की संभावना भंग हो जाएगी, उसी के साथ दूसरा विवाह हो जाए। जल्दी से जल्दी जा करके एक बार और फेरे ले लीजिएगा तो दो विवाह की संभावना
भंग हो जाएगी, उसी के साथ दूसरा विवाह हो जाएगा, आप योग से बच जाएंगे। विवाह के समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, लड़के और लड़की को अगर पीले वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा जो रंग अच्छा लगे वो भी पहन सकते हैं, बट काला या नीला रंग या बहुत ज्यादा लाल सुर्ख रंग मत पहनिएगा। अनामिका अंगुली में एक चांदी का छल्ला धारण कर लीजिएगा शुरुआत से ही, और महिलाओं के लिए विशेष अच्छा होगा कि अगर उनकी कुंडली में दो विवाह का योग है तो सप्ताह में एक दिन बुधवार को या रविवार को, जिस दिन संभव हो, पार्वती मंगल का पाठ करेंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दो विवाह पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न संगीता जी ने हमें लिखा है, मुरादाबाद से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 फरवरी 1985। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है मुरादाबाद। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी विदेश में रहता है, करियर और जीवन उसका ठीक चल रहा है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता है, तो क्या उसका विवाह होगा? उसके विवाह की क्या संभावना जीवन में बनती है? संगीता जी, आपके पुत्र का विवाह जरूर होगा और विवाह का जो समय है वो साल 2027 का शुरुआती समय है, जनवरी 2027 से जून 2027 के बीच में इनके विवाह की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। विवाह स्वयं की इच्छा से जानी पहचानी लड़की से करेंगे, किसी विदेश की लड़की से, फॉरेनर से भी विवाह कर सकते हैं। इनका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, उसके लिए आप रोज सुबह शाम अपने बेटे के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए और बेटे के नाम से हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए या गाय को केला खिलाइए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी पहली शादी टूट गई हो या पहली शादी ना चल पाई हो और आप दूसरा विवाह करना चाहते हो या चाहती हो, और अगर उसमें समस्या आ गई हो तो नहीं हो पा रही हो दूसरी शादी, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिला करके जल अर्पित करिए। जितना सुबह जल अर्पित करेंगे उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। आराम से धीरे धीरे करिए और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिए। शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करके शीघ्र दूसरा विवाह हो, इसकी प्रार्थना करिएगा। केतकी का फूल भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करेंगे। जो आपकी पहली शादी के कपड़े हैं, पहली शादी के फोटोग्राफ्स हैं, ज्वेलरी हैं, इनको हटा दीजिए। ज्वेलरी तो एक्सचेंज कर लीजिए और कपड़े लोगों में बांट दीजिए, फोटो भी हटा दीजिए, क्योंकि ये अगर आपके साथ बना रहा तो इसकी तरंगों की वजह से आपकी दूसरी शादी होने में अड़चन आएगी। और सलाह लेकर के एक ओपल पहनिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, कोई अनामिका में ओपल पहन लेता है, कोई मध्यमा में ओपल पहन लेता है। ओपल के पीछे का बड़ा साइंस है, शुक्र चंद्रमा बृहस्पति। ओपल केवल शुक्र का रत्न नहीं है, इसीलिए ओपल को तर्जनी उंगली में पहनिएगा। थोड़ा बड़ा ओपल बनवा करके अगर पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपके दूसरे विवाह का मामला हल होगा। दूसरे विवाह पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मान लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

योग हैं, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनुराशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, दूसरा विवाह आपका फाइनल हो गया, चीजें सेट हो गई, तो आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखें, कुछ बातों का अगर पालन करें तो निश्चित रूप से आपका दूसरा विवाह सफल होगा। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। विवाह अगर दिन के समय में करें तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। वैसे तो देखिए, कोई भी शादी दिन के समय में ही करनी चाहिए, लेकिन अगर चलिए पहली शादी जब भी की हो, दूसरी शादी कम से कम दिन के समय में करें या गोधूली वेला के समय करें। शाम को या रात में दूसरी शादी मत करिएगा। विवाह के समय वर और वधु, लड़का और लड़की, पीले या क्रीम वस्त्र धारण करें। बेहतर होगा कि जो बालक है वो क्रीम पहने और जो लड़की है वो पीला पहने। अगर आप अंगूठियां बदल रहे हैं, रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को अंगूठियां दे रहे हैं, तो कृपा करके हीरे की अंगूठी मत दीजिएगा, हीरे की अंगूठी मत लीजिएगा। विवाह करने के पहले, जैसे मान लिया आज दोपहर में 11 बजे शादी का समय है, तो उसके पहले लड़का और लड़की दोनों शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव जी की पूजा करें, शिव जी से आशीर्वाद लें, संभव हो तो शिवलिंग पर जल भी चढ़ा लें। यानी विवाह करने के पहले शिव जी की आराधना कर लें, उसके बाद विवाह करिएगा। विवाह के बाद एक साल तक काले रंग से परहेज करिए। खास तौर से ये परहेज बालिका के लिए ज्यादा है कि काली साड़ी, काली चूड़ी, काली बिंदी शोक का प्रतीक है, ये ना पहने। और देखिए, अपर आउटफिट में ब्लैक नहीं पहनना है। अगर पैंट ट्राउजर ब्लैक पहनना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपर आउटफिट में पुरुष को भी ब्लैक नहीं पहनना है और महिला को साड़ी, सूट, चूड़ी, बिंदी, ये काले रंग की इस्तेमाल नहीं करना है, वरना वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ
राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं। मानसिक स्थिति में सुधार होगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा कहना है अब कि विवाह शाम को या रात के समय नहीं करना चाहिए, विवाह दिन के समय करना ज्यादा बेहतर होता है। क्या ऐसा है? देखिए, शास्त्र कहता है कि विवाह दिन के समय में करिए, या ज्यादा से ज्यादा जो फेरे हैं वो गोधूली वेला के समय लिए जा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण करना, देवी देवताओं का आवाहन करना उचित नहीं माना गया है। मुगल काल में मुगलों के भय से लोग रात को शादी करने की परंपरा शुरू कर दिए, लेकिन वास्तविकता में अगर अपने धर्म की बात करें तो सबसे उत्तम यही होगा कि दिन के समय में या ज्यादा से ज्यादा सूर्यास्त तक विवाह कर लेना चाहिए। इसके बाद विवाह करना बहुत उचित नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, परिश्रम करेंगे आज तभी लाभ होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है,
तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जरा सी चीनी खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी, तो शिव जी को जल चढ़ा के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है, तो सफेद चंदन का तिलक लगा करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न माधवी मिश्रा ने हमें लिखा है और माधवी हमें रांची से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1999। जन्म का समय शाम के 7:10। जन्म स्थान है रांची। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, भविष्य की मेरे क्या संभावना है। माधवी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट इन क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें, तो इन जगहों पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में या बैंक में नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है साल 2027 में। थोड़ा सा प्रयास आप अपना बढ़ाइए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज

शुभ होगा वृषभ राशि के लिए, हर कार्य में सफलता मिलेगी, तनाव दूर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि के लिए करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि के लोगों को, बेवजह के तनाव और चिंताएं परेशान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। देखिए, अधिक मास चल रहा है, इस समय कोई भी नया काम मत करिएगा। आज जल और सफेद मिठाई का अगर आप दान करें, जल पिलाएं, लोगों को बताशा खिलाएं, तो ऐसा करना शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: सीधा रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। बिहार के सासाराम से जो आ रही है, जहां पर पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई है। सासाराम से पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में आग लगी है। आग के बाद डब्बे को ट्रेन से अलग किया गया। ट्रेन सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, कोई भी जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आग के बाद ट्रेन से डिब्बे को अलग कर दिया गया। सासाराम में बड़ा हादसा हुआ है। पटना पैसेंजर के सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं, क्योंकि जल्द ही पूरे डब्बे को अलग कर दिया गया। पैसेंजर ट्रेन में आग लगी, सभी यात्री लेकिन यहां पर सुरक्षित है। अभी फिलहाल इस आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए कितनी तेजी से आग की लपटे धू धू कर उठ रही है।
1: खड़ी गाड़ी में आग लग चुका है, अभी तक बुझाने का है तो कोई उपाय नहीं है।
0: अब बढ़ते हैं आगे, वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का। प्रेजेंटेड

सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय, वीडी सतीशन की 20 सदस्यीय टीम का लेगी शपथ। 14 नए चेहरों के साथ यूडीए सरकार तैयार, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर बड़ा दाव। करीब 6 दशक बाद पूरा कैबिनेट एक साथ लेगा शपथ, केरल की राजनीति में ऐतिहासिक पल। रमेश चेन्नीथला के, मुरलीधरन और कुनेलिकट्टू की बड़ी जिम्मेदारी, अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण। महिलाओं और दलित प्रतिनिधित्व पर जोर, नई कैबिनेट में 2 महिला और 2 एससी मंत्री शामिल। 63 कांग्रेस विधायकों में सिर्फ 11 को जगह, वीडी सतीशन बोले हर किसी को मौका मिलना चाहिए। राहुल, प्रियंका और खड़गे की मौजूदगी में होगा शक्ति प्रदर्शन, शपथ समारोह का देश भर की नजर। नई सरकार के एजेंडे पर वीडी सतीशन का बड़ा संदेश, कहा जनता से किए गए हर वादे को पूरा करेंगे। फ्री यात्रा से लेकर 5 गारंटी तक के, मुरलीधरन बोले नई सरकार के साथ नई शुरुआत। 106 सीटों की प्रचंड जीत के बाद यूडीए सरकार तैयार, सोमवार को होगा विभागों का अंतिम बंटवारा। नीट, सीबीएसई और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले सरकार छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सबसे बड़ा हमला, बोले हर उम्र के छात्रों को फेल कर रही है सरकार। नीट छात्रों के लिए केजरीवाल का वीडियो संदेश, बोले घबराहट में कोई गलत कदम ना उठाए। केजरीवाल ने छात्रों से मांगे सुझाव, कहा आपकी आवाज उठाने के लिए हम साथ हैं। नीट पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, मनीषा मंधारे 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुए, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मानित। स्वीडन दौरे पर पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, कहा आतंकवाद मानवता के लिए चुनौती, स्वीडन के सहयोग पर दिया धन्यवाद। स्वीडन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, स्वीडन के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर की अगवानी, फाइटर जेट ने पीएम मोदी के विमान को किया एस्कॉर्ट। नीदरलैंड के बाद स्वीडन में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी से साथ संवाद किया, बंगाली संस्कृति की पीएम ने की सराहना। पीएम मोदी ने कहा बंगाली संस्कृति दुनिया भर में लोकप्रिय, स्वीडन भी इससे अछूता नहीं। यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा पूरा, योगी सरकार ने मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारियां। पीडब्ल्यूडी विभाग फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, सबसे अहम मंत्रालय पर सीएम का नियंत्रण बरकरार। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद, कई मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व से चर्चा के बाद तय हुआ पोर्टफोलियो फॉर्मूला। कैबिनेट विस्तार के बाद पहली अहम बैठक आज, विकास और कानून व्यवस्था पर बड़े फैसलों की उम्मीद। बजट को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगे 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप, सीएम रेखा गुप्ता करेंगी सफर। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के फिर से बढ़े दाम, 1 रुपए की बढ़ोतरी, 2 दिन पहले भी 2 रुपए की हुई थी बढ़ोतरी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज, सोशल मीडिया पर महंगाई मैन बताया। नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बस्तर में कई सारी योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर निगम के नवनिर्मित एसटीपी प्लांट का किया दौरा, वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का दावा, बिहार में ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है सरकार। बंगाल के खड़दहा में ऑनलाइन लॉटरी की दुकान में तोड़फोड़, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छापा मारकर किया हंगामा। आसनसोल के मोहिशिला में धन्यवाद रैली में शामिल हुई मंत्री अग्निमित्रा पॉल, भ्रष्टाचार पर बोली भाई चोर का होगा हिसाब। कोलकाता में नाखुदा मस्जिद के इमाम मोहम्मद शफीक अहमद का बड़ा बयान, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की रखी मांग। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबर पर चला बुलडोजर, नाराज वकीलों ने किया प्रदर्शन। रतलाम में त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित, दिल्ली के निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम जा रही थी ये ट्रेन। उत्तराखंड में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा, एनसीबी ने 227 किलो से ज्यादा ड्रग्स किया बरामद, 1 सीरियाई नागरिक गिरफ्तार। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 6.5 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स जब्त किए गए, बैंकॉक आए यात्री के बैग से हाइब्रिड गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार। देवघर में नशे के 5 सौदागर गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 102 ग्राम मादक पदार्थ और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद। कूचबिहार में ईद से पहले पशुओं की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, बीएसएफ के साथ अभियान में अब तक 17 मवेशियों को बचाया गया, 1 गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में 4 जजों की बढ़ोतरी का जारी किया अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हुई 37। उधम सिंह नगर में सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास, लगभग 11 करोड़ 40 लाख की लागत से बने पुल। बिहार के सहरसा में 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कार्यकर्ताओं को वैचारिक, संगठनात्मक और राजनीतिक प्रशिक्षण का गुण सिखाया।
जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम पर जताई अपील, कहा कि ये एक विवादित गीत है, इसके खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। भोजशाला के फैसले पर बोले दिग्विजय सिंह, हाईकोर्ट का आदेश साफ नहीं, एएसआई संरक्षित जगह। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम पर जताई अपील, कहा कि ये एक विवादित गीत है, इसके खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। भोजशाला के फैसले पर बोले दिग्विजय सिंह, हाईकोर्ट का आदेश साफ नहीं, एएसआई संरक्षित जगह पूजा की जगह नहीं। 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, दुनिया के नंबर एक पैरा हाई जंपर एथलीट है प्रवीण कुमार। पैरा ओलंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड, पूरी दुनिया ने बढ़ाया देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री, अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। तगाराम भील ने अलगोजा वादन को दी है ग्लोबल पहचान, फ्रांस स्पेन इटली जर्मनी जापान सिंगापुर और अमेरिका में कर चुके हैं परफॉर्म। पंजाब के होशियारपुर में कैदी ने पुलिस पर चाकू से किया हमला, आत्मरक्षा में पुलिस की गोली से कैदी की मौत। राजस्थान के नागौर में दो कार की भीषण टक्कर, हादसे में चार लोगों की मौत। दिल्ली के एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में डूबने के कारण 10 साल के मासूम की मौत हुई, परिजन ने लगाया लापरवाही का आरोप। जालंधर में थाने

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
1: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
2: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
3: विक्रम, एक हिंट तो देते।
4: विक्रम!
3: हिंट।
2: बड़े आराम से।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
10: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
11: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
14: Like I said before, we better own the sins.
15: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
16: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
15: आप कैसे कर लेते हो?
16: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं,
16: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
19: Character, the taste of success.

0: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को डालिए।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं, वे ये तो अश्वमेघ चल रहा है मोदी जी का।
2: ये तबड़क तबड़क
1: तबड़क तबड़क तबड़क है।
0: अरे आपको आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जांच चल रही होती।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
1: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
2: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
3: एक हिंट तो देते।
4: हिंट बड़े आराम से।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
8: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
9: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
10: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
11: मैं मनोज कुमार पांडे
12: पाल सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
13: मैं भारत की सत्ता और अखंडता।
14: 10 मई को शपथ ली, शपथ ग्रहण के बाद 8 दिन बीत गए। यूपी सरकार के नए मंत्री अब भी बिना विभाग के टहल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को जगह मिली। दो पुराने चेहरों को प्रमोशन मिला, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह। लेकिन ये सब अभी इंतजार में, पूछ रहे हैं मेरा नंबर कब आए। योगी सरकार 2.0 के तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार का शोर तो खूब हुआ, लेकिन अब वही विस्तार सत्ता के गलियारों में एक लंबी खामोशी बनता जा रहा। मंत्री हैं, लेकिन मंत्रालय बंटा रहे, कुर्सियां हैं पर जिम्मेदारी नदार। दिलचस्प ये कि जिन चेहरों पर सरकार ने ताकत का प्रतीक बनाकर पेश किया, वो आज फाइलों से ज्यादा इंतजार की राजनीति में फंसे नजर आते हैं। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न होने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि मंत्रालय के बंटवारे की देरी की असली वजह ये कि ये कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकराने लगे। अखिलेश यादव के तंज का जवाब योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर देते हैं। लिखते हैं कि सपा प्रमुख में सत्ता पाने की इतनी अधिक लालसा है कि वो घर में शोक होने पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। नसीहत राजभर देते हैं कि कम से कम भाई की 13वीं तक तो रुक जाते, इसके बाद राजनीति कर लेते। बीजेपी ने अखिलेश यादव को पुराने दिनों की याद भी दिलाई।
15: जिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में 3.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पिताजी मंत्री बदला करते थे, चाचा जी चीफ सेक्रेटरी बदला करते थे, ताऊ जी अधिकारियों को बदला करते थे, आज मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। एक्स पे पोस्ट करके सोचते हैं राजनीति हो गई। अखिलेश जी, राजनीति सेवा का कर्म है, निकलना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है। और परिवारवादी पार्टियों को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उन्हें संगठन की प्रक्रिया का पता नहीं होता है, बिना पता हुए कुछ न कुछ बोल देना ही वो राजनीति समझते हैं।
14: हालांकि सूत्र कहते हैं मंत्रालय के बंटवारे की संभावना अगले 24 घंटे में बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो यूपी में योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क, ऊर्जा मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली तक दौरे हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हो या फिर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की बंद कमरे वाली बातचीत, हर मुलाकात यही बताती है मामला सिर्फ विभाग आवंटन का नहीं, सत्ता के भीतर संतुलन और संदेश तय करने का भी है। इस बीच विपक्ष लगातार बीजेपी पर आक्रामक है। जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन ध्यान दिया गया ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में फायदा हो सके, लेकिन अब विभाग के बंटवारे में होती देरी सवाल बढ़ा देती है। आखिर यूपी में इस देरी की वजह क्या है? क्या देरी अंदरूनी असहमति की वजह से हो रही, या फिर बीजेपी सत्ता के शतरंज पर मोहरे सोच समझ कर बिछाने में लगी है ताकि विपक्ष के हर फॉर्मूले की काट निकाली जा सके? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।

किचन के बजट से लेकर डाइनिंग टेबल के स्वाद तक हर चीज पर महंगाई की बुरी नजर लग चुकी है। दुनिया भर में खाने पीने की चीजें पिछले 3 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई हैं। यूनाइटेड नेशंस की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले दिनों में आपकी थाली और महंगी हो सकती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के अनुसार अप्रैल में फूड प्राइस इंडेक्स 1.6% बढ़ गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.5% ज्यादा है। इसकी वजह जंग के असर से ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर टूटना है। ईंधन और खाद महंगी होने से किसानों की लागत बढ़ गई है, जिसका बोझ कंज्यूमर्स पर आएगा। रिपोर्ट बता रही है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ी है और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वेजिटेबल ऑयल की कीमतें मार्च के मुकाबले करीब 6% तक बढ़ गई हैं। मीट के दाम में 1.2% का इजाफा हुआ है, जो अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। अनाज की कीमतों में भी करीब 1% की तेजी दर्ज की गई है। खतरा केवल आज का नहीं, आने वाले कल का भी है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव 3 महीने से ज्यादा खिंचा तो साल के आखिर तक दुनिया को बड़े फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। खराब मौसम और गेहूं की कम बुआई ने आग में घी डालने का काम किया है। खाद महंगी होने की वजह से किसान ऐसी फसलें तलाश रहे हैं जिनमें खर्च कम हो। भारत के रिटेल मार्केट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार अप्रैल में महंगाई अगस्त 2025 के बाद सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी है। जरूरी इस्तेमाल के 20 में से 16 सामानों की कीमतों में भारी उछाल आया है। खाने के तेल और टमाटर जैसी बेसिक चीजों के दाम 36% तक बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट की इस हलचल का असर आपके घर में इस्तेमाल होने वाले रोजमर्रा के सामानों यानी FMCG प्रोडक्ट्स पर भी पड़ने वाला है। ताजा रिपोर्ट्स बता रही है कि HUL, डाबर और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। कॉफी, कोको और पाम ऑयल जैसी कच्ची सामग्रियों की कीमतें बढ़ने से कंपनियों पर दबाव है। आने वाले महीनों में साबुन, शैम्पू और बिस्किट्स जैसे पैकेट बंद सामान 3-5% महंगे हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में डिमांड पहले से कम है, ऐसे में बढ़ती कीमतें मुसीबत और बढ़ाएंगी। साफ है कि कच्चा तेल और पाम ऑयल महंगा होने से फिलहाल तो राहत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यानी युद्ध की आग लगती तो केवल सरहदों पर है, लेकिन उसकी आंच आम आदमी की थाली और महीने के बजट तक पहुंच जाती है। आज तक ब्यूरो।

पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन। मुस्लिम लीग के कोटे से 5 मंत्री शपथ ग्रहण में खड़ गए। राहुल प्रियंका होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय को भी न्योता।

विभागों का बंटवारा। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य विभाग। आज कैबिनेट की बैठक में मिशन 2027 की रणनीति पर मंथन। पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किया गया सम्मानित। भारत स्वीडन संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा, कई अहम समझौते। नीट पेपर लीक में लातूर के 100 करोड़ कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच। मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल, पेपर से मैच। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान को अमेरिका की नई धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक।

0: का पराशर आज नया दिन है और नई शुरुआत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब आज से रोजाना इस वक्त आप नए तेवर और नए क्लेवर में खबरें देखेंगे। जी हां, आज तक पर आज से शुरू हो रहा है अहम खबरों का खास बुलेटिन सुपर 8। इसमें एक एक बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट आपको देंगे, आप तक आएंगे और हर ब्रेकिंग न्यूज होगी, आपसे जुड़ी खास बातें भी होंगी, साथ ही देश दुनिया की चौंकाने वाली तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आपको बताते हैं 8 अहम खबरें जिन पर आज सबकी नजरें हैं। केरल में आज वीडी सतीशन की सरकार बनने जा रही है, थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, आपको बताएंगे कि कितने मंत्री बनेंगे और कौन कौन से मेहमान होंगे। बात होगी पीएम मोदी के स्वीडन दौरे की, जहां पर उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, साथ ही यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला ये भी आगे बताएंगे। खबर नीट पेपर लीक में, कैसे कोचिंग माफिया तक पहुंचा है नीट का पेपर ये भी दिखाएंगे। और आपके काम की खबर भी होगी, पीएम मोदी की अपील के बाद आज से दिल्ली मेट्रो ने कितनी नई ट्रेनें शुरू की है ये भी आपको बताएंगे। खबर मुंबई से भी होगी, जहां पर भीषण आग से बड़ी तबाही हुई है, साथ ही बताएंगे ईरान के स्टूडियो में क्लाश्निकोव राइफल से फायरिंग आखिर क्यों हुई है। तो शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जो कि बिहार के सासाराम से आ रही है, जहां पर पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई। दरअसल सासाराम से पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में ये आग लगी है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, आग के बाद डब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया गया। बड़ी खबर, ट्रेन सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, कोई भी जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड और रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लगातार प्रयास किया जा रहा है आग को बुझाने का। ये तस्वीरें देखिए, पैसेंजर ट्रेन में ये आग लगी है, तस्वीरें देखिए आग की लपटें कितनी तेजी से उठ रही है। तस्वीरों से ये साफ बयां हो रहा है कि आग काफी भयंकर लगी थी, लेकिन किसी भी जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि समय रहते हुए है ट्रेन से डब्बे को अलग कर दिया गया। बिहार के सासाराम में पैसेंजर ट्रेन में ये भयंकर आग लगी है, अभी फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये ट्रेन सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी, आग के बाद जो डब्बे थे ट्रेन के उसको अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से किसी भी जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अफरा तफरी वहां पर काफी ज्यादा मच गई। अभी फिलहाल आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन खड़ी थी, पैसेंजर ट्रेन, जिसमें ये भयंकर आग लगी है।
1: सासाराम रेलवे स्टेशन पर सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में सुबह लगभग 5:15 पर ये आग लग गई, जो कि आग लगने के बाद यात्री कोच में एक दो की संख्या में बैठे थे और वो किसी तरह से बाहर निकली और स्थानीय रेल प्रशासन को सूचना दी। रेल प्रशासन के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया और जांच की गई और तुरंत फायर ब्रिगेड का टीम मंगाया गया और फायर ब्रिगेड टीम किसी तरह से आग पर काबू पाया है। जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन 532/12 एक कोच में आग लग गई है और जो कि ये ट्रेन को आज रद्द कर दी गई है, तथा अब स्थानीय आरपीएफ थाना के पुलिस के द्वारा बताया गया है कि इसकी लगातार जांच की जा रही है और एफएसएल की टीम को भी बुलाया जा रहा है। तथा आप बता दें कि यह घटना होने से सासाराम रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। रंजन कुमार, आज तक, सासाराम।
0: प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन जल गई है, ये तस्वीरें आप देखिए, ये हादसा काफी ज्यादा भयंकर हो सकता था अगर समय रहते हुए जो बाकी के डब्बे थे उनको ट्रेन से अलग नहीं किया जाता, लेकिन समय रहते हुए डब्बे को अलग कर दिया गया और इसीलिए किसी भी जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मौके पर काफी अफरा तफरी का माहौल है। अभी फिलहाल लगातार प्रयास किया जा रहा है इस आग को बुझाने का, क्योंकि काफी ज्यादा हिस्से में ट्रेन के ये आग फैली है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में ये भयंकर आग की लपटे, पैसेंजर ट्रेन ये है जिसमें भीषण आग लगी है, सासाराम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल पूरा प्रयास किया जा रहा है इस आग को बुझाने का। ये दो अलग अलग तस्वीरें, सासाराम में पैसेंजर ट्रेन में ये भयंकर आग लगी और कल रतलाम में भी राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लगी।
2: आग लग चुका है अभी तक।
0: बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नीट की, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र का एक बड़ा कोचिंग संस्थान सीबीआई की जांच के घेरे में आ गया है। इस कोचिंग संस्थान का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। लातूर के इस कोचिंग संस्थान के दफ्तर पर सीबीआई ने छापेमारी कर कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। इंस्टीट्यूट के मालिक शिवराज से सीबीआई ने करीब 11 घंटे तक पूछताछ की। आगे की पूछताछ के लिए उसको पुणे आने का नोटिस भी थमाया गया। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी भी लातूर का ही रहने वाला है, जो कि एनटीए के पैनल में था। सूत्रों के मुताबिक कुलकर्णी और शिवराज पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सीबीआई अब उनका कनेक्शन भी खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। एक बड़ा मास्टरमाइंड का खुलासा इसमें हुआ है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है और दोनों का कनेक्शन भी खंगालने में जुटी हुई है। सीबीआई की टीम महाराष्ट्र के बड़े कोचिंग संस्थान पर शिकंजा कसा है। आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक का मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, कोचिंग सेंटर के मालिक से 11 घंटे पूछताछ भी की गई है। ऐसे में मास्टरमाइंड से एक संबंध का शक है, जो कि पहले से एक दूसरे को जानते थे, जिसका कनेक्शन अब सीबीआई खंगालने में जुटी हुई है। वही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में आरोपी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को सीबीआई की 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। शनिवार को नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पुणे को बायोलॉजी की टीचर मनीषा मंधारे को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। मनीषा मंधारे नीट परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी थी और बायोलॉजी का पेपर सेट करने में उनकी एक अहम भूमिका बताई जा रही है। नीट परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी थी मनीषा। तो पेशी के दौरान पत्रकारों से मनीषा मंधारे से कई सवाल पूछे गए, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। देखिए,
3: मनीषा जी, आपकी वजह से 22 लाख बच्चों को अफेक्ट हुआ है, 22 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं। कितने
4: क्या कहेंगे आपने,
3: और कितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व है इसमें? क्या एनडीए का और भी कोई इन्वॉल्व आपके साथ?
4: आप टीचर, आप खुद टीचर हैं,
3: आप खुद टीचर हैं, आपने
5: तुम्हें गैर फायदा तुमच्याकडे जो एक्सेस होता त्याचा।
3: 22 लाख बच्चे आपके वजह से दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं,
4: क्या एनटीए के अधिकारी भी शामिल हैं
3: आपको? मनीषा जी, क्या एनटीए के अधिकारी भी शामिल हैं आपके साथ?
5: आपको
3: और भी और कितने लोग शामिल हैं आपके साथ?
4: मनीषा जी, कितने पैसे में आपने ये न्यूज पेपर बेचा था स्टूडेंट्स को?
5: मनीषा जी, आपको
0: तो नीट पेपर लीक की जांच के बीच एनटीए में 4 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हालांकि अब भी 16 में से आधे शीर्ष पद खाली है। 2024 में पेपर लीक के बाद निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के कुल 16 पद सृजित किए गए थे, लेकिन अब तक इन पर पूरी भर्ती नहीं हो पाई है। एनटीए में 4 नए अधिकारी अब नियुक्त किए जा चुके हैं।

0: तो नीट पेपर लीक को लेकर राजनीति और ज्यादा तेज होती जा रही है। विपक्ष केंद्र सरकार को निशाना बना रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। अब सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही है, जिससे कि विपक्ष का हमला और तीखा हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नीट पेपर लीक से 22 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा लाखों छात्र ओएसएम मूल्यांकन प्रणाली और कक्षा 9 में एक नई भाषा को शामिल किए जाने के कारण भी परेशान है। उनका कहना है कि एक ही मंत्री ने 3 अलग अलग आयु वर्ग के छात्रों को निराश किया है। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर अपना हमला दोहराते हुए शिक्षा मंत्रालय को आपदाओं का विभाग बताया और आरोप लगाया है कि मंत्रालय की हर विफलता पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने अब मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम माफी मांगनी चाहिए। आलोचनाओं का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया का बचाव किया है और कहा है कि ये सब कुछ एक मंत्रालय ने ये कहा है कि बच्चों का कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो परीक्षाओं को लेकर सरकार कांग्रेस के निशाने पर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी नीट उम्मीदवारों के लिए एक संदेश लेकर इस विवाद में कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने छात्रों से आग्रह किया है कि वो कोई भी चरम कदम ना उठाएं और इसके बजाय उनसे संपर्क करें। ये कहते हुए वो छात्रों के तनाव को समझते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी उन पर सवाल उठाए हैं।
1: मेरी सबसे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इतना एक्सट्रीम स्टेप मत उठाइए। आपकी एंग्जाइटी को मैं समझ रहा हूं। मैंने भी IIT के एग्जाम दिए थे, मैंने UPSC के एग्जाम दिए थे। कितना स्ट्रेस के अंदर हम एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देके आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में या DM करके मुझे मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। आई विल गेट इन टच विद यू और हम मिलके इसका समाधान निकालेंगे।
2: ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार पेपर लीक के कारण सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है और अब CBI की जांच बिठाकर जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि 22 लाख लोगों ने ईमानदारी से अगर कोशिश करी है और परीक्षा में बैठे हैं तो सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और जो पेपर लीक का हादसा वो जो पकड़ा गया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। कुछ बच्चों ने जाके पुलिस में कंप्लेन करी, उसके बाद जाके इस पेपर को कैंसिल किया। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके नाक के नीचे लगातार ये तीसरी बार पेपर लीक हुआ है। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आगे आके जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए।
0: तो नीट पेपर लीक को लेकर सियासत तेज हो गई है, तो अब सवाल CBSE परीक्षा को लेकर भी उठने लगे हैं। NSUI ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 3 language सर्कुलर छात्रों पर बिना सोचे समझे थोप दिए थे।
3: साथियों, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक होता है, छात्र छात्राओं की मानसिक स्थिति खराब होती है और देश भर में सुसाइड के केस सामने आते हैं, उसी तरीके से आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है CBSE के अंदर 3 language सर्कुलर जो है जारी किया है। इससे पूरे देश के अंदर जो है NSUI के पास अलग अलग जगह से जो है फोन आ रहे हैं, छात्रों के फोन आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं।
0: तो वहीं केरल में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए 20 मंत्रियों के साथ VD सतीशन CM पद की शपथ लेने वाले हैं। सुबह 10 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और खास बात यह है कि करीब 60 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि जब पूरा UDF मंत्रिमंडल एक साथ शपथ लेगा। VD सतीशन ने शपथ लेने वाले विधायकों की लिस्ट कल शाम राज्यपाल को सौंप दी। नए मंत्रिमंडल में कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल होंगे। जिन मंत्रियों के नाम शामिल है उनमें रमेश चेन्नीथला, के मुरलीधरन और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सनी जोसेफ शामिल है। सीनियर विधायक थिरुवंशु राधाकृष्णन को केरल विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। वही शानिमोल उस्मान डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य करेंगे। IUML से 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। ऐलान के बाद वीडी सतीशन ने कहा है कि कैबिनेट की सूची गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो सतीशन के मुताबिक शपथ ग्रहण से पहले ही गठबंधन के सहयोगियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी लगभग अब पूरी हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके अलावा सिद्धरमैया, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सुखू और डीके शिवकुमार भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन वो शामिल होंगे या नहीं इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो वीडी सतीशन ने केरल में होने वाले शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल निर्धारण के साथ ही मंत्रियों के विभाग भी लगभग तय हो चुके हैं।
4: नाउ आफ्टर 60 इयर्स द यूडीएफ कंप्लीट कैबिनेट इज गोइंग टू बी स्वेयरिंग टुमारो एट 10 o'clock. After 60 years, a complete cabinet. And we have discussed with the coalition partners. We have interacted with all the Congress leaders within the party. And we are very much delighted to say that we have completed the entire process within 24 hours, which is the fastest one in the history of Kerala. This is because even after the election, the team UDF is team UDF itself. The leaders are respecting each other. I know that Congress is having 11 cabinet ministers. We have 63 MLAs. There are so many persons now not in the cabinet. Those who are more eligible than many others. But unfortunately, we have to consider the social balance, the regional balance, and the women representation, the Dalit representation.
0: तो वही आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट विस्तार के बाद होने वाली इस कैबिनेट बैठक को मिशन 2027 के मद्देनजर बेहद ही अहम माना जा रहा है। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का स्वरूप तय होगा। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो से जुड़ा अहम फैसला होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो वही शपथ ग्रहण के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो गया। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजित सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर समेत 8 मंत्रियों को विभाग बंट गए। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई और मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली। वहीं अजित पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसाद विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी मिली। वही सुरेंद्र दिलेर को राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो विभागों के इस बंटवारे को सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही लोग अब टीएमसी के खिलाफ सामने आने लगे हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में टीएमसी नेता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक टीएमसी जिला सचिव और दूसरा युवा विंग का नेता है। इन लोगों पर लोगों को डराने धमकाने पर जोर जबरदस्ती और दादागिरी करने का आरोप है। पुलिस ने तीनों को एक महिला की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से क्लब बनाने का आरोप है। वही महिला ने थाने में इनके खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई थी। तो में वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बार फिर से वंदे मातरम का विरोध किया और इसे विवादित गीत कहा है। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्य समिति के दो दिवसीय अधिवेशन में अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। मदनी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। तो वही अग्निमित्रा पॉल ने जमीयत के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत माता को मां ना मानने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं है।
5: देखिए आज भारत को हम लोग मां समझते हैं, मानते हैं, जैसे हमारे माँ होते हैं, वैसे जो मिट्टी जो हमको खिलाया पिलाया आज उनको भी हम लोग माँ मानते हैं। और वो भारत को जो माँ कहने के लिए झिझकते हैं, जो अदालत जाते हैं, उनको देश में रहने का कोई हक नहीं है। सब धर्म के लोग भारत के, भारत माँ के संतान हैं। और वो जो नहीं मानते हैं कि भारत उनका माँ है, तो फिर तो और कुछ बोलने का, उन लोग को रहने का दरकार नहीं है इस देश में। ये देश उनके लिए नहीं है, आप दूसरे देश चले जाइए, ये देश में रहने के लिए कोई जरूरत नहीं।
0: वहीं अमेरिका के इडाहो में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा टल गया। माउंटेन होम एयरफोर्स बेस के पास सैन्य विमानों की हवा में टक्कर हो गई, लेकिन सभी चार क्रू मेंबर्स सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। यूएस नेवी के मुताबिक एयर शो के दौरान दो 18G ग्लोर जेट्स हवाई प्रदर्शन कर रहे थे, तभी दोनों विमान आपस में टकरा गए। हादसे के तुरंत बाद चारों क्रू मेंबर्स ने सुरक्षित इजेक्ट कर लिया। घटना के बाद एयरबेस को अस्थायी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। फिलहाल हादसे की अभी जांच की जा रही है।

0: तो वहीं ईरान में टीवी न्यूज स्टूडियो में लाइव बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, ईरान के टीवी चैनल के स्टूडियो में ईरानी सैनिक ने एंकर को एक गन पकड़ा दी डेमो देने के लिए और वहां गोली भी चला दी गई है। ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
1: اومدم
2: تشکیل خط نشانه.
1: بله، بس پرچم امارات رو بگیرم.
2: احسن.
1: خب
2: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس
1: آتش
2: با نام و یاد الله آتش
1: یا الله.
3: امتحان کنم جانم؟
1: امتحان کنم.
3: خب
1: سید صدا بردارمون شما رنوال میکروفون
4: نه باز ذوق کرد بیا باش
5: اینجاست همه... البته برنو نیست
4: همه پاده
6: داریم با اشاره میکنیم.
0: آگه بڑھتے ہیں بی جے پی سانسد راگو چڈا بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد پہلی بار شرنی پہنچے جہاں پر انہوں نے سائیں بابا سوادی مندر میں ماتھا ٹیک کر آشیرواد لیا۔ راگو چڈا نے کہا ہے کہ بی جے پی میں آنے کے بعد بھی وہ عام لوگوں کی سمسیاؤں کو سنسد میں پہلے کی طرح مضبوطی سے اٹھاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب سسٹم کے بھیتر رہ کر سمسیاؤں کا سمادھان نکالنے کا اور بہتر موقع ملے۔ अब खबर खेल जगत की। आईपीएल के मुकाबले कल जीत हासिल कर प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बेंगलुरु बन गई है। धर्मशाला में कल खेले गए मैच में बेंगलुरु ने पंजाब को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई और उधर दूसरे मुकाबले में कल वैभव सूर्यवंशी ने कमाल किया। दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने कल 21 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। इसमें उन्होंने 3 छक्के भी लगाए। इसके साथ ही सूर्यवंशी आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: फील द गुड वाइब्स विद रूट्स रेगे। ट्यून इन इज ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी टू योर इयर्स विद द बेस्ट रेगे हिट्स। स्टिर इट अप विद बॉब मार्ली, जिमी क्लिफ, प्रोटेजे and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
2: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
3: विक्रम एक हिंट तो देते।
4: विक्रम
3: हिंट।
5: बड़े आराम से।
6: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
7: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
14: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
15: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते,
16: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
17: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
18: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
20: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
21: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
20: आप कैसे कर लेते हो?
21: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
22: नहीं
21: और म्यूचुअल फंड्स है
22: सही।
23: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
8: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
24: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
25: यार
26: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
25: इसमें माइक्रो फाइबर है।
26: माइक्रो फाइबर यानी
25: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
26: हमारे सीमेंट में नहीं है,
25: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
27: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे।
28: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
29: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
30: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
31: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

केरलम सीएम पद के लेंगे शपथ। 6 पार्टियों के 20 विधायक बनेंगे मंत्री। कार्यक्रम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी करेंगे शिरकत। कांग्रेस ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद भी अपने पास रखे। तिरुवंचूर राधाकृष्णन को विधानसभा स्पीकर, शनिमोल उस्मान बनाए गए डिप्टी स्पीकर। रमेश चेन्नीथला के मुरलीधरन को बड़ी जिम्मेदारी, अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण। महिलाओं और दलित प्रतिनिधित्व पर जोर, नई कैबिनेट में 2 महिला और 2 ऐसी मंत्री शामिल। 63 कांग्रेस विधायकों में सिर्फ 11 को जगह। वीडी सतीशन बोले, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। नई सरकार के एजेंडे पर वीडी सतीशन का बड़ा संदेश, कहा जनता से किए गए हर वादे को पूरा करेंगे। फ्री यात्रा से लेकर 5 गारंटी तक के मुरलीधरन बोले, नई सरकार के साथ नई शुरुआत। 106 सीटों के प्रचंड जीत के बाद यूडीएफ सरकार तैयार, सोमवार को होगा विभागों का अंतिम बंटवारा। नीट, सीबीएसई और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले सरकार छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सबसे बड़ा हमला, बोले हर उम्र के छात्रों को फेल कर रही है सरकार। नीट छात्रों के लिए केजरीवाल का वीडियो संदेश, बोले घबराहट में कोई गलत कदम ना उठाएं। केजरीवाल ने छात्रों से मांगे सुझाव, कहा आपकी आवाज उठाने के लिए हम साथ हैं। नीट पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, मनीषा मंधारे 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किए गए सम्मान। स्वीडन दौरे पर पीएम मोदी के ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र भी किया, कहा आतंकवाद मानवता के लिए चुनौती, स्वीडन के सहयोग पर दिया धन्यवाद। स्वीडन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, स्वीडन के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर अगवानी की। फाइटर जेट ने पीएम मोदी के विमान को किया एस्कॉर्ट। नीदरलैंड के बाद स्वीडन में भी भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी का संवाद, बंगाली संस्कृति की पीएम ने की सराहना। पीएम मोदी ने कहा बंगाली संस्कृति दुनिया भर में लोकप्रियता, स्वीडन में भी इससे अछूता नहीं। यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा पूरा, योगी सरकार ने मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारियां। पीडब्ल्यूडी विभाग फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, सबसे अहम मंत्रालय पर सीएम का नियंत्रण बरकरार। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई, मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद, कई मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व से चर्चा के बाद तय हुआ पोर्टफोलियो फॉर्मूला। कैबिनेट विस्तार के बाद पहली अहम बैठक आज, विकास और कानून व्यवस्था पर बड़े फैसलों की उम्मीद। बचत को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर, आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेंगे 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप पर, सीएम रेखा गुप्ता करेंगी सफर। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के फिर से बढ़े दाम, 1 रुपए की बढ़ोतरी, 2 दिन पहले भी 2 रुपए की हुई थी बढ़ोतरी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज, सोशल मीडिया पर महंगाई मैन बताया। नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बस्तर में कई सारी योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर निगम के नवनिर्मित एसटीपी प्लांट का किया दौरा, वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का दावा, बिहार में ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है सरकार। बंगाल के खड़गा में ऑनलाइन लॉटरी की दुकान में तोड़फोड़ हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छापा मारकर किया हंगामा। आसनसोल के मोहिशला में धन्यवाद रैली में शामिल हुई मंत्री अग्निमित्रा पॉल, भ्रष्टाचार पर बोली भाई चोर का होगा हिसाब। कोलकाता में नाखुदा मस्जिद के इमाम मोहम्मद शफीक अहमद का बड़ा बयान, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की रखी मांग। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबर पर चला बुलडोजर नाराज, वकीलों ने किया प्रदर्शन। रतलाम में त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित, दिल्ली के निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम जा रही थी ट्रेन। उत्तराखंड में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा, एनसीबी ने 227 किलो से ज्यादा ड्रग्स किया बरामद, 1 सीबीआई नागरिक भी गिरफ्तार। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 6.5 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स जब्त, बैंकॉक आए यात्री के बैग से हाइब्रिड गांजा बरामद, आरोपी गिरफ्तार। देवघर में नशे के 5 सौदागर गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 102 ग्राम मादक पदार्थ और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद। कूचबिहार में ईद से पहले पशुओं की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, बीएसएफ के साथ अभियान में अब तक 17 मवेशियों को बचाया गया, 1 गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में 4 जजों की बढ़ोतरी की जारी किया अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हुई 37। उधम सिंह नगर में सिडकुल से जोड़ने वाले पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास, लगभग 11.40 करोड़ की लागत से बने पुल। बिहार के सहरसा में 2 दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कार्यकर्ताओं को वैचारिक, संगठनात्मक और राजनीतिक प्रशिक्षण का गुण सिखाया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम पर जताई आपत्ति, कहा ये एक विवादित गीत, इसके खिलाफ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। भोजशाला के फैसले पर बोले दिग्विजय सिंह, हाईकोर्ट का आदेश साफ नहीं, एसआई संरक्षित जगह पूजा की नहीं। 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, दुनिया के नंबर 1 पैरा हाई जंपर एथलीट है प्रवीण।
पैरा ओलंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड और पूरी दुनिया में बढ़ाया देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तागाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री, अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। तागाराम भील ने अलगोजा वादन को दी है ग्लोबल पहचान। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और अमेरिका में कर चुके हैं परफॉर्म। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी भयंकर आग, बड़ा हादसा चला। आग के बाद डब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया गया, कोई भी जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड और रेलवे की टीम मौके पर मौजूद। मुंबई के धारावी में लगी भयंकर आग, अशोक मिल्स गोदाम जलकर खाक हुआ, कोई हताहत नहीं। अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की मौत। फतेहपुर में गैस सिलेंडर लीकेज से घर में लगी भयंकर आग, एक परिवार के 9 लोग झुलसे। आग को ग्रीन कॉरिडोर से कानपुर रेफर किया गया। पंजाब के होशियारपुर में कैदी ने पुलिस पर चाकू से किया हमला, आत्मरक्षा में पुलिस की गोली से कैदी की मौत। राजस्थान के नागौर में दो कार की भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली के एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में डूबने के कारण 10 साल के मासूम की मौत हुई, परिजन ने लगाया लापरवाही का आरोप। जालंधर में थाने से 600 मीटर दूरी का सरेआम स्नैचिंग, बच्चे के साथ चिल्लाती रही महिला, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दुर्ग में अंतर्राज्यीय चोर दामाद गैंग का भांडाफोड़ हुआ, 13 लाख से ज्यादा रुपए। एमपी के छतरपुर में नाबालिग युवती से गैंगरेप, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कल्याण में 14 साल की बच्ची से रेप, रेलवे क्राइम ब्रांच और जीआरपी ने आरोपी सौरभ को हिरासत में लिया। गुजरात के महीसागर में सड़क हादसा, बेकाबू इको कार की टक्कर के कारण 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सूरत के लस्काना इलाके में कंटेनर से टकराया बाइक सवार, हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में स्कॉर्पियो का कहर, जूस ठेले के पास खड़े लोगों को रौंदा, एक की मौत, कई घायल। जयपुर के जगतपुरी इलाके में तेंदुए की दहशत, सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ, लोगों से सतर्क रहने की अपील। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 10 भैंसों की मौत, पशुपालकों ने प्रशासन से राहत की मांग की। जूनागढ़ में एक खाली चाय की तस्करी ने बुजुर्ग महिला की हत्या का रहस्य सुलझाया, मृतक के बेटे के दोस्त ने वारदात को दिया था अंजाम। भोपाल में अश्लील फोटो बनाकर छात्रा को दो युवकों ने किया ब्लैकमेल, 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान।

रोग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मान लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनुराशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। राशि, करियर में सफलता के योग हैं। मानसिक स्थिति में सुधार होगा, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम एक हिंट तो देते।
5: विक्रम
4: हिंट
3: बड़े आराम से।
6: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।
8: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: पेपर लीक को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में, छात्र गुस्से में और सियासत उफान पर। पेपर लीक के बहाने विपक्ष हमलावर है, सड़कों पर भी संग्राम छिड़ा है। अब मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो रही है।
1: प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस बीच सियासत भी बढ़ती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
1: नीट में दो साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से दो दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
0: इस केस में अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है, लिहाजा सूबे की सियासत में भी नीट पेपर का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष के हमले जारी है, पेपर लीक में शामिल एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है।
2: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है।
0: नीट पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर शिकंजा कस रहा है और इस बीच सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

केरला में आज 20 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन। मुस्लिम लीग के कोटे से 5 मंत्री शपथ ग्रहण में जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी। तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय को भी न्योता। शपथ के 8 दिन बाद उत्तर प्रदेश में नए मंत्रियों के विभागों का होगा बंटवारा। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य विभाग। आज कैबिनेट की बैठक में मिशन 2027 की रणनीति पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री मोदी को किया गया स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित। भारत स्वीडन संबंधों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा, कई अहम समझौते। नीट पेपर लीक में लातूर के 100 करोड़ी कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच। मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल, असली पेपर से मैच। और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच तेहरान को अमेरिका की नई धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ये कहा जाता है कि भगवान की अपनी धरती है, गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है, उसी केरलम की आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि केरलम को नया मुख्यमंत्री मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को एक राज्य में अपनी सरकार यूडीएफ के साथ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिल रही है। और आज इसलिए भी चर्चा होगी क्योंकि अपने आप में अगर आप देखिए तो वीडी सतीशन नाम तो चल रहा था, लेकिन कई लोग रेस में थे कि मुख्यमंत्री किसे बनाएगी कांग्रेस पार्टी, और इसमें वीडी सतीशन आगे पड़ गए हैं। आधे घंटे का इंतजार है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि नई सरकार का शपथ लेंगे, और इस शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें आज तक आपको पूरी कवरेज दिखाएगा। मेरे साथ कई मेहमान भी होंगे, बदलाव पर चर्चा करेंगे। 60 साल में ऐसा पहली बार है जब पूरी यूडीएफ एक साथ शपथ लेगी। वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं उनके साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में सीएम को मिलाकर कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से सिर्फ कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे। आईयूएमएल की तरफ से 5 मंत्री शपथ लेंगे, केरल कांग्रेस का 1, आरएसपी का 1, केरल कांग्रेस जेकब का 1 और सीएमपी के 1 मंत्री आज शामिल हो रहे हैं। तो 12 मंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे मुख्यमंत्री को मिलाकर। और इसी के साथ यूडीएफ में आप देखिए कि हर आईयूएमएल की तरफ से भी 5 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। हम आपको कुछ ही देर में अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, 2 खास मेहमान यहाँ पर भी स्टूडियो में हमारे साथ आकर सुबह सुबह डट गए हैं, जो हर खबर केरलम से जुड़ी हुई और कैसे आपको इसको भारत की राजनीति में किस तरह से देखना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पीछे हमने भी सोचा कि खूबसूरत नजारा आपको केरलम का दिखा दे। इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता वहां पर है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, जाकर ही आप महसूस कर पाएंगे, इसीलिए गॉड्स ओन लैंड भी कहते हैं। डॉक्टर संदीप शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं नित्य यूनिवर्सिटी के। आशुतोष जी यहां पर है ही, विजय जी है ही। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आज कितने लोग मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और यूडीएफ की सरकार का बनना। देखिए, पिछली बार 2 बार से लगातार एलडीएफ की सरकार बन रही थी, ये भी अपने आप में एक बदलाव था, वरना पहले बड़ा प्रेडिक्टेबल था तमिलनाडु की तरह यूडीएफ फिर एलडीएफ फिर यूडीएफ, लेकिन पिछली बार 2 बार से एलडीएफ की सरकार बन रही थी, लेकिन पिनरई विजयन की सरकार गिर गई इस बार और यूडीएफ ने कांग्रेस के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनाई। देखिए,
1: भगवान के अपने देश में सियासत का आज नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब से बस थोड़ी देर बाद केरल की नई सरकार शपथ लेने जा रही है, जिसकी कमान बतौर मुख्यमंत्री संभालेंगे वीडी सतीशन। सुबह 10 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में वीडी सतीशन और उनकी कैबिनेट को शपथ दिलाएंगे। सतीशन के साथ कुल 20 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केरलम की नई सरकार में 14 नए चेहरे होंगे जो पहली बार मंत्री बनेंगे। इनमें 2 महिलाएं और अनुसूचित जाति समुदाय से 2 सदस्य भी शामिल हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे। इसके अलावा आईयूएमएल के 5, केरल कांग्रेस के 1, आरएसपी के 1, केरल कांग्रेस जैकब के 1 और सीएमपी के 1 मंत्री शामिल हैं।
2: वी हैव 22 मेंबर्स एज एमएलएस, वी इलेक्टेड 5 मेंबर्स एज मिनिस्टर्स।
3: बट एनी अदर डिमांड यू हैव पुट टू?
2: नो, वी डिमांड ओनली 5 मिनिस्टर्स। यूडीएफ अलाउड अस 5, डोंट वी डिमांड? यूडीएफ अलाउड 5 मिनिस्टर्स विल बी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी।
1: लोक भवन में राज्यपाल को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए सतीशन ने कहा कि कांग्रेस को 63 सीटें मिलने के बावजूद कई योग्य नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी, क्योंकि मंत्रिमंडल के गठन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है।
4: कांग्रेस इज हैविंग 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स, वी हैव 63 एमएलएस, देयर आर सो मेनी पर्संस now not in the cabinet, those who are more eligible than many others, but unfortunately we have to consider the social balance, the regional balance, and the women representation, the Dalit representation, many things. So we are not able to include all the eligible persons in the cabinet.
1: केरल में जो मंत्री आज शपथ लेंगे उनमें शामिल हैं कांग्रेस से रमेश चेन्नीथला, के मुरलीधरन, सनी जोसेफ, बिंदु कृष्णा, एपी अनिल कुमार, पीसी विष्णुनाथ, एम लिजू, रोजी एम जॉन, सी सिद्दीकी, ओजे जनीश, के तुलसी। आईयूएमएल के जो पांच मंत्री शपथ लेंगे उनमें शामिल हैं पीके कुन्हालीकुट्टी, पीके बशीर, एन शमसुद्दीन, के एम शाजी, वी ई अब्दुल गफूर। इसके अलावा केरल कांग्रेस से मॉन्स जोसेफ, आरएसपी से शिबू बेबी जॉन, केरल कांग्रेस से अनूप जैकब और सीएमपी से सीपी जॉन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे।
5: We will fulfill our promises to the people. Tomorrow will be a new start from the history in the Kerala.
6: What are the priorities of UDF government?
5: We will implement our five guarantees, especially the free journey of ladies. That will be the first step. Step by step, we will fulfill our promises.
1: हाल में हुए पांच राज्यों के चुनाव में सिर्फ केरलम में कांग्रेस को जीत मिली है। इस पल को यादगार बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केरलम के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू, तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय शामिल होंगे। तो केरलम 10 साल की लेफ्ट सरकार की विदाई नई सफर के लिए तैयार है। बस घड़ी की सुई के 10 बजने का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।
0: केरलम में बदलाव है, बड़ा बदलाव है। इसी के साथ साथ कांग्रेस को थोड़ा ऑक्सीजन भी केरलम से मिलने वाला है, क्योंकि इस एक राज्य में जहां पर हमेशा बाय डिफॉल्ट ही जनता आपको चुन देती थी, वो राज्य भी हाथ से चला गया था दो बार से, वापस आया है कांग्रेस पार्टी के हाथ में। वीडी सतीशन सेंट्रल स्टेडियम थिरुवनंतपुरम में अब से कुछ देर बाद शपथ लेने वाले हैं। उनको मिलाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुल 12 लोग आज शपथ लेने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, इसका अर्थ क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए और वीडी सतीशन को चुनना, उनको देख, क्योंकि उन्होंने जमीन पर काम किया, उन्होंने यात्राएं की, उन्होंने ये किया, इसको आप आशुतोष जी कैसे देख रहे हैं?
7: नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने कम से कम काफी दिनों के बाद एक सही फैसला किया।
0: केसी वेणुगोपाल का नाम बड़ी तेजी से चल रहा था और जो मीडिया उसे यहाँ दिल्ली में इंटरेक्ट करती है वो बड़े तेजी से उनका नाम चला रही थी।
7: जब भी नाम चल रहा था तब मेरा साफ तौर मानना था केसी वेणुगोपाल को बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। और अच्छा क्या उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि जो आदमी वहां पिछले 5 साल से काम कर रहा है, जो लोगों के बीच में जा रहा है और जो स्टैंड ले रहा है, कम से कम मतलब खुल के स्टैंड ले रहा है जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, उसको बनाना मेरे ख्याल से ठीक था। अगर आप यहां से दिल्ली से भेजते तो कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होता। रमेश चेन्नीथला मेरे ख्याल से सीजनड आदमी है, बट उनको भी ये बात समझ में आ गई कि पिछली बार जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने किस तरीके से काम किया था। तो मेरे ख्याल से, और दूसरी बात क्या है कि इनकी उम्र भी कम है, 61, एक आदमी की 70 साल की उम्र है, दूसरे की 67 ईयर्स ओल्ड है, तो कम से कम अगले 10-15 साल की पॉलिटिक्स आप इनके इर्द गिर्द कर सकते थे। जो वैक्यूम वहां क्रिएट हो गया था उमान चांडी के डेथ के बाद या करुणाकरण के डेथ के बाद, एक एंटनी तभी भी जिंदा है लेकिन फिर भी वो बहुत बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो वो वैक्यूम को हमारे ख्याल से सतीशन भर सकते हैं। हाँ। और इस लिहाज से ठीक फैसला है।
0: आप कैसे इसको देख रहे हैं विजय जी? सुबह 10 बजे अपने दर्शकों को बता दें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो शपथ दिलाने वाले हैं सेंट्रल स्टेडियम थिरुवनंतपुरम में। अपने रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे, जल्दी से उनको कनेक्ट कीजिए। आप विजय जी कैसे देख रहे हैं?
8: मैं समझता हूँ कि ये सही फैसला भी है इस दृष्टि से भी कि पिछले 5 साल से जो सतीशन साहब है वो लगातार काम कर रहे थे, विपक्ष के नेता भी वो रहे थे, और यदि केसी वेणुगोपाल को वहां लाते तो आपको दो दो बाई इलेक्शन करवाने पड़ते, एक तो विधानसभा के लिए भी करवाना पड़ता, लोकसभा के लिए भी करवाना पड़ता। राहुल जी के लिए बार बार ये कहा जा रहा था, तब भी हमको ये लग रहा था कि सतीशन ही जो है वो इसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी इस तरह से नहीं चाहते कि अपने लोगों के लिए एक इमेज उनकी बने कि भाई वो अपना प्रेशर करना चाहते। हालांकि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली में बहुत सारे कांग्रेस के नेता चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल दिल्ली से केरल हाँ, चले जाए हाँ, लेकिन एक चीज देख रहा हूँ कि आज ये मौका था कांग्रेस के पास कि वो इंडिया ब्लॉक के भी नेताओं को इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाती। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने जो इस तरह के समारोह होते हैं उसको एक बड़े लेवल पर करती है, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पूरा हाँ। लोग है वो वहां आते, तो ये तो बहुत बड़ा मौका था। 10 साल बाद आपने जैसे जिक्र किया कि 10 साल बाद कांग्रेस को मौका मिला वहां पर केरल में, और केरल
0: दक्षिण के राज्यों में अगर आप देखिए तो हर जगह आप गठबंधन में छोटे भाई, पीछे के भाई, नीचे के भाई, इधर साइड के भाई, यही बन के चल रहे हैं। पर यहाँ पर अगर आपने अपने दम पर आपको मौका मिला है तो ये ऐसा मौका है जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। बड़ी जीत है, आइए सीधे लिए चलते हैं। मौसमी हमारे साथ है और जो इनसाइड स्टोरी है इन द मेकिंग ऑफ सीएम वीडी सतीश, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मौसमी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एक बार, शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुछ ही देर बाद राज्यपाल आने वाले हैं। ये सेंट्रल स्टेडियम है थिरुवनंतपुरम, जहां पर भव्य आयोजन में आज वीडी सतीश जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जो मंत्रिमंडल है 12 कुल मंत्री बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, उनको मिलाकर मौसमी 5 IUML के, वो भी बता दीजिए। लेकिन साथ ही वीडी सतीश को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि कैसे वो इसमें आगे निकल गए रेस में, और दिल्ली वाले जो चाह रहे थे वो थोड़ा सा दब गया।
9: जी अंजना, जैसा आपने बताया कि थिरुवनंतपुरम के जो सेंट्रल स्टेडियम है उसमें एक भव्य आयोजन किया गया है, और जिस तरीके से वीडी सतीशन ने राय शुमारी की है वो अपने आप इस बात का प्रमाण है कि आखिर वीडी सतीशन को क्यों चुना गया। उनके ऐलान के बाद विरोधी हो या सहयोगी हो, पिनारी विजयन हो या फिर पार्टी के भीतर ही जो बाकी दो कंटेंडर्स जो रमेश चेन्नईथला या केसी वेणुगोपाल उनसे भी मिलते हैं यहाँ पे वीडी सतीशन। और सेंट्रल स्टेडियम में लगभग 30,000 की संख्या में लोगों को न्योता दिया गया, निमंत्रण दिया गया है इस आयोजन में शामिल होने के लिए। तो अपने आप में वीडी सतीशन के ऐलान के बाद अंजना दूसरा प्रमाण ये है, आप देखिए कि जिस तरीके से चाहे वो सोशल मीडिया हो या केरला में इसका रिस्पांस आया है, वो अपने आप इस बात को, बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि कोई एक फैसला पार्टी आलाकमान ने लिया हो जिसका इतना समर्थन आपको देखने को मिले। और मैं सुन रही थी, काफी लोग ये बता रहे थे कि किस तरह से वीडी सतीशन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही एक अंकल की भूमिका उन्होंने निभाई है। हर एक शादी में जाते हैं, हर एक त्योहार में जाते हैं, हालांकि केरलम का कल्चर भी वही है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि एमएलए इतना बड़ा आदमी होता है कि मुख्यमंत्री बन जाता है, जब तक हमें पता नहीं चला कि वीडी सतीशन मुख्यमंत्री होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो घर घर हर एक परिवार को जानते थे और पहचानते थे, तो और यही छवि उनकी पूरे केरला में बनी। तो अपने आप में एक पीपल्स चॉइस जो है वही अल्टीमेटली पार्टी हाईकमान को भी चुनना पड़ा। हालांकि अंजना जो चर्चा हो रही थी उसमें कोई कोर, ये सिर्फ दिल्ली के मीडिया की भ्रांति नहीं थी, पार्टी हाईकमान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ये एक्सप्लोर करने की कि क्या केसी वेणुगोपाल को बनाया जा सकता है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल के लिए भी कहीं ना कहीं एक लंबा कार्यकाल हो गया था जीएसओ की पोस्ट में, और थोड़ा सा अनटेनेबल भी लग रहा था कि एक ऑनरेबल एग्जिट केसी वेणुगोपाल को देके यहाँ केंद्र में संगठन में हम बदलाव ला सकते हैं। कई लोग राहुल गांधी के सर्कल में ही है जो केसी वेणुगोपाल की शिकायत भी कर चुके हैं राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी कुछ भी केसी वेणुगोपाल के बारे में नहीं सुनना चाहते क्योंकि उनको लगता है मुश्किल वक्त में केसी वेणुगोपाल ही उनके काम आए थे, और लगातार उनकी तरफ से जो प्लैक लिया जाना है, जो टफ जॉब है वो केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं, चाहे बड़े नेताओं को लाइन पे लाना हो या टिकट डिनाई की बात हो। आप देखिए IUML ने क्यों समर्थन केसी वेणुगोपाल को नहीं दिया, क्योंकि जब विधानसभा सीटों का आवंटन हो रहा था तब IUML से जो हैवी हैंडेडनेस है या टफ हैंडेडनेस है जो वो केसी वेणुगोपाल ने की, तो एक तरीके से बतौर GSO वो अनपॉपुलर रहे, लेकिन राहुल गांधी को ये भली भांति मालूम है कि उनके लिए उन्होंने ये काम किया।
0: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जैसे तस्वीरें आती हैं कुछ हलचल कोई खबर तो आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर शास्त्री, आपके पास मैं इस बात सवाल के साथ आना चाहती हूँ, 63 कांग्रेस पार्टी के जीते और 22 IUML के, और वीडी सतीशन कैसे सबको लेकर साथ चलने की कोशिश करें कि इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कोशिश तो हमारी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लें, लेकिन उनको मिलाकर 12 मंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। वीडी सतीशन के चॉइस पर और वो क्या सिग्निफाई करते हैं केरल में कांग्रेस के लिए, और साथ ही जो गठबंधन के साथी हैं IUML को लेकर ही विपक्ष सबसे ज्यादा हमला करता है।
10: अंजना जी, जो अभी तक आपने चर्चा लीड किया उन सभी पॉइंट्स से मैं उन सभी पॉइंट्स को मैं मानता हूं। मैं जल्दी से जल्दी चार विषयों पे ध्यान देना चाहता हूं जिसे हमें इस वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, जिस तरह से केरलम में कांग्रेस ने फैसला लिया है, अगर इसको आप कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश से कंपेयर करें तो ज्यादा स्मूथली वो डिसीजन उन्होंने इस राज्य में लिया। शायद पिछले तीन उदाहरणों को अगर हम देखें तो हाईकमांड ने काफी डेक्सटेरिटी से इस विषय को यहाँ हैंडल किया है। पॉसिबली ये एक्सपीरियंस के वजह से हो सकता है और एक अवसर को वो खोना नहीं चाहते थे। दूसरी बात अंजना, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कोएलिशन सरकार है, कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, वो पार्टी का ही सरकार था, पर यहाँ के वो कोएलिशन का सरकार है। तो कोएलिशन के सरकार होते होते दूसरे कोएलिशन पार्टनर्स क्या कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जैसे आपने कहा और दूसरे कई लोगों ने कहा, IUML का बहुत इंपॉर्टेंट पात रहा है सतीशन के चॉइस में। तीसरी बात, पिछले 5 सालों में केरलम में काम किसने कांग्रेस का जमीन पे किया है, वो सतीशन ने किया है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए, उसको रिकग्नाइज करते हुए उनको बनाना मुझे लगता है एक डिसीजन पार्टी में लिया। और अंत में अंजना जी, यहाँ पे आप देखें, जिस दिन से सतीशन का नाम का घोषणा हुआ उस दिन के बाद किस तरह से सतीशन जी सभी को अपने साथ ले जाने का एक कोशिश कर रहे हैं। जो उनके ओपोनेंट्स इन अ वे थे चीफ मिनिस्टरशिप के रेस में, उनको जाके मिलना, उनका सपोर्ट लेना, उनमें से एक को गृह मंत्री राज्य का बनाना, सो ये सभी को साथ में लेके जाना जो सतीशन ने एक प्रयत्न किया है और जो आज शायद हमें अभी आधे घंटे में देखने को मिलेगा, ये शायद उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वालिटी है कि सभी को साथ में लेके जाएं। और ये उनको कोएलिशन को हेड करते करते मुझे लगता है काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा।
0: बिल्कुल, जो मंत्री हैं वो चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार जल्दी जल्दी सारे चेहरे और नाम बता देते हैं जो मंत्री आज शपथ लेंगे। उनमें शामिल हैं कांग्रेस से रमेश चेन्नीथला, एक एक करके इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। मौसमी के मुरलीधरन, सन्नी जोसेफ, बिंदु कृष्णा, एपी अनिल, वो जो हमने तस्वीरों के साथ बनाया उसको फुल स्क्रीन दिखा दीजिए मेरे साथ। पीसी विश्वनाथ है, एम लिजू है, रोजी एम जॉन है, सी सिद्दीकी है, ओजे जनीश है, के तुलसी, IUML के जो 5 मंत्री बन रहे हैं अब वो आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस के कोटे का आप देख रहे हैं, ये सारे मतलब कुल मिलाकर अगर सीएम के साथ मिलाकर देखिएगा 12। अब ये IUML वाले आ गए, 5 मंत्री शपथ ले रहे हैं। पी के कुल्हाली कुट्टी, पी के बशीर, एन शमसुद्दीन, के एम शाजी, वी ई अब्दुल गफूर। इसके अलावा जो केरल कांग्रेस है उससे मॉन्स जोसेफ दिखा दीजिए, और इसी के साथ आरएसपी से शिबू बेबी जॉन है। केरल कांग्रेस जेकब से अनूप जेकब और सीएमपी के सीपी जॉन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय जी, जल्दी से कमेंट मैं आपसे इससे चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि IUML की भी बात सुननी होगी, तो IUML का भी आपको लगता है कि रहा होगा, मतलब वो भी ये चाहेंगे ना कि एक ऐसा सीएम यहाँ पर बने जो यहाँ का है, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा हो।
11: बिल्कुल, बल्कि ये कहना चाहिए, आप कह रहे हैं कि IUML की भी रूल रहेगा, वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री बनने में IUML की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि एक तो वो बड़ा उनके पार्टनर हैं, 22 एमएलए उनके साथ रहे हैं, और IUML ने बहुत दबाव बनाया सतीशन के लिए, बल्कि यूं भी कहना चाहिए कि वो केसी वेणुगोपाल के खिलाफ खड़े हो गए। तो एक सहयोगी संगठन जिस तरह से काम कर रहा है, उसने जो दिल्ली का नेतृत्व है, दिल्ली में जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उसको इस बात के लिए मजबूर किया कि IUML या जो भी पार्टनर्स उनके साथ हैं वो सतीशन के साथ काम करें, और सतीशन में जो उनकी जो लोकल लीडरशिप का, जैसे अभी मौसमी भी जिक्र कर रही थी, शास्त्री साहब भी जिक्र करते, उसका बड़ा फायदा हुआ कि उनका सबके साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन है। और वो समझते थे कि केसी वेणुगोपाल आए तो वो दिल्ली के एक कमांड के तौर पर, हाई कमांड के तौर पर से बिहेव करेंगे और वो उन लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन अब इससे देश की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस को मुस्लिमी लीग पार्टी कह रही है उस पर आगे जाएगी, क्योंकि अभी असम में तो आपके 19 में से 18 एमएलए मुस्लिम हैं, यहाँ यूएमएल के दबाव में आप वीडी सतीशन को बनाते हैं, तो इस राजनीति को जो दिल्ली में चलेगी, केरल में भले ही ना चले, उसका जवाब भी कांग्रेस को देने की तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है।
0: ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा आशुतोष जी, क्योंकि न सिर्फ मतलब असम से ये शुरू हुआ, लेकिन गिनती कर रहे हैं ना भाई कि आपके जितने जीत रहे हैं उनमें कांग्रेस चेहरे ज्यादा हैं, और वही मुस्लिम लीग अब हो गई है कांग्रेस पार्टी, ये सीधा हमला पीएम करते हैं, तो ये उस पर कहीं ना कहीं मुहर है।
7: वो तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, तो जाहिर सी बात है वो तो करेंगे, और जो कमजोर नस होगी उसी को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो केरला की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है जिसमें आप मुस्लिम तबके को या IUML को इग्नोर करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, जैसे वहां चर्च को भी इग्नोर करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आपको क्रिश्चियंस को मुस्लिम्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन सतीशन की जो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो वहां की जो हिंदू पॉपुलेशन है, और जिसको पिछले दिनों सीपीएम ने अपनी तरफ लाने की कोशिश की, शबरीमला वाले मामले में भी पूरा यूटर्न उन्होंने किया है, तो उनको ये संभाल के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जिस बात के लिए सतीशन जाने जाते हैं कि कॉल अ स्पेड अ स्पेड, लेकिन वहां पे जो दो बड़े संगठन है, एक दो नायर का संगठन है और दूसरा जो इड़वा कम्युनिटी का जो संगठन SNDP, दोनों से इनकी उतनी नहीं पटती है, और दोनों के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी की एक तरीके से, और दोनों के बारे में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों कम्युनिटीज को साथ लाने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ अपनी तरफ लाने की भी कोशिश कर रही है। तो सतीशन की राजनीतिक विजय इसमें होगी कि वो न केवल माइनॉरिटी कम्युनिटीज को साथ लेके चले, बल्कि साथ में साथ वहां की जो दूसरी अलग संगठन से जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उनको इग्नोर करके कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
11: इसमें एक सोशल स्ट्रक्चर में एक लाइन में जोड़ दूं,
0: जल्दी
11: जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, LDF की जो सरकार थी, मेरा विजन उस दौरान ये जो लव जिहाद का मामला है वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कम्युनिस्ट ने चलाया, तो इसलिए वो कम्युनिस्ट कम्युनिटी
0: चलाया शुरू किया, लेकिन अब बीजेपी भी उसमें पूरी ताकत झोंक रही है,
11: मतलब बीजेपी तो लव जिहाद पर चलती है, लेकिन वहां पर जो केरल द केरल स्टोरी भी आई और लव जिहाद आया वो कम्युनिस्ट पार्टी का आया, तो कांग्रेस को लगता है कि जो वहां पर क्रिश्चियंस है उसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी थी जो उनके साथ सीधे सीधे खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो एक तरह से विक्टिम की तरह से वहां पर हो रही थी, या जो भी आप कहें, तो पिनाराई विजयन के साथ जो क्रिश्चियन खड़े थे लव जिहाद के मामले में, कांग्रेस उन पर फोकस करने की बजाय मुस्लिम कम्युनिटी जो जिसके खिलाफ लेफ्ट खड़े रहे उनको साथ लेने के लिए उन्होंने ज्यादा जोर दिया। बीजेपी और मतलब यू भी कह सकते हैं बीजेपी और लेफ्ट एक साथ हो गए।
0: ठीक है हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा तिरुवनंतपुरम से जुड़ रहे हैं, 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे साथ जब शपथ लेंगे वीडी सतीशन, तो प्रीति हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रही है जो हमें तस्वीरें भी दिखाएंगी। प्रीति अगर आप सुन पा रही हैं, थोड़ा ही वक्त बचा है, कुछ ही देर बाद वीडी सतीशन शपथ ग्रहण में 20 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे।
12: बिल्कुल सही अंजना, थोड़ा ही वक्त बचा है, 10 बजे सेंट्रल स्टेडियम जहां पर ऑल रोड्स, अगर कहते आपको आवाज, हेलो,
0: हाँ आ रही है प्रीति, बताइए
12: अंजना, आपको आवाज आ रही है?
0: बिल्कुल
12: अंजना, सेंट्रल स्टेडियम त्रिवेंद्रम जहां पर ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण होगा 20 मंत्री और वीडी सतीशन, पहली बार वीडी सतीशन एक एग्जीक्यूटिव रोल में शपथ लेंगे, क्योंकि 6 बार तो वो जीत चुके हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से पर कभी मंत्री नहीं बने, तो पहली बार ओथ लेंगे। जो हमको अभी खबरें आ रही हैं अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज अंजना, ज्यादातर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वीडी सतीशन उस कैबिनेट को इनहेरिट कर रहे हैं कि ज्यादातर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स केसी वेणुगोपाल के आदमी हैं, इन टर्म्स ऑफ दे हैव प्लेस्ड एलिजेंस टू केसी वेणुगोपाल। तो इंटरेस्टिंग है जैसे डायनामिक्स प्ले कर रहे हैं, विजय को आना था यहां पर जो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर हैं, वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक सिक्योरिटी डिटेलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सुबह, तो वीडी सतीशन जी ने खुद साफ ये क्लियर करा है कि विजय नहीं आएंगे। वीडी सतीशन सुबह अपने घर को छोड़कर एयरपोर्ट गए हैं अंजना, एयरपोर्ट पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सारे आ रहे हैं और उनको वहां पर रिसीव करेंगे वीडी सतीशन। वहां से पूरा एक मान लीजिए शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा इसी स्टेडियम में जो सेंट्रल स्टेडियम है मेरे बिल्कुल पीछे, और जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, जो सारे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, ज्यादा नहीं है पर वो सारे चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे होंगे, रेवंत रेड्डी यहाँ पर होंगे, सिद्धरमैया यहाँ पर होंगे, सुखविंदर सुक्खू यहाँ पर होंगे और आज जो वीडी सतीशन ऑफकोर्स ओथ लेंगे अपने 20 मंत्रियों के साथ। अंजना, पांच इसमें IUML हैं, बहुत कह रहे हैं कि देखिए एक टाइट रोप वॉक है दैट आप माइनॉरिटी आउटरीच करिए पर इसको कम्युनलाइज ना करिए। बीजेपी के 3 एमएलएज होंगे जो इस बार असेंबली में बैठेंगे तो वो इसको जरूर यूज करेंगे कि 5 बर्थ अंजना IUML को गए हुए हैं, पर अगर आप कांग्रेस से पूछिए तो ये तो उमन चांडी का फॉर्मूला था, बहुत पहले जब उमन चांडी चीफ मिनिस्टर थे तभी भी 5 बर्थ यही फॉर्मूला होता था IUML के साथ।
0: मौसमी, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे, क्योंकि दिल्ली और तिरुवनंतपुरम की जो राजनीति है वो कई बार ऐसा लगता है कि भाई आपको लोकल बातें और लोकल जिस तरीके से वहां चीजें चल रही हैं उसको आगे ले जाना पड़ता है जो कहीं ना कहीं दिल्ली में मुसीबत बन सकती हैं, लेकिन इन सब के लिए डॉक्टर शास्त्री एक कमेंट आप दोनों से मैं इस पर लेना चाहती हूं। तस्वीरें हम आपको सीधा वहां की दिखा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे कि सभी लोग वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा, बीजेपी इस बार डॉक्टर शास्त्री 3 सीटें जीत कर आई है, अब वो किस तरह से कोशिश करेगी? अब आज तो सार्वजनिक रूप से ऑक्सीजन लेती हुई कांग्रेस पार्टी केरला में दिखाई देगी जब शपथ ग्रहण में वो अपना जिसको कहते हैं मसल फ्लेक्स कर रहे हैं अंग्रेजी में, 12 मंत्री उनके, 5 IUML के, और पुराना उमन चांडी जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से तब का ये फॉर्मूला है, लेकिन जब आप देखते हैं बीजेपी को तो ये कैसे आपको लगता है कि एक पोटेंशियल हथियार उनके हाथ में आ रहा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, खबर आ रही है कि विजय इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूँ, जोसेफ विजय शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। और एक बार मैं आपका, चूंकि आप वहां की राजनीति को और अब बेहतर से समझते हैं, ये जो चर्च का इन्फ्लुएंस है, ये जो मुस्लिम समुदाय का इन्फ्लुएंस है, नायर समुदाय का इन्फ्लुएंस है, वो आप किस तरह से बताएंगे? क्योंकि देखिए पड़ोसी राज्य में अगर विजय जो कि क्रिश्चियन है और मेजरली बैक्ड बाय द चर्च है, वो अगर सीएम बन रहे हैं, केरल में ये कैसे प्ले आउट होता है?
10: अंजना जी, एक बात हमें यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप दक्षिण भारत के 5 राज्यों को देखिए, पांचों राज्यों का राजनीति अलग अलग है। एक राज्य में अभी विजय आ चुके हैं, दूसरी राज्य में कांग्रेस एक अलायंस को लीड कर रहा है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस अलोन सरकार लीड कर रहा है। सो हर एक राज्य का एक लोकल पॉलिटिक्स बहुत ही अलग तरीके का लोकल पॉलिटिक्स। और अगर आप केरलम की बात करें तो कांग्रेस ने जो फैसला यहाँ पे लिया है वो एक बात का साफ संकेत देता है कि कांग्रेस ये बात अब समझ चुकी है कि अगर आपने लोकल फैक्टर्स, लोकल लीडर्स को ध्यान में नहीं रखा, अगर आपने सिर्फ दिल्ली से राजनीति चलाई तो शायद पार्टी को स्टेबल आप राज्यों में नहीं देख सकेंगे। दूसरी बात अंजना जो आपने की, बीजेपी का केरलम में मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। इस चुनाव में वो लेफ्ट को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रही थी और उनका प्लान ये था कि लेफ्ट का जो हिंदू बेस है और लेफ्ट का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट वो अपने तरफ लें और इसके बाद UDF सरकार को डायरेक्टली कन्फ्रंट करें। और ये जो MLA आपके असेंबली में आप देखेंगे उनका पात्र यही रहेगा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑफ द UDF। वो प्रयत्न तो ये करेंगे कि हमारे MLA शायद सिर्फ 3 रहे पर ये 3 लोग मेन ऑपोजिशन के रूप में काम करें, ये उनका प्रयत्न रहेगा। क्योंकि उनका एक एम 2026 पे नहीं है पर 2031 पे क्या होगा, उस वर्ष में जब केरलम में चुनाव होगा हम किस तरह से उस चुनाव में मैदान में उतरेंगे, वो वहां उनका एक एम रहेगा उस समय।
0: बिल्कुल, वो बंगाल दोहराना चाहते हैं आशुतोष जी वहां पर, 3 से 77 और 77 से फिर सीधा 200 पार, और उस मिशन पर बीजेपी को ये जमीन ऐसा लग रहा है जैसा बंगाल में बीजेपी के लिए जमीन तैयार की गई जब आप मुस्लिम तुष्टिकरण खुलेआम कर रहे थे तो आप ही उनके लिए जमीन बना रहे थे, वो धीरे धीरे फैलते गए और यहां पर पहुंचे। शपथ ग्रहण में अब सिर्फ आधा घंटा बाकी है, आपको बता दें राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी इसमें आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, बीजेपी पर चर्चा हो रही थी और उसी पर वो 3 विधायकों के साथ पैर तो उन्होंने घुसा दिया दरवाजे।
7: ये यह आशंका या उम्मीद, मतलब अपने अपने तरीके से आदमी इसको समझ ले, ये आशंका या उम्मीद बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि दो जगह पे जहां लेफ्ट बहुत मजबूत थी त्रिपुरा, वहां पे बीजेपी ने रिप्लेस किया है और लगातार सरकार बनाई है। अब वेस्ट बंगाल के बारे में कहा जाता था भाई वेस्ट बंगाल तो बिल्कुल अलग तरीके की जमीन है, यहां बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, और वहां जिस तरीके से बीजेपी जीती है बहुत मजबूती के साथ, तो उससे अब केरल के लिए वाकई में ये लोगों की आशंका और उम्मीद दोनों जो है वो मजबूत होती है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप लेफ्ट को देखें तो केरल के अंदर भी लेफ्ट के पास कोई अल्टरनेट लीडरशिप नहीं है। पिनराई विजयन 80 साल के हो गए लेकिन अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन वो बने हुए हैं। दूसरी कि उन्होंने वो अपनी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे कि उसको कैसे रीओरियंट करना है। अब अगर पश्चिम केरल के अंदर अगर लेफ्ट फ्रंट या सीपीएम अगर वो हिंदुओं की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगी, धार्मिक राजनीति को लेने की कोशिश करेगी, तो आप डिफेंसिव हैं। दरअसल आप दरअसल अपनी कमजोरी का एक तरीके से विज्ञापन कर रहे हैं। आपकी जो अपनी पॉलिटिक्स थी आपको उस पॉलिटिक्स को करना पड़ेगा और उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब वहां पे देखिए जो स्थिति बनी हुई है कि चर्चेस पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की है और चर्च का एक बड़ा तबका या क्रिश्चियंस का एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी की तरफ आकर्षित भी हुआ है और कुछ इस तरीके के बयानबाजियां क्रिश्चियन नेताओं ने वहां पे दी हैं जो दरअसल एंटी मुस्लिम मानी जाती हैं।
0: हाँ,
7: जिस पे इस तरीके बयानबाजी
0: की, लव जिहाद के मुद्दे पर खुलकर बोला है उन्होंने।
7: अभी हाल में हाल की बात, 6-7 महीने पहले की बात है, वहां पे जो चीज बीजेपी के खिलाफ चली गई या FRCC वाला मसला मतलब था, जो जिसे कहते हैं ना कि आप एनजीओ संगठन को जिस तरीके से पैसे दिए जाते हैं, तो वो जो कानून आया उसके बाद हालांकि बीजेपी ने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। लेकिन ये बीजेपी के लिए सबसे अच्छा मौका है क्योंकि लेफ्ट और सीपीएम वहां बहुत कमजोर स्थिति में है। अगर बीजेपी ने वहां कोशिश की तो मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, अगले 5 साल के अंदर बीजेपी अपनी जमीन वहां मजबूत कर सकती है।
0: आपको ऐसा क्या लग रहा है विजय जी, जल्दी से?
8: आशंका और उम्मीद की बजाय
0: एक सेकंड आपको टोक रही हूं, ये जहां पर शपथ ग्रहण होना है वहीं की तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो काफी जोश के साथ फूल वूल लेके आए हैं, जो अंदर पहुंच गए हैं वो पंखा लेकर हाथ में, क्योंकि वहां इस वक्त भीषण गर्मी होगी, उसका मतलब उमस बहुत है, तो ऐसे में सब बैठ गए हैं वहां पर अपनी अपनी जगह पर और एक जोश और उत्साह उनमें दिख रहा है। ये देखिए सभी जो नेता है कार्यकर्ता है वो अपने आप को स्क्रीन पर देखकर खूब खुश हो रहे हैं इस वक्त। कुछ ही देर में यह स्वेरिंग इन होने वाली है। बीजेपी जो कोशिश कर सकती है, बंगाल अंग बंग कलिंग का सपना उनका उत्तर में पूरा हुआ है और दक्षिण में केरलम पर, क्योंकि जहां जहां पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता है वहां वहां मैं ये मानती हूं कि विपक्ष की बीजेपी की जमीन तैयार करती है।
8: बिल्कुल ठीक बात आपने कहा ना, इसलिए मैंने कहा कि आशंका और उम्मीद की बजाय हम पॉलिटिक्स को देखें तो संभावना क्या है। संभावना इज द न्यूट्रल वर्ड फॉर पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो संभावना क्या हो सकती है, और आपने ठीक कहा कि जहां जहां मुस्लिम तुष्टिकरण का आप दबाव बनाएंगे या माहौल बनाएंगे वहां भारतीय जनता पार्टी को एंट्री के लिए एक बड़ी मजबूत जगह मिलती है। केरल उसमें बंगाल से भी ज्यादा उर्वरक फर्टाइल लैंड मुझे लग रहा है। उसमें कांग्रेस ने जब IUML के साथ ले लिया है तो एक और मौका मिल गया उनको उस लड़ाई को लड़ने का, और वहां लेफ्ट का जो क्रिश्चियन वाला जो चर्चेज वाला जो मामला था उसमें बीजेपी ने बहुत इनरोड्स किया।
0: मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे लगता है पहुंच गए हैं और वीडी सतीशन उनका स्वागत कर रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनके लिए भी एक बड़ी कामयाबी है, पूरी पार्टी के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में अगर आप देखिए कई जगहों पर तेलंगाना में अपनी सरकार है उनकी, रेवंत रेड्डी चला रहे हैं, लेकिन अगर आप तमिलनाडु देखिए बाकी तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं किसी के साथ है। रेवंत रेड्डी भी अब आपको दिखाई दे रहे हैं, रेवंत रेड्डी भी उनका
8: साथ पहुंच रहे हैं, राहुल जी
0: हाँ वो लोग सब एक एक करके आएंगे मुझे लगता है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें वीडी सतीशन आपको दाई तरफ दिख रहे हैं और बाई तरफ से वो सभी स्वागत कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी वहां पर मौजूद है तो सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वैसे ही आपको
7: रंजना एक दिलचस्प बात क्या है कि केरल का जो मॉडल है वो बहुत कुछ गोवा का मॉडल है और गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को री इन्वेंट किया।
0: बिल्कुल,
7: जो पार्टी माइनॉरिटी के खिलाफ मानी जाती थी, जो पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर बीफ के खिलाफ आंदोलन करती थी, उसने दो टूक शब्दों में वहां के क्रिश्चियंस को अपने साथ लाने की कोशिश की, क्रिश्चियंस के एमएलए को टिकट दिया उन्होंने, और एक समय ऐसा था जब 7-7 MLA क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे गोवा में। अगर उसी मॉडल को बीजेपी ने रेप्लिकेट करने की कोशिश की केरला में, और अगर उनको मनोहर पारिकर जैसा कोई नेता वहां मिल जाएगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव तक एक बहुत मजबूत स्थिति में आ जाए।
0: राजीव चंद्रशेखर तो काफी मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है उनमें वो कैपेबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह से
7: देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर
0: आगे ले जा रहे हैं,
7: मैं व्यक्तिगत तौर पर राजीव चंद्रशेखर को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैंने मनोहर पारिकर के वो दिन देखे हैं जब वहां मैं एक कार्यक्रम में गया था और मैंने अचानक देखा कि अपने स्कूटर के साथ मनोहर पारिकर वहां पहुंच गए और वो किसी के भी बर्थडे में जा चले जाना, किसी की शोक में जाना, किसी का और बहुत कनेक्ट था।
0: एक अपना स्टाइल था उनका, अपना एक अंदाज था।
7: हैरानी की बात क्या,
0: शर्ट पहनकर और वो जो एक
7: हैरानी की बात क्या थी, गोवा में कोई भी आदमी जो है चाहे उनका विरोधी है चाहे उनका प्रशंसक, दोनों ही अपने आप को मनोहर पारिकर से जोड़ने की कोशिश।
8: पिछले 2-3 साल में चर्चिल के साथ तो बीजेपी ने बहुत कोशिश की है, दिल्ली में भी आप देखिए नड्डा साहब गए, प्रधानमंत्री ने जो लीडर्स हैं क्रिश्चियन लीडर्स उनके साथ मुलाकात की।
0: क्योंकि जब आप पॉलिटिकल सिनेरियो को और समीकरण को समझते हैं तो उस बिसात पर कई अहम कड़ियां हैं जिनको आपको साधना ही पड़ेगा। सगई राज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आ रही हूं डॉक्टर शास्त्री से, पहले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, डीके भी देखे, डीके शिव कुमार भी वहां पर मौजूद थे और ये अब आप शपथ ग्रहण जहां होने वाला है मंच को आप देख रहे हैं, जहां एक एक करके सभी नेता पहुंच रहे हैं, सबका स्वागत हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंच गए। सगई राज क्या हो रहा है इस वक्त वहां से बताएं।
13: जैसे आपने कहा है कि पूरा कांग्रेस लीडर, कांग्रेस का बैटालियन केरला पे है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी और कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, सब लोग वहां पे मौजूद है। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 10 साल के बाद कांग्रेस का यूडीएफ गवर्नमेंट पावर पे आ रहा है, इसी वजह से जो भी कांग्रेस लीडर्स है वहां पे अभी मौजूद है।
0: 12 मंत्री कुल अगर सीएम को मिलाकर देखें कांग्रेस पार्टी के बन रहे हैं, 5 आईयूएमएल के, बीजेपी इसको वहां पर राज्य में कैसे प्ले आउट कर रही है 5 आईयूएमएल को के मंत्री को?
13: देखिए इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो जरूर होगा क्योंकि
0: और अब राहुल गांधी भी आ गए हैं, तस्वीरें आ रही है, दिखा दें आपको एक सेकंड सगई राज, मैं आपको टोक रही हूँ। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी दोनों पहुंचे हैं, वीडी सतीशन उनका स्वागत कर रहे हैं और कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह, केसी वेणुगोपाल भी पीछे देख रहे हैं, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कर्नाटका के, हालांकि सिद्धरमैया अभी तक दिखे नहीं है, मुमकिन है हो सकता है आए हो इधर उधर कहीं हो या फिर जैसा भी होता है, डेप्यूटी सीएम तो कर्नाटका के पहुंचे हुए हैं डीके शिव कुमार, सबसे मिलते हुए राहुल गांधी आगे जा रहे हैं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष है वो वहां पर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल उस शपथ ग्रहण समारोह के जगह की है जहां पर सभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज पहुंच रहे हैं, गले मिले राहुल गांधी बीडी सतीशन से और उनका उन्होंने स्वागत किया, कंग्रेचुलेट किया और उसके बाद से प्रियंका गांधी से भी वो मिल रहे हैं। इन तस्वीरों पर आशुतोष, डॉक्टर शास्त्री आप कुछ कह रहे थे जल्दी से वो बोल रहे, उसके बाद से आ रही हूँ डॉक्टर शास्त्री।
10: अंजन जी मैं एक केरलम के बारे में जब हम बात करते हैं, रिलीजियस कंसोलिडेशन और काउंटर कंसोलिडेशन की बात हो रही थी, बट केरलम में ध्यान में रखिए ये एक और फैक्टर केरलम में है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है हिंदू पॉपुलेशन को छोड़ के। सो ये सिर्फ कंसोलिडेशन काउंटर कंसोलिडेशन की बात यहाँ पे केरल में नहीं हो सकती है, यहाँ पे ये थर्ड फैक्टर को भी हमें इस डिस्कशन में लाना पड़ेगा। उतना इजी नहीं रहेगा ये कंसोलिडेशन काउंटर कंसोलिडेशन इस राज्य में करना,
0: वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन लोगों ने यही एक वक्त पर सोचा था कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा करना मुश्किल है। आप जल्दी से कुछ बोल रहे थे। हाँ।
7: मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं मैं अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, क्योंकि केरला की जो जमीन है पेरियार की जमीन है और पेरियार में जहां रैशनलिस्ट मूवमेंट रहा है, जहां एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट रहा है, साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग नॉर्थ इंडिया को लेकर भी वहां पे है, एंटी हिंदी का जो आंदोलन 1923 में शुरू हुआ था वो सबसे पहले केरला और तमिलनाडु से मिलकर शुरू हुआ था, तो उसकी जमीन कुछ लोग इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो ओरिजिनली बंकिम चंद की जमीन है, महर्षि अरविंदो की जमीन है, विवेकानंद की जमीन है, जहां पे दरअसल हिंदुत्व को लेकर या हिंदू रिसर्जेंस को लेकर एक नई जमीन तैयार लगातार हो रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां से आते हैं और पहली बार 1952 में चुनाव हुआ था तो जो 3 सीट

0: लोगों की पहले भी बात हो रही थी कि ही इज नोन एज अ बुकवर्म, किताब खूब पढ़ते हैं और जमीन पर भी जुड़े हैं, सबको साथ लेकर चलने में भी उनको महारत है और केरलम की जमीनी जो राजनीति है उसमें वो ये रहते हैं। जल्दी से कमेंट, फिर मैं मौसमी के पास जाऊंगी।
1: मैं बल्कि विजय जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब एक मेरा रिफ्लेक्शन है कि मैंने पहली बार शायद मैं तस्वीर देख रहा हूं कि जब कोई आदमी मुख्यमंत्री के तौर पर जिसको शपथ ग्रहण लेना हो वो एयरपोर्ट पर अपने किसी नेता को रिसीव करने गया, कम से कम मैंने नहीं देखा या मेरी जानकारी में नहीं।
2: उनको वहां रहना
1: जैसे कि आपने बिहार के अंदर,
2: लेकिन आपने बुकवर्म कह के मुझे लगा कि आप आशुतोष जी की पॉलिटिकल संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: सतीशन साहब पढ़ते हैं ज्यादा ही बात, आशुतोष जी रूबरू होकर यू टर्न लेकर वापस आ चुके हैं स्टूडियो।
1: चाहे अगर घोड़े होती तो मैं सवारी करता
0: हूं।
2: लेकिन पेरियार पर यदि बात कर रहे हैं ना, आशुतोष ने बात की, तो पेरियार की राजनीति को तमिलनाडु ने पीछे छोड़ दिया ना।
0: बिल्कुल, विजय मैं कह रही थी मतलब उससे वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे, कम से कम तमिलनाडु ने तो एकदम ही उसको पीछे छोड़ दिया। जल्दी से मौसमी, मौसमी जल्दी से कमेंट आपकी तरफ से। ये एयरपोर्ट पर जाकर एयरपोर्ट है या मुझे एक सेकंड में इसको चेक करना होगा, क्योंकि मौसमी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टेडियम के ही किसी हिस्से में वो सबका स्वागत कर रहे हैं। एयरपोर्ट मुझे नहीं लग रहा है, बट आपके पास अगर जानकारी हो तो मुझे नहीं पता।
3: अंजनाओ, ये स्टेडियम के बैक साइड का हिस्सा है जहाँ पे वो रिसीव कर रहे हैं।
0: आशुतोष जी
3: की जो तस्वीर,
0: अब देख अच्छा है हुआ कि आपने बोला, नहीं तो अब ये शुरू हो जाता कि जानबूझ के गलत खबर फैलाई गई। आशुतोष जी ने बोला,
1: मैंने कहा कि ये मेरी,
2: हाँ वही मैंने,
1: एयरपोर्ट नहीं है।
0: कंफर्म कर दे अपने दर्शकों को, एयरपोर्ट है ही नहीं, बीडी सतीशन एयरपोर्ट में रिसीव करने नहीं गए, स्टेडियम का ही एक हिस्सा है।
1: इसीलिए मैं आई वाज लिटिल सरप्राइज, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है,
0: एयरपोर्ट का स्टेडियम का ही हिस्सा है। मौसमी जल्दी से,
3: मैं ये कह रही थी जो तस्वीरें अभी आ रही है, आप देखिए प्रियंका गांधी राहुल गांधी मिल रहे हैं, एक एकजुटता की तस्वीर है। इसमें कई पेज भी फंसे हुए हैं क्योंकि डीके शिवकुमार के पास एक टेम्पलेट हो गई है, जिस तरह के पोस्टर बैनर वायनाड में आए जहां पे जिसके खिलाफ FIR भी रजिस्टर हुई है, उसकी भी चर्चा कर ले कि वायनाड जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किसी वेणुगोपाल को बैग बेरर राहुल गांधी का बताया गया था उस पोस्टर में। तो एक ये हमने देखा था जब TS सिंहदेव वाला मामला भी हुआ था और ढाई ढाई साल की फॉर्मूले की बात।
0: बिल्कुल मौसमी, मौसमी मैं लौटूंगी यहीं से, चर्चा आगे लिए चलेंगे। और सिद्धारमैया दिखे नहीं मुझे अभी तक, हो सकता है वो थोड़ी देर में आए, अभी तो आ ही रहे हैं तमाम VVIPs। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। केरल में UDF की सरकार बन रही है, BD सतीशन अब से कुछ ही देर बाद 15 मिनट बाद शपथ पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं, देखते रहिए। आज
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
7: From the New York Times, I'm Michael Barro. This is The Daily.
6: Smartless.
8: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
6: Marketplace.
9: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
6: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
10: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
13: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
14: विक्रम, एक हिंट तो देते।
15: विक्रम!
14: हिंट
13: बड़े आराम से।

0: पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: Like I said before, we better own the sins.
10: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
11: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
13: इसमें माइक्रोफाइबर है।
12: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
12: हमारे सीमेंट में नहीं है?
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
15: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को डाल दिए।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
4: जहां खबर वहां खबरदार.
0: इन एसोसिएशन विद
8: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
9: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं.
10: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक. आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप.
11: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही.
12: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर.
13: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए. ओके,
11: शुभेंदु अधिकारी.
10: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है. शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे.
14: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर. तपस सेन गुप्ता,
15: अनुपम मिश्र,
16: अमित भारद्वाज,
17: पीयूष मिश्रा,
18: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: केरला में राज तिलक की है तैयारी। वीडी सतीशन अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं बतौर मुख्यमंत्री। 13वें मुख्यमंत्री वो बनेंगे और कुछ ही देर में राज्यपाल उनको सेंट्रल स्टेडियम थिरुवनंतपुरम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने वाले हैं। उनके साल को उनको मिलाकर 20 मंत्री आज शपथ ले रहे हैं, जिसमें 12 होंगे कांग्रेस पार्टी से, 5 IUML से और अन्य भी पार्टियों के सभी मंत्री शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है और वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ वहां पर सभी लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी शामिल हैं। वहीं अगर आप देखिए कांग्रेस पार्टी से जो मंत्री पद की आज शपथ ले रहे हैं उनमें रमेश चन्नीतला, जिनका जिक्र अक्सर हो रहा है क्योंकि इससे पहले अगर आप देखिए तो लंबे वक्त तक के एक दशक तो बीत ही गया, 10 साल तक वहां LDF की सरकार थी। कांग्रेस से ये देखिए तस्वीरें सिद्धारमैया की आप देख रहे हैं, वीडी सतीशन उनका स्वागत करें। सिद्धारमैया आ गए हैं, सिद्धारमैया और DK शिव कुमार दोनों कर्नाटक का एक तरह से वहां पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए दोनों वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये देख रहे हैं आप सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री कर्नाटक और उनके साथ DK शिव कुमार पहले ही आ चुके हैं, तो अब उनका स्वागत करने के लिए वीडी सतीशन जो गए तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडी सतीशन के लिए बड़ा दिन है, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और अलग से उनको गले लगाते हुए आपको DK शिव कुमार दिख रहे हैं। राहुल गांधी जब पहुंचे वो भी वीडी सतीशन से गर्मजोशी से मिले और पार्टी के लिए बड़ा दिन है। वहीं पीछे आपको प्रियंका वाड्रा गांधी भी दिखाई दे रही हैं। केरलम में सतीशन सरकार और इसी के साथ कांग्रेस के लिए एक नए युग का आगाज, जिसे गॉड जोन लैंड कहा जाता है। इतना खूबसूरत ये जगह है, इसीलिए खूबसूरती की वजह से कहते हैं कि भगवान यहां बसते हैं। वहां पर अब केरल में इनकी सरकार आई है और तस्वीरें सभी पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्रियों की, जिसमें रेवंत रेड्डी अगर आप देखें तो युवा प्रतिनिधित्व काफी इसमें अब दिखाई दे रहा है, ये फ्रेश चेहरे हैं।
1: 12 चेहरे इसमें फ्रेश हैं जो मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है, उसमें ज्यादातर कांग्रेस के चेहरे, भले ही वेणुगोपाल। एक इंटरेस्टिंग चीज किसी ने भेजी है मुझे केरल से मित्र ने, कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील की थी काफिला कम करने की, तो पिनाराई विजयन के पास 49 व्हीकल्स थे उनके पास चीफ मिनिस्टर के लिए, वीडी सतीशन ने 4 व्हीकल रखे। मतलब बीजेपी वाले माने ना माने, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने माने।
2: बट विजय जी एक भी और देखे ना कि जो अभी जो कांग्रेस कर रही है, जैसे तेलंगाना में बिल्कुल नए चेहरे को दिया, हिमाचल में भी बिल्कुल नया चेहरा सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिया है,
1: फ्रेश,
2: और केरल में भी नया
0: कर्नाटक
2: नया,
0: जब राजस्थान में दिया था तो क्या किया था
1: रेवंत रेड्डी है,
2: तो उसका नतीजा देखा ना आपने। आपने कर्नाटक के अंदर अगर आपने सिद्धरमैया को दिया है तो आपको DK शिवकुमार वाला एंगल नहीं करना चाहिए था, और वहां पे उनको रिप्लेस करना मुश्किल हो रहा है। या राजस्थान के अंदर अगर उन्होंने सचिन पायलट को बनाया होता तो शायद दिक्कत नहीं पैदा होती।
0: लेकिन मौसमी है क्या हमारे साथ, अपने सहयोगियों का भी रुक करेंगे और इसी के साथ अगर स्टेडियम के बाहर से कोई हमारे साथ जुड़ रहा है तो वो भी हमें बताए ताकि वहां का भी रुक करें। तो ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से यहां पर डॉक्टर शास्त्री हो रहा है, क्योंकि जिन राज्यों में अब उनकी सरकारें हैं उनके सारे मुख्यमंत्रियों का पहुंचना। और अब क्या ये हमेशा से ऐसा होता था कांग्रेस पार्टी का, ये भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, या बीजेपी जिस तरह से एक ग्रैंड इवेंट बनाती है, भाई कहीं भी उनका शपथ ग्रहण हो सारे CM सारे मंत्री सारे पहुंचते हैं, उसी पर अब कांग्रेस भी चल रही
3: है। अंजना मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्पष्ट बात की संकेत है कि भारत के राज्यों अभी राजकीय के केंद्र बिंदु हो चुके हैं। जिस तरह से राज्यों में पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस तरह से केंद्र के नेता राज्य के राजनीति में भाग ले रहे हैं, द सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स आपको यहाँ दिख रहा है। अगर बीजेपी का सरकार हो या कांग्रेस का सरकार हो या किसी और का सरकार हो, वहां शपथ ग्रहण समारोह में हमेशा बड़े लोगों का एक प्रेजेंस आप देखेंगे। पार्टी, रूलिंग पार्टी चाहेगी कि उनके सब प्रमुख नेता उस फंक्शन पे आए, और आज जिस तरह से सतीश का एक स्वेरिंग इन सेरेमनी अपने मंत्रिमंडल के साथ हो रहा है, उसी तरह का एक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी यहाँ प्रयत्न कर रही है। और उसमें वो जो भी उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी को उन्होंने यहाँ पे उन्होंने शामिल किया है। एक पार्टी का शो ऑफ स्ट्रेंथ का एक मौका, ये उसका एक फायदा वो उठा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अब ये बनता भी है विजय जी, क्योंकि दक्षिण के राज्य में जहां पर अब अपने दम पर इतनी मजबूत उनकी सरकार आ रही है IUML के साथ ही सही, लेकिन और ये जो लाइन उन्होंने कही कि ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स हो रहा है, यानी केंद्रीयकरण राज्यों की राजनीति का हो रहा है, वो भी एक तरह से हावी दिखता है जब आप केंद्रीय नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व को पहुंचते देखते हैं।
1: हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, शास्त्री साहब ने जो बात कही है ठीक है, लेकिन एक बदलाव दूसरी तरह से भी हुआ है कि जो कांग्रेस की जो गलती हुई थी इंदिरा गांधी के वक्त में कि क्षेत्रीय जो नेता थे उनको खत्म किया गया था और उसकी वजह से कांग्रेस आज पहुंची वहां से, अब एक बार फिर से कांग्रेस अपने क्षेत्रीय रीजनल लीडर्स की तरफ देख रही है, चाहे वो भूपेश बघेल हो भले ही वहां पर, या सुक्खू हो, रेवंत रेड्डी हो, और यहां पर वीडी सतीशन हो, तो ये मजबूती की तरफ होगा।
0: मुझे मंच पर राजीव चंद्रशेखर भी दिखे तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा उदाहरण है। ये देखिए राजीव चंद्रशेखर आगे में ही दिख रहे हैं बीजेपी के, मतलब ये आशुतोष जी, ये बाकी नेताओं को भी तो ये करना चाहिए ना, मतलब आप बाकी राज्यों में तो आप देखिए यहां पर भी SIR हुआ था, लेकिन यहाँ पर चूंकि बीजेपी फ्रंट रनर नहीं थी तो किसी ने उस पर हमला नहीं किया।
2: एक सवाल इसमें मेरा बनता
0: है, और ना ही ऑपोजिशन का कोई आता है।
2: क्या ये साउथ इंडिया का फिनोमेनन है? क्योंकि आपने देखा कि जब विजय बने उसके बाद स्टालिन के पास गए, दोनों ने एक दूसरे को शॉल उढ़ाया, मतलब वहां पे वो एनिमिटी दिखाई नहीं पड़ी, वो वैमनस्य
0: जबकि पहले ज्यादा वहीं दिखती थी, मतलब के करुणानिधि पर हमला जब जयललिता बने, जयललिता के साथ बदतमीजी, जब के
2: करुणानिधि नहीं, जिस तरीके से आधी रात को करुणानिधि को उठाया गया था, मतलब वो तो आइकॉनिक तस्वीर है कि हिंदुस्तान की राजनीति
0: मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीरें आप उस मंच की देख रहे हैं जहां कुछ ही देर बाद जो राज्यपाल हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने वाले हैं। ये सेंट्रल स्टेडियम थिरुवनंतपुरम, जहां पर कांग्रेस पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये दक्षिण का होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि उत्तर के राज्यों में उनकी एक के बाद एक सरकार बन रही है बीजेपी की, तो वहां विपक्ष की तरफ से कोई शामिल नहीं होता है। आप मतलब चुनते हैं तो आप खुश रहते हैं,
2: इनवाइट
0: करते
1: राजभवन का प्रोग्राम,
0: राजभवन का प्रोटोकॉल है।
1: अंजना, 2017 को याद कीजिए, यूपी में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ बने, तो प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर मुलायम सिंह यादव गए थे।
0: बिल्कुल,
1: तो मुलायम सिंह यादव को वहां पर गया, और ये तो प्रोग्राम प्रोटोकॉल राजभवन का है, ये राजभवन का प्रोग्राम होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, उसका होस्ट जो है राजभवन होता है, तो वो सभी लोगों को इनवाइट करते हैं, वहां की जो लोकल लीडरशिप है, अब कौन जा रहा है, अब ये हो सकता है ना पश्चिम बंगाल में
0: तय न हो। उनका हाथ पकड़कर उठा रहे हैं, ये चार लोग आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वीडी सतीशन उनके साथ हाथ उठाते हुए, और फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। एक बड़ी जीत के तौर पर कांग्रेस पार्टी इसको आने वाले वक्त में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के भी तौर पर, क्योंकि आप देखिए सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम है, और उनको एक नए सिरे से एक ताकत मिलती है जब वो देखते हैं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी यहां पर पहुंचा हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, वीडी सतीशन जिन्होंने केरल में जमीन पर काम किया वो आज CM बन रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये एनर्जी गिविंग, जिसको कहते हैं कि ऊर्जा डालने वाला एक क्षण होता है, उस क्षण को हैंड रेजिंग के साथ विक्ट्री की एक बड़े भूमिका के तौर पर दिखाते हुए। और वहीं हमने आपको दिखाया, देखिए यहां पर आपको विपक्ष के भी नेता दिखाई दे रहे हैं, पिनराई विजयन दिखाई दे रहे हैं, पिनराई विजयन आपको दिखाई दिए, तो ये दिखाता है कि मौसमी दो तीन बड़ी बातें जो अब दिख रही हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ इसको शक्ति प्रदर्शन के लिए बल्कि एक ऑक्सीजन के तौर पर एक जो उनको मिला है, ये बड़ी जीत यहां पर मिली है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में UDF को, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं पिनराई विजयन हो, राजीव चंद्रशेखर हो, जो विपक्ष में भी अब बैठने वाले हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर शामिल हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी तस्वीर होती है। SIR तो यहां केरलम में भी हुआ था, लेकिन चूंकि बीजेपी फ्रंट रनर DK शिव कुमार भी अपने पूरे स्टाइल में दिख रहे हैं स्टेज पर। मौसमी,
4: तस्वीरों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिस स्टाइल में DK शिव कुमार अब देखिए आप प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं और आगे चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगली बड़ी चुनौती पार्टी हाईकमान को कर्नाटक से आने वाली है। बेहद दिलचस्प है क्योंकि ही इज अ मैन इन वेटिंग टू बिकम चीफ मिनिस्टर, उनकी ख्वाहिश और महत्वाकांक्षाएं है। और जिस तरीके से वीडी सतीशन भी अपनी एम्बिशन को कहते हैं, ही वेयर्स हिज एम्बिशन ऑन हिज स्लीव्स, तो शायद DK शिवकुमार वीडी सतीशन से सबक लेंगे कि कैसे मोबिलाइज करना है, पार्टी हाईकमान को बनाना है। लेकिन एक और दिलचस्प तस्वीर है KC वेणुगोपाल की, आप देखिए कि KC वेणुगोपाल पिनराई विजयन के बगल में बैठे हुए हैं, उनके कद काठ, उनकी तवज्जो में कोई कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी गई है, मुस्कुरा रहे हैं। और रेवंत रेड्डी और तमाम नेता जो है वहां पे आगे मौजूद है, विपक्ष, राजीव चंद्रशेखर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अपने आप में एक तरीके से स्टार्ट ऑन द राइट फुटिंग, वीडी पिटीशन का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी नजर आ रहा है, सबको साथ लेके चलने की बात है। और एक तस्वीर यहाँ पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अगर आप देखें, दोनों अगल बगल है यहाँ पे बैठे हुए, तो प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है। ये कहा जा रहा है कि ये फैसले पर आने पर प्रियंका गांधी का भी एक बड़ा योगदान रहा है, वीडी सतीशन, शी थ्रू अ वेट बिहाइंड वीडी सतीशन, क्योंकि वो जमीन की राजनीति जो केरल में हो रही है, चुनाव लड़ी है, लगातार केरलम जा रही थी, तो उनका भी ये मानना था कि वीडी सतीशन, ये बताया जा रहा है कि वीडी सतीशन की पॉपुलैरिटी को दरकिनार नहीं कर सकते।
0: लेकिन आईयूएमएल के साथ पर, क्योंकि आईयूएमएल का भी एक दबाव था, वो कितना इनके पक्ष में काम आया? और जो पावर स्ट्राइड स्टेज पर इधर से उधर करते हुए हम डीके शिव कुमार को देख रहे हैं, ऐसा कोई आईयूएमएल उनके पास तो नहीं है ना मौसमी?
5: सही,
4: बिल्कुल अंजना, यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल अंजना, यहाँ पे आप देखिए कि ना सिर्फ सत्ता पक्ष के जो ना सिर्फ सत्ता कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद है, लेकिन विपक्ष के भी नेता, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो, पिनारी विजयन हो, बीजेपी के नेता, वो भी मौजूद है। और ये कांग्रेस मॉडल, क्योंकि बीजेपी अपना मॉडल शोकेस करती है, डबल इंजन की सरकार शोकेस करती है, कम से कम कांग्रेस ने इतना जरूर किया कि इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस का क्या मॉडल है आप देखिए, बड़ा अच्छा ट्रॉयका बना है, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया और अब वीडी सतीशन, ये रीजनल क्षेत्रीय शत्रप है, तो इनका ट्रॉयका एक बनाया है दक्षिण में, और अपना मॉडल दिखाने की, शोकेस करने की कोशिश राहुल गांधी यहाँ पे कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये फैसला था, और राहुल गांधी यहाँ पे लगातार केरलम के तमाम नेताओं से मिले, तो एक तरीके से उनके लिए ये एक बड़ा दाव है जो उन्होंने चला है।
0: इस फ्री में केसी वेणुगोपाल और रेवंत रेड्डी एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो सबके लिए सीटिंग भी वहां पर की गई है, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये व्हाइट और ब्लू तौलिया हम देख रहे हैं, और उसी कलर कॉम्बिनेशन में हम आज प्रियंका जी को भी देख रहे हैं, जरा ये समझाइए, क्योंकि हमने देखा है कि ये सफेद और नीला जो है, ये नीले कुर्ते में राजीव चंद्रशेखर भी हैं, लेकिन ये बंगाल में बहुत हावी था ममता बनर्जी का, जितना सरकारी दफ्तर थे उनमें ये कलर कोड एक तरह का बन गया था, यहां पर इसका क्या सिग्निफिकेंस है मौसमी?
4: देखिए, आप अगर प्रियंका गांधी का अटायर देखिए, अंजना, तो केरलम की वो साड़ी पहनी हुई है, और ये तौलिया कल्चर की बात हो रही थी, तो जिस तरीके से टॉवल कल्चर कहे, तो इसके अभी हाथ में देखा किस तरीके से विजय सतीशन, मैं ये कह रही थी जो टॉवल कल्चर है ये साउथ में काफी प्रेवलेंट है, अभी जो विजय है मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जनता की अपील में ये टॉवल कल्चर को डू अवे किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कलर कोडिंग में यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रीन का कोड पीछे आपको कुर्सियों में दिख रहा है, प्रियंका ब्लू, ब्लू मैंने देखा है कि प्रियंका गांधी अक्सर जब इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, चाहे सदन में स्पीच देना हो, तो वो ब्लू का चयन करती हैं, और यहाँ पे भी वो केरलम की जो साड़ी पहनी है उसके उसका कॉम्बिनेशन व्हाइट एंड ब्लू का है, तो एक तरीके से वहां वायनाड की राजनीति से वाकिफ होते हुए, वायनाड की सियासत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहले अंजना कह चुके हैं कि ये मेरा दूसरा घर है, जब कहीं नैया पार नहीं लग रही थी तो वायनाड ने उनकी नैया पार लगाई थी, शायद ये राहुल गांधी नहीं भूले, और आज यहाँ पे आप देखिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वीडी सतीशन के साथ जब बैठे हैं, तो जो 5 साल पहले राहुल गांधी नहीं कर सके वो प्रियंका और राहुल गांधी की जोड़ी ने यहाँ पे किया है केरलम में, क्योंकि 5 साल पहले सत्ता में वापसी करनी थी पर वो हो ना सकी, तब राहुल गांधी वायनाड के सांसद थे, लेकिन आज प्रियंका गांधी वायनाड की सांसद है और सत्ता में।
0: और आपने नैया पार लगाने की बात की, तो नैया का जो खेवनहार होता है उसको वो हमेशा करीब रखते हैं, केसी वेणुगोपाल आज शपथ नहीं ले रहे लेकिन मंच पर वो उसी ताकत के साथ आपको विराजमान दिख रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बगल में। ये चर्चा इन तमाम बातों की हो रही है कि किस तरह तरीके से आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन खेवनहार को वो इस तरीके से भी अवॉर्ड करते हैं कि जब वो सीट छोड़ी तो बहन को दे दी,
1: बहन को दे दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात, जैसे अभी आपने कलर कोडिंग मौसमी भी जिक्र कर रही है, तो राहुल गांधी एक उस पॉलिटिकल मैसेजिंग में शायद या तो पसंद नहीं करते होंगे या उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। आप देखिए अभी जब भद्रलोक जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आया तो प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में भी भद्रलोक की वेशभूषा में उसमें थे। एक मैसेज तो होता ही है, कनेक्ट होता है, जैसे प्रियंका जी उसमें काम में लगी हुई है।
2: मोदी जी का अपना अलग जीनियस है।
1: नहीं नहीं, और सब देश भर के, इंदिरा गांधी भी उस तरह से किया करती थी पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, कनेक्ट के लिए। आप वहां रहते हैं, उस पर बात करते हैं, दक्षिण भारत के साथ जुड़ाव है, यदि आप कुछ
0: केरला में, वो दक्षिण भारत में मुंडू अच्छा बहुत फेमस है,
1: मुंडू फेमस है तो वो अच्छा लगता ही है,
0: पुरुष है वो पहनते, जैसे प्रधानमंत्री ने यहाँ दिल्ली में बंगाली धोती पहनी,
1: कनेक्ट करता है।
2: ये नरेंद्र मोदी जी का की अपनी अलग खासियत है, वो किसी भी स्टेट में जाके जब भाषण देते हैं उससे आपको जोड़ लेते हैं,
1: उसमें कोई नुकसान नहीं।
2: नागालैंड भी जाएंगे तो कोई ऐसा कनेक्शन अपनी जिंदगी से निकाल लेंगे जो जो लगेगा हमारा ही आदमी
0: निकाल लेंगे से ज्यादा बता देंगे, मतलब रहता है कनेक्शन, उसको बताना रहता है। और उसी के साथ एक जुड़ाव ये भी रहता है कि भाई आपने वहाँ का जो लोक गीत हो, परंपरा हो, लोक कपड़े हो, उसको आप सम्मानित करते हैं जब आप उसको पहनते हैं।
2: किसी ने ये बताया था सीनियर लेवल पे, उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिस भी जिले में जाते हैं, जिस भी इलाके में जाते हैं, वहां का पूरा रिसर्च उनके पास 24-48 घंटे पहले आ जाता है और वहां से कोई एक चीज निकाल के उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। राहुल, मतलब ये सारी चीजें मेरे ख्याल से विपक्ष के तमाम नेताओं को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में है, अगर आपका कनेक्शन नहीं है, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, भले ही उसका बहुत ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि आदमी मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे इलाके के बारे में बात कर रहा है।
0: ऐसा मानकर क्यों चलना कि नहीं उसका असर पड़ता है, क्योंकि देखिए झालमुड़ी, झालमुड़ी का जो इफेक्ट था वो हमने देखा,
1: बदल दिया ना।
0: हमने देखा कि किस तरीके से, मतलब जो बातें कह रहे, पहले क्या काम आता था ममता बनर्जी, की बाहरी लोग आए हैं
1: तो वो
0: बाहरी वाला वो खत्म हो गया, झालमुड़ी से लेकर। और यहाँ पर भी दिल्ली में जब जीत हुई तो बंगाली धोती उन्होंने पहनी। जल्दी से मौसमी के पास, और डॉक्टर शास्त्री भी अगर हमारे साथ हैं तो उनको भी दिखा दीजिए, कुछ ही देर में वहां पर राज्यपाल पहुंचने वाले हैं और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। ये जो एक और मंच पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर तमाम नेता मिलते हुए, पिनरई विजयन, सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको दिख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल भी दिख रहे हैं, रेवंत रेड्डी, और ये पूरा जो एक तरह से स्टार स्टडेड स्टेज है आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कर्नाटक के, और अब आपको राज्यपाल वहां पर दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल सबसे मिल रहे हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि राज्यपाल हैं वो इस सेंट्रल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की
1: अच्छी बात शुरुआत कराने वाले। राज्यपाल केवल प्रोटोकॉल की तरह से आकर बैठ जाते हैं, वो सब लोगों से
0: मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये मिसाल आगे भी ले जाने की जरूरत है। लेकिन क्या वहां के परंपरा, जो भी पारंपरिक कपड़ा है, जो मुंडू हम देख रहे हैं, वो पहनना सिर्फ सांकेतिक और प्रतीकात्मक पॉलिटिक्स है या उस राज्य के सम्मान से भी जोड़कर देखा जाता है? जल्दी से डॉक्टर शास्त्री।
3: अंजना जी, ये सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो सिंबॉलिज्म सिंबॉलिक नहीं बनना चाहिए, वो मुझे मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ। सिंबॉलिज्म हमेशा रहता है, पर सिंबॉलिज्म को जब हम सिंबॉलिक ही छोड़ देते हैं तो समस्या हो जाती है। और एक बात अंजना जी, आप दक्षिण में देखिए, कर्नाटका हो, केरला हो, शपथ ग्रहण समारोह में सब पक्ष के लोग आते हैं। कर्नाटका में जब भी शपथ ग्रहण समारोह रहा है, विपक्ष के नेता हमेशा उसमें भाग लेते हैं। सो ये दक्षिण में कई राज्यों में ये परंपरा बन गई है कि सबको साथ लेके जाओ।
0: पर शायद इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी के खिलाफ अब एक तरीका जो मिल गया है राजनीतिक पार्टियों को उत्तर भारत में, वो ये है कि शपथ ग्रहण में ही मत जाओ, अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया तो उसको स्वीकार ही मत करो, अगर आपके पक्ष में आया तो पिछली बार भी शपथ चुनाव आयोग

0: Sir, Shri V.D. Satheesan, Chief Minister Designate and the Ministers Designate are present to take the oath of office and secrecy. I request...
1: तो केरला में नए शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राज्यपाल की तरफ से उसकी शुरुआत की घोषणा की जा रही है और अब देखते हैं कैसे, क्योंकि हमने पिछली बार देखा है कई जगहों पर अब पांच पांच चार चार करके भी शपथ ग्रहण कराया जाता है ताकि क्योंकि लिस्ट रहती है और लंबी, देखिए लगभग 20 लोग आज ये शपथ लेने वाले हैं। वीडी सतीशन के लिए बड़ा दिन, संगठन से जुड़े हुए नेता, जमीन पर कार्य करने वाले नेता, उनके नाम पर मुहर लगी है और अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो रही है। आइए आपको सीधी तस्वीरें सब दिखाते हैं, सबके नाम लिए जा रहे हैं।
0: Sir, I now invite Shri V.D. Satheesan, Chief Minister Designate, to take the oath of office.
1: V.D. Satheesan, जो कि CM Designate है, वो पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। छह बार से विधायक रहे, छठी बार वो विधायक चुनकर आए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी 21 से 26 तक वो रहे, पिनरई विजयन की सरकार को ललकारते रहे, जमीन पर रहे और इसी के साथ सबके साथ मिलकर चलने के लिए वो जाने जाते हैं।
2: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും.
3: ഞാൻ
2: വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
1: उत्साह कितना है कार्यकर्ताओं में और केरल में नई सरकार के मुख्यमंत्री डेजिग्नेट के तौर पर शपथ लेते हुए, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए वीडी सतीशन आपको दिखाई दे रहे हैं एर्नाकुलम की परवर सीट से। वो आप सोचिए, छह बार के विधायक रहे लेकिन पहली बार वो कोई भी पद मिल रहा है उनको। इससे पहले वो मंत्री भी कभी नहीं रहे, 10 साल तक एलडीएफ की सरकार रही ना, उससे पहले यूडीएफ की थी लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाया गया। जमीन से जुड़े हुए नेता थे लेकिन हाँ, इनका राइज हुआ अगर आप देखिए 21 से 26 तक वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे और नेता विपक्ष के तौर पर पिनरई विजयन के खिलाफ हमला करना, उसकी रणनीति तैयार करना, कैसे केंद्रीय नेतृत्व को कहां पर कैसे सामने लाना है, वो सब पर वो काम करते रहे और आज वही देखिए, आज उनको उसका फल भी एक तरह से मिल रहा है जब वो मुख्यमंत्री डेजिग्नेट वहां पर बनाए गए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
4: मुझे एक लाइन ये कहना चाह रहा था कि भले टिकट्स जो है वेणुगोपाल साहब ने बांटे कांग्रेस के, लेकिन पूरा जो कैंपेन था, लड़ाई जो थी वो सतीशन ने लड़ी, पूरा केरल सरकार के खिलाफ, कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ पूरी जो लड़ाई है वो सतीशन लड़ते रहे
1: और एक एक रणनीति उन्होंने बहुत सही अपनाई। आशुतोष जी, उनको पता था कि यूडीएफ है ये, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, गठबंधन के साथियों को भी अपनी तरफ रखो क्योंकि वही आपके मुख्यमंत्री की दावेदारी को सबसे मजबूत करते हैं, क्योंकि उनके बिना आप 63 पर तो सरकार बना नहीं सकते।
5: बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दरबारी पॉलिटिक्स का भी एक ढलान उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम आलाकमान के करीब हैं, राहुल गांधी के साथ हैं, दिन रात उनसे उठते बैठते हैं और हमको मुख्यमंत्री कुर्सी मिल जाएगी या हम अपना जोड़ तोड़ करके अपने लोगों को वहां चुनाव जितवा लेंगे, टिकट दिलवा देंगे, उसकी हमारे ख्याल से बड़ी पराजय।
1: बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि वीडी सतीशन शपथ लेने के बाद उधर गए, राहुल गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से मिले और कुछ उनको राहुल गांधी कह रहे थे कान में, और उसके बाद फिर वो इधर आकर सबसे पिनरायी विजयन से, मुझे लगता है ये लम्हा, ये देखिए राजीव चंद्रशेखर से भी मिलते हुए उनको वो बधाई देते हुए, ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ मतलब जहां पर विपक्ष की जीत हो, सेंटर की बात मैं कर रही हूं, वहीं पर नहीं। अच्छी बात है कि आज राजीव चंद्रशेखर मंच पर है, पिनरई विजयन मंच पर है, इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। ये संविधान हाथ में लेकर घूमने से नहीं होता है, इससे मजबूत होता है कि सब मिलकर काम करें, उस व्यवस्था में लोगों की निष्ठा और विश्वास भी बनाकर रखें। और सबसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि राहुल जी ने कहा कि आप उधर बाकी नेताओं से भी मिल लीजिए, अध्यक्ष जी से भी मिल लीजिए, जिसके बाद वो गए और मिलकर फिर वापस आए।
5: इंपॉर्टेंट बात यह कि राजीव चंद्रशेखर को न केवल बुलाया गया बल्कि प्रोमिनेंटली फर्स्ट
1: रो
5: में उनको जगह दी गई और मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद वहां गए हैं और उनके पास रुके हैं, उनसे हाथ हैंडशेक किया है। ये कौन है भाई?
6: नियाना पी के कुंजालिकुटी एन्ना ज्ञान नियमम वही स्थापितമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും പൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയെയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ, സൃഷ്ടാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു.
1: पूर्व सरकारों में भी ये मंत्री रहे हैं और 9 बार आप सोचिए आईयूएमएल के मल्लापुरम से, जिस सीट को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा हमला करती है, उस मल्लापुरम से ये विधायक हैं, 9वीं बार विधायक बने हैं और आज वो पद और गोपनीयता की शपथ सीएम के बाद वो ले रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि गठबंधन के साथियों को भी और जो सीनियर विधायक है, लगभग 9वीं बार अगर वो चुनाव लगातार जीत रहे हैं तो उनको चूज किया, गोपनीयता की शपथ लेते
6: അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു, സത്യം ചെയ്യുന്നു.
1: देख रहे हैं मल्लापुरम की सीट से वो जीतकर विधायक आईयूएमएल, आईयूएमएल के कुल पांच मंत्री आज बन रहे हैं। तो सबसे पहले बीडी सतीशन और उसके बाद दूसरे नंबर पर ही आईयूएमएल के विधायक को, कुनाली कुट्टी को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। 9वीं बार वो विधायक बने हैं और इस नजरिए से वो जो एक एक साधने की कोशिश है गठबंधन के साथियों को, उसका भी इंपॉर्टेंस दिख रहा है। शास्त्री जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इन लोगों के बारे में, चूंकि आप करीब से उनको देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप प्लीज बोलें।
7: अंजन जी, पहले भी जब कांग्रेस की सरकार, एलडीएफ यूडीएफ की सरकार जब बनी थी, दूसरे स्थान पे हमेशा आईयूएमएल का मंत्री भी रहा है। सो आज जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी यूडीएफ सरकार में वैसे ही सीनियोरिटी के हिसाब से होती थी।
1: बिल्कुल, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, सीनियोरिटी के हिसाब से होती है। तो आप देख ही रहे हैं कि 6ठी बार के विधायक बने वो सीएम बने हैं वीडी सतीशन, तो इधर 9वीं बार जो विधायक बने हैं कुनाली कुट्टी, वो पहले मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।
4: शपथ ग्रहण में तो सीनियरिटी मतलब मंत्री पद की भी हो जाती है, एमएलए का ही होना जरूरी नहीं है उसका सीनियरिटी।
1: तो सबसे हाथ मिलाने के बाद ये कुनाली, रमेश छन्नी तल्ला आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अब शपथ लेने वाले हैं।
8: ഞാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായി വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസ്സാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
1: രമേശ് രാമചന്ദ്ര ചെന്നിത്തല, അബ് ദേഖിയേ ആപ് ഇൻകോ ജബ് ദേഖേംഗേ തോ യേ ചാർ ബാർ തോ ലോക്സഭ സാംസദ് ബനേ ഹൈ, ഛേ ബാർ വിധായക് ബനേ ഹൈ, ഓർ യേ ബഹുത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജോ വഹാ കി ഏക് പ്രഥാ ഹൈ, ഇൻകാ ജന്മ ചെന്നിത്തല മേ ദരസൽ ഹുവാ ഹൈ, ജോ കി അലപ്പുര ഡിസ്ട്രിക്ട് മേ ജില്ലേ മേ വഹാ പർ ഹൈ, തോ ജഹാ പർ ജോ ജന്മ ഹൈ വഹീ ആപ്കാ ടൈറ്റിൽ ബൻ ജാതാ ഹൈ, വോ ആപ്കി പെഹചാൻ ബൻ ജാതാ ഹൈ, ഉസി നസരിയേ സേ രമേശ് ചെന്നിത്തല, ജോ കി ആപ് ഇസ്സേ പെഹലേ വോ ഗൃഹമന്ത്രി രഹ ചുകേ ഹൈ, ഉമേൻ ചാണ്ടി കി ജബ് സർക്കാർ ഥീ തബ് വോ ഗൃഹമന്ത്രി രഹ ചുകേ ഹൈ, ഓർ ഐസേ മേ വോ പ്രദേശ് അധ്യക്ഷ ഭീ रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वो रहे हैं दसवीं लोकसभा विधानसभा में वहां पर, तो एक लगातार उनका एक जिसको कहते हैं कि उन्होंने, आप सोचिए ना कि छह बार विधायक बनना, चार बार सांसद चुने जाना, पार्टी की तरफ से गृह मंत्री बनाए जाना, ये हमेशा दिखाता है कि रमेश चन्नीथला एक बड़े नेता के तौर पर वहां पर. डॉक्टर शास्त्री जल्दी से.
7: रमेश चन्नीथला राज्य के एक बहुत ही प्रमुख नेता है पार्टी के और बहुत ही एक्सपीरियंस नेता हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे वो तो एक तरह से सतीशन हो या हाईकमांड, पार्टी का हाईकमांड हो, आप देखिए जिस तरह से अभी गले मिल रहे हैं सभी को, जो उनके ओपोनेंट थे कंपटीशन में उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना, उनको भी एक पोर्टफोलियो देना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रह जाती है.
1: लेकिन राजनीति ऐसी होती है, उसका रंग रूप ऐसा होता है कि कोई एक मुख्यमंत्री बनता है और कोई सीएम इन वेटिंग रह जाता है, तो ये अनेकों पार्टियों के साथ अनेकों राज्यों की वही कहानी है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ही होता है. और अब अगले मंत्री जिनको पद और गोपनीयता की शपथ के लिए वहां पर बुलाया जा रहा है, सनी जोसेफ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं. अब फ्रंट रनर्स में इनकी भी बात खूब चल रही थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, और पेरावूर विधानसभा सीट से ये विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने इस विक्ट्री में लीड किया है, तो वो भी आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं.
9: സണ്ണി ജോസഫ് എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവാജ്യമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. സണ്ണി ജോസഫ് എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
1: प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सनी जोसेफ अब हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है. वो एक लॉयर है पेशे से और राजनीति में लंबा उनका पूरा ये सफर, जिसमें उनको प्रदेश अध्यक्ष इस बार चुनाया गया था, जबकि कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा चांसेस थी, क्योंकि 10 साल तक वहां पर एलडीएफ की सरकार वामदलों की रह चुकी थी, और आज वो भी पद और गोपनीयता की यहां पर शपथ ले रहे हैं। तो अगर आप देखिए वो भी कई बार के विधायक रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने भी पार्टी को वहां पर बनाया गढ़ा, हालांकि जो शुरू में आप उत्साह कार्यकर्ताओं का देख रहे थे विजय जी, जब नाम वो लोग अपना अपना ले रहे हैं वो धीमे धीमे कम होता हुआ दिख रहा है।
4: वो एक तो शुरुआत थी कि जब सरकार बन रही है मुख्यमंत्री उनका
1: सबसे ज्यादा उनको लेकर
4: बड़ा एक्साइटमेंट था। रमेश चन्नीथला साहब के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि वो सीएम कैंडिडेट तो थे ही और कांग्रेस के मजबूत लीडर्स में से है और गांधी परिवार का जो है ना हमेशा से ही उन पर विश्वास रहा, विश्वास रहे। राजीव गांधी जी की जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की जो टीम हुआ करती थी एक जमाने में, उसके रमेश चन्नीथला लीडर रहे हैं और सतीशन ने जिस तरह से बाजी मारी है और क्यों समझिए पिछली बार ट्रेन मिस हो गई थी कांग्रेस की, तो इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट है। ट्रेन मिस हो जाए तो उसके बाद अगली ट्रेन पकड़ना।
0: मिनिस्टर डेसिग्नेट टू टेक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ
1: ऑफिस, उनके नाम पे भी खूब जोश है। के मुरलीधरन भट्टी और कावू, जहां से वो विधानसभा से विधायक हैं, थर्ड टाइम एमएलए, और मुझे लगता है अगर यंगर जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, गले मिलते हुए उनसे राहुल गांधी मुबारक देते हुए और प्रियंका गांधी से भी मिलकर अब वो पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। वीडी सतीशन कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम अब विजय जी अब लगेगा, टाइम तो लगेगा भाई, 20 लोग ऐसे ही शपथ लेंगे, एक एक करके ले रहे हैं सब अपनी अपने।
4: एक मिनट डेढ़ मिनट का चाहिए ही होता
10: है। आई के मुरलीधरन डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियसली discharge my duties as a minister of the state of Kerala, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I K. Muralidharan do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Kerala, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
1: करण केरल के पूर्व सीएम के करुणाकरण के बेटे हैं और मौसमी आप भी इन तमाम नेताओं से मिलती जुलती रहती हैं, कुछ बताइए इन तमाम नेताओं के बारे में जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।
11: अर्जुन, एक दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने फैसला लिया उससे पहले वो इन सब नेताओं से मिले थे, तमाम नेताओं से उन्होंने वन ऑन वन मुलाकात की थी और उन्होंने क्या कहा वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू था पूरे फैसले निष्कर्ष पे आने पर। और दूसरी बात यह है कि इनमें से जो कांग्रेस ने चयन किया 14 नए फेसेस हैं, यानी कि एक तरीके से एक जेंजी को ध्यान में रख के एक नयापन लाने के लिए 14 नए फेसेस को सिलेक्ट किया गया है। उसके साथ ही जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन है और जो हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है और SC ST वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है उसको भी इस आप देखेंगे स्वेयरिंग इन जब हो रही होगी तो जो चयन किया गया है इसको भी ध्यान में रखा गया। और पहली बार ये है पिछले 6 दशकों में ये खुद सतीशन साहब ने कहा कि पूरी कैबिनेट केरलम की एक साथ शपथ ले रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि UDF की पूरी कैबिनेट एक साथ शपथ ले रही है।
1: बिल्कुल, और अब जो अगले मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं सबसे मिलकर वो धीरे धीरे जा रहे हैं।
0: मिनिस्टर डेसिग्नेट टू टेक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी।
12: ജോസഫ് എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസ്സാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
13: ഞാൻ
12: മോൻസ് ജോസഫ് എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
1: मोन्स जोसेफ पेशे से वकील हैं, ये 6 बार विधायक बन चुके हैं, वो भी आज पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं. कुड्डू थुरती सीट जहां से वो कांग्रेस पार्टी के आज मंत्री बन रहे हैं. 2007 से 2009 तक वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री रह चुके हैं. और जिन कुछ लोगों की हमने चर्चा की ना कि ज्यादातर जो आप चेहरे देख रहे हैं वो नए इस बार शामिल किए गए हैं, खुद वीडी सतीशन ऐसे हैं जो पहले किसी पद पर, मतलब लीडर ऑपोजिशन वो जरूर रहे लेकिन मंत्री पद उनको कभी नहीं मिला था. राजी अगर रमेश चन्नीथला को आप छोड़ दीजिए और इनको छोड़ दीजिए, पीडब्ल्यूडी मंत्री ये रह चुके हैं मोन्स जोसेफ, तो बाकी जितने लोग हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ बतौर मंत्री पहली बार आज ले रहे हैं. तो कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को इस बार मौका दिया है कि वो वहां पर मंत्री बने. तो कुल मिलाकर आईयूएमएल से 5 बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जैसा हमने आपको बताया सीएम को मिलाते हुए 12 बन रहे हैं, और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए ये कांग्रेस पार्टी के कोटे से एक और मंत्री जिन्होंने इस वक्त शपथ ली है. और बड़ा दिन है ये, अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा ऑक्सीजन सप्लायर के तौर पर काम करेगा केरलम, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में जहां पर वो है भी, अगर वो विजय को सपोर्ट कर रहे हैं तमिलनाडु में या अन्य जगहों पर, तो उस तरह से उनकी, लेकिन कर्नाटक में अपने दम पर एक उनकी सरकार है, तेलंगाना में है, और ऐसे ही अब केरलम में ये त्रोइका जिसको कहते हैं ये बनना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा. कांग्रेस पार्टी से लेकर आईयूएमएल की तरफ से जो वहां पर शपथ ले रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में स्वतः ही निकल गया. लेकिन अब तो राज्यों की राजनीति अलग हो चुकी है, केंद्र की राजनीति बिल्कुल अलग है. पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि वहां पर वाम दलों के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ी लेकिन दक्षिण में उन्हीं से मुकाबला था. तो हर पार्टी अपने जिस तरह से राज्य में उनको जो पॉलिटिक्स सूट करती है उस पर वो लड़ रहे हैं, और यहां पर आईयूएमएल का साथ उनको मजबूत करता है. विजय जी, अगर ये स्वेयरिंग इन हम दिखा रहे हैं और अभी तक जिस तरह से सरकार बन रही है, नए चेहरों को चुनना पॉजिटिव पॉइंट, वीडी सतीशन को आप चुनना, दिल्ली का कोई आदमी ना भेजना, ये ऐसे फैसले लग रहे हैं जो बता रहे हैं कि एक नए और अच्छे तरीके से वहां पर सरकार गठन हो रहा है.
4: बिल्कुल ठीक बात है अंजना जी, और मैं खासतौर से इस बात का जिक्र करना, वीडी सतीशन को फिर से वही बात कि जो रीजनल लीडर्स है जो संगठन को रीजन में उस इलाके में ताकत देते हैं, यदि आप उनका सम्मान करेंगे, आप उनको जगह देंगे तो संगठन को ज्यादा मजबूती मिल पाएगी. जो गलतियां आमतौर पर राष्ट्रीय पार्टियां करती रहती हैं, कांग्रेस ने तो उस गलती को बहुत भुगता है कि सारी जगह से वो गायब इसीलिए हो गई कि शत्रुओं को कम किया. और नई जनरेशन को लेकर आने से आपके पास एक नई लीडरशिप तैयार होती है, जिसके साथ हालांकि शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि जो सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं वो किस तरह से देख रहे हैं. और आईयूएमएल के साथ भी जुड़ना, और आपने जो बात कही कि अब क्षेत्र की राजनीति और केंद्र की राजनीति में अलग अलग हो गया,
1: हाँ।
4: दोस्ती जो है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से,
1: हालांकि जब जहां जीत मिलती है तब केंद्रीकरण ऑफ राज्य राजनीति जरूर हो जाता
4: जरूर
1: है. मौसमी से कमेंट इस पर ले लेते हैं, क्योंकि देखिए शक्ति प्रदर्शन के एक मंच के तौर पर भी अब तमाम पार्टियां इस तरह के शपथ ग्रहण का इस्तेमाल करती हैं. वहां पर आप देखते हैं कि एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स हो जाता है, लेकिन इसी के साथ गठबंधन की अपनी अपनी मजबूरियां रहती हैं. हर राज्य में पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्ले आउट है वो बिल्कुल अलग होता है.
11: अंजना, दिलचस्प है गठबंधन की आपने बात की, तो आईयूएमएल के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा था कि 5 तो अभी स्वेयरिंग इन कर रहे हैं और 2.5 साल बाद 1-2 और मंत्री बनेंगे. तो अभी ढाई साल का फॉर्मूला कहाँ से आ गया, वो ढाई साल का फॉर्मूला कांग्रेस के लिए काफी कष्ट देता है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि अगर ये स्वेरिंग इन हो रही है जो केंद्रीकरण बता रहे हैं आप, तो अगर वीडी सतीशन सीएम बने हैं तो राय शुमारी जब हुई है तो केसी वेणुगोपाल की भी बहुत चली है, लगभग अगर देखें तो 9 उनके लॉयलिस्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पे शपथ ली है, कांग्रेस के नेता 9 लॉयलिस्ट है जो केसी वेणुगोपाल के खेमे से शपथ ले रहे हैं। तीसरी बात यह है कि वीडी सतीशन ने एक बात जब पूरा अपनी कैबिनेट तैयार की तो ये जनता को बताई कि 24 घंटे में बिना मतभेद के पूरी रायशुमारी से हमने अपनी कैबिनेट तैयार कर दी, तो वो ये दिखा

0: जनता पार्टी को रोका हुआ है, इसको यूं समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से रोका हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी तरफ से ये तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी ये कहती रही कि भी उनको जब भी शरण लेनी होती है तो केरल या साउथ में पहुंच जाते हैं। वो इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी
1: भी बता रही थी कि जब नैया को बचाना था तो उत्तर प्रदेश से मतलब साथ नहीं मिला जनता का, तो वायनाड ने ही केरलम में बचाया था राहुल गांधी।
2: 1977 राउट हो गई पूरी, इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई, संजय गांधी हार गए, तब पूरे साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट 80-90% सीटें कांग्रेस को
0: मिली है। वही तो मैं कह रहा
2: हूं, आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश का मुझे ध्यान नहीं, बट 80% सीटें
0: केरल तमिलनाडु पूरा का पूरा वहीं रहा,
2: पूरा गया।
0: कांग्रेस को बचाई पूरे दक्षिण में,
2: नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पूरी तरीके साफ हो गई थी।
0: और वो चिकमंगलूर हो, वायनाड हो,
1: मेडक, इसीलिए जब तमिलनाडु में भी मतलब ये जीत तो विजय की है, सी जोसेफ विजय की है, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी ने फटाफट डीएमके की नाराजगी भी मोल ले ली। यहाँ तक हो गया कि डीएमके वाले कहने लगे कि लोकसभा में हमारी सीट हटाओ, उनके बगल से सीट हटाओ, यहाँ तक कि
0: कनी मोड़ी का गुस्सा निकल गई थी, लेकिन चढ़ गए।
1: उन्होंने कहा कि ट्रेन में, इस ट्रेन पर चढ़ना जरूरी है, इस ट्रेन पर ऐसी हर ट्रेन की सवारी करनी है जहाँ पर दक्षिण में अपनी सरकार बननी।
0: बल्कि मैं समझता हूँ आज विजय को उनको किसी भी हालत में वहां पर रखना चाहिए था शपथ ग्रहण में, तो उससे भी एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है।
1: कोशिश जरूर की होगी, लेकिन मुझे लगता है विजय आए नहीं।
2: मुझे लगता है एक को आप देते हो फिर सबको देते, फिर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो सकते हैं उसमें आज की।
0: नहीं नहीं, अरे कौन से ऑस्टेरिटी का सवाल है इसमें?
1: सारे सीएम तो पहुंचे,
0: हिमाचल तक
1: पहुंच रहे हैं,
0: भूपेश बघेल साहब भी पहुंचे,
1: भूपेश बघेल पहुंच गए जो फॉर्मर सीएम हैं वहां पर, वो भी पहुंचे हुए हैं।
0: इंडिया ब्लॉक के सब लोगों को बुलाना चाहिए था।
1: मौसमी, क्या विजय तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य जिसमें समर्थन से कांग्रेस भी जिसमें शामिल है, विजय को न्योता था, वो नहीं आए, क्या कुछ पता चल रहा है?
3: जी देखिए, जानकारी तो यह है कि उनको बकायदे न्योता गया था, ये बताया
1: खुद
3: सीएम डेजिग्नेट ने, ये बताया था कि उनको न्योता गया था और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और तमाम चीजों से उनका कंफर्मेशन नहीं आया, जिसकी उसके कोई भी कारण हो, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन ये भी हो जाती कि ऐसे में अगर आप इंडिया ब्लॉक के लोगों को बुला रहे हैं, अखिलेश यादव को भी फिर आप बुलाते और तमाम अपने जो बाकी तेजस्वी यादव भी नजर आते, फिर सवाल होता कि क्या आप ममता बनर्जी को बुलाएंगे, फिर ये सवाल होता कि अच्छा मौका परस्ती इस कदर कि आपने एमके स्टालिन को नहीं बुलाया और विजय के साथ मंच साझा किया केरलम में, केरलम में तो विजय का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इतनी जल्दी आप अपने पार्टनर्स चेंज कर ले इस, और एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट भी चेंज हो जाती है। ऐसे में अब आप देखिए कि कांग्रेस भले वो कोई भी कारण हो जिससे विजय नहीं आए हो, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस जो प्रोजेक्ट कर रही है एक तरीके से, जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है और सिंबॉलिकली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पे सेंटर स्टेज लिए हुए हैं, उनके लेफ्टिनेंट सारे मौजूद हैं वहां पे, तो अपने आप में ये बहुत मील का पत्थर कम से कम राहुल गांधी के लिए है, एक लंबे समय बाद इस तरह से वो शामिल हो रहे हैं जहां पे उन्होंने अपने सीएम चुने हैं, चाहे वो सिद्धारमैया हो, रेवंत रेड्डी हो, और दक्षिण का दबदबा भी मंच पे आपको दिखने को मिलेगा कांग्रेस के भीतर ही। आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो कर्नाटक से आते हैं, उसके अलावा जितने मुख्यमंत्री कांग्रेस के पास है सुखू को, तो वो कर्नाटक से आते हैं, तो अपने आप में दक्षिण में कांग्रेस किस तरह से मोर्चा संभाले हुए है ये एक बड़ी बात है। और सदर्न एक्सिस अब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से तमिलनाडु से लेके कर्नाटक, केरल और तेलंगाना, ये सब किस तरीके से 2029 में राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक को मजबूत करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन राहुल गांधी यहाँ पे देखिए सभी विधायकों से हाथ मिला रहे हैं, सभी मंत्रियों से हाथ मिला रहे हैं, तो एक फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं ये जो राहुल गांधी ने लिया है, और कहीं ना कहीं 2029 की चुनाव भी ये नजर में होंगे। जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ने अभी ऐलान किया था कि इंडिया ब्लॉक के पीएम उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी, अभी एक ही दो दिन पहले उन्होंने बोला, तो ये एक शुरुआत हुई है, और क्या इसका समर्थन विजय और बाकी क्षेत्रीय शत्रप करेंगे और वो कैंपेन पूरा शुरू होगा, ये लगातार एक मुद्दा जो है वो गर्माया हुआ नजर आता है। पर यहाँ पे आप देखिए अंजना, जो मंत्री है जो शपथ ले रहे हैं, इनमें महिला चेहरे भी आपको दिख जाएंगे,
1: सिर्फ दो नहीं, सिर्फ दो दो महिलाएं, दो अनुसूचित

0: आती, दो महिलाएं मतलब 2 out of 20 अगर आप करिए 10%।
1: लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है,
2: मुझे लगता है कि सभी दलों में हमें, सभी दलों में और सभी पूरी देश की सियासत में हमें इंतजार ही करना पड़ेगा कि ये जब तक हमारा कानून नहीं लागू होगा हम लोग की बारी नहीं आने आनी पड़ेगी।
0: हाँ, कानून के जरिए ही होगा ये, और कोई तरीका है ना, टिकट कोई पार्टी देती है 33%, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए ना, कोई पार्टी उनको मंत्री में 33% देती है, कुछ नहीं है। ये सब बातें कह रहे हैं कि कानून लाएंगे, फिर हम कानून जब अपने लिए बना लेंगे तब हम कानून मानेंगे।
1: मंत्रिमंडल में वो नहीं है लागू,
2: कानून
1: जो है मंत्रिमंडल के लिए लागू नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, नारी बंधन अधिनियम जो है 33% रिजर्व सीट मंत्रिमंडल में नहीं,
0: उसके लिए नहीं, पार्टी के लिए।
3: मानसिकता है वो मान के चलती है कि महिलाएं चुनाव नहीं जीत सकती।
0: आप बोलते थे कि नहीं केजरीवाल जी को
3: क्या
0: दीजिए 33% पुरुषवादी मानसिकता,
3: पुरुष
1: तेलंगाना में जब 7 दिसंबर 2023 को स्वेरिंग इन हुआ था तो कांग्रेस ने सारे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को बुलाया था, केवल उसको करेक्ट करने के लिए।
0: आपको पता है कि नहीं कि पश्चिम बंगाल के बाद वो कौन से तूफान में भंवर अटका हुआ है, मतलब
4: अभी सबको बुलाते हैं, तीन नहीं आते तो खबर बन जाती है।
0: और ममता बनर्जी जिस तरह से कटुता हो गई, राहुल गांधी ने कहा कि आपके पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है वो नैया जो है अभी थोड़ा डोल रही है भंवर में। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देख रहे थे केरल में मुख्यमंत्री पद की शपथ और साथ ही 20 मंत्रियों की शपथ, क्योंकि अब कांग्रेस की वहां बन गई है सरकार और वीडी सतीशन बन गए हैं सीएम। देखते रहिए आज तक।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach in association with
6: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
7: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
9: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
4: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
13: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
14: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
15: नहीं,
14: और म्यूचुअल फंड से
15: सही।
16: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
17: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
19: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।
20: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
20: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
21: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
23: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
4: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
13: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
14: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
15: नहीं,
14: और म्यूचुअल फंड से
15: सही।
16: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
17: Director. The taste of success.
0: Like I said before, we better own the sins.
1: यार
8: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रोफाइबर है।
8: माइक्रोफाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है,
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
24: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
19: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद
9: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राज्यों के सीएम और टॉप लीडरशिप मौजूद।
1: शपथ के 8 दिन बाद उत्तर प्रदेश में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य विभाग और कैबिनेट की बैठक में मिशन 2027 की रणनीति पर हो सकता है मंथन।
0: नीट पेपर लीक में लातूर के 100 करोड़ी कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच। मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल, असली पेपर से मैच।
1: लगातार दूसरे दिन लपटों में घिरी भारतीय रेल। बिहार में सासाराम स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कल तिरुवनंतपुरम राजधानी के डिब्बों में लगी थी आग।
0: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में तेहरान को अमेरिका की नई धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक।

0: नमस्कार, खबरों के डबल डोज एक और 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजीव ढोंडियाल।
1: नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक से।
0: पीडीएस अध्यक्ष ने केरला मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 6 पार्टियों के 20 विधायक बने। मंत्री ली गोपनीयता की शपथ। कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद। विदेश में होने के चलते शशि थरूर नहीं पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। कांग्रेस ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद भी अपने पास रखे हैं। और तिरुवंचू राधाकृष्णन को विधानसभा स्पीकर, शनिमोल उस्मान को बनाया गया डिप्टी स्पीकर। केरलम विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण के बाद से 22 मई को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। नीट पेपर लीक मामले में लातूर में 100 करोड़ कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच। मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल पेपर से मैच हुए। नीट, सीबीएसई और 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। कहा सरकार छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा हमला। बोले कि हर उम्र के छात्रों को फेल कर रही है ये सरकार। नीट छात्रों के लिए अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो संदेश। घबराहट में कोई गलत कदम ना उठाएं। अरविंद केजरीवाल ने छात्रों से मांगे सुझाव। कहा कि आपकी आवाज हम उठाएंगे, हम आपके साथ हैं।
1: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अनोखी पहल। मंत्री साइकिल से पहुंचे सचिवालय। पेट्रोल डीजल बचाने का दिया संदेश। पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान से सियासी हलचल तेज। बोले सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। बिहार की राजनीति में बयानबाजी से घमासान। आरजेडी ने ललन सिंह के दावे पर कसा तंज। जेडीयू बीजेपी ने साधी चुप्पी। कोलकाता में बीजेपी कार्यालय से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शुरू किया जनता दरबार। लोगों की शिकायतें सुनने की पहल शुरू। आसनसोल में टीएमसी ट्रेड यूनियन नेता राजू आलूवालिया उगाही मामले में गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेशी। राजू आलूवालिया ने गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक साजिश। बोले न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। हावड़ा समेत राज्य के सभी स्टेशनों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी हो रही है। मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा बंगाल की स्थिति जम्मू कश्मीर से भी बदतर। रेलवे स्टेशन बाजारों में हुए तब्दील।
0: दुर्गापुर में टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष शतदीप घदक गिरफ्तार। धोखाधड़ी और पोस्ट पोल हिंसा आरोपों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। राजनाथ सिंह ने वियतनाम और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर वो रवाना। भारत इंडो पैसिफिक रक्षा सहयोग मजबूत करने पर रहेगा फोकस। बजट को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर। आज से दिल्ली मेट्रो चलाएगी अतिरिक्त फेरे। यात्रियों को मिले 24 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप। सीएम रेखा गुप्ता खुद करेंगे सफर। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के फिर से बढ़े दाम। 1 रुपए की बढ़ोतरी। 2 दिन पहले 2 रुपए बढ़ाए गए थे। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज। सोशल मीडिया पर महंगाई मैन बताया। नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद से आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। बस्तर में कई सारी योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर नगर निगम के नवनिर्मित एसटीपी प्लांट का किया दौरा। वृक्षारोपण अभियान में भी लिया भाग।
1: सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। बड़ा हादसा टला। आग के बाद डिब्बे को ट्रेन से अलग किया गया। कोई भी जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड और रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग। अशोक मिल्स गोदाम जलकर खाक। कोई हताहत नहीं। अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की मौत। फतेहपुर में गैस सिलेंडर लीकेज से घर में लगी आग, एक परिवार के 9 लोग झुलसे, 8 को ग्रीन कॉरिडोर से कानपुर रेफर किया गया। झांसी में मामूली कहा सुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदली, बाजार में क्रिकेट बैट से ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर हुई मारपीट। बेतिया में फैक्ट्री ब्लास्ट में बिहार के युवक की मौत, गांव पहुंचा शव तो मचा कोहराम। बेतिया में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार का खुलासा, 6 नाबालिग लड़कियों का सफल रेस्क्यू। लखनऊ में ट्रेन के स्लीपर कोच से महिला का सिर कटा शव बरामद, जांच में जुटी जीआरपी। मेरठ में घर से लापता छात्रा का खेत में मिला शव, परिजनों को दुष्कर्म कर हत्या की जताई आशंका, पूर्व प्रेमी गिरफ्तार।
0: 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, दुनिया के नंबर 1 पैरा हाई जंपर एथलीट है प्रवीण कुमार। पैरालंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड, पूरी दुनिया में बढ़ाया देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री, अलगोजा वादन के लिए यह सम्मान मिलेगा। फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने बिखेरा बोल्डनेस का जादू, नियॉन मेटलिक ग्रीन गाउन में दिखाई दी। चोक नेकलेस के साथ अदिति राव की खूबसूरती जो है और बढ़ी, गोल्डन फुटवेयर्स पेयर में दिखाई दिया बेहद ग्लैमरस अंदाज। पति विकी कौशल के 38वें बर्थडे पर कैटरीना कैफ ने शेयर किया प्यार भरा पोस्ट, बेटी विहान की क्यूट झलक भी दिखाई दी। 69वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर नई थमी, धुरंधर 2 की यहां थी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1797 करोड़ के नजदीक। धुरंधर 2 के रास्ते चली अक्षय की अद्भुत बंगला भी, 30 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ 77 लाख के पार।
1: बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी का शानदार प्रदर्शन जारी, 16 दिन में कमाए 96 करोड़ 100 करोड़ के क्लब के पास। सूर्या स्टारर फिल्म कुरुपू का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 2 दिन में फिल्म ने दुनिया भर में 60 करोड़ का किया कारोबार। वीकेंड पर पति पत्नी और वो 2 की बॉक्स ऑफिस पर चांदी, 2 दिन में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 13 करोड़ 70 लाख के पार। वीकेंड पर फिर चमकी माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 हार्ट, 9 दिन में फिल्म ने 12 करोड़ 10 लाख का किया बिजनेस। तलाक के बाद मोनी रॉय सूरज ने फिर किया एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो, गुरुवार को अलग होने की घोषणा की थी। आईपीएल के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत, डीसी ने राजस्थान रॉयल्स आरआर को 5 विकेट से हराया। आरआर ने डीसी के सामने 194 रन का टारगेट रखा था, जिसे अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम ने 19.4 ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली की तरफ से केएल राहुल और पोरेल ने अर्धशतकीय पारी खेली, 31 गेंद में 51 रन की तेज पारी खेली। गेंदबाजी में दिल्ली की तरफ से स्टार्क ने आरआर को बड़ा स्कोर बनाने से रोका, मिचेल स्टार्क ने राजस्थान के 4 विकेट झटक लिए। डीसी की यह छठी जीत रही, इस जीत के साथ उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें भी फिलहाल कायम है।
0: आईपीएल में प्लेऑफ की दौड़ पर सबकी नजर आ, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला। चिबॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों को यह मैच जीतना जरूरी है। इस सीजन की शुरुआत 3 मुकाबले हारने के बाद भी सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदें अभी जिंदा रखी है, 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ अंक तालिका में टीम 6 पोजीशन पर। हैदराबाद 12 में से 7 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है, सीएसके को हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें मजबूत करेगी टीम। दोनों ही टीमों में चेन्नई का पलड़ अब तक भारी रहा है, 24 मैचों में सीएसके ने 16 जीते हैं जबकि हैदराबाद ने सिर्फ 8। जंग खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत ठप होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा समय निकलता जा रहा है, तेहरान को तुरंत कदम उठाने होंगे। अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को बताई अपने 5 शर्तें, अमेरिका युद्ध के लिए ईरान को कोई भी मुआवजा नहीं देगा। ईरान को संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ईरान को और कमजोर करने की जरूरत है, जिसके बाद ही हो सकता है वो समझौते पर राजी हो जाए। अमेरिका और ईरान को फिर से बातचीत के टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी राजनयिक कोशिशें फिर तेज की। अमेरिका में एक एयर शो के दौरान हवा में दो लड़ाकू विमान आपस में टकराए, गन फाइटर स्काइज एयर शो के दौरान यह हादसा।
1: मेक्सिको के प्यूबल राज में हथियारबंद अपराधियों ने किया हमला, वहां की नगर पालिका ने में चलाई अंधाधुंध गोलियां, कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जीतकर अपने देश लौटी बुल्गारिया, पॉप स्टार दारा का राजधानी में भव्य स्वागत, अपने चहेते स्टार को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। हंगरी के फिल्मकार लाजलो निमेस की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म मूला का कान फिल्म फेस्टिवल में भव्य प्रीमियर, फिल्म के स्टार कास्ट ने रेड कार्पेट पर जमकर बिखेरे जलवे। 21वां सीरी ए खिताब जीतने वाली इतालवी फुटबॉल क्लब इंटर मिलान की भव्य परेड, ओपन बस में सवार खिलाड़ियों को देखने के लिए सड़क पर उमड़ी भारी भीड़। दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिंगर ने जीता इटालियन ओपन का खिताब, नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से दी मात।

0: और अब बड़ी खबर आपको इसराइल से देते हैं। मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क सकता है जो जंग है। अमेरिका और ईरान में फिर से तनाव बढ़ने लगा है।
1: और अब एक बार फिर से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, फिर से युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमेरिकी विमान गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में दर्जनों अमेरिकी विमान इसराइल पहुंचे हैं और इन सब में गोला बारूद हथियार लदे हुए हैं। ये चिंताजनक खबर इस वक्त आ रही है और इसका इशारा सिर्फ यही हो सकता है कि कोई ना कोई हमले की तैयारी हो।
0: पहले पूरा विश्व इस समय संकट में है। सप्लाई चेन पर बड़ा गहरा इंपैक्ट पड़ा हुआ है। तेल गैस की किल्लत, प्राइसेस हाई, महंगाई, और इस बीच में एक बार फिर से इस तरह के संकेत, एक बार फिर से युद्ध की आहट। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। समझौता हुआ नहीं है, सीज फायर जरूर चल रहा है, लेकिन दोनों ही तरफ से समझौते पर अब तक नहीं पहुंचे और अमेरिकी विमानों का गोला बारूद लेकर पहुंचना चिंताजनक है।
1: और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या मतलब है इस बात का कि गोले बारूद से भरे हुए विमान पहुंच रहे हैं इसराइल?
2: देखिए, एक तो कारण यही है जिसका संकेत आपने दिया कि युद्ध की तैयारी एक बार फिर हो रही है। लेकिन ये युद्ध की तैयारी आखिर हो क्यों रही है? लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि दरअसल ये गोला बारूद जो है एक बड़ा रिप्लानिशमेंट भी है, क्योंकि पिछले 40 दिनों के संघर्ष के दौरान इसराइल का काफी गोला बारूद खत्म हुआ। इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ भी लगातार ऑपरेशन चला रहा है, कई दूसरी जगह भी उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, और इस लिहाज से उसको जो सैन्य मदद है वो अमेरिका से बड़े पैमाने पर आती है। तो ये उसकी खेप भी है जो रिप्लानिशमेंट ऑफ द आर्मामेंट कही जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ 7 अप्रैल 2026 को जो संघर्ष विराम घोषित किया गया था, उस संघर्ष विराम के बावजूद, तमाम कोशिशों और कवायदों के बावजूद, अभी तक किसी तरीके का कोई समझौता नहीं हो पाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पिछले 2-3 दिनों से लगातार अपने सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि टाइम इज एसेंस और ये जो साइलेंस है ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति है, और लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी एक तबका है जिसका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को अब फिनिश करना चाहिए। और इसकी चिंताएं इसलिए भी बढ़ रही हैं कि क्योंकि केवल अमेरिका इसराइल में ही तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि सऊदी अरब के अंदर ड्रोन से हुआ हमला और यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ ड्रोन हमला जिसके बाद आग लगी थी, इसके बाद भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ये संकेत आ रहे हैं कि यूएई और ईरान के बीच में जो तनातनी बढ़ी है, तो संभावना है, आशंका है इस बात की कि हो सकता है अगली बार इस जंग के अंदर यूएई भी एक किरदार के तौर पर अमेरिका और इसराइल के साथ नजर आ सकता है।
0: देखने वाली बात होगी। हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है, क्या अब हमारे पास विकल्प नहीं है? समय तेजी से बीत रहा है, काउंट डाउन शुरू हो गया है। ट्रंप ने ईरान को लेकर फिर से यह चेतावनी दी है। और प्रणय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े। प्रणय, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्या वाकई कोई ऑप्शन नहीं है या फिर ये एक प्रेशर टेक्टिक है कि ईरान को अपनी शर्तों पर लाया जाए? क्योंकि एक्सपर्ट तो शुरुआत से कह रहे थे कि अमेरिका युद्ध से किसी तरह निकलना चाहता है।
2: देखिए, अमेरिका निकलना चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चाहते हैं, और जीत भी ऐसी चाहते हैं जिसके
1: जी लगता है कि संपर्क टूट गया है। लेकिन प्रणय जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि अमेरिका भले ही बाहर निकलना चाहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान जिस तरह से लगातार आते रहे हैं, उससे पिछले कुछ दिन के बयान अगर आप देख लें तो उसमें ये लगता है कि अब अमेरिका थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव होने वाला है, आक्रामक होने वाला है, और जिस तरह के AI पोस्ट भी बना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप डालते हैं राजीव, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब हमले को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या सिर्फ ईरान को धमकाने की एक कोशिश लगातार करते रहते हैं।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व की इकोनॉमी ऊपर नीचे करके रखी हुई है, और इस बार एक बार फिर से जो तनाव है वो फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा पूरे विश्व की चिंताएं वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ती चले जा रहे हैं।
1: चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से प्रणय जुड़ गए। प्रणय, चिंताजनक बात जो इस बयान में मुझे लग रही है वो है काउंटडाउन। अगर आप काउंटडाउन दे देते हैं तो फिर लॉन्च भी तय हो जाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पलटते रहते हैं अपने बयानों से, पर फिर भी एक काउंटडाउन का दिया जाना चिंताजनक बात है।
2: देखिए काउंटडाउन दुनिया का भी बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो बीते 75 दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, जो सप्लाई लाइंस हैं वो डिसरप्टेड हैं, और किसी तरीके का कोई हेडवे नहीं नजर आ रहा है, किसी तरीके का कोई समाधान का फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपनी बातें कह रहे हैं, अपने अपने दावे दोनों की तरफ से जताए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री 3 दिनों पहले भारत आए थे ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए, तो उस बैठक के दौरान भी जब उनसे सवाल किया गया, हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान चाहता है समझौता हो, लेकिन अमेरिका की जिद के कारण समझौता नहीं हो पा रहा है। ईरान ने समझौते के लिए प्रस्ताव भी भेजा जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से चाहते हैं कि एग्जिट तो मिले लेकिन जीत की ट्रॉफी के साथ, जिसे वो अमेरिका की जनता को बता सकें, जिससे वो मिड टर्म इलेक्शन के पहले यह बता सकें कि उन्होंने वो हासिल किया है जो बीते 47 सालों में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हासिल नहीं कर पाया। और खासतौर पर उनका कहना है कि उन्हें चाहिए जेसीपीओए से बेटर डील, यानी जो बराक ओबामा ने 2015 में डील की थी ईरान के साथ में, उससे बेहतर डील उन्हें चाहिए। और
1: जी प्रणय, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि ईरान की तरफ से अब एक धमकी आ गई है। ईरान का कहना है या तो तुम हॉर्मूज से निकल जाओ, ये अमेरिका को वो कह रहे, वरना वहां पे आपकी कब्रगाह बनेगी। ग्रेवयार्ड इस शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था ईरान की तरफ से। तो ईरान की जो धमकी है वो अमेरिका की फोर्सेस के लिए है। उनको कहा गया है कि आप या तो हॉर्मूज से, जो ब्लॉकेट चल रहा है इस वक्त, नेवल ब्लॉकेट जो अमेरिका ने वहां पर लगाया है, वहां से हट जाइए वरना वहां कब्रिस्तान बन जाएगा। तो एक बड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से। लगातार वैसे भी पहले ऐसे बयान आते रहे, लेकिन इस वक्त तक कब्रिस्तान बनाने की बात कही जा रही है, यानी कि उनके ट्रूप्स को, उनकी सेना को धमकी।
0: और बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
4: Your Saturday nights will never be the same.
5: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
6: The Tailgate Block Party.
7: The Tailgate Block Party.
5: 6 hours non-stop. Non-stop.
6: The best DJs from around the world.
7: The Tailgate Block Party.
5: Saturday night.
7: 8 p.m. Eastern.
6: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
5: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
10: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
3: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
5: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट।
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
11: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
12: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
13: इसमें माइक्रोफाइबर है।
12: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
12: हमारे सीमेंट में नहीं है?
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
15: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
16: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
17: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
15: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
18: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
16: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
15: जहां खबर वहां खबरदार।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: In association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: 30 मंत्रियों की पूरी कैबिनेट ने ली शपथ। समारोह में खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और टॉप लीडरशिप मौजूद।
1: शपथ के आठवें दिन यूपी के नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य विभाग। कैबिनेट की बैठक में मिशन 2027 की रणनीति पर हो सकता है मंथन।
0: नीट पेपर लीक में लातूर के 100 करोड़ कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा। मास्टर माइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच। मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल, असली पेपर से मैच।
1: लगातार दूसरे दिन लपटों में घिरी भारतीय रेल। बिहार में सासाराम स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कल तिरुवनंतपुरम राजधानी के डिब्बों में लगी थी आग।
0: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में तेहरान को अमेरिका की नई धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक।

0: का रुख करते हैं, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर हल्ला बोल दिया है। ये सभी शिक्षक भर्ती घोटाले में लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं।
1: तो लखनऊ से बड़ी खबर है, आप तस्वीरें देखिए, प्रोटेस्ट का तरीका देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बहुत पुराना और लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में लखनऊ में ये कुछ इस तरह से लेट लेट कर प्रदर्शन किया है। संतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। संतोष, तस्वीरें भी दिखाएं, कितनी बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब क्या मांग कर रहे हैं?
2: देखिए, मुद्दा इनका बड़ा है और ये अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, लेट करके प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां चौराहे से लेकर यहां तक आए, सिर्फ इस कड़की हुई धूप में संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके पास आए हैं। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई। इनकी सिर्फ मांगे क्या, इनसे बात करेंगे कि ये लेट करके आने की वजह क्या थी।
3: लेट करके ही है, हम लोग जो है पिछले 6 सालों से पिछड़े दलित अभ्यर्थी, जहां विद्यालय में होना चाहिए था, हम लोग कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जी रहे। बाबूजी जी कल्याण सिंह जी के पोते हैं, वो कहा करते कि अगर जो आपका कोई आरक्षण छीनता तो थप्पड़ मार के छीनिए। ये उनके बायोलॉजिकल पोते हैं, लेकिन ये पिछले 5 सालों से करीब जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने
2: कराने की क्या जरूरत
3: है। ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ जो है फिजिकली शरीर हम लोग जो कहे मनुष्य का है, लेकिन हम लोग को जो है कीड़ा बना दिया गया। अगर कीड़े मकोड़े नहीं होते तो हम लोग के लिए न्याय व्यवस्था सेम होता। सिर्फ हमको तो हिंदू कहा जाता है, लेकिन जहाँ हक अधिकार और संविधान की बात होती है, तो यही सरकारी अधिवक्ता को भेज करके लंबी डेट लेने का काम करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज ये दिखाने आए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके समाज के पिछड़े दलित के लोग आज कीड़े मकोड़े, न हमको धूप दिखाई देता है, न गर्मी न बरसात। हम लोग पिछले 6 सालों से आंदोलन है, और नहीं तो और हम लोगों ने अपने खेत बंधक रख करके, माँ का गहने गिरोही रख करके हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट लेके जाते हैं। लेकिन ये सरकारी अधिवक्ता
2: कार वहाँ पे लंबित है ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सरकार क्या करे?
3: सरकार नियोक्ता है, सरकार हमारे माई बाप है। एक दिन सरकार हमारा जिस दिन प्रपोजल लग देगी उसी दिन न्याय मिल जाएगा। लेकिन सरकार जाती है, एक दिन पिछले डेट ऑफ क्या किया था सरकार ने, क्या की थी सरकार के सरकारी अधिवक्ता जाते हैं कि हमारे पास हाई लेवल की मीटिंग कराने, हम अगले डेट पर जो है 15 दिन के माइलाट मुझे समय दीजिए, 15 दिन के बाद हम सरकार की तरफ से प्रपोजल लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक करीब 4 महीना हो गए इधर, और उधर 14 महीना से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक कोई प्रपोजल नहीं किया। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के, हम पिछड़े दलित समाज के लोग आज कीड़े मकोड़े बनने के लिए तैयार हैं।
2: तो इसी तरीके से रिंग करके आए हैं?
3: बिल्कुल आएंगे सर, क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग का करियर खराब हो चुका है, हम लोग बहुत गरीब परिवार से
4: ऐसी हो गई है, वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकोड़ों से ही बदतर है। तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकोड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक।
5: सही चीज तो यह है कि अब जाके हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हम ये समझते थे कि कीड़े मकोड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकोड़े के ही काबिल हैं, क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं, निषाद समाज से हैं, और जितने ओबीसी के लोग हैं सब कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं। अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो लाठियां खाएंगे, मार खाएंगे, पेपर अगर पास कर लिए तो आप झूठे साबित किए जाएंगे। केवल आपको एक अधिकार है, वोट देना, क्योंकि हम निषाद समाज से हैं, केवल वोट देना जानते हैं, बाकी कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी थी। ये बात अब हम लोग को समझ में आ गई, क्योंकि अपने हक और न्याय की बात अगर आप करेंगे तो लाठियां खाएंगे, जूते खाएंगे, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को आप कैसे बनवाएंगे? अरे बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को वो लोग मानते थे, पहले मानने के काबिल और लोग थे और बनवाने के काबिल लोग थे, अब के न तो ऐसे लोग हैं और न ही बाबा भीमराव अंबेडकर के नियम को लेकर लोग चल रहे हैं।
2: ये तमाम लोग हैं, हक हमारा आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है उसमें पैरवी करे, वकील खड़ा करे और इस मामले का निस्तारण हो। यही वजह है कि ये तमाम लोग इस धूप में 40 डिग्री से अधिक का तापमान है और इस तरीके से रेंगते हुए सड़क पर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे हैं। जी
0: जी संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये मामला जो है इसको थोड़ा समझाएं कि कैसे ये खुलासा हुआ, किस तरीके से आगे ये कोर्ट तक पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक, थोड़ी पृष्ठभूमि।
3: हम लोग अपना
2: देखिए बैकग्राउंड को बताएं तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को ये भर्ती निकाली थी करीब 6 साल पहले, और 6 साल पहले जब 2022 के भर्ती के बाद जब 2022 के चुनाव आए तो उसके दौरान कहा गया कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई, जो एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिलने थे उसमें उचित आरक्षण नहीं दिया गया जो मानक है। इसी बात को लेकर के हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के बाद फिर इस 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रिजर्वेशन को लेकर के दो वर्ग बने, एक आरक्षित वर्ग यानी एससी एसटी ओबीसी और एक अनारक्षित जो जनरल कैंडिडेट थे। तो इसी को लेकर हाईकोर्ट से मामला जब निस्तारित नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का जरूर है, लेकिन इस मामले के निस्तारण के लिए इनकी मांग है कि सरकार अपने पक्ष तो रखे, सरकार अपना पक्ष रखे तो सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा कम से कम इस मामले का निस्तारण हो जाए, वो लटके नहीं, इनको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन इस केस का निस्तारण बीते करीब 1.5-2 साल होने को आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है और तब से इनका आरोप है कि सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से वकील नहीं खड़ा होता, तारीख पर तारीख ली जा रही है।
6: बिल्कुल संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरक्षण प्राप्ति कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन राज्य में प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नीट पेपर लीक कांड में नए नए खुलासों की।

0: नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र का एक बड़ा कोचिंग संस्थान सीबीआई की जांच के घेरे में अब आ गया है। इस कोचिंग संस्थान का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। लातूर के इस कोचिंग संस्थान के दफ्तर पर सीबीआई ने छापे मारे कर कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त भी किए।
1: अब इंस्टीट्यूट के मालिक शिवराज मोटेगांवकर से सीबीआई ने लगभग 11 घंटों तक पूछताछ की और आगे की पूछताछ के लिए मोटेगांवकर को पुणे आना होगा। नोटिस थमाया गया है। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी भी लातूर का ही रहने वाला है, जो कि एनटीए के पैनल में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक कुलकर्णी और मोटेगांवकर पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सीबीआई अब उनका कनेक्शन खंगालने में जुटी है।

0: नीट पेपर लीक में रडार पर लातूर मॉड्यूल, लातूर के कोचिंग पर जांच का शिकंजा, 100 करोड़ के कोचिंग संस्थान से पेपर लीक, परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट, एक प्रोफेसर जिन पर नीट परीक्षा के पेपर सेट करने की गंभीर जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने छात्रों के भविष्य का सौदा कर दिया। सीबीआई ने पीबी कुलकर्णी को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने गोपनीयता बरतने के अपने फर्ज से कन्नी काट ली। आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले सवाल लीक कर दिए और अब लातूर से ही एक और कोचिंग संस्थान जांच के दायरे में है। ये लातूर का रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस है जिसके मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर अब सीबीआई जांच की सुई जाकर टिक गई है। मोटेगांवकर को पुणे बुलाकर सीबीआई ने रविवार को लंबी पूछताछ की है। सीबीआई की टीम ने लातूर जाकर मोटेगांवकर के दफ्तर की तलाशी भी ली है, कंप्यूटर, लैपटॉप और आईपैड जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और गैजेट्स की छानबीन की है। शुक्रवार को भी सीबीआई ने मोटेगांवकर से करीब 11 घंटे की पूछताछ की थी।
1: आखिर सीबीआई को मोटेगांवकर पर शक क्यों हुआ? मोटेगांवकर महाराष्ट्र के कोचिंग सर्कल का एक बड़ा चेहरा है। आपको कह सकते हैं कि मोटेगांवकर एक कोचिंग टाइकून है। सीबीआई के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिसके बाद मोटेगांवकर से पूछताछ करना जरूरी हो गया, उसकी इंक्वायरी करना जरूरी हो गया।
0: इस केस की पूरी डिटेल आपको बताएं, उससे पहले शिवराज मोटेगांवकर को थोड़ा और बेहतर तरीके से जान लीजिए। मोटेगांवकर ने 1999 में लातूर में 10 छात्रों के साथ रेणुकाई केमिस्ट्री सेंटर की शुरुआत की थी। मोटेगांवकर के कोचिंग संस्थान की इस वक्त महाराष्ट्र के 7 जिलों में शाखाएं हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक मोटेगांवकर की कोचिंग संस्थाओं में 20,000 से ज्यादा छात्र हैं।
1: कहावत है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। मोटेगांवकर ने सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो शेयर किया जिससे जांच एजेंसियों का शक उस पर गहराता चला गया। इस वीडियो में मोटेगांवकर अपने छात्रों से पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट में आए सवाल में से कितने ऐसे सवाल थे जो असली नीट पेपर में भी आए थे, और इसी के बाद जो परीक्षा के पहले मॉक टेस्ट का पेपर हुआ था उसकी परतें खुलती चली गई।
0: तो अब नीट परीक्षा से भरोसा उठाने वाले इस लीक का एक बड़ा एपिसेंटर लातूर दिख रहा है। इसी लातूर के पीवी कुलकर्णी ने भी सवाल लीक किए और छात्रों के मॉक टेस्ट कराए, और अब इसी लातूर का मोटेगांवकर भी मॉक टेस्ट के ट्विस्ट में फंसते दिख रहे हैं। मोटेगांवकर और कुलकर्णी एक दूसरे के पुराने परिचित हैं। दोनों में बीच में अनबन भी हो गई थी लेकिन कुछ दिन पहले सुलह भी हो गई। तो अब सीबीआई कुलकर्णी और मोटेगांवकर की इस जोड़ी की पेपर लीक में भूमिका का हर मुमकिन नजरिए से जांच कर रही है। दिव्येश सिंह, लातूर आज तक।
2: नीट पेपर लीक का खुलासा राजस्थान से जरूर हुआ। राजस्थान पुलिस के एसओजी ने इसकी पड़ताल शुरू की लेकिन अब सारे के सारे तार महाराष्ट्र से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पेपर लीक भी महाराष्ट्र से हुआ और इसे हरियाणा, राजस्थान, बिहार और दूसरे राज्यों तक पहुंचाने वाले भी महाराष्ट्र के ही थे।
3: पुणे के पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार, पुणे की मनीषा मंधारे गिरफ्तार, पुणे की मनीषा वाघ मारे गिरफ्तार, नासिक का शुभम खैरनार गिरफ्तार, अहिल्यानगर का धनंजय लोखंडे गिरफ्तार। नीट पेपर लीक का खुलासा भले ही राजस्थान से हुआ हो लेकिन इसके तार महाराष्ट्र से गहरे जुड़े हैं। इस लीक कांड का किनपिंग कुलकर्णी महाराष्ट्र का है। छात्रों तक पेपर पहुंचाने वाले आरोपी महाराष्ट्र के हैं और पेपर देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने वाले चेहरे महाराष्ट्र के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस केस की तह तक तहकीकात की बात कही थी और अब सीबीआई इस लीक की एक एक जड़ खंगाल रही है।
4: इस सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए।
3: इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए। दोनों पेशे से शिक्षक रहे, दोनों नीट के पेपर तैयार करने वाली प्रक्रिया में सीधे जुड़े रहे लेकिन अब इस केस में आरोपी हैं। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक

0: में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए और नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए, नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही आरोप पीवी कुलकर्णी पर भी है कि उन्होंने मनीषा बाघमारे के साथ मिलकर परीक्षा से पहले छात्रों से मॉक सेशन कराए।
1: कुछ दिन पहले 3 मई को ये परीक्षा हुई है, परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पीवी कुलकर्णी ने एक खास कोचिंग रखी थी, एक खास क्लास रखी थी मनीषा बाघमारे के साथ मिलकर, जहां पर जो बच्चे उनके कोचिंग में आ रहे थे उन्हें खास सवाल दिए, उनके जवाब दिए और उन्हीं सवालों की तैयारी करवाई। जब उन सवालों की तैयारी करवाई और बाद में जब परीक्षा हुई तो ये पता चला कि यही सवाल, जो सवाल कुलकर्णी पीवी कुलकर्णी ने बताए थे, वही सवाल नीट की परीक्षा में भी आए। इसीलिए पेपर लीक का मामला सामने आया है, पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। आपको
0: अब जरा आपको देश के सबसे बड़े पेपर लीक कांड की कड़ियां बताते हैं। ये बताते हैं कि इस पेपर लीक की पूरी कहानी में किसका क्या किरदार रहा। पीवी कुलकर्णी ने केमिस्ट्री का पेपर सेट किया, मनीषा मंधारे ने बायोलॉजी का पेपर सेट किया, दोनों ने अपने अपने छात्रों से उन्हीं सवालों के मॉक टेस्ट कराए। कुलकर्णी और मनीषा दोनों के जरिए सवाल मनीषा वाघमारे तक पहुंचे। वाघमारे ने ही दोनों प्रोफेसरों के साथ मिलकर छात्रों की परीक्षा की तैयारी करवाई। मनीषा वाघमारे से पेपर धनंजय लोखंडे और फिर शुभम खैरनार तक पहुंचता है। शुभम खैरनार से पेपर गुरुग्राम में यश यादव और राजस्थान के बिवाल परिवार तक पहुंचता है।
1: पूरी सर्कल समझिए, पूरा ग्रिड समझिए। पीवी कुलकर्णी पेपर सेट करते हैं, मनीषा वाघमारे के टच में आते हैं, वो मनीषा वाघमारे को सवाल बताते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सवाल बताते हैं। मनीषा वाघमारे स्टूडेंट्स जमा कर लाती है, मनीषा वाघमारे धनंजय लोखंडे को वो पेपर देती है, धनंजय लोखंडे शुभम खैरनार को वो पेपर देता है, शुभम खैरनार यश यादव को गुरुग्राम में पेपर देता है।
2: और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में। एक दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने छत से कूदकर जान दे दी है।
3: ससुराल वालों पर दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित करने के बेहद गंभीर आरोप हैं। शादी बताया जा रहा कि 14 महीने पहले हुई थी।
2: और पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक बड़ी खबर आई थी जिसमें एक और सुसाइड की बात सामने आई थी एक युवती के, वो भी शादी कुछ वक्त पहले ही 2004 दिसंबर की थी। और एक और मामला ये आ रहा है ग्रेटर नोएडा से, दिल्ली से सटे इलाके से, जहां पर युवती ने कूद कर जान दे दी है।
3: 2026 और आज भी दहेज के लिए जान दी जा रही एक युवती पर इतना दबाव बनाया गया, आरोप यही है, इतना दबाव था ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज के लिए कि उसने खुदकुशी का चयन किया, छत पर जाकर उसने कूद कर अपनी जान ही दे दी। हालांकि पुलिस ने अब कार्रवाई की है, आरोपी पति आरोपी ससुर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन भी इस मामले की चल रही है। कुछ समय पहले शादी हुई थी और कुछ समय बाद ही इस महिला को अपनी जान देनी पड़ी, जान त्यागनी पड़ी, क्योंकि दहेज के लिए इसे परेशान किया जा रहा था।
2: बिल्कुल, और इस समय में दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आना चौंका देने वाली बात है कि एक युवती को अपनी जान देनी पड़ रही है, क्योंकि इस देश में अब तक दहेज की प्रथा कई लोग आगे चला रहे हैं और इसका नतीजा क्या हुआ है कि एक युवती ने कूद कर जान दे दी है।
3: हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, हैरान कर देने वाला मामला है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही, गिरफ्तारियां तो हुई हैं?
4: बिल्कुल, देखिए जो पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, ऋतिक और मनोज, जो ऋतिक है वो हस्बैंड है और मनोज उन दोनों को गिरफ्तार किया है। जो परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पहले ससुराल वालों ने हत्या की है और उसके बाद सिर छत से फेंका है। परिवार वाले कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें लड़की के शरीर पर जख्मों के निशान है। पोस्टमार्टम जब होगी उसके बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन तकरीबन 1.5 साल पहले ये शादी हुई थी और लगातार।
2: जी अरविंद, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station.

0: आजादी रिजीम चेंज से होते हुए वेस्ट एशिया की जंग अब तेल पर आकर रुक गई है। फरवरी 2026 से पहले हॉर्मुज से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल पार होता था, लेकिन आज सन्नाटा है, सप्लाई ठप है। खाड़ी देशों में उत्पादन करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन गिर चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो तेल कल तक 60 से 65 डॉलर प्रति बैरल में मिल रहा था, वो आज 100 डॉलर की दीवार लांग चुका है। यानी मिसाइलें पश्चिम एशिया में गिर रही हैं और असर दुनिया के हर कोने तक हो रहा है। इस खेल में सबसे ज्यादा वो देश पिस रहे हैं जिनका अपना कोई तेल का कुआं नहीं है। एशिया और अफ्रीका के वो देश जहां आम आदमी पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। हालत देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास सिर्फ हफ्ते भर का तेल बचा है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की सांसें भी फूल रही हैं। उनके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन का रिजर्व है, जबकि नियम कहता है कि कम से कम 90 दिन का भंडार होना चाहिए। वहीं अफ्रीका के कई देशों की हालत भी ऐसी ही है। ऊर्जा एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की 70% आबादी उन देशों में रहती है जिनके पास इस महासंकट से लड़ने के लिए ढाल ही नहीं है। बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, रसोई तक आग पहुंच चुकी है। भारत में ही देख लीजिए, पिछले 2 महीने में एलपीजी की खपत 13% कम हुई है। समुद्र में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं, ऊपर से ईरान के खर्ग आइलैंड के पास बहता हुआ हजारों बैरल तेल। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, कुदरत के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन इस अंधेरे में भारत अपनी मशाल जलाए खड़ा है। दिल्ली जानती है कि आज के दौर में डिप्लोमेसी से ज्यादा जरूरी एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। मई 2026 में भारत रिकॉर्ड 23 लाख बैरल रूसी तेल हर रोज मंगा रहा है। अमेरिका को साफ कह दिया गया है कि हमारे लिए देश का आम नागरिक और उसकी रसोई पहले है। रूस भी कह चुका है कि वो भारत के हितों पर आंच नहीं आने देगा,
1: गांव को प्रभावित न कर सके।
0: क्या भारत सुरक्षित है? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आंकड़े तसल्ली देते हैं।
2: आवर एलपीजी द सिलेंडर गैस व्हिच यू यूज इन किचन्स अबाउट 60% यूज्ड टू कम फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। नाउ वी हैड टू मेक अरेंजमेंट्स एंड लुक एंड बिहोल्ड, आई मीन इट्स आई एम अमेज्ड एट व्हाट वी वर एबल टू डू। आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी प्रायर टू द क्राइसिस वॉज 35,000 or 36,000 मेट्रिक टन्स पर डे। वी रैम्प्ड अप आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम 36,000 to 54,000 मेट्रिक टन्स। दिस बाय इटसेल्फ इज अ माइंड बॉगलिंग।
0: लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो आईएमएफ की वो चेतावनी सच हो सकती है कि दुनिया एक ऐसी मंदी में फंसेगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। खाद, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: इट नेवर हैपेंस एट अ गुड टाइम, द पाइप बर्स्ट एट मिडनाइट, द हीटर क्विट्स ऑन द कोल्डेस्ट नाइट, सडनली यू आर ओवरवेलम्ड। That's when home service here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, home serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
5: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
6: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
5: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
8: Oh, hey, friends. This sale's for you. The DSW Friends and Family event is on. DSW VIP members get 25% off almost everything in stores and online for a limited time. Don't miss out. This only happens twice a year. Not a VIP? You're still family to us. Join for free to get in on the savings. Plus, VIPs always get free shipping on anything. Save on must-own shoes today when you shop the DSW Friends and Family event at your DSW store or DSW.com.
9: AI is changing what it takes to move forward in tech. At WGU, our online technology master's programs help you build the skills today's roles require, so you're ready for what comes next. Learn more at WGU.edu.
10: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
11: After multiple assassination attempts, they can't even get...
12: They're reliable.
13: Always when I need them.
10: To live sports action.
14: One-hand jam by LeBron on the break.
15: That's another three, Steph Curry.
10: And your favorite music.
16: Well, the dawn begins to crack.
10: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
17: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long.
18: This guitar about as hard as a cane.
17: To top 40 hits you just can't get enough of.
18: Thank God I get to.
17: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
20: जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
21: प्रधानमंत्री मोदी ने देश से 7 वचन मांगे हैं। ये 7 वचन बचत की सलाह है, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए किसी योजना का ब्लूप्रिंट है। किसी महासंकट से पूर्व की चेतावनी है या युद्ध से जूझती दुनिया के बीच भारत के लिए सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश है। देश के सामने इन दिनों कई सवाल हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके लिए वो देश को पहले से तैयार करना चाहते हैं?
12: पेट्रोल, वर्चुअल मीटिंग, खाने के रेल की खपत कम करें, हम सोने की खरीद को टालें।
21: क्या पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की अनिश्चितता, वैश्विक सप्लाई चेन का संकट, डॉलर पर बढ़ती निर्भरता और दुनिया में बनते नए आर्थिक गुट भारत के लिए भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकते हैं? आखिर क्यों 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला भारत अपने भविष्य को लेकर अलग तैयारी करता दिख रहा है?
13: भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पपड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे, वो जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी।
22: हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस हो सकता है सरकार वापस दाम ले।
23: खुद विदेश चले गए और पूरे देश को कह रहे हैं कि विदेशों की यात्राएं मत करिए और खुद विदेशी यात्रा पर निकल गए। तो दरअसल अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी रिहाई का सौदा करने के लिए उसकी वसूली देश की जनता से की जाएगी।
24: कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
21: प्रधानमंत्री ने सोना ना खरीदने को कहा तो इससे देश को क्या फायदा होगा? खाने वाला तेल कम खर्च करने को कहा तो इसका विदेशी मुद्रा भंडार से क्या संबंध है? गाड़ी कम चलाने को कहा तो इसका देश की बचत से क्या कनेक्शन है? प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक साल तक विदेश यात्रा टालने को क्यों कहा? हम आपको आसान शब्दों में आज ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री को 24 घंटे के अंदर दो बार देश से ये अपीलें क्यों करनी पड़ी, क्यों वो देश की जनता को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति बनाने को पुकार रहे हैं।
25: करना पड़ेगा लोगों को।
21: देश पर जब जब संकट आया तब तब प्रधानमंत्रियों ने देश की जनता से सोने को लेकर अपील की है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा और सेना की मजबूती के लिए देश की जनता से स्वेच्छा से सोना दान करने की अपील की थी। 1967 में विदेशी मुद्रा के भारी संकट के समय इंदिरा गांधी ने देश की जनता से किसी भी रूप में सोना न खरीदने की अपील की और गोल्ड कंट्रोल एक्ट भी लागू किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या देश इस समय किसी भारी संकट से जूझ रहा है?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

केरलम में सतीशन सरकार का आगाज, मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्रियों की पूरी कैबिनेट ने ली शपथ। समारोह में खड़गे राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और टॉप लीडरशिप मौजूद। शपथ के 8 दिन बाद यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य विभाग। कैबिनेट की बैठक में मिशन 2027 की रणनीति पर हो रहा है मंथन। नीट पेपर लीक में लातूर के 100 करोड़ी कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच। मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल, असली पेपर से मैच। लगातार दूसरे दिन लपटों में घिरी भारतीय रेल। बिहार में सासाराम स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कल तिरुवनंतपुरम राजधानी के डिब्बों में लगी थी आग। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच तेहरान की अमेरिका को नई धमकी। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक।

0: नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं और 12 घंटे 12 रिपोर्टर शो आप देख रहे हैं। 12 बजे हर रोज अब से 12 रिपोर्टर के साथ ग्राउंड जीरो से हर एक रिपोर्ट आपको दिखाई जाएगी। 12 बजे 12 रिपोर्टर की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आपको देते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला लंबे से समय से चला आ रहा है और एक बार फिर से प्रदर्शन आज देखने को मिला है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का अभ्यर्थियों ने घेराव किया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस में सरकार की तरफ से पैरवी नहीं होने के चलते मामला निस्तारित नहीं हो पाने से अभ्यर्थी नाराज है। दंडवत साष्टांग करते हुए अभ्यर्थी संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस में सरकार की तरफ से वकील खड़ा कर पैरवी करने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से जो आरक्षण इसमें है, जो कट ऑफ इसमें है, उसको लेकर ये 69,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शनरत हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज लखनऊ की सड़कों पर कुछ इस तरह से प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, साष्टांग दंडवत पैदल चलकर, पैदल नहीं चल रहे बल्कि लेट लेट कर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी जाते हुए दिखाई दिए। इनका बयान भी आया है, इनका कहना है कि हमें कीड़े मकौड़ों की तरह जो है पेश हमें साथ किया गया और हमें इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा इस खबर पर जुड़ गए। संतोष, इस समय क्या स्थिति है, क्या अभी प्रदर्शन चल रहा है?
1: देखिए, प्रदर्शन में इस समय पर संदीप सिंह के घर के बाहर मौजूद हूँ। इनके अभ्यर्थियों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो अंदर गया है, संदीप सिंह अंदर मौजूद है, उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी बाहर हैं और ये लोग आज साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में और रेंगते हुए आए थे संदीप सिंह के आवास तक। आज आप लोग बिल्कुल रेंगते हुए लुढ़कते हुए आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते थे?
2: देखिए सर, हम लोग दंडवत प्रणाम की मुद्रा में माननीय मंत्री जी के यहाँ आए थे ताकि हमारी बात सुनी जाए। हम लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है और इससे पहले भी कई तारीखें लगी थी जिसपे सरकार के अधिवक्ता पहुंचते नहीं है। अगर पहुंचते हैं तो वो ठीक से अपना विषय नहीं रखते। तो हमारा मांग यही था कि सरकार के अधिवक्ता पहुंचे और जो हमारा मैटर है उसको वहां पर रखें ताकि ये निपटाया जा सके। और जो हमारा एक सरकार ने एक हमको लिस्ट भी दी थी कि इनके साथ अन्याय हुआ है, 6,800 की एक लिस्ट दी थी कि इतने बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनको हम नौकरी में ले आएंगे। तो हमारी मांग यह है कि उस लिस्ट को बचाते हुए और जो है 27-21% का जो आरक्षण का रिजर्वेशन रूल है उसका पालन करते हुए उस पर बहस कराई जाए।
0: ठीक है, संतोष, अधिवक्ताओं का पैरवी करने के लिए बार बार न जाना, इससे भी नाराज अभ्यर्थी हैं और सही से पैरवी नहीं हो रही है। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से योगी कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है और इससे पहले शपथ ग्रहण के 8 दिन के बाद कल रात को यूपी में नए मंत्रियों को विभागों का ऐलान हुआ, बंटवारा हुआ। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर समेत 8 मंत्रियों को विभाग बांटे गए। भूपेंद्र चौधरी को इसमें एमएसएम, मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी मिली, अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली, सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन और सैनिक कल्याण प्रांतीय रक्षक दल की विभाग की जिम्मेदारी मिली, कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी मिली, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व एवं हंसराज विश्वकर्मा की बात करें उनको लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई। विभागों के बंटवारे के मायने बिल्कुल आसान भाषा में अब समझा रहे हैं लखनऊ से हमारे रिपोर्टर समर श्रीवास्तव।
3: आसान भाषा में समझे तो यूपी के लिए मात्र ये कैबिनेट विभागों का बंटवारा नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं 2027 के चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं भांप भांप कर बीजेपी की कदम रखती हुई एक राह नजर आती है। बड़ी बात यह भी है कि जो चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री के विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी या गृह भी इधर से उधर हो सकते हैं, उस पर पूर्ण विराम लग गया है और पीडब्ल्यूडी हो चाहे गृह हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखा है। इतना ही नहीं, सरकार के कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनके कुछ विभाग लेकर नए मंत्रियों को दिए गए हैं। फिर चाहे बात आप राकेश सचान की करें और चाहे बात दयाशंकर मिश्रा दयालु की करें, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी अपनी झोली से कुछ विभाग अन्य मंत्रियों को बांटे हैं, लेकिन प्रमुखता से जिन विभागों की चर्चा थी वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। विपक्ष भी इस मामले में टिप्पणी कर रहा है। अखिलेश यादव जो है वो चुटकी ले रहे हैं कि अपने हुए फिस बाहर वाले को मिल गया है सब कुछ, यानी कि मनोज पांडे की ओर इशारा और अन्य बीजेपी के नए मंत्रियों को कटघरे में खड़े करते अखिलेश यादव भी यहां पर नजर आ रहे हैं।
0: अब बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत केस की बात करेंगे। ट्विशा की खुदकुशी थी या हत्या हुई, इस पर चर्चा गर्म है। ट्विशा का परिवार दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहा है। आज तक को खबर मिली है इस बाबत ट्विशा का परिवार आवेदन करने भी वाला है। आरोप यह है कि जिस बेल्ट से ट्विशा के फंदा लगाने की बात कही जा रही है उसकी जांच के बगैर ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। ट्विशा का परिवार ट्विशा के सेकंड पोस्टमार्टम के दूसरे पोस्टमार्टम के लिए भोपाल जिला अदालत में अब आवेदन लगाएगा। परिवार की मांग है कि ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम अब मध्य प्रदेश के बाहर दिल्ली में करवाया जाए। 31 साल की ट्विशा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। दिसंबर में उसकी शादी एक मेट्रोपॉलिटन साइट के एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए भोपाल के एक क्रिमिनल लॉयर समर सिंह के साथ हुई। समर सिंह भोपाल जिला न्यायालय से रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे। आरोप है कि मौत से पहले ट्विशा ने मां को बताया था कि उसे ससुराल में सताया जा रहा है। ऐसे में परिवार को लग रहा है कि यह खुदकुशी नहीं एक मर्डर है, पोस्टमार्टम सही से होना चाहिए। शरद कुमार हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह इस खबर पर जुड़ गए। रविश, परिवार को शक है तो अब किस तरह से परिवार आगे क्या क्या कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकता है?
4: बिल्कुल, कानूनी रास्ता अख्तियार करने के लिए ही परिवार आज भोपाल जिला अदालत आने वाला है। परिवार की दो प्रमुख मांगे हैं। पहला कि उनकी बेटी का सेकेंड पोस्टमार्टम हो और दूसरी मांग यह है कि ये सेकेंड पोस्टमार्टम मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में ना हो, ये दिल्ली में हो, क्योंकि ये मूलतः नोएडा के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में जो पोस्टमार्टम हुआ है एम्स भोपाल में, उस पर परिवार ने फिलहाल असंतुष्टि जाहिर की है। परिवार ने कहा है कि इसमें न केवल नियमों को ताक पे रखा गया बल्कि कई लापरवाही की परतें भी खुल रही है। जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन था ट्विशा का, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मेल नहीं खा रहा है। परिवार का पहला आरोप ये है। परिवार का आरोप है कि बॉडी पर खरोंच के निशान है और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। परिवार का तीसरा आरोप ये भी है कि जो जिस वस्तु से ट्विशा ने संदिग्ध तौर पे फांसी लगाई की कथित तौर पे, वो वस्तु पोस्टमार्टम के साथ यहाँ पे भेजी जानी चाहिए थी जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है उसकी तरफ से, आईओ की तरफ से, लेकिन वो भेजी नहीं गई थी उस वक्त भोपाल एम्स में और उसके बिना ही पोस्टमार्टम हो गया। जबकि नियम ये कहता है कि अगर किसी ने फांसी लगाई है तो जिस वस्तु से उसने फांसी लगाई है उससे मिलान किया जाता है निशान का और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पे इस नियम को भी दरकिनार किया गया। तो ऐसी तमाम खामियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट
0: परिवार को सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया रविश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात नीट पेपर लीक करते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद से एनटीए पर बहुत गंभीर सवाल खड़े उठ रहे हैं। सवाल उसके स्ट्रक्चर, उसके कार्यप्रणाली पर सामने आया है। एनटीए का गठन किसी संवैधानिक संस्था की तरह नहीं बल्कि एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक एनटीए का रजिस्ट्रेशन 15 मई 2018 को दिल्ली में सिर्फ ₹50 की फीस देकर करवाया गया था। जी हां, एनटीए का रजिस्ट्रेशन। सवाल एनटीए के चार अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति को लेकर भी है। आरोप लग रहे हैं कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अब भी एडहॉक सिस्टम जो है पर चल रही है। राजनीतिक स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एनटीए शिक्षा मंत्रालय का के लिए काम करती है और इसका गठन सहकारिता कानून के तहत रजिस्टर मॉडल पर किया गया है। शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शरद, एनटीए पर सवाल तो उठ रहे थे लेकिन अब उसका रजिस्ट्रेशन भी सवालों में।
5: बिल्कुल सही बात है, इसीलिए सीबीआई लगातार इस खोज में लगी हुई है कि एनटीए का वो कौन सा शख्स है जिसकी वजह से ये पेपर लीक नीट का हो रहा है। अगर 2025 का भी हुआ है, 2026 का भी हुआ है, इससे पहले होने की शक जताई जा रही है, तो क्या नियमों में छूट है? देखिए, सोसाइटी एक्ट के तहत हो तो सोसाइटी के पास पूरा पावर होता है अपने सदस्य बनाने के, कानून बनाने के, नियम बनाने के। किस आधार पर जिन पेपर सेटर को पकड़ा गया है, मनीषा हो या पीवी कुलकर्णी हो, किस आधार पर इन्हें पेपर सेटर बनाया गया, क्या पेपर सेट करते समय कोई एसओपी को फॉलो किया गया, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर सारा का सारा मामला वहीं रुक रहा है कि सरकार के पास पूरा नियंत्रण नहीं था एनटीए पर, मानव संसाधन मंत्रालय का पूरा नियंत्रण नहीं था एनटीए पर, जिस जो ढांचा था एनटीए का, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब सीबीआई की पूरी जांच जो है एनटीए पर रुकी हुई है। जी,
0: सवाल बहुत गंभीर है। शरद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर अब नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है लेकिन महाराष्ट्र से। लातूर में आरोपी कोचिंग मालिक शिवराज मोटेगांवकर से सीबीआई ने 8 से 10 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बीती रात ये सवाल जवाब किए हैं। 8 से 10 घंटे तक पेपर लीक के मास्टर माइंड में से एक पीवी कुलकर्णी के संबंधों को लेकर जानकारी जुटाई गई है। दोनों के बीच में रिश्तों को लेकर, संबंधों को लेकर सवाल जवाब हुए हैं। आरोपी शिवराज मोटे गांवकर से इस बारे में सवाल हुए हैं और करोड़ी मतलब बहुत करोड़ों रुपए अपने कोचिंग सेंटर से कमाए गए। मॉक टेस्ट जो हुआ था उसमें जो सवाल पूछे गए थे, उसमें जो सवाल दिखाए बताए गए थे वही बिल्कुल पेपर में थे। और पीवी कुलकर्णी से तो सारी जानकारी अब तक मिल भी चुकी है। पीवी कुलकर्णी कैसे इसमें संलिप्त थी, जो कि पेपर सेटर में से एक था और उसके बाद पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड में से भी एक, मनीषा भी इसमें मुख्य किरदारों में से एक, लेकिन जिस कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए थे, कोचिंग सेंटर का मालिक, उससे भी इन्वेस्टिगेशन, मोटे गांवकर, शिवराज मोटे गांवकर, उससे भी सवाल जवाब हुए। 8 से 10 घंटों तक 22 लाख से ज्यादा के स्टूडेंट्स उनके साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हुआ है। खुद सरकारी इतना नुकसान हुआ है, 400-500 करोड़ रुपए एक एग्जाम को करवाने में लग जाते हैं और दोबारा उस एग्जाम को करवाना होगा, अब एनटीए को करवाना होगा, एनटीए उसके रजिस्ट्रेशन, उसकी कार्यप्रणाली भी सवालों में, और पूरे देश से अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी एनटीए की आवश्यकता क्या। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवेश जुड़ गए। दिवेश, 8 से 10 घंटे पूछताछ में इस कोचिंग मालिक ने मोटे गांवकर ने क्या बताया?
6: वहां सीबीआई पूछताछ कर सकती है। एक दिन शुक्रवार के दिन उनके ऑफिस पर, उनके घर पर रेड हुई, सर्चेज हुई, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें समन देकर रविवार के दिन पुणे बुलाया गया। पुणे में उनके उन्हें उनसे फिर पूछताछ की गई 8 से 10 घंटे तक। आपको बता दें कि उसी दिन रविवार के दिन यानी कल के दिन जब मोटे गांवकर से पुणे में पूछताछ चल रही थी, सीबीआई को कुछ शक हुआ, इस वजह से सीबीआई ने फिर मोटे गांवकर के क्लासेस, कोचिंग क्लासेस हेडक्वार्टर पर फिर छापेमारी की, फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया। अभी भी शक यह है कि क्या मोटे गांवकर को भी पीवी कुलकर्णी से या मनीषा मांडे से या अन्य किसी सोर्स से जो लीक का पेपर सेट हुआ था उसकी जानकारी, क्योंकि उसके सवाल मिल गए थे, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि हमने मॉक टेस्ट में जो सवाल दिए वही सवाल परीक्षा में भी आए।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दिव्येश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोचिंग मालिक से सवाल जवाब हुए। 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली से। नीट पीजी लेक पेपर लीक को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। यह अर्जी आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता अनुभव गर्ग, इसके साथ साथ डॉक्टर ध्रुव और हरीश शरण देवगन की तरफ से की गई है। याचिका में नीट यूजी परीक्षा को सुरक्षित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी बेस्ड उस प्रणाली के तहत तत्काल परिवर्तित करने और अन्य संबंधित राहतों की बात भी इस याचिका में की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की गई है कि इसे अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाए ताकि सारे स्टूडेंट अब एक ही कंप्यूटर पर बैठे और कंप्यूटर पर लीक का चांस नहीं होगा, तो कम से कम परेशान ये स्टूडेंट्स नहीं होंगे।
7: नीट पीजी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियों को नियंत्रित करने, उसको खत्म करने और भविष्य के लिए सुरक्षित और मजबूत उपाय करने के लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और उनके सहयोगियों ने दाखिल की है। इस याचिका में मांग की गई है कि अदालत ये आदेश दे पक्षकारों को, यानी जिसमें एनटीए और सरकार है, जिसमें ये कहे कि वो आगे आने वाली जो परीक्षा है जो पुनर्आयोजित की जा रही है उसमें सारे सख्त उपाय किए जाएं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना रहे। इसके साथ ही एनटीए एजेंसी को पूरी पारदर्शी और विशेषज्ञों को शामिल करके समायोजित यानी समावेशित करके एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई जाए जो पूरी तरह से इसका इसकी जगह पर हो और पारदर्शी तरीके से उसमें काम किया जाए। इसके अलावा प्रश्न पत्रों के तैयार करने, उसको वितरित करने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए उसमें डिजिटल लॉक सिस्टम लगाया जाए। साथ ही कोर्ट ये डायरेक्ट करे सरकार को और एनटीए को, आने वाली एजेंसियों को, कि सारी चीजें इतने पारदर्शी और सख्त तरीके से हों कि किसी तरह भविष्य में इस तरह की गुंजाइश ना रहे।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप अगली खबर केरल से है। केरल में नई सरकार का गठन हो गया है, शपथ ग्रहण भी हो गया है। 20 मंत्रियों के साथ वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लगभग 60 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब पूरे यूडीएफ मंत्रिमंडल ने एक साथ शपथ ली हो। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी, सोनिया, इसके साथ साथ प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज आज केरल में जुटे दिखे।
8: केरल में अब यूडीएफ सरकार, कांग्रेस के वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की, उनके साथ 20 और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की सेंट्रल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में। कांग्रेस के लिए एक शक्ति प्रदर्शन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ प्रियंका गांधी जो अब वायनाड की लोकसभा की एमपी हैं। और साथ में कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री, हिमाचल से सुक्कू तो कर्नाटक से सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सब एक स्टेज पर। और सबसे बड़ा अगर एक फोटो अपॉर्चुनिटी हम बोले तो वो था वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला एक साथ मुस्कुराते हुए कहते हुए कि देखिए अब कोई इशू नहीं है, हम साथ हैं, हम यूनाइटेड हैं, केरला में इकट्ठे यूनाइटेड यूडीएफ यूनाइटेड कांग्रेस।
0: अब आप पीएम मोदी को मिले सम्मान के, पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है। ये वो तस्वीर है जिस समय प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मिला और उन्होंने इसे देश 140 करोड़ की आबादी का सम्मान बताया है। स्वीडन में पीएम को यह सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी ने इसके लिए स्वीडन सरकार को धन्यवाद भी दिया है। भारत और स्वीडन के ताल्लुकात अब एक नए स्तर पर, नए चरम पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीएम को सम्मान मिलने के बाद उन्होंने इसे डेडिकेट भी भारत के लोगों को क्या कहा कि यह मेरा सम्मान नहीं, देश का सम्मान है।
9: एक और देश, एक और सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सालों के अंतराल के बाद स्वीडन पहुंचे तो स्वीडिश सरकार ने उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये स्वीडन का ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो किसी विदेशी राजनेता को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी विनम्रता के साथ इसे स्वीकार करने के साथ साथ इसे न केवल अपना बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भी सम्मान करार दिया। स्वीडन और भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के अंदर बदलने का भी ऐलान किया। भारत और स्वीडन न केवल करीब आ रहे हैं बल्कि रक्षा साझेदारी को भी लगातार मजबूत कर रहे हैं।
0: और इस सम्मान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं।
10: ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: बारह बजे 12 रिपोर्टर में अगली खबर बिहार से है। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लगने की खबर से सनसनी फैल गई। सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर में अचानक आग लगी। राहत की बात यह रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरी खबर बता रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित सिंह
11: करके बोगी को कम से कम कट किया।
12: 12 बजे 12 रिपोर्टर में ये खबर बिहार से, जहां आज सुबह सासाराम रेलवे स्टेशन पर भभुआ सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में भयंकर आग लग गई। दरअसल सुबह 6:45 पर यह ट्रेन सासाराम से पटना के लिए खुलती है, लेकिन इसी दौरान ट्रेन के एक कोच से धुआं निकलना शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में ये पूरा का पूरा कोच जो है वो आग से धधक उठा। खुशनसीबी ये रही कि उस वक्त इस कोच में ज़्यादा यात्री नहीं बैठे थे और जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ वो यात्री वहाँ से ट्रेन छोड़कर बाहर निकल आए। उसके बाद आनंद फानंद में RPF को बुलाया गया और फिर दमकल की गाड़ी ने आकर थोड़ी देर बाद आग पर काबू पाया गया। आग के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन रेलवे इसको लेकर अपने तरीके से जांच शुरू कर चुका है।
0: अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
14: भारत की।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात IPL की। IPL में दिल्ली को लाइफलाइन मिली है। कल दिल्ली ने राजस्थान को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें अभी जिंदा रखी हैं। पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 193 रन बनाए और दिल्ली ने 4 गेंद रहते ही टारगेट को हासिल कर लिया।
15: IPL 2026 में पॉइंट्स टेबल की रेस काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। कल RCB ने पंजाब को हराकर पहला स्थान हासिल कर लिया, वहीं नंबर दो पर गुजरात की टीम काबिज है, तो नंबर तीन पर हैदराबाद और नंबर चार की लड़ाई अभी भी खुली हुई है। नंबर चार पर इस बार पंजाब 6 हारों के साथ वहां पर बैठी हुई है, लेकिन उसके नीचे चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और एक टीम जो अभी भी रेस में आप कह सकते कि है, वो है दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उन्होंने 13 मैच खेले और कल उन्होंने राजस्थान को हराकर थोड़ी सी अपनी उम्मीदें और जिंदा की हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीद ये होगी कि वो अपना आखिरी मुकाबला जीते और नंबर जो आप कह सकते हैं कि 14 अंक हासिल करें और अपने रन रेट को भी बेहतर करें ताकि वो नंबर चार की लड़ाई लड़ सके। लेकिन उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स को ये भी उम्मीद करनी होगी, भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि उनसे ऊपर पॉइंट टेबल जो टीमें बैठी हुई हैं वो भी अपने मैच हारे, तभी कुछ हो पाएगा।
0: खबरों का सिलसिला जारी, रुकने अब छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत।
17: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
19: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts. Yeah.
20: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
21: Like I said before, we better hold the sins.
22: Character. The taste of success.
23: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
24: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा। मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक, कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक।
25: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं जाऊँ।
26: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप
27: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
28: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
29: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
27: शुभेंदु अधिकारी,
26: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
30: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
31: अनुपम मिश्र,
32: मोहित भारद्वाज,
33: पीयूष मिश्रा,
34: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: ഞാന്
1: വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും.
0: ഞാൻ
1: വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
2: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka har maa ka bharosa pyar se parosa. In association with
3: Bharat ki apni electric sawari.
4: और बुलेटिन में हम बात करेंगे दहेज प्रताड़ना में हुई दो मौतों की. ग्रेटर नोएडा में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने छत से कूदकर जान दे दी. वहीं नोएडा की रहने वाली ट्विशा की ससुराल में हुई मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है. और ये वो तस्वीरें, शादी हुई थी, बहुत ज्यादा समय शादी को हुए नहीं हुआ था, लेकिन खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा. उस पर इतना दबाव था, उसे इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, आरोप यही है, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज लगातार मांगा जा रहा था. और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद मजबूर हुई और छत पर पहुंचकर खुदकुशी कर ले. अभी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही नोएडा की रहने वाले हैं. एक नोएडा में रहती थी लेकिन जो है शादी मध्य प्रदेश में हुई थी. ट्विशा, परिवार वाले कह रहे हैं कि ये हत्या है, ये सुसाइड नहीं है, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. दूसरी तरफ खुदकुशी, छत पर जाकर एक महिला ने, नोएडा की रहने वाली, खुदकुशी कर ली. तो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में यह दर्दनाक मामला सामने आया. आरोप है कि दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने छत से कूद कर अपनी जान दे दी. अब ससुराल वालों पर दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित करने का आरोप है. उसकी शादी 14 महीने पहले हुई थी. पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है. लेकिन साल 2026 में भी जब इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी पढ़ाई लिखाई, उसके बावजूद भी दहेज के मामले सामने आना और एक लड़की को अपनी जान दे देना, ये बहुत बड़ा मामला है. पुलिस बहुत गंभीरता से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है. महिला छत पर गई और छत से कूद कर उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि ये दहेज लोभी परिवार उस पर दबाव बना रहा था कि उनको और पैसा चाहिए, उन्हें और चीजें चाहिए, और सामान चाहिए, और दहेज चाहिए. और दहेज का दबाव बना और इस हद तक ये दबाव कि लड़की ने अपनी जान ही दे दी.
5: सर, आप लोग, शादी हुई कुछ महीने पहले ही, शादी हुई थी
6: डेढ़
5: साल पहले ही शादी हुई थी. क्या मामला हुआ और क्या जो लड़की थी वो आपको बताती थी कि किस तरीके से उनके जो सास ससुर हैं उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं?
6: सर, हमने जो अपनी बेटी की जो शादी करी थी, मतलब एक समाज के हिसाब से और अपनी हैसियत के हिसाब से, मतलब बहुत बेस्ट करी थी. उस टाइम भी हमने अपनी हैसियत से भी ज्यादा चीजें करी थी, ठीक है. लेकिन वो होता है ना कि मतलब उनकी तो वो भरी नहीं रही थी. इतनी प्यारी बच्ची थी, इतनी सुंदर बच्ची थी कि मतलब कोई ऐसे भी ले जाता, मतलब इतनी सुंदर बेटी थी हमारी. लेकिन मेरे भाई कल मतलब वहां गए थे इस विषय में समझाने के लिए, बिल्कुल बातचीत हुई, अच्छे से सब कुछ हुआ. लेकिन मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया, जैसे वो वहां से विदा होकर घर पे आए, आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि बेटी मतलब गिर गई है. तो भाई ने मतलब पूछा कि कहाँ से गिर गई है, कैसे गिर गई, तो कोई जवाब नहीं दिया उस टाइम पे कि मतलब शारदा हॉस्पिटल आप आ जाइए. तो जैसे अब गिरने का क्या होता है, छोटी मोटी चोट होगी, हमें भी चलो कोई बात नहीं. लेकिन वहां जाके देखा तो हमारी बेटी मृत पड़ी हुई है, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे निशान है मार पीट के हर चीज के, और उसको इनफैक्ट उसके पेट में मतलब या तो कोई बुलेट का मतलब घाव है, वो इतना मोटा घाव है, और या मतलब कोई स्क्रू वगैरह कोई सरिया वगैरह मतलब उससे मारा गया है उसको, तो मतलब उसके पूरी बॉडी पे निशान है। तो ये मतलब बच्चा अपने आप तो कैसे कर लेगा, ये तो कोई मतलब है ही नहीं किसी तरह से, वो बिल्कुल एक प्री प्लान मर्डर है, और उसको उसके बाद में मार पीट के छत से फेंका गया है ताकि इसको मतलब एक घटना बता दिया जाए कि भाई एक्सीडेंट हुआ है।
5: पिछले कितने दिनों से आपकी बेटी को ये परेशान कर रहे थे और दहेज की मांग कर रहे थे?
6: मतलब लमसम ये 7-8 महीने से ये चीजें चल रही थी। हम देखो एक समाज में रहने के नाते ना लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं हर चीज को जब तक चीजें हो जाएं, ऐसा नहीं है कि एकदम से चीजें स्टेप ले लिया जाता है, लेकिन वो होता है ना कि मतलब किसी को रुकना नहीं है तो रुकना ही नहीं है फिर, तो ये चीजें बढ़ती चलेगी। अभी वो एक अभी एक स्कूल मतलब बना रहा है, तो उसमें वो अवैध जमीन पे भी बना रहा है, ठीक है। अब उसमें उसको फंड की जरूरत पड़ रही थी, तो वो दिन रात वही बेटी के साथ में चीजें मतलब चल रही थी कि भाई ये सब करना पड़ेगा।
4: वही डीसीपी शैलेंद्र कुमार क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, आपको भी सुना देते हैं।
7: मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।
4: ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे संवाददाता अंशुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अंशुल, थोड़ा इनका जो लालच है ना, जो इनके दहेज की लालसा, उसे एक्सपोज करिए, बताइए क्या क्या मांग कर रहे थे, कैसा कैसा दबाव बनाया जा रहा था इस लड़की पर।
5: जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। इस वक्त मैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ फैमिली डिमांड ये कर रही है कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो, और जो एक ये थ्योरी आई है जिसे कह रहे हैं कि सुसाइड है, लड़की ने खुद अपनी जान दी है, उसका खंडन किया जा सके, क्योंकि लड़की के शरीर पर काफी ऐसी इंजरीज हैं जिससे ये कहीं ना कहीं लगता है कि लड़की को काफी टॉर्चर किया गया, जिसके बाद उनकी जो है मौत हो गई। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं कि किस तरीके का माहौल रहा है। आप ये बताइए कि शादी हुई थी, दहेज भी दिया गया था, गिफ्ट भी दिया गया था, क्या क्या दिया गया था और आगे क्या डिमांड कर रहे थे ससुराल वाले?
8: देखिए, जो शादी जो इन्होंने की थी, अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत अच्छी शादी की थी, करीब 1 करोड़ के आसपास में शादी में खर्चा भी हुआ था, और अभी पिछले कुछ महीने से ये लगातार कुछ और दहेज की मांग कर रहे थे, कुछ गाड़ी की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर के बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी विषय में कल जो बिटिया के पिताजी हैं वो भी घर पर गए थे, और वहां जाकर के उन्होंने आराम से चीजों को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उनके वहां से लौटने के आधे घंटे के बाद ही बिटिया को बुरी तरह से मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई, और इन्हें फोन किया गया कि आपकी लड़की गिर गई है। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर के देखा कि उसकी लड़की की मृतदेह है। हमने जैसे वहां पे देखा तो लड़की के पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, जख्मों के निशान हैं, तो देख के पता चल रहा है कि उसको कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, और प्रताड़ित करके मारने के बाद उसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है। अभी मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग या ज्यादातर पुलिस जो बयान दे रही है वो बता रही है कि आत्महत्या की गई है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि
4: अंशुल मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस बीच में एक और बड़ी खबर दे देते हैं, एमपी की त्रिशा शर्मा खुदकुशी मामले में और या हत्या है ये सवाल अभी बना हुआ है, और इसी बीच में त्रिशा का परिवार अब दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहा है। आज तक को खबर मिली है कि इस बाबत त्रिशा का परिवार आवेदन भी करने वाला है। आरोप है कि जिस बेल्ट से त्रिशा के फंदा लगाने की बात कही जा रही है उसकी जांच बगैर ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। त्रिशा का परिवार त्रिशा के सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए भोपाल जिला अदालत में आवेदन लगाएगा। परिवार की मांग है कि त्रिशा का दूसरा पोस्टमार्टम करवाया जाए और वो मध्य प्रदेश से बाहर होना चाहिए। 31 साल की त्रिशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी, दिसंबर में शादी हुई थी एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए भोपाल के क्रिमिनल लॉयर से समर सिंह भोपाल जिला न्यायालय के रिटायर्ड जज गिरिबाना सिंह के बेटे हैं। आरोप है कि मौत से पहले त्रिशा ने मां को बताया था कि तुझे ससुराल में सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और परिवार अब ये मान रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। जिस बेल्ट से उसने खुदकुशी की, जिस बेल्ट से लटकी हुई मिली, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और त्रिशा के पिता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको क्यों लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, एक मर्डर है?
9: सर, ये जिस प्रकार से बॉडी लाई गई और जिस प्रकार से पीएम का जो लिंक्स है उसमें काफी त्रुटियां देखने को मिली हैं, काफी तरह का मैनिपुलेशन देखने को मिला है। प्लस हमें पहले दिन से फोर्स किया जा रहा था कि आप बॉडी लोगे, आप बॉडी ले लो, अगर बॉडी नहीं लोगे तो आपकी एफआईआर नहीं लॉन्च होगी, आप बॉडी नहीं लोगे तो आपकी पीएम रिपोर्ट नहीं रिलीज की जाएगी। इस तरीके से हमें तंग किया गया, हमारी जबरदस्ती करके हमको बॉडी ले, हमने बॉडी एक्सेप्ट नहीं की हमने, और हमने फाइंडिंग्स को देख करके पता लग रहा है कि ये बिल्कुल पीएमक्यू का मामला है। हमने अप्लाई किया है तो कमिश्नर ने कल अलाउ कर दिया था, उसके बाद दोबारा इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एक बहुत इन्फ्लुएंसिव केस है। ये लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह जी के परिवार का मामला है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत सारे जजेस हैं इनके यहाँ बैठे हुए, बहुत सारे जो है यहाँ पर मेडिकल में इनके डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो ये हम एक ऐसी जगह ट्रैप हो गए कि जहाँ हमें न्याय की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरी बहुत बहुत गुजारिश है भारत सरकार से, सभी आप चैनल माध्यम से, कि ये इस केस को जो है तुरंत CGI अपनी निगरानी में ले, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, और इसकी स्वतंत्र जांच जो है सुप्रीम कोर्ट
4: के। आपको एमपी में न्याय का भरोसा नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ट्विशा के साथ क्या हुआ था, क्या कोई परेशानी में थी, क्या आपको कुछ उन्होंने बताया?
9: वो तो सर देखिए अभी पूरा 3 दिन से हम पूरा विवरण दे रहे हैं, हो रहा है सारी जगह पर कि ये ट्विशा बहुत ज्यादा परेशान थी, हमें भी कॉल करी थी, इनफैक्ट हम उसको लेके आने वाले थे, टिकट कैंसिल हो गई, सारे सर्कमस्टांसेस ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही जघन्य हत्या का मामला है, हमें इसमें पूर्ण न्याय चाहिए। आज आप देखिए कि हमारे लिए यहाँ पर वकील अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर एमपी के वकील, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, हम लोगों को दिल्ली से वकील ऑर्गेनाइज करने पड़े।
4: लेकिन अगर तुषा को कोई मारेगा तो क्यों मारेगा, मतलब क्या कोई अनबन उनके आपस में चल रही थी, कोई डिमांड हो रही थी, क्या हो रहा
9: है? अनबन क्या चल रही थी कि लड़की की जॉब छूट गई थी पहला चीज, की उसके बाद में ये ताने मिलने लगे उसको कि तेरे को बैठा के कौन खिलाएगा और तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू जो है गंवार है, तेरे को जो है करेंगे, और ये सब चीजें चल रही थी तो, और उसका जो है उसको फोर्स किया जा रहा था कि जो शेयर्स उसके पास पड़े हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाए उनके नाम पर, प्लस वो समय समय पर हम पैसा नहीं देते थे उसको, समय समय पर पैसा हमसे मांगती थी, टिकट के भी पैसे मैंने लास्ट उसको भेजे थे जो आ नहीं पाई, उससे पहले मार दिया गया। इनकी ब्लैक हिस्ट्री है, इनके पहले भी, इनकी जो पहले बेटी की बहू है वो हैरासमेंट का केस इनसे जीत करके जा चुकी है, दिव्या नाम था उसका लड़की का, जो इनके बड़े बेटे सिद्धार्थ के साथ जिनकी शादी हुई थी, वो भी सब जर्नलिस्ट मीडिया से, मुझे उम्मीद है कि इनकी बैक हिस्ट्री भी निकाली जाए ताकि लोगों को पता लगे कि ये पहली बार नहीं हो रहा है।
4: अब आप दूसरे पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं तो क्या उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं या कर चुके हैं?
9: आवेदन कर रहे हैं सर, देखिए ये अब ये पूरा जुडिशरी है, इन्होंने हमें फंसा रखा है जुडिशरी के चक्कर में, हम इसको आउट ऑफ द बॉक्स चाहते हैं कि जो है सरकार इसका संज्ञान ले और इसको इमिडिएटली हमारी बॉडी को डिकम्पोज होने से पहले, सबूतों को नष्ट होने से पहले, इसको जल्दी से जल्दी एम्स दिल्ली में इंडिपेंडेंट जांच के लिए भेजा जाए, नहीं तो इनकी कोशिश पूरी की पूरी ये है कि यहाँ से पूरे सबूत नष्ट कर दिए जाए, डिकम्पोज कर दिया जाए बॉडी को, हमें बहुत चिंता हो रही है।
4: हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। परिवार के आरोप और पिता की आपने बात सुनी, अब ट्विशा की माँ इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं।
10: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, ये फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी, मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए, तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के मेरे पास मेरे हस्बैंड को

0: हमें ये परमिशन मिले कि हम वहाँ पे ले जाके उनका रीपोस्टमार्टम कराएं और फिर हम उनका क्रिमेशन करें।
1: तो ट्रिशा शर्मा का परिवार न्याय की मांग कर रहा है और बड़ी खबर आपको दे दें, एक बार तो पोस्टमार्टम हो गया लेकिन उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है परिवार और सिस्टम पूरी तरह से उस परिवार के कंट्रोल में है, यह भी उनकी तरफ से आरोप है। और दूसरा दोबारा वो पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसको लेकर आवेदन भी करेंगे और इस बार जो पोस्टमार्टम है वो हम मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि हम बाहर चाहते हैं, दूसरे स्टेट में, दिल्ली में चाहते हैं कि पोस्टमार्टम वहां पर करवाया जाए। भोपाल जिला अदालत में आवेदन की परिवार तैयारी भी कर रहा है। हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रविश, परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, ये तमाम चीजें कर रहे हैं लेकिन जिस परिवार पर आरोप है वो कितना पावरफुल और कितना इन्फ्लुएंशियल है, जरा आप दर्शकों को बताएं।
2: देखिए, दरअसल जिनके ऊपर आरोप लगे हैं सास और बेटे, तो जो त्रिशा की जो सास है गिरिबाला सिंह, वो रिटायर्ड जज है यही भोपाल से और फिलहाल कंज्यूमर फोरम में है। और जहां तक बात त्रिशा के पति समर्थ की है तो वो भी भोपाल के एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं त्रिशा के परिवार की ओर से कि ये इन्फ्लुएंसिंग पीपल हैं और वाकई में अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें, पारिवारिक बैकग्राउंड, तो उसे देख करके ये आरोप बार बार परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सबूतों को। हालांकि पुलिस बार बार यही कह रही है कि जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक वो काम कर रही है, पुलिस अपना पक्ष रख रही है, त्रिशा का परिवार अपना पक्ष रख रहा है, वो बार बार इसी आरोप को लगा करके कि ये इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं, ताकतवर हैं और जो केस की जो जांच है उसकी दिशा मोड़ सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस जगह पर यानी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी इस केस की सुनवाई ना हो, दिल्ली में हो, केस की सुनवाई भी दिल्ली में हो, पोस्टमार्टम भी दिल्ली में हो और इस पूरे मामले की जो जांच यहां पे होगी उसकी हर जानकारी जो है वो दिल्ली में बड़े CBI को या तो दी जाए जांच, ऐसा कहना है परिवार का। तो ये आरोप जो है परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो त्रिशा की सास हैं वो रिटायर्ड जज हैं और त्रिशा के जो पति हैं वो खुद इस वक्त एक मशहूर क्रिमिनल वकील हैं भोपाल के, तो ये आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। परिवार को बार बार यही लग रहा है कि जब जुडिशरी ही उनके साथ नहीं होगी तो फिर उन्हें न्याय कहां से मिलेगा, ये भी एक डर त्रिशा के परिवार को सता रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आज तक के पास त्रिशा और उसकी मां के बीच हुई 7 मई की एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें जिक्र हो रहा है, त्रिशा अपनी मां को बता रही है कि कैसे वो घर में खुद को एडजस्ट नहीं कर रही है और ये भी कह रही है कि पति उससे ठीक से बात नहीं कर रहा है समर्थ। इसके साथ ही वो ये भी कह रही है त्रिशा कि बहुत निर्दयी लोग हैं, उसके चरित्र पे शंका की जाती है, ऐसी तमाम बातें त्रिशा की तरफ से फिलहाल उस वक्त 7 मई को अपनी मां के साथ की गई व्हाट्सएप में। और फिर इस पूरे मामले में 12 मई को वो दिन आ जाता है जब त्रिशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। तो त्रिशा की व्हाट्सएप चैट, त्रिशा की इंस्टाग्राम चैट, वो साफ तौर पर बता रही है कि त्रिशा इस शादी से खुश नहीं थी और वो किसी भी हालत पर यहां से वापस बाहर जाना चाहती थी। बहुत शुक्रिया
1: आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आरोपी परिवार प्रभावशाली परिवार है, ऐसे में परिवार कह रहे कि हमें MP में तो न्याय नहीं मिलेगा, दूसरी जगह ही न्याय मिल पाए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
6: हॉट केक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप, यू नो हाउ आवर बिग ब्रेकफास्ट गॉट इट्स नेम एंड यू नो वेयर योर होल फैमिली कैन शेयर वन फॉर जस्ट $6। मैकडॉनल्ड्स, लिमिटेड टाइम ओनली, प्राइस एंड पार्टिसिपेशन मे वेरी, कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर ऑफर और कॉम्बो मील।
5: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
8: How they looked after game one.
9: I mean, they were frustrated.
7: The Daily.
10: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
7: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But Are you ready to amp things up even more?

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: मेरी सबसे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इतना एक्सट्रीम स्टेप मत उठाइए। आपकी एंग्जाइटी को मैं समझ रहा हूँ। मैंने भी आईआईटी के एग्जाम दिए थे, मैंने यूपीएससी के एग्जाम दिए थे। कितना स्ट्रेस के अंदर हम एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देके आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में या डीएम करके मुझे मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। आई विल गेट इन टच विद यू और हम मिलके इसका समाधान निकालेंगे।
6: ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार पेपर लीक के कारण सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है और अब सीबीआई की जांच बिठाकर जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि 22 लाख लोगों ने ईमानदारी से अगर कोशिश करी है और परीक्षा में बैठे हैं तो सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और जो पेपर लीक का हादसा जो पकड़ा गया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। कुछ बच्चों ने जाके पुलिस में कंप्लेन करी, उसके बाद जाके इस पेपर को कैंसिल किया। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके नाक के नीचे लगातार ये तीसरी बार पेपर लीक हुआ है। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आगे आके जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

सरकार का आगाज, मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्रियों की पूरी कैबिनेट ने ली शपथ। समारोह में खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और टॉप लीडरशिप मौजूद।

शपथ के 8 दिन बाद उत्तर प्रदेश में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। भूपेंद्र चौधरी को उद्यम, मनोज पांडे को खाद्य विभाग। कैबिनेट की बैठक में मिशन 2027 की रणनीति पर हो रहा है मंथन। नीट पेपर लीक में लातूर के 100 करोड़ी कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच। मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल, असली पेपर में मैच। लगातार दूसरे दिन लपटों में घिरी भारतीय रेल। बिहार में सासाराम स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कल तिरुवनंतपुरम राजधानी के डिब्बों में लगी थी आग। इसराइल की तरफ कूच कर रहे हैं गोला बारूद से भरे जहाज। अमेरिका की नई धमकी, ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक।

0: पीडी सतीशन ने केरला मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 6 पार्टियों के 20 विधायक बने मंत्री, ली गोपनीयता की शपथ। कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद, विदेश में होने के वजह से शशि थरूर नहीं आए। पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल। कांग्रेस ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद भी अपने पास रखे। तिरुवंचूर राधाकृष्णन को विधानसभा स्पीकर, शनिमोल उस्मान बनाए गए डिप्टी स्पीकर। केरलम विधानसभा में विधायकों का शपथ ग्रहण के बाद 22 मई को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। नीट पेपर लीक में लातूर के 100 करोड़ी कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच। मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल पेपर से मैच। लातूर में नीट पेपर लीक मामले की जांच तेज। सीबीआई ने आरसीसी कोचिंग के डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर से लंबी पूछताछ की। नीट, सीबीएसई और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले सरकार छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सबसे बड़ा हमला। बोले हर उम्र के छात्रों को फेल कर रही है सरकार। नीट छात्रों के लिए अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश। बोले घबराहट में कोई गलत कदम ना उठाए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई यह अहम बैठक। यूपी कैबिनेट में ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का हुआ गठन। यूपी कैबिनेट में 12 बड़े फैसले। आगरा मेट्रो कॉरिडोर 2 को जमीन ट्रांसफर मंजूरी। पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 12,000 रुपए किया गया। साथ ही मिर्जापुर में नई यूनिवर्सिटी को हरी झंडी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अनोखी पहल। मंत्री साइकिल से पहुंचे सचिवालय। पेट्रोल डीजल बचाने का दिया संदेश। पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान से सियासी हलचल तेज। बोले सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। बिहार की राजनीति में बयानबाजी से घमासान। आरजेडी ने ललन सिंह के दावे पर कसा तंज। जेडीयू बीजेपी ने साधी चुप्पी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव। न्यायिक पैरवी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का जमकर विरोध। रेंगते हुए पहुंचे संदीप सिंह के आवास। अभ्यर्थियों की मांग, सरकार पैरवी कर मामले का निस्तारण कर भविष्य तय करे। कोलकाता में बीजेपी कार्यालय से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शुरू किया जनता दरबार और लोगों की शिकायतें सुनने की पहल शुरू की। आसनसोल में टीएमसी ट्रेड यूनियन नेता राजू आलूवालिया उगाही मामले में गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेशी। राजू आलूवालिया ने गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक साजिश। बोले न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशंस पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। हावड़ा स्टेशन समेत राज्य के सभी स्टेशनों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी। मंत्री दिलीप घोष ने पूर्व ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा बंगाल की स्थिति जम्मू कश्मीर से भी बदतर। रेलवे स्टेशन बाजारों में हुए तब्दील। दुर्गापुर में टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष शतदीप घटक गिरफ्तार। धोखाधड़ी और पोस्ट पोल हिंसा के आरोपों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान। झूठी एफआईआर का आरोप लगाकर सुरक्षा की मांग। आतिशी का आरोप। गोवा में आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ईडी की छापेमारी की गई। इसे बीजेपी के दबाव में की गई कार्रवाई बताया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया सरकार ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। अर्थव्यवस्था और रुपए की स्थिति को संभालने में नाकाम। भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की। सभी सुरक्षा सिस्टम का देशभर में ऑडिट शुरू। रिटायर्ड जज के परिवार से जुड़ी भोपाल की ट्विशा शर्मा केस में इंस्टाग्राम चैट लीक हुई। मौत से पहले सहेली को भेजा मैसेज, मैं फंस गई हूं यार। ट्विशा शर्मा की मौत पर मुख्यमंत्री हाउस के बाहर धरने पर बैठा परिवार। परिवार ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगाए। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग भी की। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा केस में बनाई 6 सदस्यीय एसआईटी। 2 महीने की गर्भवती थी ट्विशा शर्मा। परिवार का आरोप, शादी के बाद मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी। ट्विशा केस में सास गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। बहू को ड्रग्स सेवन और व्यवहार संबंधी आरोप लगाए। ग्रेटर नोएडा में विवाहिता की छत से कूदकर मौत। दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति और ससुर गिरफ्तार। दिल्ली के भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में आग। ड्राइवर ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई जान। आसनसोल में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ड्यूटी पर तैनात समाज सेवी को कुचला। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पास देर रात फायरिंग। गैंग वॉर में चली 2 राउंड गोलियां, 6 गिरफ्तार। ग्वालियर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। आधा दर्जन दमकल ने पाया काबू। जालौन में पुलिस मुठभेड़ में 13 मुकदमों में फरार। शातिर अपराधी घायल, पैर में लगी गोली। करनाल में महिला कर्मचारी की हत्या के आरोपी बदमाश ने पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती। अमरोहा में मुठभेड़ में 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। 2 के पैर में लगी गोली, अपहृत युवक बरामद। बस्तर में निजी यात्री बस हादसे का शिकार, महिला की मौत, 22 यात्री घायल। जांच में पुलिस जुटी। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और टाटा मैजिक की आमने सामने टक्कर में 9 यात्रियों की मौत, 1 घायल। बहराइच में भीषण सड़क दुर्घटना में 4 की मौत, साथ ही 2 लोग घायल। बहराइच में 7 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी अरुण का पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी गोली और उसके बाद गिरफ्तार। जलंधर में थाने से 600 मीटर दूरी पर सरेआम स्नैचिंग, बच्चे के साथ चिल्लाती रही महिला, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। प्रयागराज ऑफिस में बुलाकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जमीन विवाद में करीबी साझेदारों पर शक। फरुखाबाद मंडी समिति की कई दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान। झांसी में मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदली। बाजार में क्रिकेट बैट से ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर हुई मारपीट। बेतिया में फैक्ट्री ब्लास्ट में बिहार के युवक की मौत, गांव पहुंचा शव तो मचा कोहराम। बेतिया में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार का खुलासा, 6 नाबालिग लड़कियों का सफल रेस्क्यू। लखनऊ में ट्रेन के स्लीपर कोच से महिला का सिर कटा शव बरामद, जांच में जुटी जीआरपी। मेरठ में घर से लापता छात्रा का खेत में मिला शव, परिजनों को दुष्कर्म कर हत्या की जताई आशंका, पूर्व प्रेमी गिरफ्तार। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, बड़ा हादसा टला। आग के बाद डिब्बे को ट्रेन से अलग किया गया, कोई भी जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड और रेलवे की टीम मौके पर मौजूद थी। मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, अशोक मिल्स गोदाम जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की मौत। फतेहपुर में गैस सिलेंडर लीकेज से घर में लगी आग, 1 परिवार के 9 लोग झुलसे, 8 को ग्रीन कॉरिडोर से कानपुर रेफर। 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार विजेताओं को करेंगी सम्मानित। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, दुनिया के नंबर 1 पैरा हाई जंपर एथलीट हैं प्रवीण कुमार। पैरालंपिक में पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने जीता था गोल्ड, पूरी दुनिया में बढ़ाए देश का मान। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम भील को भी मिलेगा पद्मश्री। अलगोजा वादन के लिए मिलेगा सम्मान। केदारनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक महीने में कम समय में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। कान फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने बिखेरा बोल्डनेस का जादू, नियॉन मेटालिक ग्रीन गाउन में नजर आई। चोकर नेकलेस ने अदिति राव की खूबसूरती पर लगाया 4 चांद, सुनहरे जूते पहनकर बेहद ग्लैमरस अंदाज। पति विक्की कौशल के 38वें बर्थडे पर कैटरीना ने शेयर किया प्यार भरा पोस्ट, बेटे विहान की एक झलक ने जीता फैंस का दिल। 59वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं थमी धुरंधर 2 की आंधी, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1,797 करोड़ के करीब पहुंचा। धुरंधर 2 के रास्ते पर चली अक्षय की भूत बंगला, 30 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ 77 लाख के पार पहुंचा। बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी का शानदार प्रदर्शन, 16 दिन में कमाए 96 करोड़। सूर्या स्टारर फिल्म कुरुप्पू का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 2 दिन में फिल्म ने दुनिया भर में 60 करोड़ का किया कारोबार। वीकेंड पर पति पत्नी और वो 2 की बॉक्स ऑफिस पर चांदी, 2 दिन में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 13 करोड़ 70 लाख के पार। वीकेंड पर फिर चमकी माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 हार्ट, 9 दिन में फिल्म ने 12 करोड़ 10 लाख का किया बिजनेस। तलाक के बाद मौनी रॉय और सूरज ने फिर किया एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो, गुरुवार को अलग होने की घोषणा की थी। आईपीएल के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत, डीसी ने राजस्थान रॉयल्स आरआर को 5 विकेट से हराया। आरआर ने डीसी के सामने 194 रन का टारगेट रखा था, जिसे अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम ने 19.4 ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली की तरफ से केएल राहुल और पुरेल ने अर्धशतकीय पारी खेली, 31 गेंदों में 51 रन की तेज पारी खेली। गेंदबाजी में दिल्ली की तरफ से स्टार्क ने आरआर को बड़ा स्कोर बनाने से रोका, मिचेल स्टार्क ने राजस्थान के 4 विकेट झटके। डीसी की यह छठी जीत रही, इस जीत के साथ उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें भी फिलहाल कायम है। आईपीएल में अब प्लेऑफ की दौड़ पर नजर, आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को यह मुकाबला जीतना जरूरी है। इस सीजन में शुरुआती 3 मुकाबले हारने के बाद भी सीएसके ने प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं, 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ टीम अंक तालिका में 6ठे स्थान पर बनी हुई है। हैदराबाद 12 में से 7 जीत के साथ 3रे स्थान पर है, सीएसके को हराकर प्लेऑफ की उम्मीद मजबूत होगी। दोनों टीमों में चेन्नई का पलड़ा भारी रहा, 24 मैचों में सीएसके ने 16 जीते हैं जबकि हैदराबाद ने 8 मैच जीते हैं। जंग खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत ठप होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा समय निकलता जा रहा है, तेहरान को तुरंत कदम उठाने होंगे। अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को बताई अपनी 5 शर्तें, अमेरिका युद्ध के लिए ईरान को कोई मुआवजा नहीं देगा, ईरान को संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। अमेरिकी सेनेटर लिंसे ग्राहम ने कहा कि ईरान को और कमजोर करने की जरूरत, जिसके बाद हो सकता है कि वो समझौते के लिए राजी हो जाए। अमेरिका और ईरान को फिर से बातचीत की टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान ने अपने राजनयिक कोशिशों को तेज कर दिया है। अमेरिका में एक एयर शो के दौरान हवा में 2 लड़ाकू विमान आपस में टकरा गए, गन फाइटर स्काइज एयर शो के दौरान हुआ यह हादसा। मेक्सिको के प्यूबेला राज्य में हथियारबंद अपराधियों ने किया हमला, एक नगर पालिका के इलाके में चलाई अंधाधुंध गोलियां, कम से कम 10 लोगों की मौत। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जीतकर अपने देश लौटी बुल्गारिया पॉप स्टार दारा का राजधानी सोफिया में भव्य स्वागत, अपने चहेते स्टार को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। हंगरी के फिल्मकार लाज़ारो निमेस की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म मूलां का कान फिल्म फेस्टिवल में भव्य प्रीमियर, फिल्म के स्टार कास्ट ने रेड कार्पेट पर जमकर बिखेरा जलवा। 21वां सीरीए खिताब जीतने वाले इतालवी फुटबॉल क्लब इंटर मिलान की भव्य परेड, ओपन बस में सवार खिलाड़ियों को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़। दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी यानिक सिंगर ने जीता इटालियन ओपन का खिताब, नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेटों में 6-4 6-4 से दी मात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: दिल्ली में मेट्रो पर सरकार दिखाई दे रही है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के संयमित इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार एक्शन में है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कश्मीरी गेट से मेट्रो में सफर करते हुए आरटीओ मेट्रो स्टेशन पहुंची। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र राज भी मेट्रो में सफर करते नजर आए। रेखा गुप्ता की तरह दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और मंजिंदर सिरसा भी मेट्रो में सफर करते हुए दिखे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि मेट्रो से सफर करने वालों को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए।
3: आपने कहा कि 21 तोपों की सलामी उन लोगों को जो मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं।
4: यस, मैं उनको, देखो ये मुहावरा है ना कि हम उनको 21 तोपों की सलामी, मतलब हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं।
3: जो गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको भी सलामी
4: नहीं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो। हम 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला चुके हैं, बस चला चुके हैं, और आज तो हमने ऑटो में ऑटो पुल किया, इलेक्ट्रिक बैटरी वाला ऑटो था ना, बैटरी वाले ऑटो में हम और कुलजीत चहल आए हैं। तो हम ऑटो पुल भी कर सकते हैं, मेट्रो का यूज कर सकते हैं।
3: आप गाड़ी से भी ट्रैवल पहले करते रहे, अपने अपने क्षेत्र भी जाते रहे, लोगों से मिलते भी रहे। आज जब आप सीपी पहुंचे मेट्रो में और पहले जब आप गाड़ी से आते थे, इन दोनों में यात्राओं में कितना फर्क है और कितना आराम की अगर हम बात करें?
4: एक तो आपको बता दूं, मैं 7 दिन पहले ईवी ले लिया, इलेक्ट्रिक
3: व्हीकल ले चुके
4: हैं। मैंने वीडियो भी डाला था और आपने भी उसको देखा था कि खुशी जाहिर कर रहे थे, आज तक वाले भी। हम अब जब 7 दिन ईवी पे चल दिए ना, अब हमको दूसरी गाड़ी लगता है कि इसको अब क्या करेंगे, क्योंकि बेचना भी ठीक नहीं है किसी को, किसको बेचेंगे। तो अब हम उसको खड़ी ही रखेंगे और अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलेंगे।
3: इलेक्ट्रिक गाड़ी में कितना ट्रैवल में कितना फर्क है?
4: बहुत, जमीन आसमान का फर्क है। इतना आराम है, इतना चैन है और सांसों को बहुत आनंद है।
0: और अब खबर पंजाब से। पंजाब में लुटेरे मिशन पर है, दिन दहाड़े कभी भी कहीं लूटपाट हो सकती है। दो तस्वीरें बारी बारी से हम आपको दिखाएंगे। पहले जलंधर की तस्वीर देखिए। जलंधर के मकसूदा में वार्ड नंबर 84 में दिन दहाड़े धारदार हथियार के दम पर महिला को लूट लिया गया और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बाइक सवार दो लुटेरे आते हैं, महिला को दौड़ाकर लूट लेते हैं। महिला के साथ छोटा बच्चा भी था, भागने की कोशिश की लेकिन वो भाग न सके। और अब न्यू चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए। लुटेरों को यहां भी कोई डर नहीं है, एकदम दिन दहाड़े महिला की चेन लूटकर भाग लिए। महिला अपने 6 महीने के बच्चे को कॉलोनी में घुमा रही थी, तभी बाइक सवार लुटेरे आते हैं और लूटपाट करके भाग जाते हैं।

0: तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक जलंधर की जिसमें किस तरह महिला चिल्लाती हुई भागने की कोशिश भी कर रही थी अपने बच्चे के साथ। हमारे साथ कमलजीत संधु हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। कमलजीत, बेहद चौंका देने वाले ये जो तस्वीरें हैं, ये विजुअल्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, खुले आम बाइक सवार आके महिलाओं पर हमला कर रहे हैं।
1: बिल्कुल चौंकाने वाले विजुअल्स हैं और खासतौर पे सीसीटीवी में ये कैद भी हुए हैं और खासतौर पे आपको दिखेगा कि किस तरह से बाइक में जाते जाते उन्होंने टारगेट किया महिला को जो कि बच्चे समेत थी और चेन स्मैशिंग की कोशिश की। पर ये पहली घटना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवालिया निशान पहले से उठ चुके हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि खासतौर पे अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या गैंगस्टर्स की बात करें या इस तरह की जो लूटपाट की वारदात है वो अब इंक्रीज हो रही है, चाहे वो एनसीआरबी की डेटा की बात करें या बाकी सारी चीजें, तो खास तौर पे ये जलंधर की जो वारदात है वो सामने आई है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन एक चीज है कि क्रिमिनल्स को कैप्चर करने के लिए यही सीसीटीवी है, बाद में ये सबूत के तौर पे आते हैं, चाहे वो बाइक के नंबर को हो या फिर बाकी ट्रेसिंग हो, वो करने में जो केस क्रैक करने में इससे बहुत मदद जरूर हो जाती है। लेकिन अपने आप में खास तौर पे अपने घर के बाहर जाते हुए जो एरिया सुरक्षित माना जाता है शायद अब वो हाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब दर्शाता है कि किस तरह से लूटपाट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल कमलजीत, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत ही चौंकाने वाली ये तस्वीरें, खासतौर धारदार हथियार के साथ हमला। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: Sokudo,

0: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट फुटी,
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints। JK Maxx, JK Maxx Paints, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, भाई साहब सब पचा देते।
5: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
6: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
7: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
8: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
7: आप कैसे कर लेते हो?
9: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
10: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
11: नहीं
10: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
13: धनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

भोपाल की ट्रिशा डेथ मिस्ट्री में नया मोड़, माता पिता ने की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, ससुराल वालों पर लगाया जान लेने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में भी दहेज के लिए महिला की हत्या। लखनऊ की तपती गर्मी में सड़क पर रेंग कर टीचर परीक्षा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, कहा सिस्टम ने कीड़े मकौड़े जैसी हालात कर दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला केस में मंत्री से मिले। नीट पेपर लीक में लातूर के 100 करोड़ी कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच, मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल असली पेपर से मैच। केरला में सतीशन सरकार का आगाज, सीएम समेत 20 मंत्रियों की पूरी कैबिनेट ने ली शपथ। समारोह में खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और टॉप लीडरशिप पहुंचे। इसराइल की तरफ कूच कर रहे हैं गोला बारूद से भरे जहाज, अमेरिका की नई धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक।

0: जांच कर रहे हैं तो 5 दिन से जांच नहीं करी ना उन्होंने।
1: हमारी यही मांग है उसको गिरफ्तार करने की।

भोपाल में हुई तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। 6 दिन बाद भी परिवार तुषा का शव लेने को तैयार नहीं है। परिवार वाले इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। तुषा का परिवार दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहा है। आज तक को खबर मिली है कि आज इसे लेकर तुषा का परिवार आवेदन करने वाला है। परिवार वालों का आरोप है कि जिस बेल्ट से तुषा के फंदे लगाने की बात कही जा रही है उसकी जांच के बगैर ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। तुषा का परिवार तुषा के दूसरे पोस्टमार्टम के लिए भोपाल जिला अदालत में आवेदन लगाएगा। परिवार की मांग है कि तुषा का सेकंड पोस्टमार्टम मध्य प्रदेश के बाहर दिल्ली में किया जाए। 31 साल की तुषा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। दिसंबर में उनकी शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए भोपाल के क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह से हुई थी।

0: 7 महीने पहले हुई एक हाई प्रोफाइल शादी, खुशहाल जिंदगी के सपने, और चंद महीने में ही सब कुछ बिखर गया। त्रिशा शर्मा की मौत अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गया। सवाल कि त्रिशा की मौत कैसे हुई, क्या ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर उसने खुदकुशी की, या जैसे उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं उसके साथ कुछ अनहोनी हुई। त्रिशा का परिवार सदमे में, इंसाफ की मांग कर रहा है। अब तक त्रिशा के शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है।
1: लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा था। हम जब फाइंडिंग्स हम देख रहे हैं, वो जो मिसमैच हो रही है, बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं जो मिसमैच हो रही है और क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ रही है।
0: परिवार का कहना है कि त्रिशा की हत्या की गई है और रसूखदार न्यायिक परिवार होने के कारण सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है।
1: हमें तरह तरह से परेशान किया गया कि आप अगर ये बॉडी नहीं लेंगे तो आपको पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हमने कहा हम अगर पीएम रिपोर्ट चाहिए हमें, पहले हम देखेंगे, तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी हम दूसरी बॉडी ले पाएंगे। बोले नहीं नहीं ये हमारा कानून नहीं कहता कि पहले आप जो है पीएम रिपोर्ट लीजिए, वो बॉडी लीजिए, उसी के बाद पीएम रिपोर्ट लीजिए। हमने बॉडी नहीं ली, हमने कहा मत दीजिए हमें पीएम रिपोर्ट। हमें जब हमने पीएम रिपोर्ट मिली, उसकी जांच पड़ताल की, तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग है उसके अंदर।
0: त्रिशा शर्मा मौत मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। न्यायिक परिवार से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले में अब मृतका त्रिशा का आखिरी ट्वीट सामने आया है, जो उनके दर्द और बेबसी को बयां कर रहा है।
2: हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में। फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
0: परिवार त्रिशा के लिए इंसाफ मांग रहा है। एक दिन पहले भोपाल में सीएम आवास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। उधर ससुराल वाले सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आने का दावा कर रहे हैं। रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हमारे सहयोगी रविश पाल सिंह भोपाल से। रविश, दोनों ही तरफ से बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जहां एक तरफ अब परिवार कहता है कि ये हत्या का मामला भी हो सकता है और वो जांच चाहते हैं, वहीं जो सास है उन्होंने अपनी जमानत याचिका में भी कुछ दावे कर डाले हैं।
4: बिल्कुल, इस बीच में आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आज तक पे ये एक्सक्लूसिव खबर है कि अब इस मामले में एक तरीके से सियासत की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है त्रिशा के परिवार को। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपाल जिला अदालत पहुंचे त्रिशा के परिवार से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के यहां पे ये त्रिशा के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। त्रिशा के चाचा हैं यहां पे मौजूद हैं, त्रिशा के कजिन भाई हैं यहां पे, उनसे भी इन्होंने बात की है। त्रिशा की माता जी भी यहां पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे आज आई हैं उस बेल हियरिंग को देखने के लिए, जो क्योंकि बेल हियरिंग लगाई है समर्थ की तरफ से। लेकिन त्रिशा की माता जी, आप देखिए इनकी तबीयत कल से खराब है, इनको डिप्स लग रही हैं, और अब समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं इनसे मिल करके यहाँ पे उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ पे विशेष निर्देश दिए हैं इनको कि ये यहाँ पे पहुंचे और त्रिशा के परिवार से बात करें और उनको हर संभव सहायता मुहैया कराएं। नोएडा की रहने वाली है त्रिशा, उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश की सियासत जाहिर सी बात है अगले साल वहां विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले यह मामला बड़ा हो गया है। और एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर, समाजवादी पार्टी पहुंच गई है भोपाल अदालत में, त्रिशा के परिवार से मुलाकात करी है। क्या आदेश है अखिलेश यादव के?
5: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रात को भी उनका फोन आया था, अभी भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि परिवार की हर संभव मदद की जाए, क्योंकि न्यायालय में जो जांच चल रही है यहाँ इनको प्रभावित की जाएगी, क्योंकि जो लड़का है उनकी माताजी खुद पदाधिकारी हैं, खुद वो वकील है यहाँ पे, और पीएम जो हुआ है उसमें भी जो परिजनों का आरोप है कि उसमें हेराफेरी की गई है, बेल्ट को भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ से पीएम भी ये दिल्ली द्वारा मांग कराने की बात कर रहे हैं परिजन इनके, साथ में केस भी वहीं ट्रांसफर किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ दबाव में कोई लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3-3 जज एक दिन में चेंज हो जाते हैं, अग्रिम जमानत मिल जाती है इतने गंभीर अपराध में, ये सवालों के घेरे खड़े होते हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह तरह से इनके साथ में है और बेटे का इनका जो वकील है उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए और साथ में जो उनकी माँ भी पदस्थ हैं उनको भी पद से हटाया जाना चाहिए।
4: जी भी हमारे साथ मौजूद है, बेहद बीमार स्थिति में ये दो दिन से हैं। हॉस्पिटल से जी, आप अभी हॉस्पिटल से सीधे आ रहे हैं?
6: हाँ जी, फ्राइडे को भी जब हम लोग कोर्ट में आए थे उस दिन भी हमारे ऊपर लोहा कुछ ना कुछ बोल रहे थे। मेरे बेटे का फोन उठा के फेंक दिया, मेरी बहू के पापा से आके झगड़ा करने लगे कि अभी जूते उठा तो जर क्या क्या बोलने लगे। मेरे 30 लोग हैं अभी, मेरे बेटे के हाथ से फोन लेके नीचे फेंक दिए, बोले अभी 30-35 लोग मेरे हैं, अभी पिटवाता हूँ तेरे को।
4: आपकी बेटी के ऊपर आरोप लगाए कि ड्रग्स लेती थी वो, ये
6: वो खुद ड्रग्स लेता था सब, तो सारी मेरी बेटी है नहीं तो वो तो सब कुछ सारे इल्जाम लगाएगा मेरी बेटी पे गंदे गंदे,
5: केस को भटकाने वो केस
6: बस।
4: आपके
6: वो होती तो अपना सबूत देती, वो मेरी बेटी अब है नहीं तो कुछ भी बोल दो।
5: मेरा मुख्यमंत्री जी से भी, मोहन यादव जी से अनुरोध है कि इसमें राजनीति बिल्कुल ना की जाए और मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है क्योंकि ये लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, यहाँ भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो तुरंत इस पे एक्शन लिया जाए और जो परिवार की मांग है उनको पूरा करना चाहिए। हम लोग सिर्फ पीड़ित परिवार का न्याय चाहते हैं, कोई राजनीति नहीं चाहते, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी हर संभव इनकी मदद करेगी, साथ में रहेगी।
3: जी रवीश, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम लौट कर आएंगे। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि जिस फंदे से त्विशा की खुशी की बात कही जा रही है उस फंदे की जांच अब तक नहीं की गई है और ये बात बार बार उठाई जा रही है परिवार की तरफ से भी, और इसीलिए वो चाहते हैं कि एक और पोस्टमार्टम किया जाए, दोबारा पोस्टमार्टम हो और ये पोस्टमार्टम दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश में ना हो। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवीश का। रवीश, क्यों भरोसा नहीं है परिवार को पहले पोस्टमार्टम पर और इस फंदे को लेकर क्या मिस्ट्री है?
4: जी बिल्कुल, क्योंकि परिवार यहां मौजूद है, लगातार आज तक के साथ वो बना हुआ है। सेकंड पोस्टमार्टम की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं और अब ये जो नई बात सामने आई है जिसमें बताया गया कि जिससे फांसी लगाई थी वो तो पोस्टमार्टम के समय दिया ही नहीं गया, तो वो जो गले में नाप देखना चाहिए था, जो मेजरमेंट होना चाहिए था निशान का, वो सब हो ही नहीं पाया पहले पोस्टमार्टम में। क्या यही वजह है कि आप लोग चाह रहे हैं कि ऐसी कई सारी खामियां थी इसलिए आप सेकंड पोस्टमार्टम चाहते हैं, वो भी एमपी से बाहर?
7: बिल्कुल सर, ये जो है बहुत एक सुनियोजित और जिसको जो कुछ लोगों ने बोला अभी कि लापरवाही पुलिस ने अपनी एक्सेप्ट करी है, ये लापरवाही नहीं लीपापोती है, ये सुनियोजित पूरी कार्रवाई है। इसमें यहाँ बहुत रसूखदार डॉक्टर इनके परिवार से हैं, कोई ऐसा मध्य प्रदेश में डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर उनके लोग नहीं हैं। यहाँ वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म पूरी तरीके से एक जबरदस्त एक डिफेंस बना के बैठा हुआ है, एक चक्रव्यूह ला के रख दिया है। बच्ची जो क्रिमेशन का इंतजार कर रही है, हम जो कभी एक दफ्तर कभी दूसरे दफ्तर कभी सेशंस कोर्ट कभी जो है जबलपुर में जाकर उसके पोस्टमार्टम के लिए जाएं, कभी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जो है यहां से बाहर लेने के लिए जाएं, इस तरीके से चक्रव्यूह में हमको फंसा दिया गया है।
4: सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए?
7: सर, हम तो लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं, कम से कम पिछले 6 दिनों से मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इसकी सूचना नहीं पहुंची हो, आप लोगों के माध्यम से हर जगह पहुंच रही होगी। हमारे इसकी जो जांच है सुप्रीम कोर्ट के तहत या सीबीआई के द्वारा, इसकी डिमांड तो सर हम कई दिनों से लगातार करते चले जा रहे हैं मगर हमें कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर, होम मिनिस्ट्री,
3: मध्य प्रदेश के हर ऑफिसर के पास हम जा चुके हैं। सर एक बार उस खबर पर नजर डाल लेते हैं और लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर, त्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में जमानत आवेदन कर दिया है और उसमें उन्होंने काफी दावे किए हैं। उन्होंने लिखा है कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, सास ने बहू त्विशा पर लगाए हैं ड्रग्स लेने के आरोप और कहा सास गिरिबाला ने कि ड्रग्स नहीं लेने पर त्विशा के हाथ कांपते थे, कहा परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी त्विशा। तो चलिए एक बार फिर से रवीश का रुख करते हैं। रवीश, आरोप लगाए हैं और ये सब आरोप अपनी जमानत की जो उन्होंने याचिका आवेदन किया है उसमें लगाए हैं, परिवार क्या कह रहा है इस तरह के आरोप सुनकर उन्हें कैसा लग रहा है?
4: परिवार बेहद ज्यादा आक्रोशित तो था लेकिन अब बहुत ज्यादा इस बात से आहत है कि जो बिटिया जा चुकी है उनकी, उसके चरित्र पे इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ आशीष है, लगातार जुड़े हुए हैं, कजिन भाई हैं त्विशा के, आपकी कजिन बहन थी और अब जब वो जा चुकी है इस दुनिया से, तो जो बेल ऑर्डर है उसमें ये बताया जा रहा है कि वो ड्रग्स लेती थी और नहीं लेती थी ड्रग्स तो हाथ कांपने लगते थे।
7: देखिए
4: इस तरीके के आरोप अगर एक मृतिका के चरित्र पे लग रहे हैं, आप उनके भाई भी हैं, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया?
7: अच्छा मैं सर आपको एक और आरोप बता देता हूँ जो ये उसके जीवित रहते हुए लगा या नहीं लगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसके जीवित रहते हुए ये बच्चा किसका है ये उससे प्रश्न करे जाते थे। एक लड़की जो जीवन में पहली बार माँ बनी है जब उससे इस तरीके के प्रश्न होंगे तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी आप खुद सोचिए कि कोई हमारी बहन को पूछे कि ये बच्चा किसका लेके तू घूम रही है तो फिर जो है या उससे ये पूछा जाए कि क्या तुम आगे भी ये सब करती रहोगी, ये कितना वज्र की तरह उस पर लगा होगा। इसको कन्फ्रंट किया गया था कि आपने ऐसा कैसे पूछा तो उन्होंने ये भी कहा कि हम आगे भी ऐसे पूछेंगे, ये तो चैट में लिखा हुआ है सर। आती है बात ड्रग की, बकायदा उसने बताया था कि पापा ये ड्रग लेता है ये नशे करता है। तुषा ने अपने फादर को ये सब कुछ कहा है सर
3: जी।
7: उसके जाने के बाद उसके लिए सब चीज कही जा रही है जो बच्ची खुद जो है अपने पापा की नॉलेज में इस चीज को ला रही थी। और मैं
4: आरोप समर्थ के ऊपर थे और आरोप तुषा पे डाल दिया।
7: करेक्ट, आरोप नहीं सर, उसने जो है बकायदा क्योंकि वो तो उसके साथ रही थी ना तो उसने अपने पापा को आगाह किया था इस चीज को लेकर। और अब मैं एक और आपको बात बताता हूँ, जब हम यहाँ अपने लिए लॉयर ढूंढ रहे हैं पिछले 5-6 दिन से किसी भी चीज के लिए जरूरत होती है तो सर मुझे कई लोगों ने इसको बोला कि भाई साहब ये आप किसके साथ पड़ गए, ये तो नशेड़ी आदमी था, यहाँ तो कौन नहीं जानता इस बात को।
4: आप तो सुना कि ये आरोप जो तुषा के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसका खंडन करते हुए परिवार के लोग जो समर्थ तुषा के पति हैं उनके ऊपर भी ड्रग्स के आरोप गंभीर आरोप लगाने और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि तुषा ने ये बातें अपने पिता को बताई थी काफी बार लेकिन अब तुषा यहाँ है नहीं वो तमाम बातें करने के लिए, तो परिवार के लोग अब इस पर भी जांच की मांग कर रहे हैं।
3: जी शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में हुई दीपिका की मौत की। दीपिका ने छत से कूद कर कह रहे कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। सवाल ये भी है क्या उसकी हत्या की गई है, पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। परिवार वालों का आरोप है कि दहेज के लिए दीपिका को प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी वजह से ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। दीपिका की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। पुलिस ने इस केस में आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।

0: सर आप लोग शादी हुई कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी,
1: डेढ़ साल
0: पहले ही शादी हुई थी, क्या मामला हुआ और क्या जो लड़की थी वो आपको बताती थी कि किस

0: अपनी हैसियत के हिसाब से मतलब बहुत बेस्ट करी थी। उस टाइम भी हमने अपनी हैसियत से भी ज्यादा चीजें करी थी, ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि मतलब उनकी तो वो भरी नहीं रही थी। इतनी प्यारी बच्ची थी, इतनी सुंदर बच्ची थी कि मतलब कोई ऐसे भी ले जाता, मतलब इतनी सुंदर बेटी थी हमारी। लेकिन मेरे भाई कल मतलब वहां गए थे इस विषय में समझाने के लिए, बिल्कुल बातचीत हुई, अच्छे से सब कुछ हुआ, लेकिन मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया। जैसे वो वहां से विदा होकर घर पे आए, आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि बेटी मतलब गिर गई है। तो भाई ने मतलब पूछा कि कहां से गिर गई है, कैसे गिर गई, तो कोई जवाब नहीं दिया उस टाइम पे कि मतलब शारदा हॉस्पिटल आप आ जाइए। तो जैसे अब गिरने का क्या होता है, छोटी मोटी चोट होगी, हमें भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां जाके देखा तो हमारी बेटी मृत पड़ी हुई है। मतलब उसकी पूरी बॉडी पे निशान है मार पीट के, हर चीज के, और उसको इनफेक्ट उसके पेट में मतलब या तो कोई बुलेट का मतलब घाव है, वो इतना मोटा घाव है, और या मतलब कोई स्क्रू वगैरह, कोई सरिया वगैरह मतलब उससे मारा गया है उसको।
1: और इस मामले में पुलिस क्या कह रही है, आइए सुनते हैं।
2: मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।
1: और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अंशुल सिंह ग्रेटर नोएडा से। अंशुल, ये बताइए कि ये जो मौत की पूरी परिस्थिति है जिसमें परिवार मिलने गया और उसके आधे घंटे बाद ही मौत हो गई, इसको लेकर काफी संदेह उठता है, तो पुलिस क्या कह रही है, क्या इसको मौत की तरह, खुदकुशी की तरह इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या दूसरे एंगल भी इसमें खंगाले जाएंगे?
3: जी बिल्कुल, जो दूसरा एंगल है उसे खंगाला जाएगा, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। इस वक्त मैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही खड़ा हूं और अगर मैं आपको यहां तस्वीरों में आसपास दिखाऊं तो जो पीड़िता है उसके पूरे गांव के लोग, सारे परिजन यहां पे मौजूद हैं, सुबह 6 बजे से ही यहां मौजूद हैं। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है ये पूरी नहीं हो पाई है। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने अभी तक जो एक्शन लिया है ये एक्शन कहीं भी उन्हें इंसाफ नहीं दिलाता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 2 ही लोगों को अरेस्ट किया गया है जबकि FIR में 7 लोग नामजद हैं, तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी ये एक बड़ा सवाल है जो परिवार पूछ रहा है। मैं परिवार के कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगा। आप भाई हैं उनके, क्या क्या मामला हुआ था पूरा अगर आप बताएं, और अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है क्या उससे संतुष्ट हैं आप?
4: अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, अभी तो बहुत कार्रवाई रह रही है, लेकिन जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है हमारी बहन के साथ।
3: ये क्या जैसा पुलिस ने एक बयान भी दिया कि छत से गिरने की वजह से मौत हुई, तो क्या आपको लगता है छत से गिरने की वजह से मौत हुई है या इसके अलावा भी कोई प्रताड़ना कर रहे थे?
4: नहीं, पहले उसके साथ हाथापाई की गई है, उसे पीटा गया है और उसके पेट में कोई छुरी या किसी धातु से मतलब वार किया गया है और उसके बाद उसे छत पे ले जाके उसे ऊपर से गिर दिया है नीचे सड़क पर।
3: आखिरी बार आपकी बात कब हो पाई थी दीपिका?
4: 2 दिन पहले बात हुई थी मेरी।
3: क्या बताया?
4: ऐसा कुछ नहीं होता, घर के बारे में कोई बात नहीं बताई थी उसने।
1: जी अंशुल,
4: ये चीज बताई।
1: जी अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture, hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the

0: hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रोफाइबर है.
1: माइक्रोफाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
4: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
4: जहां खबर वहां खबरदार.
8: इन एसोसिएशन विद
9: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: नीट पेपर लीक में रडार पर लातूर मॉड्यूल, लातूर के कोचिंग पर जांच का शिकंजा, 100 करोड़ के कोचिंग संस्थान से पेपर लीक, परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट, एक प्रोफेसर जिन पर नीट परीक्षा के पेपर सेट करने की गंभीर जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने छात्रों के भविष्य का सौदा कर दिया। सीबीआई ने पीबी कुलकर्णी को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने गोपनीयता बरतने के अपने फर्ज से कन्नी काट ली। आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले सवाल लीक कर दिए और अब लातूर से ही एक और कोचिंग संस्थान जांच के दायरे में है। ये लातूर का रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस है जिसके मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर अब सीबीआई जांच की सुई जाकर टिक गई है। मोटेगांवकर को पुणे बुलाकर सीबीआई ने रविवार को लंबी पूछताछ की है। सीबीआई की टीम ने लातूर जाकर मोटेगांवकर के दफ्तर की तलाशी भी ली है, कंप्यूटर, लैपटॉप और आईपैड जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और गैजेट्स की छानबीन की है। शुक्रवार को भी सीबीआई ने मोटेगांवकर से करीब 11 घंटे की पूछताछ की थी। इस केस की पूरी डिटेल आपको बताएं, उससे पहले शिवराज मोटेगांवकर को थोड़ा और बेहतर तरीके से जान लीजिए। मोटेगांवकर ने 1999 में लातूर में 10 छात्रों के साथ रेणुकाई केमिस्ट्री सेंटर की शुरुआत की थी। मोटेगांवकर के कोचिंग संस्थान की इस वक्त महाराष्ट्र के 7 जिलों में शाखाएं हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक मोटेगांवकर की कोचिंग संस्थाओं में 20,000 से ज्यादा छात्र हैं। तो अब नीट परीक्षा से भरोसा उठाने वाले इस लीक का एक बड़ा एपिसेंटर लातूर दिख रहा है। इसी लातूर के पीवी कुलकर्णी ने भी सवाल लीक किए और छात्रों के मॉक टेस्ट कराए और अब इसी लातूर का मोटेगांवकर भी मॉक टेस्ट के ट्विस्ट में फंसते दिख रहे हैं। मोटेगांवकर और कुलकर्णी एक दूसरे के पुराने परिचित हैं। दोनों में बीच में अनबन भी हो गई थी लेकिन कुछ दिन पहले सुलह भी हो गई। तो अब सीबीआई कुलकर्णी और मोटेगांवकर की इस जोड़ी की पेपर लीक में भूमिका का हर मुमकिन नजरिए से जांच कर रही है। दिव्येश सिंह, लातूर आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

डेथ मिस्ट्री पर नया मोड़, माँ बाप ने की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, ससुराल वालों पर लगाया जान लेने का आरोप, ग्रेटर नोएडा में भी दहेज के लिए महिला की हत्या। लखनऊ की तपती गर्मी में सड़क पर रैंक कर टीचर परीक्षा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, कास्ट सिस्टम ने कीड़ा मकोड़े जैसी हालत कर दी, 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में केस में मिले मंत्री से अभ्यर्थी। नीट पेपर लीक में लातूर से 100 करोड़ के कोचिंग सेंटर पर सीबीआई का शिकंजा, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के साथ प्रमोटर के रिश्तों की जांच में मॉक टेस्ट में पूछे गए सभी सवाल असली पेपर से मैच हुए। केरलम की सतीशन सरकार का आगाज, सीएम समेत 20 मंत्रियों ने ली शपथ, कैबिनेट समारोह में खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और टॉप लीडरशिप भी हुए शामिल। इसराइल की तरफ कूच कर रहे गोला बारूद से भरे जहाज अमेरिका की नई धमकी, ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले के अलावा कोई नया विकल्प नहीं, यूएई ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक की बात कही।

0: नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। न्यूज रूम लाइव, जहां पर आप न्यूज रूम से आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आपको बताते हैं। तीन बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहली खबर होगी, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीएमसी के नेता के घर पर क्यों आखिरकार लोगों ने हमला बोल दिया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लखनऊ में अभ्यर्थियों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री क्यों मेट्रो में सफर कर रहे हैं, ये खबर भी हम आपको तस्वीरों के साथ दिखाएंगे। इसके बाद दूसरे भाग के अंदर यानी ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे पेपर लीक मामले में नए खुलासे हुए, नए मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर पर जो लगातार दिल्ली से आ रही है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक और नेता की गिरफ्तारी हुई है। दीपक सिंगला नाम के इस नेता की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने करीबन 150 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले पे इसकी गिरफ्तारी की है और दीपक सिंगला की गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई। इससे पहले भी ईडी ने कई छापेमारी की गई थी, इसके बाद दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है। और देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुनीश भी जुड़ गए। मुनीश, देखिए, इससे पहले भी लगातार कई छापेमारी की गई थी सिंगला के अलावा कई और जगहों पर, उनके घर के, उनके करीबियों के घर पे छापेमारी की गई थी। क्या दीपक सिंगला के अलावा कोई और गिरफ्तारी भी हुई है?
1: जिस समय मैं बता दूं कि एक कंपनी है महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद ईडी ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। दीपक सिंगला और उनके सहयोगियों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 155 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया, जिसमें दूसरी बार आज सीबीआई गोवा और दिल्ली सात ठिकानों पर वहां पर छापेमारी करी थी और छापेमारी के दौरान ही ईडी ने दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुमित, इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी सूत्रों का यह भी कहना है कि दीपक सिंगला तार हारी में जो संजीव अरोरा आम आदमी पार्टी के पंजाब में मिनिस्टर थे, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, इनके तार दीपक सिंगला से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ईडी जो है उस मामले की जांच कर रही है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अगर देखा जाए सुमित, तो लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी चल रही है। इसके पहले हमने देखा था किस तरीके से अमन अरोरा के ऊपर छापेमारी की गई थी, उसके बाद फिर से छापेमारी हुई संजीव अरोरा पर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, वो मंत्री थे पंजाब सरकार में, और अब दीपक सिंगला की गिरफ्तारी। दीपक सिंगला एक महत्वपूर्ण नेता है आम आदमी पार्टी के। 2017 के जब गोवा इलेक्शंस हुए थे तो उसकी जिम्मेदारी दीपक सिंगला के ऊपर थी। दीपक सिंगला खुद चुनाव लड़ चुके हैं और जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं उनसे लगातार टच में रहने वाले हैं। दीपक सिंगला की गिरफ्तारी के बाद ईडी का यह कहना है कि जो इनके सहयोगी हैं इनके ऊपर भी अब तार कसे जाएंगे और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी हो जाए। आम आदमी पार्टी जो है लगातार आरोप लगा रही है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कहने पर इस तरह की छापेमारी कर रही है, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं।
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए, अब दिल्ली के बाद यानी आम आदमी पार्टी की इस खबर के बाद अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार की दूसरी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हम आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण फैसलों में जिनमें कैबिनेट की दूसरी बैठक में फैसले लिए गए हैं, उसमें सबसे अहम फैसले है राज्य में मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत धर्म आधारित सहायता योजना को बंद किया जाएगा। साथ ही सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल सरकार अब महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। ये फैसला 1 जून से लागू होगा। 1 जून से ही महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा भी कर सकेंगी। और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अनुपम मिश्रा जुड़ गए हैं कोलकाता से। उनका रुख करते हैं दूसरी बैठक खासतौर पर अनुपम, और बड़े फैसले किए गए और खासतौर पर फोकस किया जा रहा है कि केंद्र की जो भी योजनाएं थी उनको पश्चिम बंगाल में तुरंत लागू किया जा सके।
2: जी देखिए, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। आज दूसरी बैठक कैबिनेट बैठक थी राज्य सरकार की, नई बीजेपी सरकार की, जिसमें 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा जो फैसला है वो अन्नपूर्णा भंडार, जो पहले लक्ष्मी भंडार मिलता था ममता सरकार के अंतर्गत, जहां 1,500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को मिलते थे। जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उसमें बीजेपी ने ऐलान किया था कि अन्नपूर्णा भंडार के तहत 3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, तो वो पहले ही कह दिया गया था कि 1 जून से उसको लागू किया जाएगा। आज उस पर अनुमति अनुमति दे दी गई कैबिनेट की ओर से कि 1 जून से जितनी भी महिलाएं हैं जो लक्ष्मी भंडार में जिनको लक्ष्मी भंडार मिलता था उनको ऑटोमेटिकली 3,000 रुपए प्रतिमाह अन्नपूर्णा भंडार का मिलेगा। इसके अलावा CAA के तहत जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनको भी, जो महिलाएं हैं उनको भी ये इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो 91 लाख लोग जो SIR में जिनका नाम कटा है, खासतौर पर इनमें से जिन्होंने ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया हुआ है उनका भी एक सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद उनको भी इस योजना का लाभ, जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। ये तो रहा सबसे बड़ा फैसला। दूसरा फैसला हुआ है कि 1 जून से जो महिलाएं हैं राज्य में जो सरकारी बसें हैं उनमें वो फ्री, मतलब एकदम बिना मुफ्त में यातायात कर सकेंगी। और तीसरा फैसला जो लिया गया है, कुछ जो स्कीम्स थी जो धर्म के आधार पर थी पश्चिम बंगाल सरकार में चल रही थी, मदरसा डिपार्टमेंट के अंतर्गत और सूचना और कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उन स्कीम्स को बंद किया जा रहा है। इस महीने तक वो जारी रहेंगी लेकिन इसके बाद से वो बंद किया जाएगा। लेकिन इस बारे में
0: अनुपम आपसे तमाम सरकार के नए फैसलों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे लगातार। अनुपम मिश्रा में बता रहे थे कि सरकार का फोकस है केंद्र सरकार के सभी फैसलों को तुरंत लागू करना। अब पश्चिम बंगाल की एक और बड़ी खबर पर हम रुख करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में प्रधान यानी पंचायत के प्रधान के घर पर, TMC के प्रधान के घर पर बड़ा हमला किया गया। आपको बता दें कि भीड़ उसके घर पर घुस आई और बताया जा रहा है कि आवास योजना और जॉब कार्ड घोटाले के आरोप के बाद यह हमला किया गया। नाराज ग्रामीणों ने TMC नेता तरुण दुनई के घर पर जमकर तोड़फोड़ भी की है। हम आपको बता दें कि पंचायत प्रधान ने आवास योजना की राशि और जॉब कार्ड से जुड़ी मजदूरी में गड़बड़ी का आरोप उनके ऊपर था और उसी के बाद भीड़ ने उन पर ये उनके घर पर अटैक कर दिया। और हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने बताया कि जॉब कार्ड को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद लोगों ने पंचायत प्रधान के घर पर हमला किया। पुलिस ने कहा है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम आपको बता रहे हैं एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है जहां पर हावड़ा पुलिस ने कहा है कि देखिए उन्होंने उन सभी लोगों ने जिन्होंने प्रधान के घर पर हमला किया था उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और चलिए अब आपको अगली खबर का रुख करते हैं। आपको सीधे दिल्ली की खबर से जुड़े हुए बताते हैं कि पेपर लीक मामले में NSOI ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी NSOI कई जगहों पर प्रदर्शन कर चुकी थी लेकिन अब NSOI ने एक और प्रदर्शन किया है। दिल्ली में NSOI ने नीट पेपर लीक मामले पर एक बड़ा प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर की बताएंगे कैसे लगातार कांग्रेस इस मामले पर सरकार को घेरती नजर आ रही है और NSOI ने नीट पेपर मामले को लेकर दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार पेपर लीक के लेकर NTA के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। NSOI के कार्यकर्ता लगातार दिल्ली पर सड़कों पर जमे हुए थे और लगातार NTA के खिलाफ और पेपर लीक मामले पर
3: नीट UG पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSOI का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो NSOI के कार्यकर्ता हैं यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। NSOI के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं बैन NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले देखा गया कि एक नकली शव लेकर यहां पर जो NSOI के कार्यकर्ता थे यहां पर पहुंच रहे थे और तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि कैसे यहां पर जो NSOI के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और इससे पहले भी देखा गया कि NTA मुख्यालय का भी NSOI के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। एक तरफ तो CBI की इस मामले को लेकर जांच चल रही है जहां कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, खास तौर पर जो टीचर जो पेपर सेट कर रहे थे वो खुद इस समय CBI के शिकंजे में है। पर वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जो राजनीति है वो भी पूरी गर्मा गई है जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से लेकर और भी जो अन्य बड़े नेता हैं वो इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही शिक्षा मंत्रालय पर जो है बड़े आरोप लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तस्वीरों में।
0: और देखिए लगातार NSOI की तरफ से दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। वहीं महाराष्ट्र के अंदर एक और गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई है। महाराष्ट्र के लातूर से कोचिंग सेंटर के मालिक को 10 घंटे तक पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के लातूर में आरोपी कोचिंग मालिक शिवराज मोटेगावकर के CBI ने 8 से 10 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने बीती रात ये सवाल जवाब किए थे और पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि ये पूछताछ की गई है, 8 से 10 घंटे तक ये पूछताछ की गई। इससे पहले भी कोचिंग सेंटर के मालिक से पूछताछ इसी तरीके से की गई थी। देखिए आपको बताता है कि कोची मालिक की गिरफ्तारी पर सीबीआई ने को क्या क्या बताया गया। सबसे पहले अगर आपको हम ये बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीट पेपर गैंग को एक्टिव मेंबर बताए जाते हैं, खास तौर पे कि कैसे लगातार ये काम करते थे, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, ये सारी जानकारी दी गई। इसके अलावा 23 अप्रैल को ही हासिल किए गए थे नीट के प्रश्न और उत्तर, यानी जो सीक्वेंस था क्वेश्चंस का वो हासिल कर लिया गया था 23 अप्रैल को ही। और ये बड़े मुख्य जानकारियां सीबीआई के हाथ लगी है। लगातार कोचिंग सेंटर के मालिक से भी पूछताछ में चीजें निकली है। 14 मई को मोबाइल से मिले थे लीक नीट पेपर, यानी जो रिकवरी हुई है सबूतों की वो उसके मोबाइल फोन से भी की गई। 14 मई को मोबाइल से मिले थे नीट के पेपर। और इसके अलावा आरोपी शिवराज का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। दरअसल लगातार जो सारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एविडेंसेस है उसको लगातार सीबीआई अपने कब्जे में ले रही है। आरोपी शिवराज का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकाला जा रहा है कि आखिरकार इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। एनटीए अधिकारियों के साथ साजिश में शामिल होने के तार को भी जोड़ा जा रहा है, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कई लोगों को लीक प्रश्न पत्र और उत्तर दिए गए थे, आखिरकार वो लोग कौन कौन थे, किस किस तक ये जानकारी पहुंचाई गई, ये सारी चीजें सीबीआई समय खंगालने में लगी हुई है। आपको बता रहे कि कोचिंग मालिक के गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और इसी को लेकर एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। आपको बता रहे हैं कि नीट पेपर मामले पर लेकर सीबीआई लगातार खुलासा कर रही है। 8 से 9 मई की रात अमित मीणा से हो रही थी पूछताछ और ये समय आपको बता रहे हैं कि ऐसे नीट पेपर का खुलासा हुआ और 8 और 9 मई की रात को ही अमित मीणा से हो रही थी पूछताछ, उसी के बाद ये खुलासे किए गए। आपको बता रहे हैं कि नीट पेपर मामले को लेकर तभी अमित मीणा को आया एक कॉल, यानी पूछताछ के दौरान ही उसको एक कॉल आया। कॉल करने वाले का नाम था ऋषि विवाल और आपको बता रहे हैं कि कॉल के आने के बाद ही लगातार सीबीआई इस मामले में इंटरोगेट कर रही थी, जानकारी हासिल कर रही थी। कॉल करने वाले का नाम था ऋषि विवाल, जिसके बारे में जानकारी मिली। अब तक पैसे क्यों नहीं दिए गए, कॉल वाले ने कहा कि अब तक आपने पैसे क्यों नहीं दिए, इसको लेकर एक बड़ा सवाल किया गया। और इसी कॉल के बाद से ही और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। इसके बाद 2027 में तुम्हें और कमाने का मौका दूंगा, ये ऋषि बोला, यानी लगातार जब बातचीत कर रहा था मीना से तब उसने बोला कि 2027 में भी मैं तुम्हें और पैसे कमाने का मौका दूंगा। एसओजी ने ऋषि विवाल की बातें सुनी और लगातार उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा आगे बढ़ी। आपको बता दे कि ऋषि गिरफ्तार आरोपी दिनेश विवाल का बेटा है और लगातार इस मामले पे कई और चीजें सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़े। शरद, देखिए ऋषि के बारे में अब जानकारी मिल रही है, यानी पूरा विवाल परिवार जो है वो इसमें इन्वॉल्व था, लगातार बाप बेटे और पूरे परिवार के कई लोग जो थे इस पेपर लीक के सिंडिकेट में शामिल थे।
4: देखिए सुमित, ये खुलासा इसलिए बड़ा है कि ये पिछले साल भी कहा था कि मुझसे पेपर ले लो ऋषि ने अमित को, उसने विश्वास नहीं किया था। जब 5 लोग हो गए पास तब जाके विश्वास किया और 1 महीने पहले ये पैसा दे चुका था अमित मीणा ऋषि को कि पेपर आएगा, यानी कि पिछले साल से ही ये पेपर का पूरा काम जारी था और आगे भी कह रहा है कि 2027 में और कमाने दूंगा। आप समझिए कितना संगठित नेटवर्क है कि ये पहले के भी पेपर बेचे हैं, आगे की भी पैसे ले रहे हैं। ये पूरा नेटवर्क जो है, अगर ये पैसे के लालच में विवाल परिवार का लड़का नहीं पड़ता, और ये आवारा किस्म के लड़के थे अमित मीणा और ऋषि, जिन्होंने अपने सेट पैटर्न से हटकर पैसा कमाना शुरू किया, जिसकी वजह से पूरा नेटवर्क खुला है। अब यहां से सीकर में ये क्यों रह रहे थे, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और सीकर से देश के दूसरे हिस्सों में जो भेजा गया है, जम्मू कश्मीर हो या फिर बिहार हो या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सीबीआई का कहना है कि एक बार महाराष्ट्र के नेटवर्क को खत्म कर लें तो फिर वो राजस्थान में सीकर का नेटवर्क तलाशने आएंगे। क्योंकि अमित मीणा को एसओजी ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, लेकिन सीबीआई का कहना था कि हम यहां उलझ जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल शरद, आप बने रहिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अब जो खबर उत्तर प्रदेश आ रही है, यानी योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आपको बताएंगे कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ बोला है। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि देखिए सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
5: मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कहा भी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
0: और चलिए अब यूपी के बाद रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता खुद मेट्रो में सफर करती हुई नजर आई। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद लगातार जो उन्होंने कहा था कि बचत करें, उसके बाद खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मेट्रो में सफर करती नजर आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ रेखा गुप्ता बल्कि उनके कैबिनेट के कई मंत्री जो थे वो जो मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए। मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, इसके अलावा आपको बताएं कि खुद रेखा गुप्ता भी मेट्रो में सफर करती नजर आई। पंकज सिंह और कपिल मिश्रा भी मेट्रो में सफर करते नजर आए। ये पांच तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं कि पांचों मंत्री यानी कैबिनेट के तमाम मंत्री जो है मेट्रो में सफर करते नजर आए।
6: बिल्कुल, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेट्रो मंडे बनाना है, तो मैंने मेट्रो में देखा बहुत सारे अधिकारी वो भी मेट्रो से आ रहे थे, और वो उनसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपने घर से पैदल चला, उसके बाद में मेट्रो लिया, फिर मैंने जो है हमारी अपना देवी बस ली। मेरे को जितना समय गाड़ी से लगता था उतना कम समय में यहाँ पर पहुंच गया ऑफिस में। तो मेट्रो, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपना अपना प्रयास करना है, देश की आज मांग है कि हमको ईंधन को बचाना है और वो लंबे समय तक हमारा रिजर्व रहे, उसके लिए कोशिश करनी है।
7: आपने कहा कि 21 तोपों की सलामी उन लोगों को जो मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं।
8: यस, मैं उनको, देखो ये मुहावरा है ना कि हम उनको 21 तोपों की सलामी, मतलब हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं।
7: जो गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको भी सलामी
8: नहीं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो। हम 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला चुके, बस चला चुके हैं, और आज तो हमने ऑटो में ऑटो पुल किया, इलेक्ट्रिक बैटरी वाला ऑटो था ना, बैटरी वाले ऑटो में हम और कुलजीत चहल आए हैं। तो हम ऑटो पुल भी कर सकते हैं, मेट्रो का यूज कर सकते हैं।
7: आप गाड़ी से भी ट्रैवल पहले करते रहे, अपने अपने क्षेत्र भी जाते रहे, लोगों से मिलते भी रहे, आज जब आप सीपी पहुंचे मेट्रो में और पहले जब आप गाड़ी से आते थे, इन दोनों में यात्राओं में कितना फर्क है और कितना आराम की अगर हम बात करें?
8: एक तो आपको बता दूं, मैं 7 दिन पहले ईवी ले लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल
7: ले चुके हैं।
8: हाँ, मैंने एक वीडियो भी डाला था और आपने भी उसको देखा था कि खुशी जाहिर कर रहे थे आज तक वाले भी। हम अब जब 7 दिन ईवी पे चल दिए ना, अब हमको दूसरी गाड़ी लगता है कि इसको अब क्या करेंगे, क्योंकि बेचना भी ठीक नहीं है किसी को, किसको बेच।
0: चलिए न्यूज रूम लाइव में एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नीट पेपर मामले में हुए नए खुलासों के बारे में। आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
10: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on the Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
12: Visit your nearby Lowe's on Richmond Highway in Alexandria.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: In association with
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। So
15: May I have your attention, please?
16: AI is changing what tech jobs look like and what employers expect. Moving forward requires more than just knowing about AI. You need to know how to use it. At WGU, our online technology master's programs are built to help you gain job-ready skills for an AI-driven world. You'll focus on what actually matters in today's tech roles and learn in a way that fits around your life. If you're ready to build skills that keep pace with what's next, learn more at wgu.edu.
13: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
17: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
18: Director, the taste of success.
19: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था.
20: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था.
21: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते. म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ. म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए. अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
22: नहीं,
21: और म्यूचुअल फंड से
22: सही.
23: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
24: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है।
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है,
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
4: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी. कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच. चर्चित चेहरा देखना ना भूले सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज तक पर.
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
5: जहां खबर वहां खबरदार.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

कई योजनाएं, धर्म आधारित योजनाओं पर लगाई रोक। 1 जून से महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए महीने, बसों में होगी मुफ्त यात्रा। यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सीएम योगी का सख्त बयान, सड़क लोगों के चलने के लिए, नमाज के लिए नहीं, प्यार से माने तो ठीक वरना समझाना आता है। आग बबूला हुई समाजवादी पार्टी।

0: सीधे लिए चलते हैं इलाहाबाद, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद में एक इमारत में आग लग गई है। आपको बताएं कि तस्वीरों के साथ कि होटल की एक इमारत में आग लग गई है। प्रयागराज के सिविल लाइंस के होटल में आग लगी है। आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर सिविल लाइंस के एक होटल में आग लग गई है। और देखिए, हम आपको बता दें कि तस्वीरों के अंदर कैसे दमकल कर्मी इस आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष शर्मा भी जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ पता लग पाया कि आखिरकार ये आग कैसे लगी और अभी वहां पे ताजा हालात कैसे हैं?
1: देखिए, ये सिविल लाइन्स इलाके का होटल बिठल है जहां पर ये आग लगी है। होटल के जो टॉप फ्लोर है वहां पर आग लगी है। बताया जा रहा है कि जो स्थानीय ट्रांसफार्मर लगा था वहां पर पहले आग लगी और उसके बाद जिस होटल में आग पकड़ ली है। आग इतनी भीषण है कि आसपास के थाना क्षेत्रों से भी फायर टेंडर को बुलाया गया है। आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होटल के जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर तमाम यात्री रुके थे, बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ यात्री भी फंसे हुए हैं और धुएं और आग की वजह से वो यात्री अभी निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रयागराज के तमाम अन्य फायर स्टेशनों से गाड़ियों को मंगाया गया है। फायर स्टेशनों से दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं। आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी आग को काबू करने में थोड़ा वक्त लगेगा। काबू में हालात करने के लिए जो स्थानीय जो पुलिस फोर्स के साथ साथ जो फायर टेंडर के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तकरीबन होटल के अंदर जो बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग फंसे हुए हैं, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है। होटल के अंदर लोगों को निकालने के लिए फायर टेंडर के साथ साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको भी निकाला गया है। आग किस वजह से लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि ये आग होटल सिविल लाइन्स में एक होटल बिठल है वहां पर ये आग लगी है। जी
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष। लगातार हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देखिए दमकल कर्मी अभी भी वहां पर लोगों को निकालने के लिए और आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और भोपाल से एक बड़ी खबर त्विशा केस को लेकर आ रही है। एक बड़ा अपडेट मिल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि उसकी व्हाट्सएप चैट, करीबन 5 दिन पहले की व्हाट्सएप चैट पाई गई है। आज तक को त्विशा की और उसकी माँ की व्हाट्सएप चैट मिली है जो त्विशा की मौत से सिर्फ 5 दिन पहले यानी 7 मई की है। इन चैट्स में त्विशा अपने ससुराल वालों को लेकर गंभीर आरोप भी लगा रही है और लिख रही है कि पति के चरित्र पर भी शक बताया जा रहा है। चैट में त्विशा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उसके परिवार वाले मुझ पर ड्रग्स लेने का शक करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके बेटे की वजह से मैं परेशान हूं। और देखिए, हम आपको वो व्हाट्सएप चैट भी बता रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। ये कोई कुछ मुख्य बातें उसने अपनी चैट में लिखी है, ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे। और देखिए, कई बातें जो उसने अपनी व्हाट्सएप चैट में लिखी है, मेरे प्रॉब्लम है मैं हैंडल कर लूंगी, यानी लगातार वो क्योंकि मैं फिर ये हो जाएगा, यानी इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग करती हूँ इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। देखिए, अपने ड्रग्स लेने की बात का जिक्र भी उसने किया, बस एक ही बार दिल में ये नहीं है, ये कई बातें हैं, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। बार बार उसने चैट में अपने घुटन होने को सफोकेशन को लेकर उसने बात की, ना रोने देंगे ना ये लोग हंसने की वजह देंगे। और ये शनिवार की चैट है, नीचे बातें करते हैं मुझे नहीं हो, ये देखिए क्या मुझसे नहीं होगा, ये बार बार वो जिक्र कर रही है अपनी माँ से, ये चैट में उसने जिक्र किया और 5 दिन पहले की ये चैट बताई जा रही है। और देखिए, चैट के साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि चैट में क्या मुख्य बातें बताई गई हैं। 7 मई की ये चैट बताई जा रही है। 5 दिन पहले माँ से शिकायत कर रही थी कि उसे घुटन हो रही है। भोपाल में त्विशा शर्मा की मौत से एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी आप कह सकते हैं जानकारी आज तक आपको दिखा रहा है, जहां पर वो लगातार बातचीत में इसका जिक्र कर रही है कि कैसे उसको घुटन हो रही है, परेशानी हो रही है और अपने ससुराल वालों पर परेशान करने या फिर उसको कैसे ना समझने का आरोप भी वो लगातार अपनी माँ के साथ चैट में जिक्र कर रही है। इसके अलावा अपने पति को लेकर भी उसने कई बातें इस व्हाट्सएप चैट में साझा की है। देखिए, मौत से 5 दिन पहले की व्हाट्सएप चैट हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में त्विशा शर्मा की मौत से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि देखिए, ये व्हाट्सएप चैट में तो साफ तौर पर जिक्र कर रही है, रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रवीश देखिए, क्या कुछ व्हाट्सएप के अंदर और उसने साझा की अपनी जानकारी, और क्या सिर्फ 5 दिन पहले तक ही बातचीत हुई या उसके बाद भी दोनों माँ बेटी के बीच में बातचीत हुई?
2: देखिए, फोन पे तो लगातार बातचीत होती थी, और जब ये घटना हुई है 12 मई को, तो उससे पहले भी उसी रात त्रिशा की अपनी माँ से और अपने पिता से बात हो रही थी, फोन पे बात हो रही थी, तो बातचीत तो लगातार होती थी। लेकिन ये वो चैट्स हैं जो आखिरी चैट्स हैं, क्योंकि इसके बाद चैट्स पे बात नहीं हुई, फोन पे बात होती थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि त्रिशा को जो है टिकट बुक कराना था, और परिवार का ऐसा कहना है कि 13 मई का टिकट भी बुक था भोपाल से दिल्ली जाने के लिए या अजमेर जाने के लिए, ताकि त्रिशा फिर वहां से अपने घर जाए नोएडा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 13 मई को जब उसे जाना था, तो उससे पहले परिवार का ऐसा कहना है, त्रिशा की मां का ऐसा कहना है कि उनकी जो त्रिशा की सास है, उन्होंने फोन किया त्रिशा की मां को कि अभी गर्मी बहुत है,
0: बिल्कुल
2: अब अभी आप मत आइए, बाद में कभी आइएगा, और ये कह करके टिकट जो 13 मई की थी वो कैंसिल करा दी गई, और 12 मई को ये घटनाक्रम हो जाता है। तो इससे परिवार को इस बात का शक है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने उनके पिता से बात की थी, तो उनके पिता ने भी यही बात कही कि जब वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे तो उसी दौरान पीछे से किसी की आवाज आई, संभवतः वो समर्थ की आवाज थी, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद फिर फोन बंद हो गया, उसके आधे घंटे बाद उन्हें जानकारी मिलती है कि त्रिशा ने फांसी लगा ली है। तो परिवार इसीलिए मध्य प्रदेश से बाहर इस पूरे मामले की जांच करवाना चाहता है। अगर आपने वो चैट देखी होगी, तो चैट में एक त्रिशा की जो परेशानी है, उसकी जो मजबूरियां हैं, वो साफ तौर पे दिख रही है कि उसके पेट में किसका बच्चा है, ये सवाल उससे पूछा जा रहा था। एक ऐसी लड़की जो कि साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी है, कई एड्स में काम कर चुकी है, मिस पुणे रह चुकी है, काम कर रही है, और काफी कैरियर ओरिएंटेड लड़की है, उससे अगर ये सवाल पूछा जाएगा उसके ससुराल में, उसकी सास की तरफ से या पति की तरफ से, तो स्वाभाविक सी बात है मन को ठेस पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी, जो बात बार बार उसका परिवार यहां कह रहा है। उस चैट में वो अपनी माँ से कहती हुई दिख रही है कि समर्थ अभी यही है, मैं बाद में बात करती हूँ।
0: बिल्कुल,
2: ये तभी हो सकता है जब उसके किसी से बात करने पे पति को आपत्ति हो, स्वाभाविक सी बात है। वो ये कह रही है चैट में कि ये लोग बहुत निर्दयी हैं, आप मुझे यहाँ से ले चलो, आप आ जाओ, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। तो ये तमाम बातें उस चैट में आ रही है, और उस चैट में ये तमाम चीजें इससे पहले भी वो अपनी सहेलियों से बात करती
0: रवीश देखिए, बिल्कुल बात यही है कि ये चैट ये दर्शाती है कि आखिरकार किस
2: शादी करके
0: स्थिति में वो रही होगी, और खासतौर पर इसको लेकर और भी कई खुलासे होंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं पेपर लीक मामले को लेकर, कैसे लाखों छात्रों के भविष्य के खेला गया, ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं।

0: चलिए खबरों में आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कोचिंग सेंटर के मालिक शिवराज की लातूर से गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि लगातार इसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड था और यह भी कहा जा रहा है कि इसने ही लगातार करीबन कई एनटीए के अधिकारियों के साथ इसकी बातचीत भी हुई थी। इन चैट्स में आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये भी कि इसे लातूर से गिरफ्तार किया गया है और कोचिंग संस्थान के मालिक शिवराज मोटेगांवकर को सीबीआई ने पहले पूछताछ के लिए दो बार बुलाया और कई घंटों की पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताएं कि बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कोचिंग सेंटर के मालिक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओमकार हमारे साथ जुड़ गए। ओमकार, एक बात बताइए कि ऐसा नहीं है कि अगर एक कोचिंग सेंटर चला रहा था, इतने लंबे समय से चला रहा था, तो ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट कभी ताजा हो या नया हो? इसका मतलब यह है कि ये पूरा नेक्सस बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था।
1: एग्जैक्टली, अब सीबीआई का भी यही कहना है। जब सीबीआई ने 5 दिन पहले उसके शिवराज मोटेगांवकर के दफ्तर पे और उसके घर पे लातूर पे जब छानबीन की थी, तब उन्हें कुछ एविडेंसेस मिले थे। बाद में उसके मोबाइल में उन्हें एक पुराना वाला क्वेश्चन पेपर मिला, फिर समझ में आया कि वो क्वेश्चन पेपर उसके पास 14 तारीख को ही चला गया था। तो शिवराज मोटेगांवकर के पास 5 से 6 दिन पहले क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की दोनों चीजें थी, और इसे उसने अपने जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स को भी दिया और उनको पास ऑन किया। लेकिन अब सीबीआई का कहना है जांच पे, जहां मैं खड़ा हूं पुणे का सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, ये ऑफिस है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, जिसकी ये एंटी करप्शन ब्रांच है, यहीं शिवराज मोटेगांवकर को लाया गया था। हालांकि मैं बता दूं कि मोटेगांवकर एक बहुत बड़ा नाम है क्लासेस और एक कोचिंग में, बहुत सारे उनके अलग अलग जगह पे एजेंसीज है, सिर्फ मराठवाड़ा और लातूर ही नहीं बल्कि पुणे में भी उनके अलग अलग जगह ब्रांचेस है, और लगभग लातूर और मराठवाड़ा मिलके 2 से 3 हजार करोड़ की उनकी इकोसिस्टम वर्कआउट होती है। तो इस इकोसिस्टम में सबसे बड़ा डोमिनेटिंग नाम था वो शिवराज मोटेगांवकर का था, जिसे अब सीबीआई ने हिरासत में लिया है, अरेस्ट किए गए हैं। और उसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में क्लियरली लिखा है कि सीबीआई को उनकी तरफ से एक क्वेश्चन पेपर मिला है, ऐसे भी कुछ एविडेंसेस है जो एग्जाम होने के बाद यानी कि 26 तारीख के बाद उसने डिलीट किया है।
0: बिल्कुल ओमकार, लगातार देखिए सीबीआई अब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एनटीए के कौन कौन से अधिकारी इस कोचिंग सेंटर के मालिक के साथ इन्वॉल्व थे। और चलिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि आखिरकार ये लातूर मॉड्यूल कैसे काम करता था, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

नीट पेपर लीक में रडार पर लातूर मॉड्यूल, लातूर के कोचिंग पर जांच का शिकंजा, 100 करोड़ के कोचिंग संस्थान से पेपर लीक, परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट, एक प्रोफेसर जिन पर नीट परीक्षा के पेपर सेट करने की गंभीर जिम्मेदारी थी लेकिन उन्होंने छात्रों के भविष्य का सौदा कर दिया। सीबीआई ने पीबी कुलकर्णी को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने गोपनीयता बरतने के अपने फर्ज से कन्नी काट ली। आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले सवाल लीक कर दिए और अब लातूर से ही एक और कोचिंग संस्थान जांच के दायरे में है। ये लातूर का रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस है जिसके मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर अब सीबीआई जांच की सुई जाकर टिक गई है। मोटेगांवकर को पुणे बुलाकर सीबीआई ने रविवार को लंबी पूछताछ की है। सीबीआई की टीम ने लातूर जाकर मोटेगांवकर के दफ्तर की तलाशी भी ली है, कंप्यूटर, लैपटॉप और आईपैड जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और गैजेट्स की छानबीन की है। शुक्रवार को भी सीबीआई ने मोटेगांवकर से करीब 11 घंटे की पूछताछ की थी।

0: महाराष्ट्र के हैं और पेपर देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने वाले चेहरे महाराष्ट्र के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस केस की तह तक तहकीकात की बात कही थी और अब सीबीआई इस लीक की एक एक जड़ खंगाल रही है।
1: इस सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए।
0: इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए। दोनों पेशे से शिक्षक रहे, दोनों नीट के पेपर तैयार करने वाली प्रक्रिया में सीधे जुड़े रहे, लेकिन अब इस केस में आरोपी हैं। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए और नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही आरोप पीवी कुलकर्णी पर भी है कि उन्होंने मनीषा बाघमारे के साथ मिलकर परीक्षा से पहले छात्रों से मॉक सेशन कराए।
2: कुछ दिन पहले 3 मई को यह परीक्षा हुई है, परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पीवी कुलकर्णी ने एक खास कोचिंग रखी थी, एक खास क्लास रखी थी मनीषा बाघमारे के साथ मिलकर, जहां पर जो बच्चे उनके कोचिंग में आ रहे थे उन्हें खास सवाल दिए, उनके जवाब दिए और उन्हीं सवालों की तैयारी करवाई। जब उन सवालों की तैयारी करवाई और बाद में जब परीक्षा हुई तो ये पता चला कि यही सवाल जो सवाल कुलकर्णी पीवी कुलकर्णी ने बताए थे वही सवाल नीट की परीक्षा में भी आए, इसीलिए पेपर लीक का मामला सामने आया है। पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। आपको
0: अब जरा
3: चले न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अमेरिका इसराइल फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं, रणनीति बन रही है, ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर से युद्ध संकट के बीच ईरान की तैयारी क्या है? अगर फिर से भीषण हमला हुआ तो ईरान क्या करेगा? क्या अमेरिका इसराइल के हमले से पहले वो बातचीत की मेज पर लौटेगा या फिर से युद्ध का और भी खतरनाक मोर्चा खुलेगा? जंग की शुरुआत से सीजफायर तक ईरान का रुख एक जैसा है। दावा यही है कि हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। एक बार फिर युद्ध टालने के लिए अमेरिका को ईरान की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। दरअसल तेहरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए 5 शर्तें सामने रखी हैं और इन्हीं शर्तों को लेकर दोनों देशों में बातचीत अटकी हुई है। ईरान की मांग है कि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान खत्म हो, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं, विदेश में जब्त ईरानी संपत्तियां जारी की जाएं, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की संप्रभुता को मान्यता दी जाए। अमेरिका इन शर्तों पर राजी नहीं और ईरान का रुख नरम नहीं पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद ईरान ने कहा है कि दुनिया अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि दुनिया के बदलावों को ईरान ने तेज किया और भविष्य ग्लोबल साउथ का है। ऐसे बयानों से साफ है कि ईरान अपने रुख से पीछे नहीं हट रहा और ऐसे में अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच महायुद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: पंजाब में लुटेरे मिशन पर है, दिन दहाड़े कभी भी कहीं भी लूटपाट कर सकते हैं। दो तस्वीरें बारी बारी से हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जालंधर की है, जहां पर आप देख सकते हैं जालंधर के मकसूदा में वार्ड नंबर 84 में दिन दहाड़े धारदार हथियार से के दम पर महिला को लूट लिया गया। बाइक सवार दो लुटेरे आते हैं, महिला को दौड़ा दौड़ा कर लूट लेते हैं और महिला के साथ छोटा बच्चा भी था। भागने की कोशिश की लेकिन वो भाग न सकी। और अब न्यू चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लुटेरों को कोई डर नहीं है, एकदम दिन दहाड़े महिला की चेन लूट कर वो भाग निकलते हैं। महिला अपने 6 महीने के बच्चे को कॉलोनी में घुमा रही थी, तभी बाइक सवार लुटेरे आते हैं और लूटपाट कर भाग जाते हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

लेबनान में घमासान, 3 की गई जान। इसराइल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही। हमास ने माना गाजा में मारा गया उसका टॉप कमांडर। हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग और तेज हो गई है। ईरान के साथ सीजफायर के दौरान इसराइल इन दोनों आतंकी संगठनों से निपटने में जुटा है जो ईरान का साथ देते आए हैं और इसराइल की सरहदों पर मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। लेबनान में इसराइल ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इजरायली एयरफोर्स की अलग अलग इलाकों में की गई स्ट्राइक से 3 लोगों की जान चली गई और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमले तब हुए हैं जब अमेरिका ये दावा कर चुका है कि उसकी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम 45 दिन बढ़ा दिया गया है। अब अगली सैन्य मीटिंग 29 मई को तय की गई है। सीजफायर बढ़ने के बावजूद इसराइल ने कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और गोलाबारी की। इन हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान के गांव खाली हो रहे हैं। सईदा से बेरूत जाने वाले हाईवे पर बड़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़कर जाते दिखाई दिए हैं। हिजबुल्लाह भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के बुलडोजरों और सैनिकों को निशाना बनाया। साथ ही हदाथा शहर के बाहरी इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर रॉकेट दागे गए। बेका वैली में इसराइल ने 2 एयर स्ट्राइक की। कई जगह खतरे के सायरन की आवाजें सुनी गई और बमों की बरसात से लगी आग और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उधर गाजा में हमास के खिलाफ घमासान तेज हो गया है। इसराइल के दावे के बाद अब हमास ने मान लिया है कि उसकी कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर इस अल दीन अल हद्दाद की मौत हो गई है। उस पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। खान यूनिस में इसराइल के हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बंगाल के शुभेंद्र सरकार ने बंद की मदरसा विभाग से जुड़ी कई योजनाएं, धर्म आधारित योजनाओं पर लगाई रोक। 1 जून से महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए महीना, बसों में होगी मुफ्त यात्रा।

नमाज के लिए नहीं प्यार से मानो तो ठीक, वरना समझाना आता है। आग बबूला हुई समाजवादी पार्टी। नीट पेपर लीक का एक्टिव मेंबर लातूर से 100 करोड़ का कोचिंग सेंटर चलाने वाला शिवराज। सीबीआई ने बताया गिरोह का प्रमुख सदस्य एनटीए के अधिकारियों के साथ मिलीभगत। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक लोन की धोखाधड़ी का मामला, ईडी ने किया अरेस्ट। भोपाल की त्विशा डेट मिस्ट्री पर नया मोड़। मां बाप ने की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, ससुराल वालों पर लगाए जान लेने के आरोप। ग्रेटर नोएडा में भी दहेज के लिए महिला की जान।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कभी गर्मी, कभी आंधी तूफान, कभी ओलावृष्टि, कभी बेमौसम बरसात, भारत का मौसम अब चेतावनी नहीं तबाही बनकर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, झारखंड से महाराष्ट्र तक मौसम का कहर सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। कहीं बिजली गिर रही है, कहीं तेज हवाएं घरों और पेड़ों को उखाड़ रही हैं, तो कहीं आंधियों में लोग ही उड़ जा रहे हैं। क्या भारत का मौसम पूरी तरीके से मनमौजी हो चुका है? क्या जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक बहस नहीं बल्कि जमीन पर दिखती भयानक हकीकत है?

0: की पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर पड़ा। कहीं मकान की छत टूट गई, कहीं गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गई, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आए भीषण आंधी तूफान और आकाशीय बिजली के कहर की हैं। बुधवार को यूपी में मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कई जिलों में तबाही मच गई। लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला, तेज हवाएं चली, बिजली गिरी और देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 104 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 लोगों की मौत आसमानी बिजली गिरने से हुई, 52 लोग घायल हैं, जबकि 98 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 130 पशुओं की भी जान गई है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, जमीन पर हालात इससे कहीं ज्यादा भयानक दिखाई थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि लू वाले महीने में इतनी विनाशकारी आंधी आएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बदायूं में तेज आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई। भदोही में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की जान गई। मिर्जापुर में आंधी तूफान की वजह से 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोगों की जान गई। प्रयागराज में भी आंधी तूफान के कारण 21 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कई जिलों में 1-2 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर बरेली से आई। आंधी में छत उड़ते आपने देखी होगी, तिरपाल उड़ते देखे होंगे, पेड़ गिरते देखे होंगे, लेकिन इंसान हवा में उड़ जाए ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। बरेली में आए तूफान में नन्हे मियां नाम के शख्स हवा में 50 फीट उछल गए। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे AI वीडियो समझ रहे थे, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा डरावनी थी। दरअसल नन्हे मियां तेज तूफान से बचने के लिए टीम की छत पकड़कर खड़े थे, तभी तेज हवाओं ने पूरी छत को उखाड़ दिया और वो करीब 50 फीट हवा में ऊपर उछल गए। इसके बाद नन्हे मियां जाकर खेत में गिरे, हादसे में उनके हाथ पैर में गंभीर चोटें आईं।
1: एक्शन बहुत तेज लग रहा था, लकूरे के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी थी।
2: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
1: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोड़े खड़े खड़े, हम बांध रस्सी पड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ रस्सी पकड़ी थी, गाड़ी हमारी खड़ी थी, रस्सी पकड़ गई थी,
3: खेत में जाके
1: मका के खेत में गिरे, कम से कम 50 फीट ऊंची से और करीब 30-40 से ज्यादा होती, मतलब 20 मकान गिरे थे। मैं टीम से तीन गई, तीन के साथ में चले गए।
2: अच्छा।
3: हाँ। तो तीन शेड को रोकने की कोशिश कर रहे थे आप?
1: तीन शेड रोकने से नजर है, मैं उसमें रस्सी पड़ी थी तो मतलब ऐसा है कि मतलब हमारी जाएगी, हम जा रस्सी से रुक जाएंगे, तो मैं रस्सी से टीम से सब चली गई।
0: पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसे ही डराने वाली तस्वीरें सामने आई। गांव में तेज हवाओं के चलते एक नीम का पेड़ उखाड़कर कार पर गिर पड़ा। कार में बैठे व्यक्ति ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में यह तूफान कई परिवारों के लिए मौत बनकर आया। अलग अलग घटनाओं में 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। कई जगह पेड़ और दीवारें गिर गई। एक ट्रक ड्राइवर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली इलाके में सड़क किनारे खड़ा यूकलिप्टस का पेड़ तेज हवा में टूटकर ट्रक पर गिर गया। हादसे में 29 साल के ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। भदोही में भी तबाही का मंजर दिखाई दिया। यहाँ 16 लोगों की मौत हुई। एक महिला के घर पर पेड़ गिर गया, जिससे महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे घायल हो गए। जबकि दूसरी घटना में मंदिर गई 3 महिलाएं विशाल पेड़ की चपेट में आ गई, जिससे 3 की मौत हो गई। फतेहपुर में आए तेज तूफान और आंधी ने भारी तबाही मचाई। 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए।
4: तूफान अब किसी एक मौसम में नहीं बल्कि हर मौसम में जबरदस्त तबाही मचाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं, हवा में नमी की मात्रा पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। यही बदलाव अब भारत में आंधी तूफान बेमौसम बारिश को ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं।

0: ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कहीं तेज हवाओं ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, कहीं बिजली के खंभे गिर पड़े, कहीं घरों की छतें उड़ गई और कहीं सड़क पर चलते लोग देखते ही देखते तूफान की चपेट में आ गए। सवाल है, आखिर ये आंधी तूफान इतने खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं? क्यों हर साल मौसम पहले से ज्यादा हिंसक दिखाई दे रहा है और क्यों अब तूफान किसी एक मौसम तक सीमित नहीं रह गए हैं? दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती तेजी से गर्म हो रही है। पिछले कई दशकों में ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ी है। इसका असर सिर्फ गर्मी बढ़ने तक सीमित नहीं बल्कि पूरे मौसम चक्र पर पड़ रहा है। पहले आंधी और तूफान का एक तय मौसम माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मार्च में भी तूफान आ रहे हैं, मई जून में भी तबाही मच रही है और कई बार मानसून के दौरान मौसम अचानक बदल ही जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब धरती का तापमान बढ़ता है तो समुद्र भी तेजी से गर्म होने लगता है। गर्म समुद्र ज्यादा भाप छोड़ते हैं, यानी हवा में नमी बढ़ जाती है और यही नमी तूफानों के लिए ईंधन का काम करती है।
1: देखिए, एक तो पहली बात है कि होती हैं ये घटनाएं और किसी सीजन, दो साल जो एक जैसे नहीं होते। किसी साल में आप देखते हैं तापमान सामान्य से ज्यादा रहते हैं, किसी सीजन में आपके डस्ट स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म सामान्य से ज्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ अब यह है कि जिस तरह से अर्बन हीटिंग ज्यादा हो रही है, अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है, जिस तरह से कॉन्क्रीट जंगल बन रहे हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है और थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा प्रेशर जो है क्लाइमेट चेंज का भी इस पे दिखता है।
0: मतलब जितनी ज्यादा नमी उतनी ज्यादा घने बादल और उतनी ही ज्यादा तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। लेकिन इसकी कोई एक खास वजह नहीं है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तेजी से गर्म हो रही है। यही वजह है कि अब तूफानी सिस्टम पहले से ज्यादा ताकतवर बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के टकराव से उत्तर भारत में भीषण आंधी और बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन सिर्फ समुद्र ही जिम्मेदार नहीं है, शहरों का तेजी से फैलना भी मौसम को बिगाड़ रहा है। कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, तालाब और खुले मैदान खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में दिन और रात दोनों समय ज्यादा गर्म रहने लगे हैं। वैज्ञानिक इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं।
2: अर्बन हीट आइलैंड की बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है कि जो हमने कंक्रीट जंगल बना लिए हैं, जैसे कि नोएडा है, गुरुग्राम है, जो भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर आपने देखा होगा कि सोसाइटीज बन गई हैं। पहले क्या होता था कि एक जैसे कि 200-300 गज के दायरे में चार या पांच घर होते थे और उससे क्या होता था कि जो एनर्जी है या जो हीटिंग है वो ट्रैप नहीं होती थी। अब एक ही इतनी जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, 30-30 मंजिल की बिल्डिंग बन गई है, जिसमें एक ही बिल्डिंग में 300-400 घर होते हैं और हर घर में कम से कम 2 AC चल रहे होते हैं। तो उससे जो गर्मी निकलती है वो, और जो कॉन्क्रीट जंगल बन जाता है, यानी कि कॉन्क्रीट है और जो रोड है, डावर की रोड है, वो सारा जो सन की एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो जब सनसेट होता है तो एनर्जी इतनी जल्दी रिलीज नहीं हो पाती। इसीलिए जो शहर का तापमान है वो आप जो आउटर एरियाज है उससे 4-5 degrees ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं।
0: जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं और यही गैसें धरती की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं। नतीजा, धरती लगातार गर्म हो रही है और मौसम ज्यादा अस्थिर और खतरनाक बनता जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार फसल कटाई के समय अचानक आंधी और बारिश किसानों की मेहनत बर्बाद कर देते हैं।
3: लगाए थे खेती बाड़ी में, खेत में सब बर्बाद हो गया, पत्थर पानी मार के हम लोग कैसे क्या करेंगे, हम लोग का सब बर्बाद हो गया। तो मतलब हम लोग का बाल बच्चा पढ़ रहा है।
4: जो खेती लगाए थे ना, तो पानी मार के सब नुकसान कर दिया, हर एक खेती के करेली, भिंडी, पोदी जितना से सब नुकसान हो गया। अब जो है सब सड़ गया, बारी में सब सड़ गया, को नहीं है, हम लोग का करें।
5: खेत में पत्थर पड़ने की वजह से ये दो लौकी को देख सकते हैं कैसा हो चुका है और क्विंटल भर खेत का क्या हाल होगा, पत्ता भी खत्म हो चुका है, इसके साथ साथ सारा किसान का खेती खत्म।
6: लौकी था, भिंडी था, करेला था, बहुत सारा सब्जी था,
7: सब नुकसान हो गया।
0: विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तापमान इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में ऐसे तूफान और ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, यानी भविष्य में मौसम की मार और गंभीर हो सकती है। ऐसे में सिर्फ सरकारों की नहीं, आम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मौसम की कहानी नहीं, ये बदलती हुई धरती का संकेत है जो बता रहा है कि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो आंधी, तूफान और तबाही बेमौसम तय है।
8: रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बताएंगे कि भारत में क्यों बढ़ रही हैं आसमानी बिजली गिरने की घटनाएं। देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
7: इसमें माइक्रो फाइबर है।
4: माइक्रो फाइबर यानी
7: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
4: हमारे सीमेंट में नहीं है,
7: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
8: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
9: करेक्टर The taste of success.
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
4: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री कृष्णा से उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है।
9: क्या कहेंगे उनको भी सलामी?
10: नहीं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो। हम 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला चुके, बस चला चुके हैं, और आज तो हमने ऑटो पुल किया, इलेक्ट्रिक बैटरी वाला ऑटो था ना, बैटरी वाले ऑटो में हम और कुलजीत चहल आए हैं। तो हम ऑटो पुल भी कर सकते हैं, मेट्रो का यूज कर सकते हैं।
9: आप गाड़ी से भी ट्रैवल पहले करते रहे, अपने अपने क्षेत्र भी जाते रहे, लोगों से मिलते भी रहे। आज जब आप सीपी पहुंचे मेट्रो में और पहले जब आप गाड़ी से आते थे, इन दोनों में यात्राओं में कितना फर्क है और कितना आराम की अगर हम बात करें?
10: एक तो आपको बता दूं, मैं 7 दिन पहले ईवी ले लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल
9: ले चुके हैं।
10: हाँ, मैंने एक वीडियो भी डाला था और आपने भी उसको देखा था कि खुशी जाहिर कर रहे थे आज तक वाले भी। हम अब जब 7 दिन ईवी पे चल दिए ना, अब हमको दूसरी गाड़ी लगता है कि इसको अब क्या करेंगे, क्योंकि बेचना भी ठीक नहीं है किसी को, किसको बेचेंगे। तो अब हम उसको खड़ी ही रखेंगे।
9: अच्छा।
10: और अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलेंगे।
9: मेट्रो से गाड़ी में कितना ट्रैवल में कितना फर्क है?
10: बहुत, जमीन आसमान का फर्क है। इतना आराम है, इतना चैन है, और सांसों को बहुत आनंद है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

शुभेंद्रू सरकार ने बंद की मदरसा विभाग से जुड़ी कई योजनाएं, धर्म आधारित योजनाओं पर लगाई रोक। 1 जून से महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए महीना, बसों में होगी मुफ्त यात्रा।

नमाज के लिए नहीं प्यार से मानो तो ठीक, वरना समझाना आता है। आग बबूला हुई समाजवादी पार्टी। नीट पेपर लीक का एक्टिव मेंबर लातूर से 100 करोड़ का कोचिंग सेंटर चलाने वाला शिवराज। सीबीआई ने बताया गिरोह का प्रमुख सदस्य एनटीए के अधिकारियों के साथ मिलीभगत। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक लोन की धोखाधड़ी का मामला, ईडी ने किया अरेस्ट। भोपाल की त्विशा डेथ मिस्ट्री पर नया मोड़। मां बाप ने की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, ससुराल वालों पर लगाए जान लेने के आरोप। ग्रेटर नोएडा में भी दहेज के लिए महिला की जान।

0: दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मौसम का भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, दिन के समय अंधेरा छा गया था, लेकिन कुछ ही समय में मौसम वैज्ञानिकों ने हीट वेव की चेतावनी दे दी। गुरुवार को दिल्ली का तापमान 40 डिग्री पार कर गया, जो इस साल मई का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे सालों के मुकाबले थोड़ा कम ही है।
1: दिल्ली एक ऐसा शहर जहां इन दिनों मौसम का मिजाज हर रोज बदलता दिखाई दे रहा है। कभी तेज धूप और झुलसाने वाली गर्मी, कभी अचानक काले बादल, कभी तेज बारिश और ओलावृष्टि, तो कभी तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक। राजधानी का मौसम अब इतना अनिश्चित हो चुका है कि लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर अगले कुछ घंटों में मौसम कैसा होगा। कुछ दिन पहले दिल्ली में ऐसा मौसम देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया। दोपहर के समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर बारिश के साथ ओले गिरने लगे। दिन में ऐसा अंधेरा छाया मानो शाम हो गई हो। कई इलाकों में पेड़ गिर गए और लोगों को मई के महीने में अचानक ठंड का एहसास होने लगा।
2: अच्छा मौसम हो रखा है और घूमने लायक मौसम है। बाहर से भी काफ़ी टूरिस्ट आए हैं, उनको अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। दिल्ली अच्छी लग रही है क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है उसमें तो लोग घूमते नहीं है, तो अभी अच्छा टाइम है, खुशनुमा टाइम है और अच्छा लग रहा है। लोग
3: बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, धूप से बचा हुआ है, ठंडा मौसम हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी।
1: लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी दिल्ली में अब हीट वेव की चेतावनी जारी की जा रही है। गुरुवार को राजधानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, शुक्रवार और शनिवार को तापमान 41 के पास पहुंच गया।
4: वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, ये जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है जिसके साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस चलते हैं, वो इस बार इस साल और पिछले साल भी हमने देखा था मई में इस तरह की धूल भरी आंधी और बारिश हुई थी, तो इस साल भी जो जेट स्ट्रीम है थोड़ा सा लोअर लैटिट्यूड में है और इसके कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर में भी। लेकिन अब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर होने लग जाएंगे। यूजुअली क्या होता है कि मई आते आते वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर होने लग जाते हैं आमतौर पर, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। तो अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब लू की स्थिति बन जाएगी, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, 41, 42 और 43 डिग्री तक दिल्ली का टेम्परेचर जा सकता है।
1: मौसम का लगातार बदलता पैटर्न हर किसी को परेशान कर रहा है। अगर पिछले 10 दिनों के मौसम पर नजर डालें तो दिल्ली में मौसम पूरी तरह रोलर कोस्टर की तरह नजर आता है। करीब 10 दिन पहले तापमान 22 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, लोगों को ठंडक का एहसास होने लगा था, फिर अचानक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, हवा में नमी बढ़ी और राजधानी में तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी, जैसे ही आसमान साफ हुआ तेज धूप निकल आई।
2: नजारा तो यहाँ का बढ़िया है लेकिन धूप बहुत तेज है यहाँ पे, मतलब धूप देख के डायरेक्ट छाव के नीचे जाने का मन कर रहा है,
5: परेशानी होती है इस गर्मी से।
2: हाँ बहुत,
6: हम ठंडा पानी साथ में रख रहे हैं, छाता वगैरह साथ में रख रहे हैं क्योंकि बहुत तेज धूप है इसके कारण।
7: टॉवल ले रखे हैं ये गर्मी से बचने के लिए, और जो है थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग पानी वगैरह पीते रहे तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। ये कुछ चीजें जो बॉडी को हाइड्रेट करती है, थोड़ा गर्मी से हमको बचा सकती है।
8: धूप बहुत ज्यादा हो रखी है, तौलिया लेना जरूरी है, जहाँ बैठने की भी जगह कम है, छांव वगैरह है नहीं।
1: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हीट वेव जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली का मौसम इतना अनिश्चित क्यों हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। धरती का तापमान बढ़ रहा है जिसकी वजह से मौसम चक्र अस्थिर होता जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में बढ़ता शहरीकरण भी मौसम को प्रभावित कर रहा है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण, ये सब मिलकर राजधानी को ज्यादा गर्म बना रहे हैं।
9: देखिए, एक तो पहली बात है कि होती हैं ये घटनाएं और किसी से दो साल जो एक जैसे नहीं होते। किसी साल में आप देखते हैं तापमान सामान्य से ज्यादा रहते हैं, किसी सीजन में आपके डस्ट स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म सामान्य से ज्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ अब यह है कि जिस तरह से अर्बन हीटिंग ज्यादा हो रही है, अर्बन हीट आइलैंड बन रहा है, जिस तरह से कॉन्क्रीट जंगल बन रहे हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है और थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा प्रेशर जो है क्लाइमेट चेंज का भी इस पे दिखता है।
1: यही वजह है कि अब दिल्ली में मौसम का बदलाव पहले से ज्यादा तेज और अचानक दिखाई देता है। अब दिल्ली का मौसम सिर्फ गर्म या ठंडा नहीं रहा, बल्कि हर कुछ दिनों में बदलता हुआ एक नया पैटर्न बन चुका है।
0: ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मई का महीना अपनी तपती गर्मी के लिए जाना जाता था, उसमें 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले आंधी तूफान आ रहे हैं, गर्मी जैसे कभी कभी झलक दिखाने के लिए आती है, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का पुराना पैटर्न तेजी से टूट रहा है। इसीलिए अब बारिश, गर्मी, तूफान का समय भी अनिश्चित होता जा रहा है। यानी ये केवल मौसम नहीं बदल रहा, बल्कि पृथ्वी का पूरा क्लाइमेट सिस्टम एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है।
1: ये मई का महीना है, वो महीना जब सूरज आग उगलता था, दोपहर में सड़कें सूनी हो जाती थी और लोग लू के थपेड़ों से बचने के लिए घरों में छिप जाते थे। टीवी और रेडियो से एक ही आवाज आती थी, जेब में प्याज रखें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, पानी पीते रहें और लू से बचें। लेकिन इस बार मई का मिजाज कुछ और ही है। जिस मई को अपनी तपती और झुलसाने वाली गर्मी के लिए जाना जाता था, वहां आज 100 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चल रहे हैं। गर्मी तो जैसे कभी कभी बस अपनी शक्ल दिखाने के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देश का मौसम एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? क्यों इस बार उम्मीद से कम गर्मी पड़ रही है? आइए आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। वहीं 1 मार्च से 11 मई के बीच पूरे भारत में औसतन 6% अधिक बारिश हुई है। मई के पहले हफ्ते में IMD के अनुसार देश भर में मौसम ने अलग ही रंग दिखाया और सामान्य से 79% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। कई राज्यों में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात में सामान्य से 315% ज्यादा बारिश हुई, जबकि बिहार में ये आंकड़ा 180% और उत्तर प्रदेश में 149% से ज्यादा दर्ज किया गया। आंकड़े जो बता रहे हैं वो कोई मामूली बदलाव नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इस साल सुपर अल नीनो के कारण भयंकर सूखा पड़ेगा और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट।
4: मई का महीना है, अप्रैल का महीना है, काफी ज्यादा एक तरह से अपवाद रूप में रहा कि मार्च के शुरुआती दौर में काफी ज्यादा गर्मी पड़ी, अप्रैल 15 से लेकर के ये जो प्री मानसून गतिविधियां शुरू हुई और मई के शुरुआती दौर तक ये प्री मानसून गतिविधियां चलती रही, जिससे कि जो गर्मी है वो रुकी रही और टेम्परेचर काफी ज्यादा कम आ गया। तो उसका कारण यह है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं और इस बार अलनीनो है, अलनीनो सुपर अलनीनो कहा जा रहा है, तो जो मानसून है वो भी कमजोर रह सकता है, तो मानसून के समय भी बीच बीच में प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल आपको देखने को मिल सकता है।
1: इस ठंडे और तूफानी मौसम के पीछे कोई एक वजह नहीं है। इस वक्त भारत के आसमान पर एक या दो नहीं बल्कि 9 अलग अलग वेदर सिस्टम एक साथ एक्टिव है। देश भर में मौसम के बदले मिजाज के पीछे कई सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर भारत खासकर पंजाब और दिल्ली में आंधी और बारिश ला रहा है। वहीं मुन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के पास बना लो प्रेशर एरिया दक्षिण भारत में लगातार बारिश करा रहा है। इसके अलावा 4 लो प्रेशर ट्रफ और 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है, जो समुद्र से लगातार नमी को खींच कर अलग अलग हिस्सों में बारिश को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पैटर्न सिर्फ एक जगह का नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों का यही हाल है। राजस्थान में कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है, दिन भर तपती गर्मी और लू, शाम में आंधी और बारिश, जिसके बाद मौसम फिर साफ। मौसम विभाग के अनुसार इसका सबसे आम कारण होता है लोकल कन्वेक्शन, यानी दिन भर सूरज की गर्मी से जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। खासकर गर्मियों में सड़कें, खेत, पत्थर और शहरों की इमारतें तेजी से गर्मी सोख लेती हैं। फिर शाम के समय ये गर्म हवा ऊपर उठने लगती है, ऊपर जाकर यही हवा ठंडी होती है और उसमें मौजूद जल वाष्प छोटे छोटे बादलों में बदल जाते हैं। कई बार ये बादल बहुत तेजी से बनते हैं और अचानक तेज बारिश करा देते हैं। इन्हें अक्सर कनेक्टिव क्लाउड कहा जाता है। क्योंकि ये बादल छोटे और अस्थायी होते हैं, बारिश खत्म होते ही वो जल्दी टूट जाते हैं और आसमान फिर साफ दिखाई देने लगता है।
10: क्योंकि ये समर सीजन है और टेम्परेचर जब दोपहर में 40 और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और हवाओं में सफिशियंट मॉइस्चर होता है, तो ऐसे में जो कन्वेक्टिव क्लाउड सिस्टम डेवलप होता है वो दोपहर के समय और शाम के समय ही ज़्यादा होता है। इसमें जो सरफेस हीटिंग है यानी जो हाई टेम्परेचर कंडीशन है वो भी काफ़ी रोल प्ले करती है। तो विशेष रूप से जो मई के महीने में अब जो आंधी बारिश की गतिविधियाँ हो रही है ये कन्वेक्टिव सिस्टम है, मेनली हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड एयर की वजह से जो डेवलप होते हैं। तो इन सिस्टम्स का जो लाइफ साइकिल है वो 1 से 1.5 घंटा ही जनरली रहता है, और इसके अलावा बाकी समय देखेंगे तो आसमान साफ मिलेगा, स्काई क्लियर टाइप की कंडीशंस रहेंगी और सडन डेवलपमेंट होने के बाद विद इन 1 or 2 hours ये थंडरस्टॉर्म, आंधी, तेज हवाएं, गस्टी विंड्स, लाइटनिंग, ये सब इसी कुमुलोनिम्बस क्लाउड के फीचर्स हैं।
1: मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी इस बार समय से पहले यानी मई के तीसरे हफ्ते में ही अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे सकता है। मॉनसून आने से पहले ही हवाओं में नमी और गर्मी के इस मेलजोल ने देश के तापमान को नीचे गिरा दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या यह ठंडी राहत वाकई कोई अच्छी खबर है? वैज्ञानिकों की माने तो बिल्कुल नहीं। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे मौसम का पुराना पैटर्न अब पूरी तरह टूट चुका है। अब बारिश, गर्मी और तूफान का कोई फिक्स टाइम नहीं रह गया है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की चेतावनी है कि मई से जुलाई के बीच सुपर अल नीनो और मजबूत हो सकता है, जिससे भारत का मौसम आगे और भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक हो जाएगा। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है बल्कि हमारी पृथ्वी का पूरा क्लाइमेट सिस्टम एक नए अनप्रिडिक्टेबल और बेहद डरावने दौर में कदम रख चुका है।
0: धरती का बढ़ता तापमान अब आसमान से गिरने वाली बिजली को भी खतरनाक बना रहा है। भारत में पिछले 5 सालों में

0: यानी पिछले साल हर दिन औसतन 5 भारतीय आसमान से बिजली गिरने का शिकार हो रहे थे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2022 में देश में 2887 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई थी। 2023 में ये संख्या घटकर 2560 हुई, लेकिन 2024 में फिर बढ़कर 2825 तक पहुंच गई। अगर पिछले दो दशकों की तुलना करें तो तस्वीर और डरावनी होती है। साल 2000 से पहले भारत में हर साल औसतन 1800 लोगों की मौत बिजली गिरने से होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर 2800 से 3000 मौतों के बीच पहुंच चुका है। 2025 में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जहां 284 लोगों की जान आसमानी बिजली ने ली। इसके बाद झारखंड में 222, आंध्र प्रदेश में 192, मध्य प्रदेश में 183 और बिहार में 146 मौतें रिकॉर्ड की गई। लेकिन सिर्फ मौतें ही नहीं बढ़ रही, बिजली गिरने वाले दिनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जनवरी से सितंबर 2022 के बीच भारत में 159 लाइटनिंग इवेंट देश दर्ज किए गए। 2023 में ये बढ़कर 176 हो गए, 2024 में 191 दिन और 2025 में 204 दिन दर्ज किए जा चुके हैं। यानी आसमान अब पहले से ज्यादा दिनों तक इलेक्ट्रिक बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मुताबिक ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ज्यादा मौतों की एक बड़ी वजह आबादी और कामकाजी ढांचा भी है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में लोग खेती, निर्माण और खुले मैदानों में काम करते हैं, जहां आसमान से बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है।
1: हमारी इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
8: Jack, you're killing me.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
9: कहावत है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। मोटे गांवकर ने सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो शेयर किया जिससे जांच एजेंसियों का शक उस पर गहराता चला गया। इस वीडियो में मोटे गांवकर अपने छात्रों से पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट में आए सवाल में से कितने ऐसे सवाल थे जो असली नीट पेपर में भी आए थे, और इसी के बाद जो परीक्षा के पहले मॉक टेस्ट का पेपर हुआ था उसकी परतें खुलती चली गई। आखिर सीबीआई को मोटे गांवकर पर शक क्यों हुआ? मोटे गांवकर महाराष्ट्र के कोचिंग सर्कल का एक बड़ा चेहरा है। आपको कह सकते हैं कि मोटे गांवकर एक कोचिंग टाइकून है। सीबीआई के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिसके बाद मोटे गांवकर से पूछताछ करना जरूरी हो गया, उसकी इंक्वायरी करना जरूरी हो गया।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोक्ट।

0: ट्रंप नेतन्याहू में आधे घंटे बाद। नए हमले का बना ब्लूप्रिंट। ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम। घड़ी की टिक टिक शुरू। 5 मांगे नहीं मानी तो कुछ नहीं बचेगा। नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई।
1: אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים.
0: 24 घंटे बाद ट्रंप देंगे ग्रीन सिग्नल। ईरान बोला ट्रिगर पर है उंगलियां। तेहरान में लड़कियों को AK-47 की ट्रेनिंग। यूएई के बाद सऊदी अरब पर हमले। ईरानी टीवी स्टूडियो में यूएई के झंडे पर फायरिंग। मुस्लिम देशों के पटने से अकेला पड़ा ईरान। अब की बार यूएई सऊदी खुलकर छेड़ेंगे संग्राम। हॉर्मुज की घेराबंदी से बौखलाया ईरान। ओमान सागर को कब्रगाह बनाने की चेतावनी। बच गया बिगुल, शुरू होने वाला है मध्यपूर में महायुद्ध पार्ट 2।
2: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। मध्यपूर में महासंग्राम के बादल फिर से मंडराने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान को चेतावनी दी है कि उसके लिए खड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और अगर ईरान के नेताओं ने जल्दी कदम नहीं उठाए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी धमकी से पहले ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी की और दोनों के बीच ट्रंप के चीनी दौरे को लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ईरान था। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब व्हाइट हाउस तेहरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई को लेकर कई विकल्पों पर मंथन कर रहा है। इस बातचीत के ठीक बाद शाम को नेतन्याहू ने कैबिनेट की एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें उन सभी मोर्चों पर समीक्षा की गई जहां पर इसराइल इस समय लड़ रहा है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक रविवार को दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि ट्रंप मंगलवार को व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसमें सभी विकल्पों पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बीच इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जंग के दूसरे दौर की तैयारी किस हद तक पहुंच चुकी है इसको लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। अमेरिका से हथियार लेकर दर्जनों विमान इसराइल में लैंड हो चुके हैं। यह बड़ी खबर इसराइल के चैनल 13 के हवाले से आ रही है जिसके मुताबिक विमान जर्मनी के अलग अलग ठिकानों से हथियार और गोला बारूद लेकर तेल अवीव पहुंचे हैं। 24 घंटे के भीतर इन विमानों का पहुंचना फिर से ईरान के लिए बड़े सैन्य अभियान के संकेत दे रहा है। इजरायली चैनल ने यह भी कहा है कि ये उस तैयारी का हिस्सा है जिसके तहत ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध का आगाज हो सकता है। इस बीच कई अमेरिकी रिफ्यूलर टैंकर भी ईरान के आसमान के ऊपर उड़ते हुए नजर आए और फ्लाइट टैंकर के कुछ विमान साफ देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ विमान ट्रांसपोर्टर बंद कर भी खबरें लगातार उनकी मिल रही। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार कई रिफ्यूलर्स, कई ट्रांसपोर्टर विमान तेल अवीव लैंड किए। यह माना जा रहा है कि 24 घंटे के बाद फिर से महायुद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी पड़ेगी। आखिरकार कौन सी है अमेरिका की वो 5 शर्तें, या फिर कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो इस समय इस युद्ध को लेकर डेडलॉक क्रिएट कर रही है। सबसे पहली फास्ट न्यूज के हवाले से दावा किया जा रहा है, अमेरिका की पहली शर्त क्या है? अमेरिका ईरान को कोई मुआवजा नहीं देगा। ईरान कह चुका है कि उसको इस जंग में हुए नुकसान का मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा जंग नहीं रुकेगी। फिर 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपा जाएगा। ईरान इस पर कह चुका है कि वो रशिया को देने के लिए तो तैयार थे, लेकिन अमेरिका को देने के लिए ये इनरिच यूरेनियम वो कतई तैयार नहीं। फिर तीसरी बड़ी बात क्या है, ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर ही चालू रहेगा, यानी बाकी जो सारे सेंटर्स हैं न्यूक्लियर इनरिचमेंट के या यूरेनियम इनरिचमेंट के, उनको बंद करना ही पड़ेगा। चौथी बड़ी खबर क्या है, चौथा बड़ी शर्त क्या है, अमेरिका फ्री संपत्ति का सिर्फ 25% जारी करेगा। सिर्फ अमेरिका में $54 बिलियन के करीब इस समय ईरान की संपत्ति जब्त है, मिडल ईस्ट में भी करीबन 20 से 22 मिलियन। अब पांचवी शर्त क्या है, सभी मोर्चों पर युद्ध का मुद्दा बातचीत से हल किया जाएगा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बाकी चीजें हैं वो सभी मोर्चे बातचीत से हल किए जाएंगे। लेकिन ईरान इन मुद्दों के ऊपर भी कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो कोई बात नहीं होगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ईरान का हक है और ईरान वहां से पीछे नहीं हटने वाला। और शायद इसी वजह से अब ये माना जा रहा है कि देखिए अब इस जंग के अंदर दोनों की शर्तें ऐसी हैं जिन्होंने फिर से एक डेडलॉक क्रिएट कर दिया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर युद्ध छेड़ रखा है, जहां वो हर घंटे कोई ना कोई नया ट्वीट जरूर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी झंडे वाला मध्यपूर्व का एक मैप पोस्ट किया है जिसमें सभी दिशाओं में से ईरान पर दाखिल होने का निशान दिख रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा था कि ग्राउंड फोर्सेस ईरान में कैसे दाखिल होंगी, तो अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ साझा किया है। ये ईरान में चारों तरफ से जमीनी सैन्य आक्रमण और कार्रवाई का एक नमूना है। क्योंकि ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही है कि इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने एआई से बनाई गई तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो दिख रहा है कि अमेरिका ड्रोन और लेजर की मदद से समंदर के ऊपर मंडराने वाले ईरानी विमान और समंदर का चक्कर लगाने वाले ईरान बोटों को नष्ट कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एआई जनरेटेड वीडियो भी ईरान के विमान को बटन दबाकर उड़ाने की एक्टिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दो पोस्ट और लगातार इस पोस्ट में ये नजर आ रहा है कि वो ईरान के खिलाफ एक जंग नई जंग छेड़ सकते हैं। अगर ट्रंप ने ईरान पर एआई से बनी तस्वीरें और वीडियो से निशाना साधा तो ईरान ने भी ट्रंप पर फिल्मी तंज कसा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बेगई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए द ऑप्टिक्स का एक वीडियो शेयर किया है। फिल्म ट्रंप के शुरुआती करियर पर आधारित है। वीडियो में ट्रंप के मेंटर रॉय कोहान जीतने के नियम बताते हुए नजर आते हैं। इसमें कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जीत का दावा करो और कभी हार मत मानो। वीडियो में यह भी कहा गया कि सफल होने के लिए इंसान को किसी के साथ भी कुछ भी करने को तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि ट्रंप लगातार ईरान पर जीत के दावे कर रहे हैं, लिहाजा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उन्हीं के जीवन पर बनी क्लिप को पोस्ट कर उन्हें बेनकाब करना चाहते हैं। सुनिए उस विकल्प में क्लिप में क्या कुछ कहा गया है।
3: Roy, you said we went hands down.
4: Rule 3. This is the most important rule of all. Okay? No matter what happens, no matter what they say about you, no matter how beaten you are, you claim victory and never admit defeat. Never admit defeat.
2: यानी मैदानी जंग के साथ साथ एआई जंग भी दोनों देशों में जारी है। ट्रंप भले ही ईरान का मजाक उड़ा रहे हो लेकिन सच्चाई यही है कि वो अब तक हॉर्मुज को खुलवा नहीं सके। एआई की तस्वीरें और वीडियो में ईरान के बोट और विमान उड़ाने के दावे जमीनी सच्चाई के बिल्कुल उलट हैं। इस बीच ईरान ने भी बाकायदा वीडियो जारी कर ये दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब IRGC के सैन्य नियंत्रण अब भी कायम है। उसने ये ताजा वीडियो जारी कर दिखाया कि हॉर्मुज में ईरान की सुरक्षा बेहद ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं और वहां की सुरक्षा चाक चौबंद और पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में है। ईरान का कहना है कि किसी भी तरीके की आवाजाही ईरानी पक्ष यानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के साथ तालमेल बिठाना जरूरी होगा। IRGC की नौसेना ने हाल ही में घोषणा की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण और अधिकार के दायरे का विस्तार कर रही है। उनका कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरीके से IRGC के नियंत्रण में है और वहां पर और ज्यादा सैन्य कार्रवाई का मतलब होगा अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। और इन्हीं बातों को लेकर हर रोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ ताजा वीडियो ईरान के मीडिया हाउसेस जारी करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही वीडियो एक बार फिर से जारी किया गया जिसमें कहा जा रहा है कि 30 से 40 जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं लेकिन अब भी कुछ ऐसे जहाज हैं जो वहां पर कतार लगाए हुए नजर आते हैं। और सिर्फ जहाजों से नहीं, ईरान अब समंदर के भीतर भी जाने वाले इंटरनेट केबल के बदले में फीस वसूलने का इरादा रखता है। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि अब ईरान का इरादा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरने वाले इंटरनेट केबल के बदले एक फीस वसूलेगा, एक टैरिफ वसूलेगा। अगर इस फीस को देने से इनकार किया जाएगा तो उसने यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को तबाह करने की धमकी दी है जो इस इलाके से होकर गुजरती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बैंक, डिजिटल सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सब ठप पड़ जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों की सर्विसेज इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है और नौबत उनको, आप कह सकते हैं कि उनके सर्विसेज ठप हो जाने तक आ सकती है। और इसी बीच फिर से महायुद्ध के भड़काने का अंदेशा इस बात से भी लगाया जा सकता है। दरअसल मध्य पूर्व के कहने को तो ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फ़ायर है, लेकिन इसी दौरान यूएई और सऊदी अरब पर हमले भी हो रहे हैं। ताजा हमले में जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब में से, जहां पर सऊदी अरब में कहा गया है कि उसने 3 ड्रोनों को मार गिराया है जो इराक के उसके एयरबेस से दाखिल हुए थे। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी ना तो ईरान ने ली है और ना ही इराक समर्थित किसी गुट ने ली है, लेकिन इराक के शिया लड़ाकों की ओर से पहले भी खाड़ी देशों पर ऐसे हमले हो चुके हैं। इन हमलों के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि वो सही समय पर सही जगह पर कार्रवाई करने का हक रखता है। इससे पहले भी करीबन 39 दिनों का युद्ध चला था, तब भी ईरान ने सऊदी अरब के तेल कुओं पर सीधा निशाना दागा था। और देखिए इसी बीच कल यूएई ने भी ड्रोन हमले को लेकर एक बड़ी खबर आई थी। संयुक्त अरब अमीरात की मीडिया ने कल बताया था कि हमले को लेकर एक बड़ा दावा किया था। उसके मुताबिक उत्तरी यमन से आए ड्रोन ने यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया था। अमीरात मीडिया ने बकायदा ड्रोन का एक रूट मैप भी जारी किया। उस रूट मैप में हूती गुट के ड्रोन को यमन से सऊदी अरब के रेगिस्तान को पार करते हुए बकायदा दिखाया गया और बताया गया कि वो लगातार यूएई के अलग अलग इलाकों पर, खासतौर पर उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें साफ हो जाएगा कि जब ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ गई है तो दो खाड़ी देश ईरान से बेहद नाराज हैं। इसमें से पहले देश है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसने ईरान के हमले से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कल यूएई के बरकाह परमाणु पावर प्लांट पर 3 ड्रोनों से हमला किया गया था। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। तीसरा ड्रोन अंदरूनी परिसर में यानी उसके प्रेमिसेस में गिरा और इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई। वहीं आज सऊदी अरब को निशाना बनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा भी की है। इन हमलों को लेकर ईरान चुप है, वहीं यूएई का रुख इतना सख्त है कि यह माना जा रहा है कि अगर अब युद्ध हुआ तो फिर अपनी रक्षा के लिए ईरान के खिलाफ वो युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। इसकी वजह साफ है क्योंकि 39 दिनों के युद्ध में ईरान ने यूएई के खिलाफ 2000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। यूएई ने ओपेक से निकल बाहर अपना रास्ता भी बना लिया है, यानी वो ओपेक का हिस्सा नहीं है, और साफ संकेत दे दिया कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की भी अपील की थी, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तैयार नहीं है। लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि 39 दिन के युद्ध में सऊदी अरब भी ईरान पर गुप्त हमले में शामिल था। अब यूएई और सऊदी अरब में ईरान की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन ईरान को मौजूदा माहौल के अंदर इन दोनों के पास आने का खतरा साफ नजर आ रहा है। यानी बड़ी खबर यह है कि ईरान दौरे पर आए पाकिस्तान के गृहमंत्री के साथ मुलाकात में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने अमेरिका और इसराइल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल मुस्लिम देशों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने हमेशा मुस्लिम देशों के बीच फूट डाली है, अविश्वास पैदा किया है, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पश्चिमी एशिया क्षेत्र में मुस्लिम देशों के साथ अच्छा पड़ोसी बनकर सुहाग के साथ रहना और स्थायी संबंध रखना चाहता है। आपको बता दें कि पेशकियान ने युद्ध की शुरुआत में भी खाड़ी देशों पर हुए हमलों पर खेद जताया था, लेकिन ईरान में असली सत्ता चल रही है। IRGC ने खाड़ी देशों पर हमले की रणनीति को जारी रखा है। ईरान में नरमपंथी माने जाने वाले पेशकियान अमेरिका के हमलों को टालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। वहीं खाड़ी देश से बेहतर संबंधों की पैरवी कर उन्हें अमेरिका से दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और देखिए एक तरफ तो पेशकियान बेहतर पड़ोसी बनने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही देश में टीवी स्टूडियो के अंदर AK-47 से राइफल से गोली चलाई गई। आप सुनकर और देखकर हैरान हो जाएंगे कि उस गोली के निशाने पर अमेरिका या इसराइल नहीं, उनका पड़ोसी देश या वही मुस्लिम देश यूएई था। देखिए, ईरान के एक टीवी चैनल पर AK-47 राइफल से निशाना साधा जा रहा था तो सामने यूएई का झंडा था। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि राइफल हैंडल करने वाले को यह बताया ही नहीं गया था कि ये राइफल खाली है या फिर लोडेड है, लेकिन जब उसने इसे लोड कर दिया और ट्रिगर दबाया तो गोली चल गई। लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यही रही कि ईरान में चली बंदूक के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि यूएई का झंडा था। अब स्टूडियो के अलावा अब ईरान के गली मोहल्ले और चौबारों पर या फिर चौराहों पर भी AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही। आप सोचेंगे आखिरकार ऐसा क्यों? दरअसल ये ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार ये बातें आ रही हैं कि ग्राउंड फोर्सेस कभी मूव करेंगी। एक चौंकाने वाले वीडियो में सामने आया जिसमें महिलाएं AK-47 खोलकर उनको असेंबल करती हुई नजर आ रही और फिर जोड़कर उन्हें चलाने की कोशिश भी करती है। ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये ईरान की आधिकारिक पब्लिक डिफेंस रेडीनेस यानी कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा है जिसके तहत बासिस यानी IRGC की वॉलंटियर मिलिशिया की महिलाओं की विंग को सक्रिय किया जा रहा है। ये सिविल डिफेंस की तैयारी है ताकि किसी भी तरीके के जमीनी आक्रमण को रोका जा सके और उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ईरान में महिलाएं कॉम्बैट रोल में नहीं है यानी वो नियमित सेना के लड़ने वाली भूमिका में नहीं है, लेकिन बासिस फोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर महिलाओं को भी सामने आना पड़ेगा और डिफेंस की लास्ट लाइन के तौर पर उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और इसी बीच एक और मोर्चा है जहां पर लगातार बड़ी जंग का आगाज होता हुआ दिख रहा है। इसराइल की बहुत बड़ी सीक्रेट प्लानिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी खबर यह आ रही है कि इसराइल पिछले एक साल से ज्यादा समय तक इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में 2 सीक्रेट मिलिट्री बेस चला रहा है। इसको लेकर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई है क्षेत्रीय और इराकी अधिकारियों के अनुसार इसराइल उस जगह पर इस्तेमाल इराक के खिलाफ सैन्य अभियान में सहायता के लिए कर रहा है, यानी इसका इस्तेमाल ईरान पर होने वाले हमलों को लेकर किया जा सकता है। इसमें एक अड्डे पर चरवाहे ने खोल दिया जिसमें उसने पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी इराक ने एक इजरायली ठिकानों की खबर दी थी, लेकिन इराकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि दूसरे सीक्रेट ठिकाने भी वहां पर मौजूद है, यानी एक बेस नहीं वहां पर 2 इजरायली बेस मौजूद है। और आपको ये बताएं कि साउथ सीरिया के बाद इराक एक ऐसा इलाका था जहां पर इसराइल अपने बेसिस को चुपचाप तरीके से तैयार कर रहा है। ये वो इलाका है जहां पर अभी भी इराक के फोर्सेस नहीं पहुंच पाते और इन इलाकों पर इसराइल ने अपने कुछ सीक्रेट बेसिस बनाए हैं जिनका इस्तेमाल वो ईरान पर हमले के लिए कर सकता है। 2 सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको इनकी तस्वीरें बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन बेसिस का इस्तेमाल इसराइल करने वाला है। और अब आइए आपको इसी बीच समंदर में इसराइल के बड़े एक्शन की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। इजरायली नौसेना ने गाजा की ओर बढ़ते 2 जहाजों को रोककर उन पर कब्जा जमा लिया है। ये जहाज गाजा की नाकेबंदी तोड़ने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जा रहे थे। अमांडा और होली ब्लू पर इजरायली सैनिकों ने कब्जा जमाते हुए देखा जा सकता है। इनकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। इसी के अलावा कई जहाज तुर्की के मार्मिरियाज बंदरगाह से रवाना हुए थे, ये अंतर्राष्ट्रीय जल में थे, तब इजरायली सेना ने इन्हें रोका। इजरायली सेना ने उकसावा और सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर इन्हें देखते हुए इनके ऊपर अपना कब्जा भी जमा लिया। उसका कहना है कि गाजा के आधिकारिक चैनलों में पर्याप्त सहायता पहुंच रही है। दूसरी तरफ फ्लोटिला में आ रहे लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अवैध तौर पर रोकने और लुटेरों जैसे व्यवहार मानते हुए बताए गए। दरअसल इसराइल का एक्शन सीज फायर के बीच भी जारी है। यही नहीं, हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग अब भी और ज्यादा विध्वंसक आक्रामक होती जा रही है। लेबनान में इसराइली एयरफोर्स ने भारी तबाही मचाई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में हमास के टॉप कमांडर और 7 अक्टूबर के हमले का एक मास्टरमाइंड इजल दीन अल हदाद को मार गिराने का दावा भी किया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से इसराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो मास्टरमाइंड था उसमें जो एक बड़ा कमांडर था उसको उसने मार गिराया है।
5: लेबनान में घमासान, 3 की गई जान। इसराइल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही। हमास ने माना गाजा में मारा गया उसका टॉप कमांडर। हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग और तेज हो गई है। ईरान के साथ सीजफायर के दौरान इसराइल इन दोनों आतंकी संगठनों से निपटने में जुटा है जो ईरान का साथ देते आए हैं और इसराइल की सरहदों पर मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। लेबनान में इसराइल ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इजरायली एयरफोर्स की अलग अलग इलाकों में की गई स्ट्राइक से 3 लोगों की जान चली गई और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमले तब हुए हैं जब अमेरिका ये दावा कर चुका है कि उसकी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम 45 दिन बढ़ा दिया गया है। अब अगली सैन्य मीटिंग 29 मई को तय की गई है। सीजफायर बढ़ने के बावजूद इसराइल ने कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और गोलाबारी की। इन हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान के गांव खाली हो रहे हैं। सईदा से बेरूत जाने वाले हाईवे पर बड़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़कर जाते दिखाई दिए हैं। हिजबुल्लाह भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के बुलडोजरों और सैनिकों को निशाना बनाया। साथ ही हदाथा शहर के बाहरी इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर रॉकेट दागे गए। बेका वैली में इजरायल ने 2 एयर स्ट्राइक की। कई जगह खतरे के सायरन की आवाजें सुनी गई और बमों की बरसात से लगी आग और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उधर गाजा में हमास के खिलाफ घमासान तेज हो गया है। इजरायल के दावे के बाद अब हमास ने मान लिया है कि उसकी कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर इस अल दीन अल हद्दाद की मौत हो गई है। उस पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। खान यूनिस में इजरायल के हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। आज तक ब्यूरो।
2: और चलिए रणभूमि में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
9: It's my music and it's my station.
8: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
14: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
16: इसमें माइक्रो फाइबर है।
14: माइक्रो फाइबर यानी
16: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
14: हमारे सीमेंट में नहीं है,
16: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
17: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: The taste of success.
5: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: The Tailgate Top 20.
10: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
9: The Tailgate Top 20.
11: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
10: Try to keep up.
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
4: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। फ्रॉम ब्रेकिंग अपडेट्स टू मैच एनालिसिस, from big moments to bigger conversations. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहां खबर वहां खबरदार,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

से कह रहे हैं मान लो, नहीं तो तरीके और भी हैं, जगह कम पड़ रही है तो कम करें जनसंख्या। पश्चिम बंगाल के मदरसों पर शुभेंदु सरकार ने कसा शिकंजा, धर्म आधारित योजनाओं पर लगाई पाबंदी, महिलाओं के लिए किया वादा पूरा, बस में सफर मुफ्त, 1 जून से हर महीने 3,000 रुपए।

गिरफ्तार, मंत्री संजीव अरोड़ा की न्यायिक हिरासत भी बढ़ी। भोपाल की त्विशा डेथ मिस्ट्री में नया मोड़, मां बाप ने की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, ससुराल वालों पर लगाए जान लेने के आरोप, ग्रेटर नोएडा

पांच देशों की यात्रा में उम्मीदों की उड़ान। पीएम मोदी को स्वीडन का सम्मान। बढ़ रहा दोस्ती का मान। यूएई से नॉर्वे तक बाहर रिश्तों का आसमान। ताकि दुश्मन ना मचा पाए सरहद पर कोहराम। बढ़ेगी तकनीक, बढ़ेगा कारोबार, समझौते हो रहे लगातार। यूएई से शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर पहुंच गया है नॉर्वे। हर देश में भव्य स्वागत, हर देश में एक नया समझौता। भारत की सुरक्षा का, भारत के विकास का और भारत के सम्मान का।

आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर है। उनके सफर की शुरुआत हुई थी यूएई से। यूएई और स्वीडन में उनके विमान पर एयर इंडिया को 1 फाइटर जेट की तरफ से अभूतपूर्व सुरक्षा दी गई। हर देश में उनका भव्य स्वागत किया गया जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। स्वीडन में उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा भी गया। इस सम्मान का नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांड ग्रेट क्रॉस। ये किसी विदेश सरकार का प्रमुख को दिया गया जाने वाला स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की तादाद बढ़कर अब 31 तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने इसे देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। प्रधानमंत्री जिस देश में भी जा रहे हैं वहां कई अहम समझौते भी किए जा रहे हैं। ये समझौते देश की सुरक्षा, विकास, नई तकनीक और बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। और यूएई के बाद नीदरलैंड और स्वीडन तक के कई अहम समझौतों पर मोहर भी लगा दी गई है। इसमें व्यापार से जुड़े कई एमओयू भी शामिल है। अब नॉर्वे और इटली में प्रधानमंत्री मोदी कई उच्च स्तरीय बैठक में शिरकत करेंगे। इससे पहले यूएई में ईरानी हमलों और हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही पर भी चर्चा की गई। और आपको बता दें कि 5 देशों की अपनी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंच गए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी की और स्वागत भी किया। पीएम मोदी वहां इंडिया नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे। नॉर्वे में भी कई अहम समझौतों पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

0: और देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे, वहां एयरपोर्ट पर नॉर्वे के पीएम ने उनका स्वागत किया और भारतीय संस्कृति या फिर आप कह सकते हैं भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। आपको बता दें कि नॉर्डिक समिट में, इंडिया नॉर्डिक समिट में वो हिस्सा लेंगे। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब नॉर्वे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक के अंदर वो शामिल हुए। इसके अलावा इंडो नॉर्डिक समिट में भी वो हिस्सा लेंगे। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पांच देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे पहुंच चुके हैं। नॉर्वे में इंडो इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण एमओयूज के ऊपर या समझौते के ऊपर बातचीत होने या फिर सहमति बनने की आशंका भी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेने के लिए, उनकी स्वागत के लिए खुद नॉर्वे के पीएम वहां पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पणे उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पणे का रुख कर लेते हैं। पणे, देखिए नॉर्वे का दौरा कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा यूएई हो, नीदरलैंड हो, कई समझौते किए गए, लेकिन अब नॉर्वे से क्या कुछ भारत के लिए आ सकता है या फिर क्या कुछ नए समझौतों पर, एमओयूज पर हस्ताक्षर हो सकते हैं?
1: देखिए सुमित, सबसे बड़ी और सबसे पहली अहमियत तो यही है कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार नॉर्वे में हैं और किसी द्विपक्षीय यात्रा के लिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की भी ये पहली नॉर्वे यात्रा है और नॉर्वे के अंदर तीसरी भारत नॉर्डिक जो समिट होने जा रही है, यानी नॉर्डिक क्षेत्र के देश यानी फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ये वो देश हैं जो नॉर्डिक क्षेत्र के देश कहे जाते हैं, जिनके पास में काफी संसाधन भी हैं, तकनीकी महारत है। और भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ जनवरी 2026 में, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली यूरोप यात्रा है जिसके अंदर वो नीदरलैंड, स्वीडन के बाद अब नॉर्वे पहुंचे और नॉर्वे के बाद उन्हें इटली जाना है। ये भारत के निर्यात के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। नॉर्वे वो देश है जिसके साथ भारत के ऊर्जा के भी संबंध है, कारोबार के भी संबंध है, तकनीक के भी संबंध है और निवेश के भी संबंध है। दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड जो है वो नॉर्वे के पास है, करीब $2 trillion से ज्यादा का है, जिसमें से $28 अरब वो भारत में निवेश करता है और भारत की उम्मीद है कि वहां से और निवेश जो है वो नॉर्वे से भारत आ सके।
0: और प्रणय देखिए, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि देखिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, पांचों देशों का दौरा अपने आप में एक नए नए आयाम या फिर एक नए नए आप कह सकते हैं समझौते लेकर आ रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रेड सम्मान उन्हें क्राउन प्रिंस विक्टोरिया ने प्रदान किया। पीएम मोदी ने इसे 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। स्वीडन दौरे पर भारत में कई अहम समझौते किए गए जिसमें तकनीक से लेकर सैन्य सहयोग भी शामिल है। स्वीडन में भारतीय परंपरा के अनुसार उनका भव्य स्वागत किया गया।

0: स्वीडन और यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड गोथनबर्ग में आना मेरी यात्रा को विशेष अर्थ देता है।
1: पीएम मोदी को स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान। पीएम मोदी बोले, ये देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान।
0: स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान।
1: स्वीडन के साथ हुए कई समझौते विदेशी धरती पर बढ़ा भारत का मान। ये दो देशों की दोस्ती की मजबूती का प्रमाण था। ये लम्हा था 140 करोड़ लोगों के मान का, सम्मान का। क्राउन प्रिंस विक्टोरिया के हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो ये पल भारत और स्वीडन के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला एक सुनहरा अध्याय बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये किसी विदेशी सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके साथ ही पीएम मोदी को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की तादाद बढ़कर 31 पहुंच गई है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को देश की जनता के नाम समर्पित किया।
0: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं।
1: गुटेनबर्ग में पीएम मोदी की यात्रा का एक एक लम्हा यादगार बन गया। रविवार को जैसे ही उनके विमान ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, वहां की वायुसेना के अत्याधुनिक ग्रिपेन वॉर प्लेस ने उनके विमान को अपने सुरक्षा घेरे में लिया। आसमान में एयर इंडिया वन की सुरक्षा की ये तस्वीर भारत की अहमियत को दर्शाती है। फिर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने खुद मौजूद रहकर पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया।

0: हुटनबर्ग की सड़कों पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी। पूरा इलाका मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। हुटनबर्ग में भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। स्वीडिश ओपेरा सिंगर चार्लोटा हुल्डट की आवाज में वैष्णव जन भजन गाया गया, तो भरतनाट्यम ने भी पीएम मोदी का मन मोह लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परचम लहराने वाले पीएम मोदी के लिए बंगाली संस्कृति की भी एक खूबसूरत झलक पेश की गई। जिसने सबका दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा भी कि बंगाली संस्कृति पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इस दौरान जिसने पीएम मोदी को देखा वही उनका मुरीद हो गया, वो चाहे प्रवासी भारतीय हों या फिर स्वीडन के स्थानीय लोग।
1: वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट दिस विजिट हैपेंड थ्रू आवर स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टेंसन एंड दीज आर ऑल फ्रेंड्स हु हैव बीन सपोर्टिंग दिस विजिट एंड आई थिंक वी शुड गेट दिस विजिट मोर ऑफ्टन इन द फ्यूचर।
0: इस मौके पर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और स्वीडन के बीच कई समझौते भी हुए।
2: फ्रेंड्स, आज भारत और यूरोप के संबंध एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। सरकारों के स्तर पर हमने एक एम्बिशियस और स्ट्रेटेजिक एजेंडा तय किया है, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन चुकी है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप तथा मोबिलिटी एग्रीमेंट ने भी हमारे सहयोग को नई दिशा दी है।
3: प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि कौन से इन पांच देशों की यात्रा में भारत को क्या क्या मिलेगा, किन मुद्दों पर इन सभी पक्षों के बीच में बातचीत हुई और सहमति बनी है। सबसे पहले हम यूएई के दौरे की बात करते हैं। यूएई से हमें क्या मिला, देखिए, ऊर्जा सुरक्षा, एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व, भारत में निवेश और रक्षा सहयोग, यानी ये तमाम 5-6 पॉइंट्स हैं जो यूएई के दौरे से हमें मिले। अब उसके बाद दूसरी है नीदरलैंड का दौरा, यानी सेमीकंडक्टर, आप कैसे क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन, ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए आसान वीजा, इसके बाद डेयरी हेल्थ और एनिमल हस्बेंड्री में सहयोग, यानी नीदरलैंड से हमें ये कुछ मिला। अब उसके बाद बात करते हैं स्वीडन की बात। स्वीडन से रणनीतिक साझेदारी है, कारोबारी निवेश, सैन्य सहयोग, एआई, सबसे महत्वपूर्ण बात है एआई को लेकर और मौसम के बदलाव पर असर, इसको लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे हो सकती है, कैसे बातचीत की जा सकती है। अब नॉर्वे, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस समय मौजूद है, वहां से क्या मिल सकता है। इंडिया नॉर्डिक समिट, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी उसका हिस्सा होंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी आर्किटेक्ट और ब्लू इकोनॉमी, इसके बाद एआई और सप्लाई चेन। सप्लाई चेन इसलिए क्योंकि भारत को लगता है कि प्रोडक्शन सप्लाई चेन और बेहतर यूरोप के साथ की जा सकती है। अब आखिरी दौर, आखिरी पड़ाव होगा उनका 5 देशों के, उसमें इटली, इसमें रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और संयुक्त रणनीतिक योजना, यानी इटली के साथ ये समझौते होने की आशंका है। और अब हमने आपको 5 देशों के यानी दौरे के बारे में बताया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि यूएई और नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भारत में सुनहरे भविष्य के लिए किन किन समझौतों पर मोहर लगाई गई है।
4: पहले यूएई में ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर हुए कई समझौते, हॉर्मुज के हालात से लेकर ईरानी हमलों तक पर भी चर्चा, फिर नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर सेक्टर का समझौता, भारत की सुरक्षा, भारत का विकास और दोस्त देशों को भारत का भरोसा। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा में कई ऐसे समझौते हो रहे हैं जो सुनहरे भविष्य का खाका खींचने का काम करेंगे। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा की शुरुआत हुई यूएई के साथ, वो देश जो ईरान के साथ महायुद्ध की आग में भी झुलसा है और उसने पलटवार भी किया।

मुक्त हो चुका है, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और देखिए, इसी साल आपको बता दें कि यह कहा गया था कि नक्सल पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह संबोधन के दौरान बोले कि अब यह काम पूरा हो चुका है, यह मिशन पूरा हो चुका है, यानी अब भारत जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है।

0: चले रणभूमि में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: సోకుడు
8: सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री कृष्ण से उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।

जब ईरान से दोबारा युद्ध का प्लान तैयार हो रहा है। जब ईरान पर बड़े हमले से पहले बैठकों और रणनीति का दौर शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर दोबारा हमले से पहले ट्रंप की प्लानिंग के दो सबसे अहम बिंदु हैं। पहला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बहाली और दूसरा ईरान में तय ठिकानों पर बमबारी। पहले ऑपरेशन का मकसद ईरान पर हमला कर फिर से तबाही मचाना है, वहीं दूसरा अभियान ईरान में जमीन के अंदर छिपे परमाणु भंडार के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत अटकने का ये सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। एक चर्चा अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम की दोबारा बहाली की भी है, ताकि होर्मुज रूट के जरिए एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देश इस कोशिश में लगे हैं कि कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल दे, जिससे ट्रंप अपने देश में ये दिखा सकेंगे कि उन्होंने कूटनीतिक जीत हासिल की है। क्योंकि अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है, लेकिन यही रास्ता ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन गया है। होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही बाधित है, हालात तनावपूर्ण हैं। ईरान से सीजफायर हुए 40 दिन बीत गए हैं, डील का कोई रास्ता नहीं निकल सका है। अब ट्रंप को ये फैसला लेना है कि क्या ईरान पर फिर से बम बरसेंगे या बातचीत का रास्ता निकलने की एक आखिरी कोशिश होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। इसे लेकर ही ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की। अगर हर कूटनीति फिर फेल हुई तो जल्द ही मध्य पूर्व में फिर युद्ध की घड़ी आ सकती है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

खरीद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर योगी का सख्त बयान, चौराहे पर तमाशा मंजूर नहीं, प्यार से कह रहे हैं मान लो, नहीं तो तरीका और भी है, जगह कम पड़ रही हो तो कम करें जनसंख्या।

बंगाल के मदरसों पर शुभेंदु ने कसा शिकंजा, धर्म आधारित योजनाओं पर लगाई पाबंदी, महिलाओं के लिए किया वादा पूरा, बस में सफर मुफ्त 1 जून से हर महीने 3,000 रुपए। नॉर्वे में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, ऑस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शिरकत, बड़े व्यापारिक समझौतों की उम्मीद, यात्रा के आखिरी चरण में इटली का दौरा। छत्तीसगढ़ में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सीना तान कर बोल सकता हूं कि भारत अब नक्सल मुक्त, बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, सरकारी नौकरी में आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण मिलेगा।

0: मिस्ट्री मैन नया मोड, माँ बाप ने की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, ससुराल वालों पर लगाया जान लेने का आरोप, ग्रेटर नोएडा में भी दहेज के लिए महिला की हत्या।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। दुनिया इस वक्त सिर्फ युद्ध के मुहाने पर नहीं खड़ी है बल्कि ऊर्जा संकट की तहलीज पर है। हॉर्मूज में तनाव है जिसका असर सीधे हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर खेत खलियान होते हुए रसोई तक भी पहुंच गया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बचत का संदेश दिया। पीएम मोदी की अपील का असर तेजी से दिख रहा है। जो नेता कभी लंबे लंबे काफिले की पहचान थे वो मेट्रो के डिब्बों में नजर आ रहे हैं। कोई साइकिल से दफ्तर जा रहा है तो कोई कार पुलिंग कर रहा है। सवाल सिर्फ सफर का नहीं है, सवाल उस संदेश का भी है जो सत्ता जनता तक पहुंचाना चाहती है। वैश्विक संकट पर सरकार से सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन लगता है कि आज विपक्ष खुद उन सवालों में घिर गई। जो कांग्रेस बीजेपी की रैलियों में गाड़ियों और मंत्रियों के काफिलों पर सवाल उठा रही थी वो आज केरलम में भूल गई। केरलम सीएम शपथ ग्रहण में भारी भीड़ उमड़ी। क्या ये भीड़ पैदल चलकर आई होगी या फिर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा? सरकार पर उंगली उठाने के साथ साथ अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझता तो शायद विपक्ष की वाहवाही भी होती, लेकिन लगता है कि सियासत का मिजाज एक जैसा होता है। आज इन्हीं मिजाज को टटोलने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन जानेंगे क्या बचत का बटुआ रखने का जो जिम्मा है वो सरकार के लोगों पर है या सिर्फ फिर विपक्ष पर भी है। अगर वैश्विक संकट का एहसास विपक्ष को है तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल सत्ता में बैठी बीजेपी से भी है कि क्या चंद दिनों की बचत ही काफी है? क्या विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए सरकार के पास कोई और ब्लूप्रिंट है या सिर्फ जनता से बचत करवा के ही विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सकता है? इन सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों लंबा वीआईपी काफिला नहीं दिख रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे शुरू किया तो सीएम से लेकर मंत्री तक सभी मेट्रो पर सवार दिखे।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपना अपना प्रयास करना है। देश की आज मांग है कि हमको ईंधन को बचाना है और वो लंबे समय तक हमारा रिजर्व रहे, उसके लिए कोशिश करनी।
2: अपील के साथ पूरी दिल्ली खड़ी है, पूरा देश खड़ा है और इसीलिए आज दिल्ली सरकार के लगभग सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। मैं भी मेट्रो से आया हूं और मेट्रो से आईपी मेट्रो स्टेशन उतरा हूं और वहां से स्पेशल फीडर बसें चलाई गई हैं।
0: ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में सत्ता की राजनीति सचमुच बदल रही है?
3: मेरी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, मैं इसे अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर पालन कर रहा हूं और उसको पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने बिना किसी दबाव के दिल्ली के नागरिकों को आज के दिन सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग करने का, मेट्रो का ज्यादा उपयोग करने का आह्वान किया है और मैं भी उसी का पालन कर रहा हूं।
4: जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और मुख्यमंत्री जी ने भी सबसे आग्रह किया था मेट्रो मंडे के नाम से, मेरा भारत मेरा योगदान उसमें दिखना चाहिए और इस संकट की घड़ी में हम सब लोग मिलकर अगर नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो भारत के प्रति बाकी लोगों को कैसे कहेंगे। मेरा मानना है कि एक नया एक्सपीरियंस जरूर है सबके लिए। मैं आज मेट्रो में एक चीज नोटिस की, बहुत सारे लोग, मैं अक्सर ट्रेवल करता हूं मेट्रो में, लेकिन आज लोग मिलने आ रहे थे इसलिए ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जब आह्वान किया है हम भी मेट्रो में जा रहे हैं।
0: भारत में इन तस्वीरों पर भरोसा जल्दी नहीं होता क्योंकि इस देश ने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। फिलहाल चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की साइकिल से दफ्तर जाने की तस्वीर हो या फिर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की कार पूलिंग की तस्वीरें फिलहाल अच्छे संकेत की तरफ इशारा करती हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लगातार पीएम मोदी के संदेश को आगे बढ़ाने में जुटे।
5: यस, मैं उनको देखो, एक मुहावरा है ना कि हम उनको 21 तोपों की सलामी, मतलब हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं।
6: जो गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको भी सलामी
5: नहीं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है लेकिन उनको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो। हम 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला चुके हैं, बस चला चुके हैं और आज तो हमने ऑटो पुल किया, इलेक्ट्रिक बैटरी वाला ऑटो था ना, बैटरी वाले ऑटो में हम और कुलजीत चहल आए हैं।
0: ये हालात वैश्विक संकट से पहले नहीं थे लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद क्रूड ऑयल के दाम रॉकेट की तरह आसमान छूने लगे। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, यानी हर बढ़ती कीमत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस साल मार्च में जहां क्रूड ऑयल पर भारत को 1,17,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अप्रैल में 1,79,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। बचत की बहस को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना शायद गलत होगा क्योंकि दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तेल सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं चला रहा, राजनीति युद्ध और वैश्विक ताकतों की दिशा भी तय कर रहा है। इसलिए नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बीच उन चुनौतियों का जिक्र किया जिनका सामना दुनिया कर रही है।
7: ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी का टैंक महंगा नहीं भरता, सब्जी महंगी होती है, दवा महंगी होती है, खेती महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सोना चांदी सब महंगा हो जाता है और अंत में आम आदमी की जिंदगी भी महंगी हो जाती है। इसीलिए पीएम मोदी ने बचत के फॉर्मूले को देश के सामने रखा था।
7: मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी,
8: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इस बीच हॉर्मुज में तनाव के बादल और घने हो गए। इसराइल में असलाह बारूद हथियार इकट्ठा होने की खबर और अमेरिका इसराइल ईरान का हर बयान बाजार में डर पैदा करता है। इसलिए भारत को संभल कर चलने की जरूरत है। पीएम की अपील का असर सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, विपक्ष के बीच भी अपील पहुंचनी चाहिए। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार भी है और कर्तव्य भी, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ सवाल पूछने तक खत्म हो जाती है? केरल में सीएम पद के शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होते, हजारों कार्यकर्ता जुटते, जब बड़े बड़े मंच सजे, जब बसों और गाड़ियों के लंबे काफिले निकलते, तो क्या वहां ईंधन नहीं जलता? लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय संकट में सहभागिता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। और इतिहास गवाह है, जब दुनिया ऊर्जा संकट में होती है, तब राष्ट्र की असली पहचान उनकी सियासत से नहीं, सामूहिक अनुशासन से होती है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में ईंधन बचत अब राजनीति नहीं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन चुकी है? आज तक ब्यूरो।
9: तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से देश को संबोधित किया और कहा कि थोड़े से ऑस्टेरिटी मेजर्स आपको होने चाहिए, हालांकि सरकार कहती है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बचत की जो अपील की, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कई सारे मंत्री नेता अलग अलग तरीके से काफिले कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मेट्रो से सफर कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा से जा रहा है, कोई मोटर बाइक पे जा रहा है, लेकिन क्या ये काफी होगा? ये चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति में जो निचले स्तर का व्यक्ति है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे, रजत सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और प्रोफेसर अखिल स्वामी इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। उसके साथ साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र भटनागर बिजनेस टुडे से, वो भी उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या बचत की अपील जो प्रधानमंत्री ने की है अलग अलग समय पे, क्या उतनी अपील काफी है या और भी कुछ चीजें करना सरकार के लिए जरूरी होगा आने वाले समय? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले बड़े संकट की तैयारी दरअसल इसके तरीके से हो रही है? क्योंकि कई लोग इस पूरे अपील को बड़े संकट की तैयारी के तौर पर भी देख रहे हैं, तो क्या सचमुच में बड़े संकट की तैयारी है? तीसरा सवाल, युद्ध खत्म होते ही क्या स्थिति सुधर जाएगी, या उसके बावजूद यह लंबी इकोनॉमिक आर्थिक लड़ाई इस देश को लड़नी होगी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह भी आ रही है, क्योंकि आज दिन भर में जो आंकड़े आए उससे यह नजर आता है कि एक बार फिर पहली बार 54 पैसे टूटकर 96.35 रुपया प्रति डॉलर पहुंच गया है, रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की है, शैलेंद्र इसे हम किस तरीके से हमें देखना चाहिए?
10: नमस्ते, आप सबको मेरा नमस्कार। इसको सिर्फ आप एक ही तरीके से देख सकते हैं, जो हमारा तेल और सोने का इंपोर्ट बिल है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, वो एक बहुत ही प्रतिकूल असर आपको डॉलर पर लगाता हुआ दिख, रुपए पर लगाता हुआ दिख रहा है। और पिछले 2-1 दिनों में आपने तेल के दाम को 3 हफ्ते का उच्चतम लेवल, यानी कि 113-114 डॉलर प्रति बैरल होते हुए देखा है, और उसका खामियाजा आपको रुपए पर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 दिन से लगातार हर दिन रुपया कमजोर हुआ है, और अब मई में यानी कि 2026 में रुपया दुनिया की सबसे बुरी करेंसी बना है, 8% नीचे डॉलर के विरुद्ध।
9: क्या सिर्फ युद्ध के वजह से यह हो रहा है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2022 के बाद लगातार जो 85 रुपए के करीब डॉलर प्रति डॉलर रुपया था, वो आज 10 रुपए और नीचे गिरा हुआ है, और अब युद्ध के पहले भी हम देख रहे थे कि लगातार रुपए में गिरावट यह आ रही थी। तो क्या सिर्फ युद्ध ही एक कारण है? क्या एनर्जी सोर्सेस का रुक जाना या उसमें अटकाव होना यही सबसे बड़ा कारण, या बाकी भी कारण हम आप यहां पर देख रहे हैं?
10: दो और कारण हैं। सन 2023-2024 में रुपए को आर्टिफिशियली रोका गया था और अब हम लोग देख रहे हैं हमारे जो विदेशी मित्र हैं वो हमारे देश से स्टॉक्स को बेच बेच कर जापान और कोरिया और अमेरिका के बाजारों में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रेड्स हैं और कंपनीज हैं उनमें ज्यादा मुनाफा आपको आता हुआ दिख रहा है। इस वजह से रुपए में गिरावट और आपको बढ़ती हुई दिख रही है। अप्रैल के महीने में लगभग 1,22,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आपने विदेशी मित्रों द्वारा देखी गई और पहले 5 महीने में सन 2026 के पिछले 3 साल से ज्यादा की सेलिंग आपको आती हुई दिखी है जोशी साहब। इससे भी काफी आपको रुपया दिक्कत में आता हुआ दिख रहा है।
9: ठीक है शैलेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यह चर्चा आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। गौरव भाटिया जी, सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में सभी लोग यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बचत की अपील की गई है क्या वो काफी होगी। संजीव अहलूवालिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, इकोनॉमिस्ट है, क्या ये काफी होगी? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अरविंद सुब्रमण्यम जो पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे सरकार के, उनको पूछा गया कि ये अपील से क्या होगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस अपील के जरिए हम फॉरेन एक्सचेंज को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि यह फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस नहीं है, दरअसल जो क्राइसिस आज की स्थिति में है वो अफोर्डेबिलिटी और लाइवलीहुड यानी आजीविका की क्राइसिस हो सकती है। तो क्या उसके मद्देनजर सिर्फ बचत की अपील काफी होगी?
11: साईं जी नमस्कार। सबसे पहला तो हम सब जानते हैं ये एक वैश्विक संकट है और इस वैश्विक संकट में जहां विकसित देश जो हैं वहां पे पेट्रोल डीजल की कीमत 20% से लेकर 100% तक बढ़ी है, जैसे चीन में 23%, अमेरिका में 45, कनाडा में 30%, ऑस्ट्रेलिया में 30%। हमने देखा है भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी केवल 3% पेट्रोल और 3% करीब डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। और यह कब है? सबसे पहले 75 दिन तक युद्ध चलता रहा लेकिन आम नागरिक पे बोझ ना पड़े यह सुनिश्चित किया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो तेल कंपनियां हैं उन लोगों ने सुनिश्चित किया कि चाहे उनका मुनाफा कम हो लेकिन नागरिकों पे बोझ ना हो। दूसरी बात, युद्ध के बावजूद पर्याप्त मात्रा में हमें पेट्रोल डीजल मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार में हम देखते थे आता था सुझाव कि 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक बंद कर दीजिए पेट्रोल पंप, वो हो रहा हो, वो भी नहीं हो रहा। तीसरी बात, आगे के लिए भी अभी 60 दिन से लेकर 45 दिन तक का पेट्रोल डीजल का और गैस का हमारे पास रिजर्व सप्लाई है। चौथी बात, सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है हमें एक बात समझनी होगी। मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा यह बड़ा संकट है पूरे विश्व पे, यह सच बात है, पूरे विश्व पे बड़ा संकट है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में है, $690 बिलियन का हमारे पास रिजर्व है, अभी भी जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल्ड 3.5 से 4% पे है, तो एक बड़ी चुनौती है साहिल जी। और इस चुनौती में एक बात और, 140 करोड़ भारतीय अगर नरेंद्र मोदी जी की अपील पे साथ खड़े हो सकते हैं तो ऐसा क्यों है कि विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है और जड़े खोदने का काम कर रहा है देश की? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा, यह बताइए, 3 झूठ बोले जाते हैं, मैं रोज आपका चैनल देखता हूं साहिल जी। पहला, रूस से तेल बंद कर दिया गया, मैं अभी सही आंकड़े भी दूंगा और बताऊंगा किस तरह से $20 से $25 बिलियन हमने बचाया है। 30 से 35% जो आयात होता है कच्चे तेल का वो रूस से होता है, कांग्रेस के समय में ये 1% था। दूसरी बात, पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया, आपको याद होगा साहिल जी, उन्होंने कहा ये 2 जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं भारत नहीं आएंगे, कहीं और जाएंगे, बाद में भारत आ गए, ट्वीट डिलीट हो गया। ये झूठी अफवाहें क्यों फैला रही है कांग्रेस पार्टी? क्या कार्रवाई करी ट्वीट डिलीट करने के अलावा?
9: जो एक महीने की मियाद थी वो पूरी हो गई है, उसके बाद भी रूस से हम तेल खरीद रहे हैं? गौरव भाटिया जी, जो एक महीने की मियाद थी
11: मैं
9: खत्म हो गई है,
11: साहिल जी
9: अमेरिका ने कहा था कि ठीक है अभी आप खरीद सकते हैं, अब इसके बाद भी हम खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे?
11: देखिए हाँ मैं आपको बिल्कुल जानकारी दे देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि क्या एक महीने के बाद भी हम ले रहे हैं। हम पिछले 4-5 सालों से लगातार रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं, कभी भी ये रुका नहीं। और कोई देश ये नहीं बताएगा कि भारत को अपने हित में क्या करना है। और ये आंकड़े आप ले लीजिए, सबसे ज्यादा
12: आगे भी लेंगे,
11: 2026
12: के आगे भी लेंगे,
11: महीने के पहले की भी बात कर रहा हूं। एक मिनट साहिल जी, मैं 3 आंकड़े दे दूं जल्दी, 10-10 सेकंड लगेंगे,
12: जल्दी सर, क्योंकि बाकी लोगों से भी पूछ रहे हैं।
11: सबसे ज्यादा कच्चा
12: तेल, क्योंकि बात बड़ी है कि आपने रूस का जो टॉपिक आपने निकाला हुआ यहाँ पर,
11: बिल्कुल
12: कल ही व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उनका जो स्टेटमेंट चल रहा था वो भी लोग सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं, अभी उस पर किसी भी तरीके से बैन नहीं है, जिस तरीके की वैश्विक स्थिति बनी हुई है इसकी वजह से, और खबरें भी उस वक्त आई थी। लेकिन आज दोबारा ये खबरें आई है कि 1 महीने की मियाद पूरी हो रही है, इसीलिए सवाल ये उठता है कि इसके बाद भी खरीदते रहेंगे कि नहीं खरीदते रहेंगे। अब
11: मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को सुना, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनिए। डंके की चोट पे कहता हूं, हमारी स्वायत्तता, हमारा जो अपना कड़ा फैसला है भारत के हित में, वो हम लेते रहेंगे। रूस से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात हुआ 2026 में, जनवरी में 10 लाख बैरल से 12 लाख बैरल और मार्च में 18 लाख से 20 लाख बैरल। 1 महीने की अगर आप कहते अनुमति दी थी तो ये जनवरी फरवरी में कैसे आयात हो रहा था। तीसरी बड़ी बात, 30-35% हिस्सा रूस का है आयात में, कांग्रेस के समय में ये 1% था। एक बार पूछिएगा झूठ क्यों फैलाया, अपने समय में रूस से क्यों नहीं कच्चा तेल।
12: आलोक शर्मा जी,
11: और विश्वास,
12: वो तो कह रहे हैं कि बचत की अपील फिलहाल है और हम तो खरीदते रहेंगे, इसके बाद भी खरीदते रहेंगे। और दूसरा आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप क्यों अडांगा डाल रहे हैं। आपने उन पर उंगली उठाई थी कि जब बड़े बड़े शपथ ग्रहण हो रहे थे, केरल के भीतर भी बड़ा बड़ा शपथ ग्रहण किया गया, तो अगर उन पर उंगली उठती है तो थोड़ी उंगली आप पर भी उठ जाएगी।
13: साहिल जी देखिए, आपने 6 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता को दिए, उतना ही समय मुझे दे दीजिएगा, ज्यादा नहीं चाहिए। इनकी ना तो कोई नीति है ना नियत है। रशिया से तेल खरीदना बंद किया ये मंत्री ने माना, उसके बाद अभी पिछले 2 दिन से किसी मंत्री को नहीं पता है कि हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, खरीद रहेगी कि नहीं रहेगी। बार बार दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वहां 1% बढ़ गया, यहां 1% बढ़ गया। उन देशों में जिस समय पर $18-20 पर प्रति बैरल पेट्रोल डीजल गया था, उस समय पर उनके देश में क्या रेट था? उन देशों ने अपने नागरिकों को पूरी छूट दी। यहां पर जब भी जेब काटते रहे, आज भी जेब काट रहे हैं, इसलिए पहला लॉजिक तो यहीं पर फेल हो जाता है। दूसरा, जो ये नौटंकी हो रही है ना कि गाड़ियों का काफिला तो सड़क पर चल रहा है और मंत्री जी मेट्रो में बैठे हैं, वो पूरी पोल खुल रही है सोशल मीडिया पर। एक दिन बुलेट पे बैठ के जाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अगले दिन नासिक से 20 गाड़ियों का काफिला चलता है, लेकिन शायद आप नहीं दिखा पाएंगे। मुझे लगता है कि नौटंकी की पोल रोज खुल रही है। मेरठ में क्या हुआ है कल, बीजेपी के एक लीडर का जिला परिषद चेयरमैन बना है केवल, क्या हुआ है वो देख लीजिए। आज जिस तरह से दिल्ली में दिखाया आपने तमाम मंत्रियों को, वो मंत्री मेट्रो से उतर के कहां गए? ठीक है ऑफिस चले गए, शाम को कैसे गए वो?
12: जरा वो ट्रैक्टर शाम को सारे के सारे गाड़ी का बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी वहां पर।
13: नहीं वो आप दिखाएं ना दिखाएं, वो आपका भाई विशेषाधिकार है, आप लोग क्या दिखाते हैं। मैं तो कहूंगा कि सीएम साहब का भी काफिला दिखा दीजिए महाराष्ट्र का, जब इतनी हिम्मत कर ही रहे हैं तो आप। खैर मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। मोदी जी ने 2 गाड़ियां दिखाई, क्या SPG के प्रोटोकॉल को बदल दिया गया है? क्या आगे भी मोदी जी अब 2 गाड़ियों के काफिले में ही चलेंगे? क्या SPG का जो प्रोटोकॉल था सिक्योरिटी का वो बदल दिया है? किसने बदला वो? क्या गृह मंत्रालय ने बदला? किसी के पास जवाब नहीं। टोकनिज्म किया जा रहा है, नौटंकी की जा रही है, टोकनिज्म से देश नहीं चलता है। आर्थिक नीति के मामले में अभी अर्थशास्त्री महोदय ने बताया कि रुपए को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया क्योंकि चुनाव चल रहे थे, प्राइसेस को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया क्योंकि चुनाव चल रहे थे। सरकार ने गोल्ड खरीदा, इनके सबसे बड़े मित्र अडानी ने गोल्ड खरीदा। मैं तो कह रहा हूं व्हाइट पेपर लेकर आइए ना कि पिछले 2 महीने में, जब से 3 महीने से युद्ध चला है, अडानी ने की कंपनियों ने कितना गोल्ड खरीदा है और सरकार ने कितना गोल्ड खरीदा है। दूसरी चीज ये है कि विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दो। मैं तो कई दिन से उम्मीद कर रहा हूं कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता या कोई मीडिया चैनल पंडित नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। बड़ा आश्चर्य की बात है, पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देना चाहिए। जो भाड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से विदेशी निवेश भाग रहा है, ये भी विपक्ष की वजह से भाग रहा है। जो अप्रैल के महीने में 1,25,00,000 करोड़ रुपया फॉरेन एक्सचेंज में निकल गया, ये भी शायद केरला के जो हमारे वहां पर जो आज मंत्रिपरिषद का गठन हुआ उसकी वजह से गया होगा। इस सरकार की न नीति है न नियत है। अभी तक तो चुनाव चुनाव खेल रहे थे, अब विश्व विश्व खेल रहे हैं कि विश्व में ऐसा विश्व में वैसा। अरे भाई आपकी सरकार
11: उत्तर दे दो,
13: आप विश्व के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं?
12: तो क्या बचत की अपील काफी नहीं है? आलोक शर्मा जी, बचत की अपील काफी नहीं है? आपको लगता है कि उससे ज्यादा कुछ चीजें होनी चाहिए?
13: किसी के बीच
12: कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, बचत की अपील काफी नहीं है?
13: साहिल जी राहुल गांधी जी ने आज से 2.5 महीने पहले चेताया था, एक ऑल्टर पार्टी मीटिंग होनी चाहिए थी। तमाम अर्थशास्त्री बैठते, तमाम मंत्री बैठते, एलओपी को बैठाते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस समय पर भी हिंदू मुसलमान करते घूम रहे थे। युद्ध से पहले तो 50 रुपए का डॉलर मिल रहा था, जो आज 100 के करीब पहुंच गया है। युद्ध से पहले तो 50 में मिल रहा था, लगातार करेंसी गिर रही थी, कोई कंट्रोल करने को तैयार नहीं था। दूसरी चीज यह है, एक
12: रजत सेठी,
13: यही तो प्रॉब्लम है।
11: मैं फिर
13: कहूंगा कि आज
12: दिखावा हो रहा है आपकी, कुल मिलाकर विपक्ष का यह कहना है कि दिखावा हो रहा है। रजत सेठी
13: एक मिनट देखिए सुनिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।
12: विपक्ष का कहना है कि दिखावा हो रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अभी आप ये सारी चीजें कब करेंगे? आप दिखाएंगे कि भाई हम तो बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात जो अरविंद सुब्रमण्यम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस नहीं है, ये लाइवलीहुड का क्राइसिस हो सकता है, अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस हो सकता है। इससे हो पाएगा क्या? क्योंकि रियलिटी और जो बताया जा रहा है उसमें फर्क हमेशा रहता है।
14: नहीं साहिल जी, ऐसे तो अगर तेल के सारे कुएं सूख जाए तो फिर क्या होगा? वो अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम परिस्थिति सोचेंगे तो उस हिसाब से तो हर कदम ही छोटा लगेगा, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार करने की क्या कोशिश कर रही है ये समझना चाहिए। इंडिकेटिवली ये जरूर बोल रही है कि एक ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर लेने हैं तो एक कलेक्टिव रिजॉल्व के साथ लेने पड़ेंगे, और उसमें हम सबको थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ऑफकोर्स पूरी सुई नहीं घूमती है हर छोटी प्रक्रिया से, उसको विपक्ष अपने चश्मे से देखेगा तो उनको नौटंकी लगेगी, बट लेकिन आप कर क्या रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसे तो होने को ये भी हो सकता कि कल ही युद्ध खत्म हो जाए, हम तो ये सब बातें ही खत्म हो जाएंगी हमारी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला हेग में जो बोला, और जिसके ऊपर गाय का वध था, और तमाम बड़े जो थिंकर्स हैं उन सब ने इस चीज को नोट किया, क्योंकि यहां पे ना इतनी तूतू मैमे होती है राजनीति की, जो गहरी बातें होती हैं वो कहीं दब जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी एक ही दशक के अंदर इतने बड़े बड़े एक्सटर्नल शॉक्स हों, कि सरकार अगर बफर बनाएगी भी तो वो बफर रह नहीं जाएगा। आपने कोविड झेला, उसके बाद आपने रशिया का युद्ध झेला, उसके बाद ये जो ईरान का युद्ध है, फिर एनर्जी क्राइसिस है, तमाम इतनी सारी चीजें हैं कि भारत सरकार, कोई भी सरकार हो, यहां पे अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो वो कृत्रिम रूप से कितने बफर तैयार कर सकती है, उसकी एक सीमा है। भारत सरकार ने भी जिस तरह से एक्सटर्नल मैनेजमेंट किया है 10 साल तक, वो अभूतपूर्व रहा इन स्पाइट ऑफ दिस क्राइसिस। लेकिन एक समय तो आएगा ना जब मुद्रा स्फीति
12: अखिल स्वामी
14: आपको
12: रजत सेठी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो करना होगा, और 10 साल में लगातार जिस तरीके की चीजें हुई है, पहले कोविड और उसके बाद बाकी सारी स्थितियां जो बनती रही, उसके वजह से ये तो होना ही था, इस पे और कुछ नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर रजत सेठी आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना?
14: नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं साहिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा डायनेमिक माहौल है और डायनेमिकली आपको रिएक्ट करते रहना है। आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकते हैं। सरकार इस समय क्या करे? सरकार अपनी तरफ से ये इंश्योर कर रही है कि जितना भी दर्द कम से कम हो सके हो, लेकिन इसका मतलब
12: ये तो ये सवाल है ना कि क्या बचत की अपील करना ही सिर्फ काफी है या कुछ और कदम भी उठाने पड़ेंगे? इसीलिए तो ये सवाल उठा है प्रोफेसर अखिल स्वामी,
14: और समय के साथ और भी कदम
15: उठाने। देखिए साहिल जी, देखिए जब से मोदी जी ने कहा है और अपील की है कि आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, सोना मत खरीदिए, देखिए पूरे देशवासियों ने, और मैंने तो अपनी कार ही बेची, मेरे पास आज के तारीख में कार नहीं है, सोना मैंने खरीदा नहीं है। जब पूरा देश मोदी जी की बात मान रहा है तो रोज सीएनजी के पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं आप? अच्छा ये भी, बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, जब रुपया कमजोर होता है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन रुपए के कमजोर होने के बावजूद आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। कारण क्या है? आपने चीन के लिए पूरे रास्ते खोल दिए हैं। जब मोदी जी ने कहा था कि हम लोग चीनी झालर ना खरीदें, मैंने कसम खाई थी चीनी झाला नहीं खरीदूंगा, दीपक लेके आया था, दिए लेके आया था। लेकिन चीन से आयात आपका 2014 में जितना था उसका डबल हो गया, एक्सपोर्ट केवल 15% बढ़ा। इसका मतलब यह है कि आपका ट्रेड डेफिसिट होता जा रहा है। अच्छा, पिछले 3 साल से लगातार एफआई जो है, जो आपके विशेषज्ञ बड़ी सही बात भटनागर साहब ने बताई, लगातार लोग बेच रहे हैं। इसका माने उन्हें भारत की आर्थिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं रह गया है। अब इसके लिए हम तो दोषी नहीं है, हमने तो भारतवासियों ने जो मोदी जी ने कहा उसको मान लिया और हमने पेट्रोल डीजल और सोने का, जैसे हम ही लोग किलो 2 किलो सोना खरीदते हैं, अरे भाई हमने तो 10-15 साल से मध्यम वर्ग के लोग हैं। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो नोएडा के अंदर और गुड़गांव के अंदर स्ट्राइक कर रहा था कि 12,000 में उसका खर्चा नहीं चलेगा, उसको तो तब से लाठी मार मार के आपने भगा दिया। अब ये बताइए, जब ये 25% और दाम बढ़ जाएंगे तो रोज पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, उसको फिर लाठी मारेंगे क्या? अच्छा, उसके बाद आप बिहार में बच्चे बेचारे जब कहते हैं परीक्षा करा लो उन्हें लाठी मार देते हैं, जब आपका नीट का पेपर लीक हो जाता है 5-6 बच्चे जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो मोदी जी ने कहा हमने मान लिया, अब दाम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? हमने आपकी बात मान ली, अब दाम मत बढ़ाओ, 1 रुपये दाम मत बढ़ाओ। आप कहोगे हम लेकिन चीन से डबल क्यों हो रहा है, फिर अडानी जी वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा चीन से इंपोर्ट बढ़ क्यों हो रहा है?
12: अखिल स्वामी जी,
15: अब हर जगह से इंपोर्ट बढ़ रहा
12: है। दाम नहीं बढ़ाना क्या आज की तारीख में किसी के हाथ में है? आपको भी तो पता है ना, इंटरनेशनल मार्केट में $60 प्रति बैरल था, आज की स्थिति में उसकी प्राइस क्या पहुंची हुई है
15: साहिल जी? जब ये अभी भाटिया साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात कही, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है, हम बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति में हैं। अरे भैया, तो ऑयल कंपनीज को 2-2, 3-3 लाख करोड़ का सब्सिडी दे दो, गरीब जनता पे बोझ क्यों डाल रहे हो? जब इतने तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, और आर्थिक व्यवस्था कितनी अच्छी है इसका तो प्रतीक इस बात से मिल रहा है, रोज जब मनमोहन सिंह गए थे 58 रुपए का डॉलर था, अब 96.35 पे आप खुश हो रहे हैं कि हमारा रुपया मजबूत हो गया, 96.35 मैंने डबल हो गया।
11: साहिल जी, ऐसे लोगों की बातें सुननी है जो
12: गौरव भाटिया जी दे रहे हैं, कुल मिलाकर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रुपया तो पहले से कमजोर हो रहा था, वो कहने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले तेल कंपनियां इस पर पैसे कमा रही थी क्योंकि तब तो इंटरनेशनल मार्केट पे ऑयल के दाम गिर रहे थे, तो आज की स्थिति में ऐसा क्या हो गया? शैलेन भटनागर जी आपके पास भी आऊंगा और संजीव अहलूवालिया जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जल्दी से गौरव भाटिया पहले आपका जवाब।
11: देखिए, ऐसा है, मनमोहन सिंह जी की सरकार को चाहने वाले यहां पे बैठे हैं, उनको कुछ आंकड़े बता दूं। तब महंगाई दर 10% से लेके 14% ही डबल डिजिट पे पहुंच गई थी, हमारे समय में औसतन 4% रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5 से 4.9% तक पहुंच गया था, कंट्रोल करके 2% कर दिया, 2.5% कर दिया। तब फॉरेक्स रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार $300 बिलियन का होता था, 750 बिलियन यूएस डॉलर, तब बिलियन 300 बिलियन था, अब 750 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। अब चौथी पांचवी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और मैं एक और बात आपको बताता हूं, 3 रुपए अगर पेट्रोल डीजल बढ़ाया है जब वैश्विक संकट है, छाती पीट रहा है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कई अर्थशास्त्री जो अब आपको बुलाते हैं, 2008 में 15 रुपए बढ़ाया था पेट्रोल पे मनमोहन सिंह जी ने, 2011 में 13 रुपए बढ़ाया था, 2012 में 10 रुपए बढ़ाया था, 34
12: तो का था पेट्रोल,
11: जब 2004 में आए 72 का छोड़ के गए थे, 72 का 110% बढ़ा पेट्रोल, डीजल बढ़ा 140%, हमारे समय में 30 से 35%
12: जी।
11: पहला फर्क।
12: पिछले हफ्ते मैंने आपको सवाल पूछा था इसी डिबेट में, नहीं एक मिनट, पिछले हफ्ते मैंने आपको इसी डिबेट में सवाल पूछा था कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, तब तो आपने मुझे ही पूछा था कि कल मैं इस शो में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये नहीं बता सकते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं, कैसे बढ़ाएंगे? तभी मैंने आपको कहा था कि भाई बढ़ जाएंगे दाम, 3 रुपए बढ़ गए, और दो 10-12 रुपए की आप बात कर रहे हैं, धीरे धीरे देखिए मई महीने के अंत तक 10-12 रुपए तक शायद पहुंच जाए,
11: तो
12: जल्दी संभलने वाली है नहीं?
11: बताइए जरा
12: गौरव भाटिया जी,
11: साहिल जी प्लीज बताइए, चलिए आपने
12: संभलने वाली
11: बोला। हाँ सुनिए, पहली बात तो मैं भाजपा का सुन ली,
12: तो इसके आगे नहीं बढ़ेंगे,
11: का प्रवक्ता हूँ मैं, यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ पेट्रोल, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, आपने अपनी बात रखी, सम्मान दिया, अब मेरी बात सुनिए, गलत लगे तो जरूर टोकिएगा,
12: बोलिए ना, मैं कहां सुन रहा हूं आपकी बात, चलिए।
11: 3 रुपए बढ़े हैं, हाँ सुनिए, 3 रुपए बढ़े हैं, 95 रुपए का था, 3% बढ़ा, ये ज्यादा लग रहा है सबको, वैश्विक संकट है, जब कोई वैश्विक संकट नहीं था तब 15 रुपए बढ़ाया 2008 में, 13 रुपए बढ़ाया 2011 में और 2012 में 10 रुपए, और मैंने अभी आंकड़े दिए कितना बढ़ा तब नहीं पूछा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ऑयल बॉन्ड्स 1,44,000 करोड़ के खरीद के उसका बिना पेमेंट करे चली गई, 2026 तक हमने पेमेंट किया है। पूछिए जरा कैसी सरकार।
12: तीसरी बात, मैं अभी भी गोल्ड बॉन्ड की बात अभी फिलहाल शुरू नहीं की है। एक बात था कि जब गोल्ड बॉन्ड भी काफी संख्या में खरीदे जा रहे थे, उस गोल्ड बॉन्ड का क्या हुआ?
11: इनको चुप कराइए।
12: गोल्ड के प्राइजेस कैसे बढ़े उसके बाद गोल्ड बॉन्ड का क्या हुआ, ये भी तो सवाल बनता है ना कहीं। लेकिन आलोक शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि 3 रुपया सिर्फ बढ़ा है, 3.5% सिर्फ दाम बढ़े हैं, और उसके बाद विपक्ष कह रहा है, जो बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है, बाकी दुनिया में देखिए कितने प्रतिशत दाम बढ़े।
11: वो क्या है, गुमराह करना नहीं है, भ्रम फैलाना नहीं है, तो और क्या है?
13: बार बार तीन रुपए कहा जाती है, केवल और केवल आप एक कमर्शियल गैस का सिलेंडर उठा लीजिए, 1 जनवरी को 1,518 रुपए का था, 1,518 रुपए से 3100 रुपए हो गया, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद मैं अब 3-4 चीजों पर आता हूं साहिल जी। एक्साइज ड्यूटी 44,00,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने इकट्ठी की, और 1,25,00,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड थे। अरे भाई लौटा देते 44। अरे भाई चुप रहो ना यार, बीच में मत बोलो यार, ऐसे बीच में बोलने से गंभीर विषय है। साहिल यार चुप नहीं करवा सकते यार, आप लोगों ने नहीं बोला
11: देना पड़ेगा।
12: आप भी कौन सा तरीका है भाई, बात सुनवा लीजिए प्लीज गौरव भाटिया
13: जी, कौन सा तरीका है भाई
12: गौरव भाटिया जी, प्लीज दूसरे की बात सुननी चाहिए।
13: ये मुझे लगता है,
12: चलिए आलोक शर्मा जी
13: मुझे लगता
12: है बात रखिए।
13: अरे भाई देखिए, मनमोहन सिंह जी के समय में 412 रुपए का सिलेंडर था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार नारा था। देखो महिला आके टीवी पे आज तक पे भी बहुत कुछ कहती थी, और आज तक पे मनमोहन सिंह सरकार और चिदम्बरम जी के वो रुपया लुढ़कते हुए के मीम्स भी बनते थे, लेकिन शायद आज कुछ नहीं। आंकड़ों की बात कर लेते हैं, IMF हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखता है, क्योंकि हमारे आंकड़ों में बहुत सारी लूप होल्स हैं। इस बार हालत यह है कि आज ही आपने 80 के पार दिल्ली में CNG गैस पहुंचवा दी, और उसके बाद मंत्री जो है वो नौटंकी कर रहे हैं।
12: शर्मा जी
13: मंत्री नौटंकी, देखिए यार साहिल जी क्या आप लोग करते हैं,
12: रोना रोते हैं ना, यार ये ऐसा होता था आज ऐसा नहीं हो रहा। आज आप इसी चैनल पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं सर, इसी चैनल पर बैठ के वही मुद्दे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, किस तरीके से होता था, आज भी वही सवाल पूछे जा रहे हैं।
13: आज तक का
12: आज ये चर्चा उसी के इर्द गिर्द चल रही है। नहीं तो आप ये ना बार बार वो रोना, आप ये ना डायवर्जन जो आप करते हैं ना वो छोड़ दीजिए ना, मुद्दे पर आ जाइए आप, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है आज की स्थिति में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।
13: पूरा देश, अरे गरीब आदमी रो रहा है, उसके रोने को देख लो, मैं रो नहीं रहा।
12: डिबेट है ना, बहक जाएगा, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा था। लेकिन बार बार आप उसी चीज पर आ रहे हैं तो मुझे जवाब देना पड़ा आपको।
13: सुनिए ना, आ रहा हूं
12: तो आप मुद्दे पर आइए ना, आपको जो पूछा गया उस पर जवाब दीजिएगा।
13: तो एक भी झूठ बोला हो तो सच बता दी, मैं मुद्दे पर आता हूं, मैं मुद्दे पर आता हूं।
12: अरे तो मैंने आपको कहा ना उसी को लेकर, आज आप किस बारे में डिबेट कर रहे हैं, आप बहका रहे हैं डिबेट को अननेसेसरी। तब क्या होता था, आज क्या होता था भाई, आज के बारे में बात करिएगा।
13: सुनो ना भाई,
12: सवाल पूछा उस पर बात करिएगा
13: भाई।
12: चलिए
13: सुनो भाई,
12: बोलिए।
13: सुनो ना भाई साहिल जी, 4th से 6th, 4th से 6th अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए, लेकिन जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं। वेजेस स्टैग्नेशन है पिछले 8-10 साल से, लेकिन पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। अभी तक दाम किसके कंट्रोल में है? अरे भाई जब तक चुनाव था, जब सरकार ने ही कंट्रोल कर रखा था ना, किसने कंट्रोल किया था भाई? सरकार ने ही कंट्रोल कर रखा था ना, तेल की कंपनियों ने ही कंट्रोल कर रखा था ना। इसलिए मैं कहता हूं कि कंट्रोल भी सरकार ही करती है। फिर कहूंगा एक रिफाइनरी, ये गलत बात है ना, यही तो गलत बात है साहिल जी, एक रिफाइनरी जल गई राजस्थान में 50 से 60।
12: लेकिन आज की स्थिति में बड़ा मुद्दा यही रहता है, देखिए पॉलिटिकल डिबेट में क्या सरकार बेहतर कर सकती थी। मेरा ओरिजिनल सवाल संजीव अहलूवालिया जी अभी भी वही अटका हुआ है, क्या बचत की अपील सिर्फ काफी है या कुछ और भी किया जा सकता है? और जो स्थिति यहां पर नजर आ रही है, कई लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट से निकलकर बाहर जा रहे हैं, और ये आज की स्थिति नहीं है, पिछले 4 महीने के पहले से भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से बाहर जा रहे हैं। 2 आंकड़े तो शैलेंद्र भटनागर ने खुद भी इसमें रखे थे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, भारत की डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आज की स्थिति में GDP के मुकाबले सिर्फ 20% हो रही है, जो एक जमाने में 28% हुआ करती थी। और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3% यहां पर दिखाई देता है। तो सिर्फ युद्ध के वजह से यह स्थिति बनी हुई है कि हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, और सिर्फ बचत का कि अपील काफी है या और भी चीजें कुछ करनी होगी? संजीव जी,
16: तो शायद जी मैं तो सिर्फ दो तीन चीजें की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नंबर वन, क्या बचत का ऐलान करना जरूरी है या नहीं? मेरे व्यू में चाहे लड़ाई हो या ना हो, क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ईंधन की बचत हमेशा जरूरी है, क्योंकि हर लीटर जो हम फूंकते हैं उसका कुप्रभाव हम पे ही किसी ना किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के जरिए आता है। तो अगर सरकार ने हमें ये कहा है कि आप बचत करिए और उसमें कोई उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई है, ये एक वॉलंटरी उन्होंने मैकेनिज्म चाहा है कि अच्छे सिटीजन होने की नाते आप बचत करिए, तो क्लाइमेट के लिए अच्छा है और मोस्ट सर्टेनली जो हमारी एक्सटर्नल अकाउंट के लिए उसके लिए भी अच्छा है। क्या सरकार इस स्थिति के लिए और अच्छी तरीके से तैयार हो सकती थी? उसमें साहिल जी आप ये देखिए कि जो हमारे आज फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिसकी बात हो रही थी कि लगभग 700 बिलियन डॉलर तक हमारे पास है, ये नतीजा सरकार की तैयारी का। अगर सरकार तैयार अपने आप को लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म से ना करती तो क्या ये देखिए क्या हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाती, जो कि कुछ दो महीने पहले 2% तक आ गई थी, अब आज आपकी की स्क्रीन पे आ रहा है कि 3% की ओवर हम फिर वापस जा रहे हैं, पर 4% का नॉर्म है। क्या हमारी जो ग्रोथ की स्थिति है वो 6.5 और 7 के बीच में हो जाती बिना तैयारी के? तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार ने सिर्फ बचत का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा देश की रक्षा में और कुछ नहीं किया है। मेरा ये व्यू है कि सर्टेनली बचत से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर एक सामूहिक हम सब की का दायित्व है कि हम, क्योंकि हम सब यहीं के नागरिक हैं, कि
12: लेकिन जो कारण दिया जा रहा है बचत के लिए कि हमें फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार बचाना चाहिए, ये कारण दिया जा रहा है, लेकिन ये क्राइसिस विदेशी मुद्रा भंडार का होगा या जिस तरीके से अरविंद सुब्रमण्यन कह रहे थे, जिसको मैंने कोट किया इस डिबेट को शुरू होने के पहले, यह लाइवलीहुड आजीविका की क्राइसिस होगी, अफोर्डेबिलिटी की क्राइसिस होगी, या उसे किस तरीके से निपटेंगे? इसीलिए सवाल यहां रहता है कि सिर्फ बचत की अपील से होगा क्या?
16: मैं अरविंद सुब्रमण्यन जी की बात से भी सहमत हूं कि सिर्फ बचत से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के अगर देखिए अगर हमारा ग्रोथ लेवल बढ़िया नहीं होता है तो जो आप कैपिटल फ्लाइट देख रहे हैं कि कैसे अपना पैसा निकाल के यहाँ सब लोग, पहले तो दुबई में लगाते थे अब जाने कहाँ ले गए हैं, ये हमेशा चलता रहेगा क्योंकि हमें अपने आप को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना है, ताकि पैसा सिर्फ देशवासियों का नहीं बट फॉरेन पैसा भी हमारे यहाँ
12: ठीक है
16: आने में इंटरेस्टेड।
12: रजत सेठी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास।
14: मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक नेशनलिज्म जिस तरह से जोड़ा गया है कि रुपये की क्या कीमत है, उससे भी बड़ी समस्या होती है कि इकोनॉमिस्ट अगर हो कोई और उसको उसको कानों में चुभता है अगर उसको बार बार बोला जाता है कि इतना लुढ़क गया इतना लुढ़क गया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंश्योर करना है कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करें क्या एक्सचेंज रेट है, और अगर एक्सचेंज रेट कम भी होता है, अगर रुपया 110 120 रुपए पे भी जाके प्रति डॉलर सेटल होता है, तो उससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो
12: रुपये का गिरना या चढ़ना ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ये बातें भी इससे पहले कई बार की गई थी, लेकिन आज की स्थिति में जहां हम खड़े हैं और क्या हम महंगाई की दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि WPI इंडेक्स पहले ही 8.3% तक पहुंच गया है, जिस पर हम लोग ने पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, तो एक बड़ी संकट की तैयारी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसीलिए यह चर्चा जरूरी थी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं.
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं.
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
3: जहां खबर वहां खबरदार.
7: आपने कहा कि 21 तोपों की सलामी उन लोगों को जो मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं.
8: Yes, मैं उनको देखो, एक मुहावरा है ना कि हम उनको 21 तोपों की सलामी, मतलब हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं.
7: और जो गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, उनको भी सलामी?
8: नहीं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो. हम 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला चुके, बस

0: दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों लंबा वीआईपी काफिला नहीं दिख रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे शुरू किया तो सीएम से लेकर मंत्री तक सभी मेट्रो पर सवार दिखे।
1: चलाई गई हैं।
0: ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में सत्ता की राजनीति सचमुच बदल रही है?
2: जा रहे हैं।
0: भारत में इन तस्वीरों पर भरोसा जल्दी नहीं होता, क्योंकि इस देश ने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। फिलहाल चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की साइकिल से दफ्तर जाने की तस्वीर हो या फिर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की कार पूलिंग की तस्वीरें फिलहाल अच्छे संकेत की तरफ इशारा करती हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लगातार पीएम मोदी के संदेश को आगे बढ़ाने में। ये हालात वैश्विक संकट से पहले नहीं थे, लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद क्रूड ऑयल के दाम रॉकेट की तरह आसमान छूने लगे। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, यानी हर बढ़ती कीमत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस साल मार्च में जहां क्रूड ऑयल पर भारत को 1,17,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अप्रैल में 1,79,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। बचत की बहस को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना शायद गलत होगा, क्योंकि दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तेल सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं चला रहा, राजनीति युद्ध और वैश्विक ताकतों की दिशा भी तय कर रहा है। इसलिए नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बीच उन चुनौतियों का जिक्र किया जिनका सामना दुनिया कर रही है।
3: दी जाएगी।
0: तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी का टैंक महंगा नहीं भरता, सब्जी महंगी होती है, दवा महंगी होती है, खेती महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सोना चांदी सब महंगा हो जाता है और अंत में आम आदमी की जिंदगी भी महंगी हो जाती है। इसीलिए पीएम मोदी ने बचत के फॉर्मूले को देश के सामने रखा था। इस बीच हॉर्मुज में तनाव के बादल और घने हो गए। इसराइल में असलाह बारूद हथियार इकट्ठा होने की खबर और अमेरिका इसराइल ईरान का हर बयान बाजार में डर पैदा करता है। इसलिए भारत को संभल कर चलने की जरूरत है। पीएम की अपील का असर सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, विपक्ष के बीच भी अपील पहुंचनी चाहिए। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार भी है और कर्तव्य भी, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ सवाल पूछने तक खत्म हो जाती है?

केरला में सीएम पद के शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होते, हजारों कार्यकर्ता जुटते, जब बड़े बड़े मंच सजे, जब बसों और गाड़ियों के लंबे काफिले निकलते, तो क्या वहां ईंधन नहीं जलता? लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय संकट में सहभागिता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। और इतिहास गवाह है, जब दुनिया ऊर्जा संकट पे होती है, तब राष्ट्र की असली पहचान उनकी सियासत से नहीं, सामूहिक अनुशासन से होती है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में ईंधन बचत अब राजनीति नहीं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन चुकी है? आज तक ब्यूरो।

लेबनान में घमासान, 3 की गई जान। इसराइल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही। हमास ने माना गाजा में मारा गया उसका टॉप कमांडर। हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग और तेज हो गई है। ईरान के साथ सीज फायर के दौरान इसराइल इन दोनों आतंकी संगठनों से निपटने में जुटा है जो ईरान का साथ देते आए हैं और इसराइल की सरहदों पर मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। लेबनान में इसराइल ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इजरायली एयरफोर्स की अलग अलग इलाकों में की गई स्ट्राइक से 3 लोगों की जान चली गई और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमले तब हुए हैं जब अमेरिका ये दावा कर चुका है कि उसकी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम 45 दिन बढ़ा दिया गया है। अब अगली सैन्य मीटिंग 29 मई को तय की गई है। सीज फायर बढ़ने के बावजूद इसराइल ने कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और गोलाबारी की। इन हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान के गांव खाली हो रहे हैं। सईदा से बेरूत जाने वाले हाईवे पर बड़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़कर जाते दिखाई दिए हैं। हिजबुल्लाह भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के बुलडोजरों और सैनिकों को निशाना बनाया। साथ ही हदाथा शहर के बाहरी इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर रॉकेट दागे गए। बेका वैली में इजरायल ने 2 एयर स्ट्राइक की। कई जगह खतरे के सायरन की आवाजें सुनी गई और बमों की बरसात से लगी आग और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उधर गाजा में हमास के खिलाफ घमासान तेज हो गया है। इसराइल के दावे के बाद अब हमास ने मान लिया है कि उसकी कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर इस अल दीन अल हद्दाद की मौत हो गई है। उस पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। खान यूनिस में इसराइल के हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बकरीद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर योगी का सख्त बयान, चौराहे पर तमाशा मंजूर नहीं, प्यार से कह रहे हैं मान लो, नहीं तो तरीका और भी है, जगह कम पड़ रही हो तो कम करे जनसंख्या। बंगाल के मदरसों पर शुभेंदु ने कसा शिकंजा, धर्म आधारित योजनाओं पर लगाई पाबंदी, महिलाओं के लिए किया वादा पूरा, बस में सफर मुफ्त 1 जून से हर महीने 3000। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजे गए, ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में की शिरकत। छत्तीसगढ़ में बोले गृहमंत्री अमित शाह, सीना तान कर बोल सकता हूं कि भारत अब नक्सल मुक्त है। बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, सरकारी नौकरी में आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण मिलेगा। और नीट पेपर लीक मामले में एनटीए के चेयरपर्सन तलब, संसदीय समिति ने प्रदीप जोशी को 21 मई को अब तक की जांच को लेकर किया लेकर बुलाया, पुणे से एक और आरोपी की हुई गिरफ्तारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ें। हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो।
1: किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है।
2: योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता।
3: क्या करेंगे आप, सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे, सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप?

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात योगी आदित्यनाथ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले सड़क पर नमाज के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है जिस पर हंगामा हो रहा है। योगी ने साफ कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए दी जाने वाली उस दलील को खारिज किया कि मस्जिदों में जगह नहीं होती, इसीलिए सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। सुनिए,
1: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे, ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है, तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो।
0: संदेश और बोली दोनों एकदम साफ है, आप भी समझ रहे होंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कमोवेश सड़कों पर नमाज पढ़ी जानी बंद हो गई है। योगी सरकार ने बीते 9 वर्षों में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर कानून का पालन कराने जैसे कई और कदम उठाए जिसे पहले वोट बैंक के दबाव में नजरअंदाज किया जाता था। आपने देखा ही होगा पश्चिम बंगाल में भी अब सड़क पर नमाज के खिलाफ योगी का ताजा बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल में बीजेपी सरकार आई है सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जैसे एक्शंस वहां पर लिए जा रहे हैं। और 15 मई की कोलकाता की तस्वीर है जहां पर एक मार्केट में इस बात पर झड़प हो गई पुलिस के साथ कि हम तो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि आप सड़क पर सड़क को बाधित नहीं कर सकते हैं और इस वजह से झड़प की स्थिति पैदा हो गई थी। इधर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर, पिछले हफ्ते शुक्रवार को कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर ये पुलिस की लोगों से झड़प हो गई थी। बंगाल के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा टेस्ट 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाला है। यूपी में योगी का ब्रांड हिंदुत्व तो पहले से है, लेकिन सड़क पर नमाज को लेकर योगी की नई एक जो चेतावनी है वो नए तेवर में आपको सुनाई दे रही है।
2: इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी।
3: इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं।
4: अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था और उसको कोई आदर्श माने तो यह तो, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे।
0: तो इतना तो तय है, योगी आदित्यनाथ के अपने तेवर है, अपना अंदाज है, और हिंदुत्व की बात करते हुए कोई वो मिलावट इधर उधर के शब्दों की करते नहीं है, ना किसी की सोचते हैं, ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। वो सीधा हिंदुत्व के एजेंडे पर, हिंदुत्व की लाइन पर खुलकर बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर विपक्ष ने हमेशा निशाना साधा है। नमाज को लेकर योगी के ताजा बयान को विपक्ष एंटी मुस्लिम बता रहा है। सुनिए,
5: मतलब सैकड़ों ऐसे बयान हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उन बयानों को नहीं दे सकता है। ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है।
6: योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर।
0: वैसे जब राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों के दम पर सत्ता हासिल करती जा रही है, तो अब विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को हिंदुत्व पर काउंटर करने की कोशिश शुरू की है। लखनऊ में वकीलों के चैंबर के बाहर कल हुए लाठीचार्ज की एक तस्वीर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट की। तस्वीर में पुलिस की लाठी के जद में आ रहे एक व्यक्ति के हाथ में रामचरित मानस है, उसी के जरिए उन्होंने ये हमला किया। अखिलेश यादव ने इस तस्वीर पर लिखा, श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है और मानवीय व्यावहारिक मर्यादा का आचार संहिता कोश। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने जिस तरह लखनऊ में श्री रामचरितमानस का अपमान तिरस्कार किया है, वो किसी भी तरह क्षमा करने योग्य नहीं है। भाजपाइयों का सिर्फ एक धर्म है, वो है पैसा। देशधर्मी भाजपा को अब हमेशा के लिए हटा देगा, ये अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखा है। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम आज बातचीत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के, मोहम्मद फैज खान संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सब आरोप ये लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में नागरिकों को दो नजर से देखते हैं धर्म के आधार पर, कितनी सच्चाई है इसमें?
7: आवाज क्रैक बहुत हो रही है।
0: राज्य में नागरिकों को दो नजर से देखते हैं धर्म के आधार पर।
7: देखिए, थोड़ा आपकी आवाज क्रैक हो रही, जो मुझे समझ में आया मैं उसके आधार पर जवाब देता हूं। बिल्कुल दो नजर से नहीं देखते, बिल्कुल ईमानदारी से एक ही नजर से देखते हैं, और वो नजर है कानून की नजर। किसी को नमाज से कोई आपत्ति नहीं है, अगर सड़क पे नमाज करनी है नियमानुसार परमिशन लीजिए और उसके बाद करिए, कौन रोक रहा है? आखिर ये बताइए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है कि नहीं? बल्कि सरकार पूरी व्यवस्था करती है, शबे बारात की व्यवस्थाएं होती हैं कि नहीं? सड़क पर भी होती हैं, सजावटें भी होती हैं, कहीं कोई उसके ऊपर कोई रोकता है नहीं? पर बगैर परमिशन लिए हम ये करेंगे, यानी अपने को कानून से ऊपर मानेंगे, ना जगह की परमिशन लेंगे ना समय की परमिशन लेंगे, ये मेरी शहंशाही है कि मैं जहां चाहूंगा वहां पे बैठ जाऊंगा, ये थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की व्यवस्था को बनाए रखने की बजाय विपक्षी दलों ने सोचा कि इस अव्यवस्था के अंदर से कुछ वोट की व्यवस्था दिख जाए, तो वो जो कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों को, वो मतलब नेताओं को मुस्लिम वोट का थोक विक्रेता मानने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं अंजना जी, ये कोई प्रतिबंध की बात पहली बार तो हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 22 साल, 1977 to 1999, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, मुलायम सिंह की भी रही और मायावती जी की भी सरकार रही, 22 साल शियाओं को मदे साबा का जुलूस नहीं निकालने दिया गया। प्रतिबंध नहीं निकालने देंगे, सिर्फ सुन्नियों का जुलूस निकलेगा। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब उनको परमिशन मिली। कारगिल में नहीं निकालने दिया जाता था शिया समुदाय को जुलूस, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब परमिशन मिली। तो कुछ नया नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जो लोग जगह की कमी का बात कहते हैं, तो मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड के पास 38 लाख एकड़ जमीन है। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, 38 लाख एकड़ में स्क्वायर मीटर्स आते हैं लगभग 1544 करोड़ स्क्वायर मीटर,
0: ठीक है?
7: अब अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ मान लीजिए, तो सिर्फ पुरुष ही आते हैं नमाज अदा करने, तो 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ को अगर आप डिवाइड करें तो जानते कितना आएगा? लगभग 170 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति, जबकि एक व्यक्ति को नमाज करने के लिए एक स्क्वायर मीटर की जरूरत है। यानी जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसके एक बटे दस को भी यूज कर ले तो जगह की कोई कमी नहीं है। और ऑफिशियली बोल चुके हैं कि उन जमीनों के ऊपर तो इन्होंने ना कोई हॉस्पिटल बना रखा है, ना कोई अनाथालय बना रखा है, ना कुछ कर रखा है। अब ये और भी गजब बात है कि जमीन मेरे पास ढेर सारों है, इतनी है कि अगर हम साष्टांग दंडवत करके भी करना चाहें तो भी सब कुछ हो जाए, मगर ना ना ना ना, ना मुझे उस जमीन के अलावा सरकार की जमीन पर ही बैठ के, यानी उधर कानून का ये दुरुपयोग करना है कि जमीन मेरी और उसके बाद सरकारी जमीन पर ही नमाज करना है। ये जो मानसिकता है ये समस्या है, यहाँ धार्मिक विषय बिल्कुल नहीं, यहाँ विषय संविधान और कानून की पालन की मानसिकता का है।
0: उन्होंने साफ ये कहा है कि आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, अगर आपको इतनी ही वो है तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए। अब सीधा आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि आप एंटी मुस्लिम है सुधांशु जी, और ये 2027 की लड़ाई के लिए अभी से पिच और टोन सेट किया जा रहा है, इस पर जवाब दीजिए ना। अन्य धर्मों में भी कई जगहों पर आप देखेंगे, चाहे नवरात्र के दौरान अलग अलग आयोजन किए जाते हैं या मंदिरों के बाहर कई बार आयोजन होते हैं, तब तो शिफ्ट में पूजा करने के लिए किसी को नहीं कहा जाता। उनका डायरेक्ट आरोप है कि एंटी मुस्लिम है, इस पर जवाब दीजिए।
7: आप दूसरी बात बताता हूं। देखिए, जहां तक ये बात है, आपने कहा शिफ्ट की, तो मैंने उसका उत्तर तो पहले दे दिया। रिवक बोर्ड की जमीन पे जाके करिए ना, सवाब का सवाल है, वो तो मजहब के लिए दी गई है, क्यों नहीं करना भाई वक्त की जमीन पे, सड़क पे क्यों करना है? परमिशन लीजिए, पार्क में करिए, मस्जिद के पास। जहां तक शिफ्ट की बात है, क्यों अंजना जी, मंदिरों में जाते हैं लोग तो सब एक ही टाइम पे दर्शन करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आते हैं, दर्शन करते हैं, एक शिफ्ट चली जाती है, दूसरा आते हैं, दूसरा जन समुदाय आता है, वो दर्शन करता है, फिर वो चला जाता है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, मैं ये कहना चाहूंगा भाई, हमारे हिंदू धर्म में तो फिर भी मुहूर्त का महत्व है। जैसे श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा में चंद सेकंड का महत्व था, अब यहां तो मुहूर्त का चक्कर नहीं है कि मुझे इस सेकंड के बीच में ही करना है, तो आप तो आराम से कर सकते हैं। तो अगर हमें वही करना है मस्जिद में, तो हम शिफ्ट में कर लें, नहीं तो जो आपके मजहब के नाम पर दी हुई जमीन है उस पर कर लें। इसमें कौन सी समस्या है, हमारी समझ के बाहर है। समस्या केवल यह है कि कानून मेरी जेब में, और इनको समझा कौन रहा है, वो लोग जो कहते हैं संविधान मेरी जेब में।
0: ठीक है, चलिए अब सुनील सिंह यादव जी, आप सवाल का जवाब दीजिए कि भाई लॉ ऑफ द लैंड क्यों नहीं चलेगा
8: जी।
0: एक तो पूर्वरत जितनी सरकारें थी उन्होंने ये होने दिया, और एक सेकंड सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुनिए, उन्होंने ये होने दिया, इसीलिए एक बहुत बड़ा तबका इसको अपना हक और अधिकार मानने लगा। लॉ ऑफ द लैंड साफ कहता है, कोई भी सड़क पर ट्रैफिक को बाधित करके सड़क पर कोई भी धार्मिक काम नहीं कर सकता है, अगर उसकी इजाजत अलग से नहीं ली गई है, और यह बिना इजाजत किया जा रहा है। जब लॉ ऑफ द लैंड ऐसा कह रहा है, तो सिर्फ इसलिए करने दिया जाए क्योंकि पूर्वरत सरकारों ने यह होने दिया वोट तुष्टिकरण के लिए, क्यों भाई?
8: देखिए अंजना जी, एक जो भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाती है कि भाई हम कानून व्यवस्था के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो हम कानून व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं है। हम ही थोड़े कह रहे हैं कि आप कानून तोड़िए, और कोई भी धर्म, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी आम आदमी को तकलीफ पहुंचा करके हमारा धर्म का कामकाज नहीं पूरा होता, ना नमाज पूरी होती, ना पूजा पाठ होता है। आप असल मुद्दा समझिए, उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को 9.5 साल हो गए। इनसे अब जब जनता सवाल पूछेगी आपने काम क्या किया, तो इनके पास जवाब तो है नहीं, ना तो इन्होंने मेडिकल सेक्टर में काम किया, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया। हां, स्कूल बंद करने का काम किया है, शराब के ठेके खोलने का काम किया है, इंफ्रा पे आपने क्या काम किया? आप जिस वादे के साथ आए थे, अपना आप घोषणा पत्र ले लीजिए, उस पर आपने क्या काम किया है? और आज मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके की भाषा है, आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रही थी कि भाई वो एंटी मुसलमान है, नहीं, वो एंटी मुसलमान के साथ साथ एंटी पिछड़ा भी हैं, एंटी दलित भी हैं। आज आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के शिक्षक अपना हक पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए तप तपाती हुई धूप में और गर्म सड़क पर रेंग रहे थे कीड़ों की तरह, और कह रहे थे कि हमारी स्थिति योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कीड़ों वाली कर दी है। तो ये पिछड़ों का भी तो हक छीनते हैं, दलितों का भी तो हक छीनते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में करेंगे तो हमसे दूसरे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे।
0: सुनील जी, आप चुनाव की वजह से सरकार जान रही है। सिर्फ एक सेकंड, एक जो प्रोटेस्ट में आप सिर्फ दो जातियों की बात कर रहे हैं, आपकी भी तो नजर चुनाव पर ही है ना, आपको जाति सूट करता है, वरना क्या वहां पर सिर्फ दलित और पिछड़े ही आए हुए हैं प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं?
8: जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं,
0: आप तो बोले
8: अंजना,
0: आप बोले दलित और पिछड़ों के खिलाफ है, वो सड़क पर रेंग रहे थे।
8: हाँ, तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण किसने छीना? योगी आदित्यनाथ ने छीना, बीजेपी की सरकार ने।
0: अरे भाई, विरोध प्रदर्शन में सिर्फ दलित ही थे क्या?
8: हजारों बेटे और बेटियों,
0: अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैं अपनी रिसर्च टीम से भी पूछती हूं कि क्या जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें सिर्फ दलित आए थे?
8: जी नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं।
0: नहीं नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? हम पूछ रहे हैं कि आज जो विरोध प्रदर्शन करने निकले वो क्या सिर्फ दलित पिछड़े निकले?
8: ठीक बात, नहीं हम दूसरे, हम ठीक, हम आपके सवाल पे आ रहे हैं। हम आपका अधूरा सवाल पूरा कर रहे थे कि बीजेपी केवल मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो पिछड़े और दलितों के भी खिलाफ है, और बेरोजगारों को लेकर के तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आपके भी चैनल पे चला।
0: सच्चाई है, सच्चाई है कि सुनील जी और सच्चाई ये भी है कि चुनाव के ही मद्देनजर, ठीक है मैं आपकी बात मान गई, चुनाव के मद्देनजर ही आप भी जाति लेकर आए, वरना सिर्फ देखिए सिर्फ जो है ना कोई भी पार्टी अगर वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो आप भी जात जात के ब्रांच पर चढ़ जाते हैं, उसकी टहनी पर चढ़ जाते हैं, वरना आप ये नहीं करते। आप कहते कि युवाओं को जो दिक्कत हो रही है आज वो रेंग रहे थे, लेकिन आप काहे जाति लेके आए? क्योंकि आपको ये सूट करता है पॉलिटिकली, जैसे उनको हिंदुत्व सूट करता है। सुधांशु जी, संविधान की शपथ लेकर कोई मुख्यमंत्री बनता है और संविधान की शपथ लेकर भाई कमरे में नहीं आ रहे हो तो संख्या कंट्रोल करो, ये सब आपको लगता है कि? और ये अगर ऐसे प्यार से बोल रहे नहीं मानोगे तो मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं, ये कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या ये सही है?
8: देखिए अंजना,
0: क्या तरीके हैं वो भी बता
7: दीजिए। संविधान की शपथ लिए हुए एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश, मैं सारी बात, पहली बात तो मैं कह दूं, जो समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, आपके लाखों दर्शकों के लिए कह दूं, भारत की उभरती हुई शक्ति तमाम विदेशी शक्तियों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए भारत के अंदर रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है। साम दाम दंड भेद चार होते हैं, साम दाम दंड से भारत नहीं झुका है, अब भेद उत्पन्न करने का अंतिम प्रयास चल रहा है। बंगाल चुनाव के बाद यह साबित हो गया कि राज्य के आधार पर भेद पैदा करना मुश्किल है, तमिलनाडु वाले उत्तर दक्षिण में भेद कर रहे थे वो मुश्किल हो गया, भाषा पे लड़ाई लड़वा रहे थे तमिल हिंदी उस पर मुश्किल हो गया, अब अंतिम अस्त्र इनका उत्तर प्रदेश से बना है कि जात पे लड़ाना है। तो ये साम दाम दंड भेद के बाद ये वैश्विक शक्तियां आखिर में भेद का प्रयास करेंगी। और सुनील सिंह जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, भाई साहब उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? मुलायम सिंह की सरकार ने। आरक्षण विरोधी आप हैं कि हम हैं? आज सुनिए, और बैकडेट से खत्म किया था, हजारों शेड्यूल कास्ट इंप्लॉइज डिमोट हो गए, यानी जो पद पे ऊपर हो गए थे वो डिमोट हो गए, किसने किया? आपकी सरकार ने। अद्भुत है आपका। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 31 मई 1995 काशीराम जी का लेटर मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने लिखा है मुलायम सिंह सरकार में दलित समाज के साथ होने वाली निरंतर प्रताड़ना, निरंतर उनको मिलने वाला कष्ट और उसकी कोई सुनवाई न होने से खिन्न होकर हम मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। उसके बाद पकड़ पकड़ के दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके, अपहरण करके, मायावती जी की हत्या करने का आरोप, प्रयास का आरोप किस पे? आपकी सरकार पे। ये उत्तर प्रदेश में एक बार नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, ये किसने लगाया था? दलितों की पार्टी ने लगाया था, क्योंकि आपने पंचायतों में दलितों को आरक्षण नहीं दिया था। अब आप बताइए, आला हजरत जो ये हज हाउस के उद्घाटन के समय सितंबर 2016 में बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया की संज्ञा किसने प्रयोग की? आजम खान ने। आपके लिए वोट बैंक के तराजू पर तौला जाता है, कौन सा वाला है? अच्छा, अब पिछड़ों की बात करता हूं। भाई साहब, जैसे ही आपकी सत्ता आती है तो उत्तर प्रदेश के इतने सारे जिलों में से 75 में से सिर्फ 4 जिलों में ही सारी प्रतिभाएं आ जाती हैं, और 4 जिले के एक आध 30-40-50 परिवार हैं, सारी योग्यता प्रतिभा उसी में आ जाती है और सारी नौकरियों में सिलेक्शन उन्हीं का होने लगता है। हार्डली 100 परिवार होंगे जिनके हाथ में सारी सत्ता जाती, कितने पिछड़ों को क्या मिला है मैं जानना चाहता हूं। क्या बताइए पिछड़ों में भी, और यादव गैर यादवों को क्या मिला, और यादव में एक व्यक्ति बताइएगा, एक योग्य यादव व्यक्ति नहीं मिला जो मुलायम सिंह जी अपने किसी व्यक्ति को देते या राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनता हुआ सपा का इन 35 सालों में एक योग्य यादव नहीं मिला। सुनील यादव जी भी सिर्फ प्रवक्ता बन के रह सकते हैं, चाहे कितने योग्य क्यों ना हो, वो ऊपर रिजर्व रहेगा। इसलिए ना आप दलितों के हैं, ना पिछड़ों के हैं, ना यादवों के हैं, आप केवल परिवार के हैं। आपकी पार्टी की यह मुख्य समस्या है और इसी के कारण यह समस्या रहती। और आपने जो अंजना जी सवाल पूछा था, संविधान की शपथ खाकर एक मुख्यमंत्री ने क्या बोला था, मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने गोलियां चलवा दी थी और 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये किसने कहा, मुलायम सिंह ने, 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, और इसलिए मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। नहीं, ये तो बड़ा सौहार्दपूर्ण, इसमें तो सेकुलर मिठास नजर आ रही थी। और फिर मैं ये भी कह दूं, वो कोई बाबरी ढांचे की रक्षा के लिए नहीं था। 30 अक्टूबर 90 को कार सेवा थी और मैक्सिमम गोलियों से लोग मरे 2 नवंबर 1990 को, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी।
0: ठीक है, मैं वारिस जी और मोहम्मद फैज खान के पास जाऊं, से पहले सुनील जी एक डायरेक्ट सवाल है आपसे। ठीक है सुनील जी, एक डायरेक्ट सवाल है जी। आप कहते हैं ना कि धर्म जाति इसका अपमान कोई ना करे। आप कहिए, राजकुमार भाटी आपके प्रवक्ता है ना पार्टी के, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा है, इससे अपमानजनक तुलना कोई कर सकता है? वो भी तो एक जाति से लोग हैं, ब्राह्मणों का ऐसा अपमान किया है, क्या एक्शन ले रही है आपकी पार्टी उनके खिलाफ?
8: हाँ देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल उनको बुलाया था, उन्हें समझाया और इस बात को कहा है कि हमारा कोई भी साथी और कोई भी प्रवक्ता कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जात या किसी की भावना को ठेस पहुंचे या आहत हो। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं और इस पर भरोसा करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं कि आप जब तक समान रूप से किसी को नहीं देखेंगे, हम बीजेपी आरएसएस नहीं है कि बोलें कुछ करें कुछ।
0: अभी कह रहे थे कि समाजवादी, मैं लौट रही हूं, वारिस पठान और मोहम्मद फैज भी इंतजार कर रहे हैं। अगर सलाह भर से वो मान जाते और हृदय परिवर्तित हो जाता तो अब सुधांशु जी भी यही जवाब देंगे,
9: बाकी
0: नहीं। आप देखिए, फिर आप लीजिए, अब मेरे साथ ये एंगल खेलने लगे डिबेट में। हे प्रभु, बस कीजिए गुरु जी, सुनील सिंह यादव जी बस कीजिए
9: भाई,
0: थोड़ा सा वारिस जी को मैंने सोचा ले लीजिए भाई, मेरे साथ कार्ड मत खेलिएगा, मेरे साथ कार्ड मत खेलिएगा, ये सब बोलिए
8: नहीं नहीं, कार्ड आपके साथ नहीं खेलना,
0: मैं एकदम मत।
8: अंजना जी प्लीज, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 20 तारीख को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए ऑडिट लेकर के आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों के अनुपात में, उनके अधिकार, उनके सम्मान में वो कहां किस स्थिति में है,
0: ऐसे कौन है पीडीए में
8: पहुंचा दिया बीजेपी सरकार,
0: ऐसे कौन है पीडीए में
8: लेकर के आ रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि ऐसे
0: कौन है
8: पीडीए
0: में
8: नहीं है।
0: सुनील जी, ऐसे कौन है पीडीए में
8: जी,
0: ऐसे कौन है पीडीए, ऐसे कौन है?
8: नहीं देखिए, हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। पीडीए हमारा नारा है, पीडीए हमारी प्राथमिकता है, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, शोषित, वंचित, जो भी सरकार से पीड़ित है वो हमारे नारे में है।
0: चलिए ठीक है, कहीं आपने अच्छे से बोल दिया, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें ए से आधी आबादी भी कर देते हैं क्योंकि उसका जिक्र नहीं है पीडीए में, अगड़ों की भी जिक्र कर देते हैं, तो ठीक है अगड़ों के लिए वो सरकार बनाने की नहीं सोच रहे हैं, शायद इसीलिए उनके प्रवक्ता इस तरह की भाषा बोलते हैं। सुधांशु जी सिर्फ दो लाइन सर, दो लोग सिर्फ मुंह ताक रहे हैं तब से,
8: पीडीए को कमजोर मत करिए,
0: हम काय को कमजोर करेंगे,
7: बस दो लाइन, दो लाइन
0: तो है ही वहां संभालने के लिए, इतने बड़े बड़े दिग्गज।
7: अंजना जी आपने पूछा,
0: हाँ
7: अंजना जी,
0: हाँ
7: अंजना जी आपने पूछा ब्राह्मणों का अपमान, अरे ब्राह्मणों छोड़िए, इनको यादवों के अपमान की भी चिंता नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2007 आजमगढ़ का दंगा, जब मुस्लिम समाज और यादव समाज में झगड़ा हो गया था और यादव समाज की महिलाओं को छेड़ा गया था, मुलायम सिंह जी ने कहा था मौलवी से माफी मांगो जाके, तब रमाकांत यादव ने,
0: मैं लौट के आ रही हूं,
7: भाजपा की टिकट पे सांसद बने,
0: ठीक है वारिस पठान,
7: बस
0: वारिस
7: पठान मुझे बोलना था किसी के समाज के, अरे भाई
0: वारिस पठान जी, वारिस पठान जी
7: पत्नी के बारे में टिप्पणी करने के बाद मौन साध के बैठ गए, ये अंतर है पंडित और मौलवी को कैसे तराजू पे तोला जाए।
0: वारिस पठान जी, योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा है? आप तो लॉयर है पेशे से, आपको तो पता है लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है, और पूरी लिस्ट देखिए देशों की जहां पर ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, पूरा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, सड़क पर नमाज बैन है, यहां पर यूएई, भाई इतनी यूएई की आप लोग बात करते हैं, यूएई वहां पर बैन है, ईरान में बैन है, ईरान के लिए हमारे देश में कई लोग पैसा सोना सब इकट्ठा कर रहे हैं, उस ईरान में भी सड़क पर नमाज पढ़ना बैन है, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, खैर बाकी के जो देश हैं जिसमें यूरोप के देश हैं, अमेरिका है वहां बैन है, और यहां पे भारत में जब अलाउड नहीं है तो किस, सऊदी में भी बैन है, सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे, क्यों?
10: सबसे पहले तो अंजना जी, जितना वक्त आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया बोलने के लिए, मुझे उसका आधा समय खाली दीजिए, मैं अपनी बात रख दूंगा अनइंटरप्टेड। थैंक यू वेरी मच। बात नंबर एक अंजना जी, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा और वाकई में लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा। योगी की दादागिरी, धांधली, धमकी से नहीं चलेगा। बात साफ है, योगी टोटल फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से। संविधान की शपथ लेके बैठे मगर कौन सा संविधानिक काम कर रहे हैं बताइए मुझे। हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत, हर आए दिन संविधान की धजिया उड़ा रहे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप जो एक बुलडोजर की बात मत करिए, वो बुलडोजर से उड़ा देते, कटमुल्ला तक बोल देते, पाकिस्तान कभी भेज देते, कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात कर देते। तो कौन से दिन योगी ने संविधान की बात की? कभी नहीं। बात नंबर दो, देखिये नमाज पढ़ना एक एसेंशियल हिस्सा है मुसलमान का। कौन रस्ते पे नमाज पढ़ता है? किसको शौक है धूप में, गर्मी में, बारिश में बाहर खड़े होकर नमाज पढ़े रस्ते के अंदर? जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो तकलीफ के कारण आदमी जुम्मा की नमाज या ईद की दो जो नमाजें वो पढ़ लेता है 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि जो जुम्मा की और ईद की नमाज है ये फर्ज है और इसमें इंसान को खुतबा सुनना जरूरी होता है, जमात के साथ पढ़ना होता है, इसलिए वह पढ़ता है। तो कौन से सबके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? फिर कौन से ट्रैफिक का वायलेशन हो जाता है? किसकी आस्था को टेस्ट पहुंच जाती है? अब आपने लॉ ऑफ द लैंड की बात करी, इक्वालिटी की बात करी, संविधान की बात कर रहा हूं मैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई बहन नॉन मुस्लिम त्यौहार बनाते हैं रस्तों के ऊपर, हमने गरबा खेलते हुए देखा है, एयरपोर्ट पर डांडिया रास खेलते हुए देखा है, ट्रेनों में हमने भजन कीर्तन करते हुए देखा है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उनकी आस्था का सवाल है, सेक्युलरिज्म में हम रहते हैं, सबको अपना त्यौहार मनाने का हक है। कावड़िया यात्रा निकालते हैं,
0: एक सेकंड एक सेकंड, सड़क सड़क पर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सड़क पर आपने कब किसी को देखा है बैठकर मंदिर घंटी बजाते हुए पूजा करते हुए? अब आप चिल्लाएंगे तो वारिस भाई सुन नहीं पाएंगे।
10: चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ मुंबई में चिल्लाए नहीं, मेरे आवाज जाता नहीं, मैंने देखा है मुंबई में। चलिए मेरे साथ, मैंने देखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने
0: देखा,
10: मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, मैं खुद
0: मैं अभी दिल्ली से उड़ के आऊँ तो आपका देखने के लिए कुछ भी बोल दो।
10: हमने गणेश का जो फेस्टिवल होता है,
0: हाँ उसके लिए आज की बात हो रही है
10: ना, अरे आज की बात मैं तो आपको बताने के लिए लेके चल रहा हूँ। मुंबई में आप आएंगे, मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तथ्य में बोल रहा हूँ, बीजेपी की तरह हवा में फायर नहीं करता हूँ, जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, सबके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, देश के संविधान को हाजिर नाजिर रखते हुए बोल रहा हूँ मैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई अंजना जी, 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा प्लीज। अब योगी जी ने ये नया फितरा चालू कर दिया, मुझे बताइए ना, कांवड़ियों पे तो फूल बरसाते, हम तो आपत्ति नहीं उठाते, तो फिर नमाज ही के लिए क्यों, क्या तकलीफ है आपको? मुसलमानों से खाने पीने से नफरत, मुसलमानों के बुरके से नफरत, हिजाब से नफरत, अब नमाज से नफरत, और ये करके ईद ने क्या कर दिया? एक होड़ लगी है इसमें सीएम की, बीजेपी के कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन जो सबसे ज्यादा मुसलमान को गाली दे उसको चैंपियनशिप से नवाज दिया जाता है? कहीं पर कोई बोल रहा था यहाँ पे पड़ेगा लात मारेंगे, तमाम चीजों से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया। नीट का पेपर लीक हो गया उससे ध्यान भटका दिया आज इन लोगों ने, पूरी तरह से पेट्रोल डीजल का 3-3 रुपया भाव बढ़ गया उसके ऊपर से पूरा ध्यान भटका दिया ये लोगों ने। देश सवाल कर रहा है, मोदी जी वहां जाके या हबीबी कैफल हाल करके शेख को मिल रहे हैं वहां पर, और या भारतीय मुसलमान के ऊपर उनके मंत्री जुलूम कर रहे हैं, जुलूम जुलूम का खात्मा
0: जुलूम हो रहा है,
10: बोलते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की विश्वास इस तरह हासिल करेंगे। अरे एक आदमी मुसलमान नमाज पढ़ा तो आपको तकलीफ क्यों? जुल्म नहीं है ये, मुसलमान को लात से रस्ते में मारा जाता है,
0: वोट तो देता नहीं कोई आपको यूपी में, खाली जुल्म जुल्म करते रहते हैं आप,
10: मुसलमान
0: वोट देते नहीं आपको ये लोग, नहीं वोट तो देता नहीं मुस्लिम तबका आपको।
10: में नमाज पढ़ा था नहीं देखा दिल्ली में,
0: एक सीट नहीं अभी तक जीत पाए आप यूपी में।
10: अरे अंजना जी वोट
0: सब भरोसा अखिलेश जी पे करते हैं,
10: हिंदू भी देगा सिख ईसाई सब वोट देंगे हमको वो अरे तो इन लोग कर देते हैं
0: पार्टी का नाम बदलिए,
10: ध्रुवीकरण की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, मुसलमानों से नफरत फैलाने नहीं बदलेंगे।
0: क्यों?
10: पार्टी का नाम बहुत अच्छा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बहुत खुशी हमको नाम से, हमको खुशी होता है, इनको बोलो नाम बदले। और मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगा, मेरे मित्र बैठे हुए यहाँ पर, अरे 10 सेकंड में मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए अंजना जी, समाजवादी के मेरे मित्र बैठे हैं सुनील जी, सुनील जी आपने नमाज के ऊपर तो बोला ही नहीं, क्या नमाज अलाउड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे आप उसके ऊपर बताइए ना, पीडीए का मतलब क्या है? अभी आपने कहा अल्पसंख्यक मुसलमान भी आ गया उसमें, बोलिए ना कब बोलेंगे आपको मुसलमानों के वोट चाहिए? आज मुसलमानों के ऊपर इतनी बात हो गई, लाउड स्पीकर के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, अजान से नींद खराब हो रही है बीजेपी वालों की, उस पर आप नहीं बोले, रस्ते में नमाजी को लात मारा जा रहा है आप उसके ऊपर नहीं बोले, आप किस बात के ऊपर बोलेंगे फिर मुसलमानों के वोट क्यों चाहिए?
0: चलिए ठीक है ठीक है, अब एक बार मोहम्मद फैज साहब बोले फिर मैं आ रही हूँ सुनील जी आपके पास। वारिस जी, वारिस जी अब आपको मैं समझ गई, आपको अपने नेता से भी पूरा विश्वास हट गया है, क्योंकि जो जो आपके नेता को बोलना चाहिए था वो आप चाह रहे हैं अखिलेश बाबू यादव बोले, अखिलेश यादव क्यों बोले, आप उनके नेता से क्यों बुलवाना चाहते हैं, आप अपना लेके ढोल पीटिए, वोट आपको दे नहीं रही है जनता। मोहम्मद फैज खान साहब, वो ऐसे ही दे रहे हैं उनको,
9: इसलिए बोल रहा हूँ।
0: अरे वो ऐसे ही दे रहे हैं,
9: मगर मुसलमानों के हक की बात नहीं करते ना ये लोग।
0: अरे उनको वो वैसे ही दे रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि वही बीजेपी को हरा सकते हैं।
9: समझदार हो चुका
0: आप पर वो भरोसा नहीं करते हैं, उनको पता है कि बीजेपी को वही
9: हम हराएंगे ना, कहाँ हरा सके। अरे कहाँ हरा, इतने टाइम हार गए ये लोग कहाँ।
0: अरे वो कहते हैं कि आप आओगे तो खाली वोट काटोगे, बीजेपी को फायदा होगा। मोहम्मद फैज खान साहब, मोहम्मद फैज खान साहब, आज बड़ा सवाल ये है कि लॉ ऑफ द लैंड से देश चलेगा या किसी के हक मान लेने से चलेगा कि भाई मैं तो नमाज पढ़ूंगा सड़क पर।
11: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अंजना जी, सबसे पहले मैं करेक्शन करना चाहूंगा, वारिस पठान भाई ने जो कहा ईद की नमाज जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, लोग सड़कों तक निकल के पढ़ते हैं, वो नमाज फर्ज नहीं है, फर्ज ही नहीं है वो नमाज वाजिब है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, मेरी बात आप समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने कुरान शरीफ में सूरह अखलास दिया है, कुल वल्लाह वहद अल्लाहु समद। जी बहुत शुक्रिया, आपने सही चीज को कबूल किया, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ वारिस भाई जी, बहुत शुक्रिया। अब देखिए सूरह अखलास, कुल वल्लाह वहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन। जी हाँ, जुमा की फर्ज है, मैंने कहा सर, मैंने जुमा की कहा फर्ज है, मैंने केवल ईद की कहा और आपने स्वीकार भी लिया, उसके लिए शुक्रिया आपका। सूरह इखलास में कहा गया कुल वल्लाह वाद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, पाक और बेनियाज है। बेनियाज का मतलब होता है नीडलेस, अल्लाह को किसी भी कट्टरपंथी मौलाना की जरूरत नहीं है अपना काम करवाने के लिए। कोई मौलाना मुफ्ती उलेमा जिसका जो काम था वो नहीं करेगा तो अल्लाह अपना काम मोदी जी से करवा रहा है, अल्लाह अपना काम योगी जी से करवा रहा है। क्योंकि अगर सड़क पर एक कंकर भी पड़ा है तो मुसलमान होने के नाते हमारा ये मानना है कि वहां से मुसलमान नहीं गुजरा, क्योंकि मुसलमान गुजरता तो सड़क का कंकर हटाता। पूरी सड़क को घेर लेना, उस समय कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई सामान की डिलीवरी लेकर जा रहा है, किसी को ऑफिस जाना है, उन सब कार्यों को बाधित कर देना इस्लाम की शिक्षा नहीं है और अल्लाह इस काम से नाराज होता है। और मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों को यह काम करना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं किया। यहां पर अंजना जी आप कानून की बात कर रही हैं, कानून के अनुसार भी सड़क के घेर कर नमाज पढ़ना गलत है और इस्लाम के अनुसार भी गलत है। तो देखो अल्लाह को क्या पसंद था, अल्लाह को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पसंद नहीं थी। ये उलेमा मुफ्ती और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने बनाए रखा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मोदी जी को फिर अल्लाह ने लाया और उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, तो अल्लाह अपना काम करवा लेगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों को करना चाहिए था, नहीं किया। मोदी जी को लाया, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट करवाया कि भैया वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और सुधांशु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो सकता है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी का आप सही इस्तेमाल कीजिए, उसका अमेंडमेंट एक्ट इसी सरकार ने लाया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, शिफ्ट में नमाज बिल्कुल पढ़ी जा सकती है और यही नियम है इस्लाम का, जो योगी जी कह रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहे हैं, केवल कानून के अनुसार नहीं कह रहे। और ईद के वक्त में और कई जुमे के वक्त भी जो समझदार इमाम मुफ्ती हैं हमारी कई मस्जिदों में, हम जो राष्ट्रवादी जाते हैं भाई, ये डिसाइड कर लेते हैं कि 1000 की कैपेसिटी है मस्जिद में और 3000 नमाजी हैं, तो 3 शिफ्ट में नमाज होगी। यदि 4000 है तो 4 शिफ्ट में होगी, 2000 है तो 2 शिफ्ट में होगी। यही इस्लाम का सही तरीका, ये नहीं सड़कों को घेर लिया। अब दूसरी बात, योगी जी ऐसी भाषा क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, आप प्रेम से नहीं समझेंगे तो कानून व्यवस्था समझाने के लिए आपको उन्हीं की तरह का आचरण करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात और कहूंगा अंजना जी, बस मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किजवाई और ये वारिस पठान भाई, ये सब मुझे काफिर कहते रहे, मुनाफिक कहते रहे, संघी कहते रहे, लेकिन बंगाल का रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव जी ने हनुमान चालीसा का स्टेटस लगाया और वही फराज किदवई जो मुझे काफिर मुनाफिक संघी कहते थे टीवी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा गाने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। योगी जी जो कर रहे अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कानून कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको।
10: क्या बात कर रहे हैं योगी जी, कर रहे अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर रहे, अकॉर्डिंग टू कानून कर रहे, नमाज अलाउड नहीं करने का इस्लाम ने बोला है क्या?
12: बिल्कुल, सड़क पे नमाज पढ़ना इस्लाम ने बोला,
10: किस तरह की आप बात कर रहे हैं?
12: सड़क पर नमाज पढ़ना इस्लाम के खिलाफ है।
10: नमाज पढ़ लिया तो क्या तकलीफ हो जाती है?
12: बाधा पैदा करना इस्लाम के खिलाफ है। ऐसा जाम नहीं होता क्या?
10: कावड़ यात्रा निकालता तब
12: जाम नहीं होता? इस्लाम के खिलाफ है। वक्त की जमीनों पर अपना घर बना लेना इस्लाम के खिलाफ है। भैया ये सब आपको करना चाहिए।
0: सुधांशु जी एक सेकंड, वो इसकी तुलना सीधा कावड़ यात्रा से कर रहे हैं कि भाई कावड़ यात्रा तो निकाली जाती है ना, उन पर तो आप फूल बरसाते हैं।
7: बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कावड़ यात्रा के लिए परमिशन ली जाती है और सड़क का एक हिस्सा होता है और कुछ दिनों के लिए होता है, आप भी परमिशन लीजिए। मैंने बचपन में खूब शबे बारात के देखे हुए, पंडाल लगे हुए बचपन में, परमिशन लेके होता था।
10: गाड़ी तोड़ने के लिए परमिशन
7: का भी जरूर करता है, परमिशन लेके होता है,
10: मदे साहब
7: का जरूर निकलता है परमिशन लेके।
10: मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
7: जो बात वारिस पठान ने कही, एक वकील के नाते एक बात बहुत साफ हो गई कि अगर इसका अर्थ हो गया कि नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर भी हो सकती है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो ये दावा करते हैं, प्लेस का इंपॉर्टेंस नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, गर्भगृह में ही मंदिर हो, मूर्ति होगी और मूर्ति की पूजा गर्भगृह में ही होगी, सड़क पर नहीं होगी। तो स्थान का महत्व यहां है, पहला पॉइंट नंबर वन। दूसरा मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, ये बकरीद है, इसमें बकरे काटे जाते हैं विशुद्ध धार्मिक आधार पर। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में बलि होती थी साल में एक दो दिन, तो तमाम एनिमल लवर्स जो थे वो एकदम लबरेज हो गए जानवरों के प्रति मोहब्बत से, मगर वही धार्मिक आधार के ऊपर करोड़ों बकरे काटे जाते हैं, कोई एनिमल लवर की लवराई दिखती नहीं है, लगता पता नहीं कहां क्रूड ऑयल लेने चली जाती है, और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी नहीं दिखती है, और ना कोई कोर्ट में जाता है। और मैं एक और बात बता दूं, ये जो बकरीद शब्द है इसमें बकर का अर्थ बकरा नहीं है, बकर का शब्द अरबी में अर्थ होता है बड़ा, यानी जैसे अबू बकर अल बगदादी का मतलब बड़ा, वो बकरा नहीं है। ये भारत में आके जबरदस्ती बकरी की बलि देनी शुरू की, क्योंकि बकरी की बलि की परंपरा प्राचीन काल से भारत में थी, तो ये भी एक तरीके से इंडियन एडॉप्शन इन्होंने किया है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान छोड़िए, अरे कहां गए वो पशु प्रेमी, कहां गए वो लोग, करोड़ों कटते हुए बकरों में दर्द नहीं दिखता है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, लाखों दर्शकों का आगाह करना चाहता हूँ, फिर गौर से देखिए, इनको न पर्यावरण से मतलब है, न इनको हवा से मतलब है, न इनको जानवर से मतलब है, इनको सिर्फ हिंदू धर्म के लिए समस्या पैदा करने से मतलब है। और मैं लास्ट में कहूँ, अखिलेश जी ने किया, छोड़िए ना, आपने टाइम पे बोलिए, आज रामचरितमानस का जब उल्लेख अखिलेश जी ने किया तो मुझे लगा कि वक्त कैसे कैसे हालात बदलता है। रामचरितमानस जो पार्टी फाड़ती थी, आज वो रामचरितमानस का उल्लेख कर रही है। मुझे याद है हम लोग यंग एज के थे जब 93 का चुनाव था और नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था, नारा केवल इसलिए लग रहा है, हिंदू समाज ने एकता दिखाने में थोड़ी कमी कर दी है, जिस दिन एकता वास्तविक दिखेगी उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आप देखिए थोड़ी सी एकता बंगाल में दिखी है, और जैसा अभी इतने फैज खान साहब ने कहा कि वो हनुमान जयंती भी याद आई है, हनुमान जी का स्टेटस भी लगा है, रामचरितमानस भी याद आई है। तो मेरा मानना है, मैं सुनील जी से कहूंगा, अखिलेश जी से कहिए कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, तुलसी लिख गए रामचरितमानस में, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जाम है उल्टा सुल्टा बीज। अरे रीझ के ना सही, खींच के ही भज लो तो शायद कुछ पाप कट जाए।
0: सुनील जी जवाब दीजिए।
8: जी देखिए अंजना जी, इनके राम अलग हैं, हमारे राम अलग हैं। इनके राम वो हैं जिसके नाम पर ये चंदा चोरी कर लेते हैं, इनके राम वो हैं जिनके नाम पर जमीन घोटाला कर लेते हैं। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो बराबरी का रास्ता दिखाते हैं, जो महिलाओं का सम्मान दिखाते हैं, जो पिछड़ों और दलितों को गले लगाना सिखाते हैं, जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, हमारे राम तो वो हैं। इनसे पूछो राम के रास्ते पर कैसे। और मैं जो बात कह रहा था अंजना जी, आज 6 बजे के शो में, अंजना जी के शो में जो करोड़ों लोग दर्शक हैं, उनको आज ये बहस देखने को नहीं मिल रही कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, या डीजल पेट्रोल गैस के दाम कैसे बढ़ गए, या रोजगार को लेकर के लोग कैसे भटक रहे हैं। मैं आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं, दस साल की लगभग इनकी सरकार होने जा रही है। आप योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं, दस उनके काम बता दीजिए जो जनहित के हों। और इनका कर्म क्या है? हमारे नेता ने कहा है कि बीजेपी का कर्म है भ्रष्टाचार, धर्म है पैसा कमाना। तो ये अपना कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं और जनता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जनता कर्जदार हो जाए, जनता को गैस न मिले, डीजल न मिले, उसके घर खाना न बने, उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए, इलाज उसको न मिल पाए, पानी साफ न मिल पाए, इनको कोई लेना देना नहीं। ये तो वो विद्वान लोग हैं ना जो गाय को भी मिथुन बता देते हैं, जब इनको गाय काटनी होती तो मिथुन बता देते हैं, जब इनको मछली खानी होती तो ये शुभ बता देते हैं। तो ये जो नकली हिंदू है ना, हम लोग असली हिंदू बनाम नकली हिंदू की भी लड़ाई है।
0: ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन दो बातें आपको भी सुनील सिंह यादव जी बता दूं, क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आप गेस्ट होते हैं उसी दिन का शो देखते हैं। जब नीट पर या महंगाई पर हम लोग शो करते हैं तो उस दिन आप 6 बजे कुछ और कर रहे होते हैं, शो नहीं देखते हैं।
13: और इसी
0: चैनल पे और नीट पर अनेकों मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में रोज हम लोग रात 9 बजे कर रहे हैं। नीट पर लगातार सीरीज आज तक कर रहा है और नीट को अगर फोरफ्रंट पर कोई लाया है तो आज तक लाया है। लेकिन ठीक है, वो तो आप अपने हिसाब से ही कहेंगे। सुधांशु जी जल्दी से 2 लाइन का जवाब उनकी बात, सिर्फ 2 लाइन,
13: बस 2 लाइन में। सुनील भाई, आप कहां से मिथुन को ले आए बीच में? अब अगर गोपालक समाज को भी ना पता हो, लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, मिथुन में लिखा है इट इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, ना वो गाय है ना भैंस, मगर क्या बताए, अकल बड़ी है भैंस।
0: बफेलो बफेलो पे नहीं था कि नीट और ये सब से क्या धान भटकाया जा रहा है। लेकिन चलिए, आज हल्ला बोल में इतने की इजाजत देता है वक्त। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा मेरे साथ, ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको दिखाएंगे कब तक दहेज के दानव पैसा सामान भी लेंगे और बेटियों की जान। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे योगी राज में सड़क पर नमाज तो पक्का इलाज, और आखिर में बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि अभी नहीं संभले तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखते रहिए आज।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा दे।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
8: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
7: आप कैसे कर लेते हो?
9: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
10: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
11: नहीं
10: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
13: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
14: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: Like I said before, we better hold the sins.
18: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
1: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
5: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
8: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है, तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो।

पहले यूएई में ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर हुए कई समझौते हॉर्मुज के हालात से लेकर ईरानी हमलों तक पर भी चर्चा। फिर नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर सेक्टर का समझौता। भारत की सुरक्षा, भारत का विकास और दोस्त देशों को भारत का भरोसा। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा में कई ऐसे समझौते हो रहे हैं जो सुनहरे भविष्य का खाका खींचने का काम करेंगे। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा की शुरुआत हुई यूएई के साथ, वो देश जो ईरान के साथ महायुद्ध की आग में भी झुलसा है और उसने पलटवार भी किया। इधर भारत के साथ कई मोर्चों पर यूएई कदम से कदम

बढ़ाकर आगे बढ़ा है। यूएई में शानदार स्वागत के बाद बारी थी एक दूसरे की सुरक्षा और विकास के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाने की। पीएम मोदी ने भारत और यूएई के साथ रिश्तों को मजबूत करने और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने पर जोर दिया। मुलाकात हुई, बात हुई तो चर्चा महायुद्ध तक भी हुई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के होनी चाहिए और शांति कायम करने की कोशिशें तेज होनी चाहिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौते हुए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। पीएम की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच सेमीकंडक्टर उपकरणों की दिग्गज कंपनी ASML ने भारत में चिप बनाने के लिए एक अहम समझौते पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत में टैक्स से लेकर लेबर लॉ तक में कई बदलाव किए गए हैं। नीदरलैंड के दौरे पर सिर्फ बेहतर भविष्य का खाका ही नहीं खींचा गया बल्कि वैभवशाली विरासत को सहेजने का काम भी किया गया। नीदरलैंड में हुए खास समारोह में 11वीं सदी के चोल राजवंश के ऐतिहासिक ताम्र पत्र भारत को वापस सौंप दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए समारोह के जरिए भारत को 21 तांबे की प्लेटें वापस मिल गईं, जिनकी वापसी के लिए देश 2012 से लगातार कोशिश कर रहा था। राजराजा चोल प्रथम के शासनकाल से जुड़े और करीब 30 किलो के ताम्र पत्र चोल साम्राज्य के सबसे प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों और भारत के बाहर मौजूद सबसे अहम तमिल विरासतों में से एक माने जाते हैं। 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी का मूल मंत्र विदेशी निवेशकों को भारत लाना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना, AI के क्षेत्र में तेजी से काम करना और सरहद की सुरक्षा के लिए दोस्त देशों के साथ रिश्ते और मजबूत करना है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: इसी के साथ हल्ला बोल में आप देख रहे थे बहस योगी आदित्यनाथ की बातों पर, लेकिन हम ब्रेक नहीं ले रहे। अब देखिए 24 मिनट में 24 घंटे की खबरें, नया शो मारिया के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं, आज से शाम 7 बजे खबर दिखाने का अंदाज बदल रहा है। आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में अभी तक की सभी बड़ी खबरें होंगी। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: से पहले सड़क पर नमाज को लेकर योगी का सख्त बयान, चौराहे पर तमाशा मंजूर नहीं, जगह कम पड़े तो कर ले अपनी जनसंख्या कम। बंगाल के मदरसों पर शुभेंदु ने कसा शिकंजा, धर्म आधारित योजनाओं पर लगाई पाबंदी, महिलाओं के लिए किया वादा पूरा। स्वीडन के बाद नॉर्वे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। मोदी ने ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में की शिरकत। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त बस्तर की तकदीर बदलने का किया भरोसा। सरकारी नौकरी में भी आदिवासी युवाओं को 15% मिलेगा आरक्षण। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए के चेयरमैन तलब, संसदीय समिति ने 21 मई तक मांगी जांच रिपोर्ट। पुणे में एक और आरोपी की हुई गिरफ्तारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को एक नायाब सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तय जगह पर नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वो किश्तों में नमाज पढ़े। लगे हाथ उन्होंने मुसलमानों को जनसंख्या कम करने की भी हिदायत दी।
1: सड़क पर नमाज पढ़ने की ऐसी तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं।
2: लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो।
1: योगी का संदेश साफ है, संख्या ज्यादा है तो आबादी कम करो, नहीं तो शिफ्ट में नमाज पढ़ो, वरना कानून का कोड़ा तो है ही। योगी के बयान ने यूपी की सियासत सुलगा दी, विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया।
3: अभी माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहां गाली दे रहे हैं।
4: मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है।
5: ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता, मगर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना के नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें क्या करें, आप सबको मार डालेंगे।
1: चुनाव में अभी समय है, मगर 2022 में योगी आदित्यनाथ ने 80% वर्सेस 20% वाला दांव जो खेला था उसी दांव को एक बार फिर आजमाने की कोशिश शुरू कर दी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अगली खबर भी लखनऊ से। योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के 8 दिन बाद आखिरकार विभागों के बंटवारे का सस्पेंस भी खत्म हो गया। मंत्रिमंडल के बंटवारे का जो पेच था वो सुलझ गया। कल रात यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो गया है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत सिंह पाल, सुमिंदर तोमर समेत 8 मंत्रियों का विभाग बट गया है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से साफ हो गया है कि जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को लेकर जो कयास चल रहा था वो गलत साबित हुआ है।
6: जो भी दायित्व तो पार्टी देगी, जो भी नई जिम्मेदारी देगी, उस जिम्मेदारी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के हित में 100% नीचे जमीन पर उतारना है, यही हमारे मन का संकल्प होगा। और नई भूमिकाओं में जो हम लोग आए हैं तो निश्चित रूप से एक नई चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां हैं कि कैसे हम जनता की चीजें हूबहू जनता तक पहुंचा सकें।
7: अखिलेश कह रहे हैं कि आन गांव का सिद्ध अपने लोग फिस,
6: ये बात कभी शिवपाल जी उनके लिए कहा करते थे, तो आत्ममंथन करें कि वो अपने यहाँ ठीक करें। ये बात उनके यहाँ परिवार में कई बार हो चुकी है।
0: योगी आगे आगे, शुभेंदु पीछे पीछे, सड़क पर नमाज पढ़ने की पाबंदी लगाने के बाद पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब मदरसे से जुड़ी आर्थिक योजनाओं पर भी रोक लगा दी है। शुभेंदु वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड से दनादन फैसला ले रहे हैं।
1: सरकार बनने के 10वें दिन जब कैबिनेट बैठक के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहुंचे तो उनके दिमाग में मैनिफेस्टो में किए गए वादों की झलक साफ थी। कैबिनेट ने फैसला किया है कि मदरसा शिक्षा विभागों के तहत धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सभी सहायक योजनाएं अगले महीने से बंद कर दी जाएंगी। सभी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी। लक्ष्मी भंडार योजना की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए बाकायदा सरकार लाभार्थियों की जाँच भी कराएगी। वही सरकार के फैसलों पर सियासत तेज है।
8: 15 साल में यू कुड हैव ब्रॉट अ चेंज to the lives of the people of Bengal. लेकिन आप कुछ किए नहीं, आप सिर्फ राजनीति किए। Your time is out. Now it is our time. So let us prove ourselves.
1: इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं कोलकाता में अवैध फैक्ट्रियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था, जो साफ संदेश है कि बंगाल में अब तेजी से हवा और फिजा को बदलने की तैयारी है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।
0: आज गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मुक्त होने के बाद बक्सर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सेना के जवानों की जमकर तारीफ की।
9: मैं सरेंडर हुए पुनर्वास स्वीकृत किए कुछ नक्सलियों से मिला था। मैंने बोला भाई तू कैसे ज्वाइन कर गया यहां, तो उसने कहा साहब हमारे तीसरी कक्षा से आज पूरे क्लासरूम को उठाकर ले गए थे, सब नक्सली बन गए, पूरे के पूरे जीवन तबाह कर दिए थे। और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सबेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है।
0: पीएम मोदी के बचत मंत्र के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के बीच तेल बचाने की होड़ मची हुई है। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार दफ्तर जाने के लिए मेट्रो में सफर उन्होंने किया। सरकार ने इसे मंडे मेट्रो अभियान का नाम दिया है।
1: सीएम रेखा गुप्ता ने आज दफ्तर जाने के लिए मेट्रो की सवारी की।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान था कि ईंधन की बचत की जाए, लोग कारपूल करें, और ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से मंडे मेट्रो की शुरुआत जो है वो की है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि मेट्रो से ट्रेवल करते हुए दिल्ली सचिवालय पहुंची हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आप देखें कि ये मेट्रो फीडर बस है, इसके जरिए जो है मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे।
1: जब मुख्यमंत्री मेट्रो में सवार हो तो बाकी के मंत्री कैसे पीछे रहते, एक एक करके सभी मंत्री भी मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़े। मंत्री प्रवेश वर्मा घर से पैदल निकले, मेट्रो स्टेशन तक बस ली और फिर मेट्रो से सफर किया।
11: घर से पैदल चला, उसके बाद में मेट्रो लिया, फिर मैंने जो है हमारी अपना देवी बस ली। मेरे को जितना समय गाड़ी से लगता था उतना कम समय में यहाँ पर पहुँच गया ऑफिस में।
1: दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा, आशीष सूद, पंकज कुमार सिंह और कपिल मिश्रा ने भी यही रास्ता अपनाया।
12: मैं भी मेट्रो से आया हूं और मेट्रो से आईपी मेट्रो स्टेशन उतरा हूं और वहां से स्पेशल फीडर बसें चलाई गई हैं डीटीसी के द्वारा, जो कि मेट्रो स्टेशन से लेकर दिल्ली सचिवालय तक आती हैं, तो उसी बस के द्वारा अभी मैं अपने दफ्तर आया हूं।
1: सीएम और मंत्रियों की तरह ही दिल्ली के बीजेपी सांसद भी तेल बचाने की मुहिम में जुटे दिखे।
13: ऑटो पूल किया, हम घर से इलेक्ट्रिक ऑटो से निकले हैं और बाद में मेट्रो स्टेशन आके वहां से हम सीपी आए।
1: पीएम की अपील के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अपील पर अमल देखा जा रहा है, जो जाहिर तौर पर सकारात्मक है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: अब बात वहां की जहां पीएम के बचत मंत्र का कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने आज केरलम में 10 साल बाद सत्ता वापसी का जश्न बाजे गाजे के साथ मनाया। वीडी सतीशन ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।
14: പടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ।
1: इसी के साथ ही केरलम में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई और वीडी सतीशन केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाई, जिसमें 20 मंत्री शामिल थे। ऐसा 64 साल के बाद हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली हो। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। केरलम की कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन तस्वीरों में एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार साफ देखी गई, जहां इंडिया गठबंधन का एक भी नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने आज एक और अहम किरदार को गिरफ्तार किया। लातूर में कोचिंग चला रहे शिवराज रघुनाथ ने गिरफ्तारी के बाद जो कहा, उसने एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
1: सीबीआई की गिरफ्त में आया ये एक और बड़ा चेहरा है, जिसने करीब नीट के 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। लातूर में शिवराज माटेगांवकर करीब 100 करोड़ी कोचिंग चलाता है, लेकिन छात्रों को शिक्षा देने के बजाय इसने उन्हें अपराधी बना दिया। नीट पेपर लीक की जांच जब शिवराज तक पहुंची तो कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। शिवराज से सीबीआई ने करीब 10 घंटे लंबी पूछताछ की। सूत्रों की माने तो शिवराज एनडीए के कई अधिकारियों के संपर्क में था। वहीं पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी से भी इसके संबंधों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। शिवराज ने नीट यूजी परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र और उनके उत्तर परीक्षा से करीब एक हफ्ते पहले यानी 23 अप्रैल 2026 को हासिल कर लिए थे। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपी ने परीक्षा समाप्त होने के बाद लीक हुए पेपर को नष्ट कर दिया और इस तरह उसने सबूतों को मिटा दिया। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर के मोबाइल फोन में नीट यूजी 2026 के लीक हुए प्रश्न पत्र मिले हैं। शिवराज ने लीक हुए प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी विवेक पाटिल और अन्य सहित कई लोगों को उपलब्ध कराई। उधर नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है।
15: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSY का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो NSY के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं।
16: हमारा सवाल है, एजुकेशन माफिया कहाँ है? NTA में बैठे हुए बड़े अधिकारी कहाँ है? बड़े कोचिंग माफिया कहाँ है? सरकार में बैठे हुए लोग कहाँ है? छोटी मछलियों को पकड़ करके आप छोटी मोटी कार्रवाइयां कर करके कोई कुछ भी होने वाला नहीं है।
1: अभी कई और बड़े चेहरों का पर्दाफाश होना है, जहां NTA की भूमिका सवालों के घेरे में है। आज तक ब्यूरो।
0: तारीख पर तारीख उत्तर प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर बार बार तारीख मिलने से परेशान लोगों ने सड़क पर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी में सड़क पर रेंगते हुए ये शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचे ताकि उनका कलेजा पसीज सके।
1: इतनी भीषण गर्मी में ये अभ्यर्थी सड़क पर रेंग रहे हैं। रेंगते हुए इन प्रदर्शनकारियों की मंजिल है यूपी के शिक्षा मंत्री का आवास।
17: इनकी सिर्फ इस बात की मांग है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामला है उसकी सुनवाई हो। और अब ये तमाम लोग हैं, अभ्यर्थी इनके पास हैं और अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
1: 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को सिर्फ तारीख मिल रही है। फिर से जब तारीख मिली तो अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा।
18: हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
17: ऐसे रैंक कराने की क्या जरूरत पड़
18: गई? हम सिर्फ यहाँ विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम, आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर क्या भगवान बन चुके हैं, हम लोग कहाँ जाए।
19: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
20: अब जाके हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हमें समझते थे कि कीड़े मकोड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकोड़े के ही काबिल हैं।
1: उत्तर प्रदेश का 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में 19 मई को सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनका पक्ष कोर्ट में सही से नहीं रख रही है, जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो रहा है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
0: आज जब दुनिया AI युग में प्रवेश कर रही है, उस वक्त भी देश में, हिंदुस्तान में दहेज के मामले झकझोर देने वाले हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें महिला की मौत के पीछे परिवार दहेज का आरोप लगा रही है।
1: ये दीपिका की तस्वीर है, वो दीपिका जो अब इस दुनिया में नहीं है। 1.5 साल पहले जो दीपिका ऋतिक का हाथ थामकर अपने नए परिवार का हिस्सा बनी थी, आज उसी दीपिका की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। ससुराल वालों का दावा है कि दीपिका ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिवार दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है।
21: मेरे भाई कल मतलब वहाँ गए थे इस विषय में समझाने के लिए, बिल्कुल बातचीत हुई, अच्छे से सब कुछ हुआ, लेकिन मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया। जैसे वो वहाँ से विदा होकर घर पे आए, आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि बेटी मतलब गिर गई है।
1: दीपिका के परिवार का दावा है कि पिछले काफी वक्त से उन्हें परेशान किया जा रहा था, दहेज की मांग की जा रही थी। एक दिन पहले ही वो बेटी से मिलकर आए और फिर उसकी मौत की खबर ने हैरान कर दिया।
21: पूरी बॉडी पे निशान है मारपीट के, हर चीज के, और उसको इनफेक्ट उसके पेट में मतलब या तो कोई बुलेट का मतलब घाव है, वो इतना मोटा घाव है, और या मतलब कोई स्क्रू वगैरह, कोई सरिया वगैरह मतलब उससे मारा गया है उसको, तो मतलब उसके पूरी बॉडी पे निशान है, तो ये मतलब बच्चा अपने आप तो कैसे कर लेगा।
2: पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।
3: इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।
2: परिवार का दावा है कि लड़की का ससुराल रसूखदार है, ऐसे में पुलिस भी मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है।
22: पुलिस ने तो भी हमसे मिले बिना, हमारा कोई व्यू लिए बिना पहले से पहले ही बोल दिया है कि छत से जो उन्होंने आत्महत्या की है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो व्यक्ति है मनोज प्रधान, जो लड़की के ससुर लगते हैं, ये राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है और भूमाफिया भी है। इसके खिलाफ पहले ही दर्जनों मुकदमे वहाँ के जो लोकल थाना है उसमें दर्ज है, तो ये तो जांच को पूरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेगा और हो सकता है इसने वहाँ पे लोकल चौकी या थाना स्तर पे पैसे भी पहुँचा दिए।
2: बहरहाल हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब आपको दिखाते हैं पंजाब से आई दो हैरान करने वाली तस्वीरें, जिससे आपको वहां अपराधियों के बुलंद हौसलों का अंदाजा लग जाएगा। पहली तस्वीर जालंधर की है, जहां हथियार के दम पर एक महिला को दिन दहाड़े लूटा गया। बाइक पर सवार होकर दो लुटेरे आते हैं और महिला को गली में दौड़ाते हैं। महिला के साथ एक बच्चा भी है, जिसे जमीन पर गिराकर वो चैन लूट लेते हैं। दूसरी तस्वीर न्यू चंडीगढ़ की है, जहां महिला अपने 6 महीने के बच्चे को कॉलोनी में घुमा रही थी, तभी बाइक सवार लुटेरे आते हैं और लूटपाट कर भाग जाते हैं। दोनों तस्वीरें CCTV में कैद हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लुटेरों के हौसले किस तरह बुलंद होते जा रहे हैं पंजाब में। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अपने विदेश दौरे में आज नॉर्वे पहुंचे। नॉर्वे में उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा है और पीएम मोदी को जो सम्मान मिला है वो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। खास बात यह है कि ये प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब बात देश की अर्थव्यवस्था की, जहां आज एक बुरी खबर आई। अमेरिका डॉलर के मुकाबले 54 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 96.35 तक पहुंच गया है रुपया। इस साल ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एशियाई करेंसी है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इसमें 5.5% से ज्यादा गिरावट आया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिरावट अभी आगे भी और दिख सकता है। आईपीएल लीग मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के लिए आज करो या मरो का दिन है। टॉस जीतकर चेन्नई से पहले बल्लेबाजी चुनी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के धुरंधर महेंद्र सिंह धोनी ने आज एक बार फिर से निराश किया। चेपॉक में होने वाले चेन्नई के आखिरी मैच में भी महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल रहे। अब तक आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई का 13वां मैच है और धोनी किसी भी मैच में नहीं खेले हैं।
1: पांच बार का चैंपियन, सबसे भरोसेमंद नाम, चेन्नई का सबसे बड़ा ब्रांड। रविवार को चेपॉक स्टेडियम में अभ्यास के लिए जब चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे, तो सीएसके समर्थकों को एक उम्मीद की आस जगी कि वो शायद हैदराबाद के खिलाफ मैच खेले। शुरुआती मैचों में धोनी की पिंडली में खिंचाव की वजह से वो अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं। उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स 12 में से 6 मैच हार चुकी है। आज हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई का इस सीजन का चेपॉक में आखिरी मैच है। इसके साथ ही धोनी के रिटायरमेंट की अटकलें लगनी भी तेज हो गई हैं। पिछले 3 साल से हर साल कहा जाता रहा कि धोनी का ये आखिरी सीजन है, लेकिन धोनी खुद आकर अटकलें टालते रहे। लेकिन जब से आईपीएल शुरू हुआ, ये पहला मौका है कि 12 मैचों में से धोनी 12 के 12 मैच बाहर बैठे हों। आज तक ब्यूरो।
0: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन.
3: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as it can. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Korean skincare brand.
9: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
11: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबडी कैन ड्रीम।
10: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
12: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: और वही कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
18: जेके वॉल मैक्स।
17: बेस्ट पेंट
18: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
19: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
20: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का स्तर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
21: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
22: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
23: यार
24: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
23: इसमें माइक्रोफाइबर है।
24: माइक्रोफाइबर यानी
23: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
24: हमारे सीमेंट में नहीं है,
23: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
25: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
4: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ।
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
6: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम एक हिंट तो देते।
8: विक्रम
7: हिंट
6: बड़े आराम से।
9: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
10: सॉरी सर मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
11: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना मैं शांति को साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
13: नहीं
12: और म्यूचुअल फंड से
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
16: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके।
17: Like I said before, we better hold the sins.
18: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके।
21: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती देश का भविष्य भी बनाती है और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ हमारे देश के असली हीरो के हाथ जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान देश का हीरो।
22: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिया।
23: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
24: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं.
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
4: जहां खबर वहां खबरदार.
0: इन एसोसिएशन विद
8: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं.
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
4: जहां खबर वहां खबरदार.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

बकरीद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर योगी का सख्त बयान, चौराहे पर तमाशा मंजूर नहीं, जगह कम पड़ रही हो तो कम करें जनसंख्या। बंगाल के मदरसों पर शुभेंदु ने कसा शिकंजा, धर्म आधारित योजनाओं पर लगाई पाबंदी, महिलाओं के लिए किया वादा पूरा। स्वीडन के बाद नॉर्वे में भी प्रधानमंत्री को मिला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, मोदी ने ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में की शिरकत। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त बस्तर की तकदीर बदलने का दिया भरोसा, सरकारी नौकरी में भी आदिवासी युवाओं को 15% मिलेगा आरक्षण। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए के चेयरमैन तलब, संसदीय समिति ने 21 मई तक मांगी जांच रिपोर्ट, पुणे से एक और आरोपी की हुई गिरफ्तारी।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। विशेष में आज बात करेंगे भोपाल की ट्विशा के केस की, और इस वक्त आज तक के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। ये 12 मई का सीसीटीवी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, यानी जिस दिन ट्विशा की मौत हुई, इस वीडियो में ट्विशा छत पर जाती दिख रही हैं, और उसके कुछ देर बाद उनके पति और दो अन्य लोग सीढ़ियों से भी उनके पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद वो शव को लेकर नीचे आते दिख रहे हैं। सीसीटीवी में ये भी दिख रहा है कि सीढ़ियों पर ट्विशा को सीपीआर दिया जा रहा है। अगर आप ये तस्वीरें दिखें तो उनके पति और उनके साथ साथ दो लोग हैं जो उनकी लाश को सीढ़ी से नीचे ले जा रहे हैं और सीपीआर भी दे रहे हैं। ये जो तस्वीर और ये जो सीसीटीवी फुटेज आज तक के पास अभी आया है, उससे साफ तौर पे दिख रहा है कि जब घटना घटी तो उनके पति उस वक्त मौजूद थे। क्या है भोपाल की ट्विशा का केस? रवीश पाल की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि कैसे महीनों तक ट्विशा की प्रताड़ना होती है।

0: क्या मध्य प्रदेश में रसूख के आगे नियम कायदे ढीले पड़ जाते हैं? रसूखदारों के आगे लोहे जैसे सख्त नियम मोम की तरह क्यों पिघल जाते हैं? क्या त्रिशा शर्मा को मरने के बाद भी मध्य प्रदेश में इंसाफ नहीं मिल पाएगा? भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत का मामला किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक रिटायर्ड जज सास है, वकील पति है, प्रताड़ना है, ससुराल वालों को एक्सपोज करती चैट है, और त्रिशा जो खुद फिल्म एक्टर और मॉडल रह चुकी थी, उसका शव मौत के 6 दिन बाद भी अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहा है। त्रिशा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। त्रिशा शर्मा एक मॉडल रह चुकी हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग भी की हुई थी। इसके अलावा वो मिस पुणे थी, कई सारी एड फिल्में भी की थी। बाद में उन्होंने करियर की राह बदली, MBA किया और जर्मनी की कंपनी में नौकरी भी की। एक मैट्रिमोनियल साइट से उनका रिश्ता भोपाल के समर्थ शर्मा से हुआ और 12 दिसंबर 2025 को त्रिशा और समर्थ की शादी हुई। समर्थ शर्मा पेशे से वकील हैं, जबकि उनकी मां गिरीबाला जिला जज थी और रिटायर्ड हो चुकी हैं। आरोप है कि शादी के बाद त्रिशा का शोषण शुरू हो गया था। पहले तो वो चुप रहती थी, लेकिन फिर त्रिशा ने धीरे धीरे करके ये बातें अपने घर वालों को बतानी शुरू की। घर वाले नहीं चाहते थे कि बेटी का घर टूटे, तो उन्होंने त्रिशा को सब कुछ मैनेज करके चलने की सलाह दी। और फिर अचानक 12 मई को खबर आई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन त्रिशा के घर वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई। ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप है। परिवार का दावा है कि शव के हाथ और कान पर चोट के नीले निशान थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका है। ये भी आरोप है कि हत्या के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई, और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में है। अब त्रिशा के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से ही इनकार कर दिया है। वो मध्य प्रदेश से बाहर त्रिशा का पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहे हैं।
1: एम्स में इसको पहुंचाया जाए बॉडी को, ताकि एक सही साक्ष्य सामने निकल के आए और आगे जो है न्याय मिल पाए लड़की को। हम इस इन्फ्लुएंस में रह करके, इस हाई कोर्ट में, इस MP की टेरिटरी में जहां इतने इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, हमें न्याय की उम्मीद कम है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में तुरंत ट्रांसफर किया जाए और ये CGI के निर्देशन में इस केस की जांच की जाए।
0: मामला सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इस गंभीर केस में त्रिशा की जज सास का रसूख साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आरोप है कि बेटी की मौत के 2 दिन बाद पुलिस की तरफ से FIR दर्ज की गई, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी पति समर्थ शर्मा पर अब पुलिस ने 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की है, लेकिन समर्थ की मां और त्रिशा की सास को पहले ही अंतरिम जमानत दे दी। आरोप है कि रिटायर्ड जज गिरीबाला ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। दहेज प्रताड़ना और मौत के केसेस में अग्रिम जमानत मिलने पर सवाल उठ रहे हैं।
2: PM रिपोर्ट को लेकर परिवार कह रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो सेकंड PM करवाना चाहते हैं, और वो भी मध्य प्रदेश से बाहर। तो जो PM रिपोर्ट अभी पुलिस के पास है, मौजूद है, तो क्या उसमें आपको कोई लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं होकर कुछ और भी एंगल हो सकता है?
3: जो PM रिपोर्ट है, तो PM रिपोर्ट के संबंध में एंटीमार्टम हैंगिंग जो PM है, तो एम्स भोपाल में हुआ है, जो सेंट्रल का इंस्टीट्यूट है, वो MP का अपेक्स इंस्टीट्यूट है। उसमें PM डॉक्टर, 4 डॉक्टरों को पैनल ने किया, इसकी विधिवत वीडियोग्राफी भी की गई है। तो जो PM रिपोर्ट है, तो संबंध में कुछ क्वेरी थी, तो उस क्वेरी के लिए भी हम लोगों ने भेजा है, वो भी आ ही जाएंगी। और इसके अलावा रहा दोबारा भी पोस्टमार्टम का, तो ये पोस्टमार्टम के बारे में जो सक्षम न्यायालय है वो निर्णय लेगा, तो जैसे न्यायालय जो देता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
0: सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इस आवेदन पर। ये त्रिशा की सास पूर्व जज गिरीबाला का अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र है, और इसमें गिरीबाला ने त्रिशा पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए हैं। लेकिन त्रिशा ने मौत से पहले अपनी मां से व्हाट्सएप पर जो चैट की थी, उन्हें पढ़ने से ये साफ हो रहा है कि त्रिशा पर ऐसे आरोप लगाने की पहले से तैयारी थी। उसने लिखा है कि इन सबको लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूं, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। अब त्रिशा के घर वालों का कहना है कि ड्रग्स उनकी बेटी नहीं, बल्कि त्रिशा का पति समर्थ करता था और उसी को बचाने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
1: समर्थ उसको थ्रेट करता था क्योंकि मैंने उनको ऑब्जेक्ट किया था उनकी मदर को कि ही इज अंडर ड्रग। समर्थ बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं, पुरानी हिस्ट्री है इनकी ड्रग एडिक्ट की और आज भी बहुत बड़े लेवल पर ड्रग कंज्यूम करते थे। तो उनकी मदर को मैंने बोला कि आप प्लीज चेक करिए अपने बेटे को, बहुत ज्यादा ड्रग्स कर रहे हैं वो और इतनी ड्रग्स कर रहे हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। लड़की शिकायत कर रही है कि ये इनको ध्यान नहीं रहता, ये उल्टी उल्टी करके अपने इनके जो पड़े रहते हैं ये, तो प्लीज चेक इट। तो उनको इस बात का बहुत बुरा लग गया तो उस बात से उसको प्रताड़ित करने लगे बहुत बुरी तरीके से और बोले लगे तेरे बाप के नाक रगड़वाऊंगा मैं। मैंने बोला कि अगर बेटे मेरा किसी बात से बुरा लग गया हो, बीइंग ए फादर ऑफ लड़की, मैं माफी मांग लेता हूँ। ये बात आई सामने के सामने। तो ये एक पूरा जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, ये अपने बेटे का ड्रामा मेरी लड़की पे थोपा जा रहा है कि जो काम वो खुद करता है वो लड़की को थोप रहा है। कि
0: त्रिशा और उनकी माँ की चैट्स पढ़कर ये साफ हो जाता है कि त्रिशा बहुत ज्यादा परेशान थी, उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे एक चैट में त्रिशा ने लिखा है कि मेरा प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, न रोने देंगे ये लोग, न हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। एक और चैट में लिखा है, ये सब बहुत निर्दयी है मम्मी, सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है, बस लेबर क्लास को अपनी दया दिखाते हैं, मेरा दम घुटता है अब यहाँ। एक और चैट है जिसमें लिखा है, मुझे पूछ रहा है कि वो किसका बच्चा था और मैं इग्नोर करूं, ये अपने घटियापन की हर लिमिट क्रॉस करके बैठा है, कैसे रह लूं उसके साथ, श्राप लगेगा इसे मेरा।
4: उस चैट में एक त्रिशा की जो परेशानी है, उसकी जो मजबूरियां हैं, वो साफ तौर पे दिख रही है कि उसके पेट में किसका बच्चा है, ये सवाल उससे पूछा जा रहा था। एक ऐसी लड़की जो कि साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी है, कई एड्स में काम कर चुकी है, मिस पुणे रह चुकी है, काम कर रही है और काफी कैरियर ओरिएंटेड लड़की है, उससे अगर ये सवाल पूछा जाएगा उसके ससुराल में, उसकी सास की तरफ से या पति की तरफ से, तो स्वाभाविक सी बात है मन को ठेस पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी, जो बात बार बार उसका परिवार यहां कह रहा है। उस चैट में वो अपनी माँ से कहती हुई दिख रही है कि समर्थ अभी यही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये तभी हो सकता है जब उसके किसी से बात करने पे पति को आपत्ति हो, स्वाभाविक सी बात है। वो ये कह रही है चैट में कि ये लोग बहुत निर्दयी हैं, आप मुझे यहाँ से ले चलो, आप आ जाओ, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। तो ये तमाम बातें उस चैट में आ रही है और उस चैट में ये तमाम चीजें, इससे पहले भी वो अपनी सहेलियों से बात करते हुए भी कह रही है कि मैं फंस चुकी हूँ, लेकिन शादी करके तुम मत फंसना।
0: इन चैट से ये साफ है कि त्रिशा बहुत ज्यादा तनाव और अवसाद में थी, वो जब गर्भवती थी तो उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए, जिसका जिक्र उसने इन चैट्स में भी किया था। इसके बाद उसका मिसकैरेज भी हो गया था और जब उसकी मौत हो गई तो उसकी सास के रसूख का प्रभाव साफ नजर आता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
5: और इस वक्त भोपाल में त्रिशा के ससुराल के पक्ष के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें उन्होंने त्रिशा पर बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप है कि त्रिशा पहले से जिद करती थी कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि समर्थ पर ड्रग्स लेने के आरोप गलत हैं। त्रिशा की सास की तरफ से उस पर ड्रग्स लेने के आरोप भी लगाए गए हैं। तो त्रिशा की सास ने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसके बाद उन्होंने त्रिशा पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा भोपाल से। रवीश, जो इतने सारे आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में बताइए, क्या क्या आरोप लगाया है उनकी सास ने?
4: देखिए, काफी गंभीर आरोप लगाए हैं उनकी सास ने। सबसे पहले तो साफ कर दिया कि इस पूरे मामले में जबरन उनके परिवार को घसीटा जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि हमने तो एक बच्ची के तौर पे उसका हमेशा से ध्यान रखा और जब इस बात की जानकारी मिली कि वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, तो और ज्यादा उसका ध्यान रखा, एक परिवार की तरह उसका ध्यान रखा, उसकी बेटी की तरह ध्यान रखा। लेकिन आरोप ये लगाए हैं त्रिशा की सास थी गिरिबाला सिंह ने कि दरअसल शुरू से जिस तरीके से ग्लैमर वर्ल्ड की उसको एक चाहत थी और क्योंकि वो ग्लैमर वर्ल्ड में हमेशा से रही थी तो वो परिवार के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही थी उनके। उन्होंने कहा कि उनका और त्रिशा के परिवार के बीच में बहुत अंतर था, अलग अलग संस्कार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्वीकार किया त्रिशा को क्योंकि उसने और समर्थ दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। और यहां भी ये तक कहा है उनके सास ने कि शुरुआत में जब वो त्रिशा से मिले थे तो जिस तरीके से वो संस्कार दिखाती थी खाना खाने से पहले भगवान को याद रखना।
5: तो ट्विशा के ससुराल ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो उनके बेटे पर आरोप लग रहा है ड्रग्स का वो सही नहीं है। ट्विशा की सास की तरफ से ये आरोप लगा है कि ट्विशा खुद जो सारे ड्रग्स के आरोप हैं वो गलत हैं। वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: Tune In's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With Tune In, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With Tune In, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything up else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC. Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
7: अरे भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबडी कैन ड्रीम।
6: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
8: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रोफाइबर है।
9: माइक्रोफाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
9: हमारे सीमेंट में नहीं है,
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
13: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है।

0: दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों लंबा वीआईपी काफिला नहीं दिख रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे शुरू किया तो सीएम से लेकर मंत्री तक सभी मेट्रो पर सवार दिखे।
1: चलाई गई हैं।
0: ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में सत्ता की राजनीति सचमुच बदल रही है?
2: जा रहे हैं।
0: भारत में इन तस्वीरों पर भरोसा जल्दी नहीं होता, क्योंकि इस देश ने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। फिलहाल चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की साइकिल से दफ्तर जाने की तस्वीर हो या फिर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की कार पूलिंग की तस्वीरें फिलहाल अच्छे संकेत की तरफ इशारा करती हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लगातार पीएम मोदी के संदेश को आगे बढ़ाने में। ये हालात वैश्विक संकट से पहले नहीं थे, लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद क्रूड ऑयल के दाम रॉकेट की तरह आसमान छूने लगे। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, यानी हर बढ़ती कीमत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस साल मार्च में जहां क्रूड ऑयल पर भारत को 1,17,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अप्रैल में 1,79,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। बचत की

0: बहस को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना शायद गलत होगा, क्योंकि दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तेल सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं चला रहा, राजनीति युद्ध और वैश्विक ताकतों की दिशा भी तय कर रहा है। इसलिए नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बीच उन चुनौतियों का जिक्र किया जिनका सामना दुनिया कर रही है।
1: दी जाएगी।
0: तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी का टैंक महंगा नहीं भरता, सब्जी महंगी होती है, दवा महंगी होती है, खेती महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सोना चांदी सब महंगा हो जाता है और अंत में आम आदमी की जिंदगी भी महंगी हो जाती है। इसीलिए पीएम मोदी ने बचत के फॉर्मूले को देश के सामने रखा था। इस बीच हॉर्मुज में तनाव के बादल और घने हो गए। इसराइल में असलाह बारूद हथियार इकट्ठा होने की खबर और अमेरिका इसराइल ईरान का हर बयान बाजार में डर पैदा करता है। इसलिए भारत को संभल कर चलने की जरूरत है। पीएम की अपील का असर सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, विपक्ष के बीच भी अपील पहुंचनी चाहिए। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार भी है और कर्तव्य भी, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ सवाल पूछने तक खत्म हो जाती है? केरलम में सीएम पद के शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होते, हजारों कार्यकर्ता जुटते, जब बड़े बड़े मंच सजे, जब बसों और गाड़ियों के लंबे काफिले निकलते, तो क्या वहां ईंधन नहीं जलता? लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय संकट में सहभागिता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। और इतिहास गवाह, जब दुनिया ऊर्जा संकट में होती है तब राष्ट्र की असली पहचान उनकी सियासत से नहीं, सामूहिक अनुशासन से होती है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में ईंधन बचत अब राजनीति नहीं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन चुकी है? आज तक ब्यूरो।
2: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

स्वीडन के बाद नॉर्वे में भी प्रधानमंत्री को मिला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। मोदी ने ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में की शिरकत। 36 में सीना तानकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, अब नक्सल मुक्त। बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत। सरकारी नौकरियों में आदिवासी युवाओं को 15% मिलेगा आरक्षण। बकरीद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर योगी का सख्त बयान, चौराहे पर तमाशा स्वीकार नहीं। जगह कम पड़ रही हो तो कम करें जनसंख्या।

0: में नया वीडियो आया सामने। आखिरी बार छत पर जाने का सीसीटीवी, ससुराल पक्ष ने सफाई में लगाए कई आरोप। लड़की के माता पिता की मांग, फिर से हो पोस्टमार्टम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का, जहां आज हम आपको बढ़ती महंगाई से लेकर नीट पेपर लीक मुद्दे तक से खबरदार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर बकरीद से एक हफ्ते पहले योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर खबरदार किया।
1: जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए, जो कि अकलियती तबका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहां पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती, तो ये एक ऐसा लगता है कुछ पार्शियलिटी सी है, तो इसको दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है।
2: बकरीद के चांद की तलाश करते मुस्लिम नागरिक और धर्म गुरु और 28 मई को आने वाली बकरीद पर सड़क पर नमाज की इजाजत मांगते अलीगढ़ की रसलगंज मस्जिद के मुफ्ती को लगता है कि सड़क पर नमाज न पढ़ने देने की इजाजत देकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन भेदभाव करता है। और तब सवाल आता है, सड़क पर नमाज के धर्म संकट पर ही क्या 2027 की सियासत सधेगी? सवाल की वजह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा सड़क चलने के लिए है, तमाशा बनाने के लिए नहीं। नमाज करनी है तो मस्जिद में शिफ्ट की जाए, संख्या ज्यादा है तो नियंत्रित कर लो, प्यार से मानेंगे ठीक, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, संवाद से मानेंगे तो संवाद, नहीं तो संघर्ष भी करके देख ले। क्या इसी के साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में वो कायदा बताने लगे जिसका रिश्ता 2027 के राजनीतिक फायदे से जुड़ा है?
3: लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें।
2: असल में अगले हफ्ते बकरीद है, तब उत्तर प्रदेश के अलग अलग कई शहरों में कई मस्जिदों के मौलवी प्रशासन से एक निश्चित वक्त के लिए नमाज सड़क पर करने देने की इजाजत मांग रहे हैं।
1: हमारी जो ईद की नमाज है वो साल में 2 मरतबा आती है, मैं जुमे की बात नहीं कर रहा, जुमे की नमाजें तो अपनी मस्जिद में हो, लेकिन ईद साल में 2 मरतबा आती है, एक ईद उल फितर और ईद उल अजहा। अब ईद उल अजहा आ रही है, उसमें 1 से 1.5 घंटे की नमाज होती है, जिन जगहों पे भी नमाज होती है, मिसाल के तौर पे ईदगाह में होती है या और दूसरी जगहों पे होती है, तो वहां पे इजाजत दी जाए कि जिस तरह आप दूसरे जो धर्म विसर्जन होते हैं उनमें इजाजत देते हैं, इस तरह इसमें भी इजाजत दीजिए।
2: लेकिन मुस्लिमों की इसी मांग पर मुख्यमंत्री साफ कर देते हैं कि संख्या ज्यादा है तो या तो शिफ्ट में नमाज मस्जिद में अदा की जाए या फिर संख्या नियंत्रित की जाए।
3: लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
2: उत्तर प्रदेश की केवल बात करें तो 2001 में 18.50% मुस्लिम नागरिक उत्तर प्रदेश में थे, जो 2011 की जनसंख्या में बढ़कर 19.26% हुए। जनगणना विभाग कहता है कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों के मुकाबले धीमी गति से बढ़ रही है। और तीसरी बात, देश में मुस्लिम महिलाओं के अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देने का औसत है उससे ज्यादा औसत प्रजनन दर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं की है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 2.33 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं में 2.66 है। इस तरह मुख्यमंत्री बकरीद पर सड़क पर कुछ देर के लिए नमाज की मांग करते मुस्लिम नागरिकों को आबादी नियंत्रण का पाठ पढ़ाने के बाद ये भी बता देते हैं कि इस मामले में कोई भी जोर आजमाइश कोशिश ना की जाए।
3: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।
0: योगी आदित्यनाथ जब खुले में नमाज की बात करते हैं और चेतावनी देते हैं तो वो बरेली का जिक्र भी करते हैं, मौलाना तौकीर रजा का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम नागरिक किसी के बहकावे में ना आए।
4: जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा।
2: सियासत और धर्म की नुमाइंदगी करने वाले योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर आक्रोशित हैं
5: क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? आप नहीं करते क्या? ये कावड़ यात्रा निकालते हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते पर ट्रैफिक जाम कर लिए। जितना अधिकार योगी का है उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर। अगर एक ही समुदाय को टारगेट करना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना, मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है। ये
2: पूछा जा रहा है कि क्या मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया।
6: जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे?
2: और तब सवाल आता है कि आखिर मुख्यमंत्री ने सड़क पर नमाज वाली बात को लेकर क्यों पहले प्यार से समझाने और फिर दूसरे तरीके वाली बात आजमाने को कहा?
3: और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे।
2: कानून के राज की भाषा से समझाने के पीछे एक वजह है, नाम है मौलाना तौकीर रजा, 2025 बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड।
7: जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी।
2: पिछले साल सितंबर के महीने में इसी मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद से जुड़े पोस्टर वाले विवाद में जुमे पर प्रदर्शन करना चाहा, इजाजत प्रशासन ने नहीं दी। तब दावा है कि इसने आसपास के बदमाशों को बुलाकर निर्दोष मुस्लिमों को आगे करके माहौल बिगाड़ना चाहा।
8: हमने हर जुल्म हर सितम बर्दाश्त किया है, लेकिन अब इस किस्म के मजालिम अगर नहीं रोके गए, हुकूमत ने संजीदगी से इन तमाम चीजों पर गौर नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
2: लेकिन तब प्रशासन ने मौलाना को पकड़ कर न सिर्फ इसे कानून के कटघरे में खड़ा किया बल्कि बरेली का माहौल बिगाड़ने से रोक कर फिर तौकीर रजा के अवैध कब्जे पर बुलडोजर तक चलाया। यही वजह है कि तौकीर की याद करा के इस बात पर मुख्यमंत्री जोर देते हैं कि नमाज सड़क पर नहीं हो सकती है।
3: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे।
0: तो ये बातें अगर उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले की जा रही है तो क्या इसका कोई पश्चिम बंगाल कनेक्शन भी है?
2: क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जितना सड़क पर नमाज खुद नहीं पढ़ना चाहते उससे ज्यादा मुस्लिमों के नाम पर राजनीति होती है? और दूसरा सवाल, क्या सड़क पर नमाज से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी आक्रामक हुई तो उसे पिछड़े वोट का नुकसान होगा? यहां आपको दूसरे सवाल का जवाब हम पहले बताते हैं। जहां सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने की बात करते मुख्यमंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी से सवाल होता है तो वो मुस्लिमों के साथ हर लाइन में पिछड़ा शब्द जरूर ले आती है।
9: इतनी नफरत भरी है, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी पिछड़ों के खिलाफ।
10: कह रहे हैं कि सड़क पर तमाशा नहीं होने देंगे।
9: हम लोग व्यवस्था के खिलाफ कभी भी नहीं है कि कोई व्यवस्था बिगड़े, लेकिन आप भाषा से व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं।
2: असल में पिछले तीन चुनाव का हिसाब देखें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट एकमुश्त सीधे समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास जाता रहा। 2024 लोकसभा चुनाव में 92% मुस्लिम सीधे अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी के पास गए, लेकिन तब मुस्लिम वोट के साथ पीडीए के फॉर्मूले पर चले अखिलेश यादव को पिछड़ों और दलितों का भी वोट पहले से ज्यादा मिला। इसीलिए समाजवादी पार्टी संभल कर बोलती है ताकि उसका हिंदू वोट ना घटे, लेकिन ओवैसी की पार्टी आक्रामक दिखती है।
5: मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
2: पर ऐसे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी और ओवैसी की पार्टी के नेता की मुखरता भी विपक्ष के मुस्लिम वोट में क्या सेंध नहीं लगा पाएगी? क्योंकि जब हमने ज्यादातर मुस्लिमों से उत्तर प्रदेश में बात की तो सड़क पर नमाज पढ़ने के खुद ही पक्षधर नहीं मिले।
11: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है,
12: डिसिप्लिन के साथ रहते हैं और मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ते हैं।
0: योगी आदित्यनाथ अपनी सबसे बड़ी मजबूती को उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था कहते हैं, जो उनके आने के बाद जिस तरीके से वहां के आंकड़ों में बदलाव आया है उसका जिक्र बार बार किया जाता है। पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान भी उन्होंने इसका जिक्र किया था।

0: और यूपी की तरह बंगाल में भी सड़क पर नमाज पर पाबंदी।
1: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा, ये सरकार देखना है सोचना है में नहीं है।
2: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की उपद्रवियों को आखिरी चेतावनी है, जिसमें वो ये तक कह रहे हैं कि उपद्रवी कान खोल कर सुन ले, इसके बाद अगर किसी ने ऐसा काम किया तो मुझसे खराब पुलिस का मंत्री कोई नहीं होगा।
1: अर्लियर पुलिस इज नॉन फंक्शनिंग ड्यू टू सम पॉलिटिकल इल मोटिव, नाउ दे आर फ्री, दे आर वर्किंग एज पर द लॉ।
2: पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी हाथ में आते ही शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट बैठक के बाद बड़े फैसलों की झड़ी लगा देते हैं। शुभेंदु सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में 1 जून से अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए महीने मदद देने का ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से सरकारी बस में महिलाएं फ्री में सफर कर पाएंगी। 7वें वेतन आयोग के गठन का भी रास्ता साफ कर दिया है, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी शुभेंदु एक्शन मोड में है। तिलजला में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ रविवार को विरोध हुआ, पत्थरबाजी होती है, 3 पुलिस वाले जख्मी हुए। इन्हीं से मुलाकात करने के बाद शुभेंदु ने उपद्रवियों को खबरदार कर दिया।
1: कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता, बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए।
2: बंगाल में सड़क पर नमाज अदा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई, जिसे लेकर बंगाल में विरोध हुआ।
1: हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
2: शुभेंदु सरकार ने मदरसों को मिलने वाली तमाम सरकारी सहायता भी बंद कर दी है, इसमें इमाम और मुअज्जिम को मिलने वाला हर महीने का भत्ता भी शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार ने साल 2011 से राज्य में ओबीसी आरक्षण सूची की दोबारा जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर भी शुभेंदु सख्ती दिखा रहे हैं।
1: करप्शन के खिलाफ जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट के ऊपर करप्शन हुआ, आमफान की रुपया के ऊपर करप्शन हुआ, मिड डे मील में करप्शन हुआ, आवास योजना के करप्शन हुआ, पीएचई में करप्शन हुआ, आपका जिला परिषद पंचायत में मनरेगा में करप्शन हुआ, सबके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो।
2: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का असर सड़क से स्कूल तक दिखने लगा। दार्जिलिंग के इस स्कूल की तरह राज्य के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बंगाल में बिना मान्यता और अवैध रूप से चल रहे मदरसों को शुभेंदु सरकार चिन्हित करने जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान रेलवे स्टेशन के पास भी चलाया जाएगा, जहां दावा है घुसपैठियों ने अवैध कब्जा कर रखा है।
3: कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात जहां रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था उसको उतार दिया गया, हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
2: पश्चिम बंगाल में गाय भी सियासी बहस का नया मुद्दा बन गई। शुक्रवार को बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने अवैध पशु तस्करी रोकने का दावा करते हुए कहा कि सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक 14 साल से कम उम्र की गायों का वध नहीं किया जा सकता है।
4: हमारे बंगाल के जो 1950s का जो नियम है वो हमारी गोमाता हम लोग भगवान मानते हैं, और वो गोमाता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14, और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा, ये नियम है।
2: पश्चिम बंगाल में नई सरकार जनता से किए वायदों के तहत ताबड़तोड़ एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन कभी बुलडोजर कार्रवाई तो कभी मस्जिद का लाउड स्पीकर रोकने पर विवाद भी हो रहा है। पर शुभेंदु सरकार अपने फैसले लागू करने को अडिग नजर आ रही है।
0: बंगाल से बड़ी खबर अब आ रही है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं अरविंद ओझा। अरविंद, हरिद्वार से दिल्ली भागने की खबर है इसकी, राजकुमार नाम का ये आरोपी जो है, कहां पर हुई है गिरफ्तारी?
5: देखिए, NH-58 मुजफ्फरनगर में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम राजकुमार है और इसे राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में वन ऑफ द मेन शूटर राजकुमार था, जिसकी तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है। CBI इसकी तलाश कर रही थी, जब जानकारी मिली कि ये हरिद्वार की तरफ भागने की फिराक में है, और उसी दौरान CBI की टीम ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस है उसके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इसे एक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता में इसकी पेशी की जा रही है और वहां से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी। इससे शुरुआती पूछताछ हुई, हालांकि अभी तक मोटिव वो क्लियर नहीं हुआ है। कल अदालत में हो सकता है चंद्रनाथ रथ की हत्या इन लोगों ने क्यों की, मोटिव ये बताएं। लेकिन बड़ी कामयाबी ये है और बड़ी गिरफ्तारी है, जो मेन शूटर है राजकुमार, जिसे राज सिंह के नाम से जाना जाता है, बलिया का रहने वाला, इसे गिरफ्तार किया है CBI की टीम ने। श्वेता,
0: बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। अब खबर हम ग्रेटर नोएडा की आपको दिखाते हैं, जहां पर एक लड़की की शादी लगभग 1.5 साल पहले हुई लेकिन मौत हो गई। परिवार वाले दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
6: वो बिल्कुल एक प्री प्लान मर्डर है और उसको उसके बाद में मार पीट के छत से फेंका गया है, ताकि इसको मतलब एक घटना बता दिया जाए कि भी एक्सीडेंट हुआ।
7: उन्होंने चक्कुओं से बूंद बूंद के मारा, चक्कुओं से बूंद बूंद के। अब 50 लाख रुपए लेके आ और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ, नहीं तुझे खत्म करेंगे। सासू ने भी, आदमी ने भी, सुसरे ने भी, सबने उसको तोड़ चका और ऊपर से उसे फेंक दिया 3rd मंजिल से।
8: ग्रेटर नोएडा की दीपिका की शादी आज से 14 महीने पहले ऋतिक से हुई थी। माँ बाप ने अपनी हैसियत के हिसाब से भरपूर दहेज दिया था। शादी के 2-4 महीने तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद और दहेज लाने की डिमांड बढ़ी और फिर अचानक से कल खबर आई कि छत से गिरकर दीपिका की मौत हो गई। दीपिका के घर वाले जब अस्पताल पहुंचे तो उन्हें दीपिका मृत मिली, और जब उन्होंने दीपिका का शरीर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपिका के पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, उसके शरीर पर गहरे कट हैं, पूरे शरीर पर नीले और काले रंग के निशान हैं, पेट में एक जगह गहरा घाव भी है, मुंह, पैर, हाथ पर चोटों के निशान हैं। दीपिका के परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई क्योंकि बहुत लंबे समय से लड़के के घर वाले और ज्यादा दहेज की डिमांड कर रहे थे।
0: वो युद्ध की वजह से बेहाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड
9: के निशान है, चोटों के निशान देख के आप बता सकते हो कि बेटी के साथ में कितनी ज्यादती की गई है, कितना बुरा हाल किया गया है। उसके ऊपर कट के निशान है, कहीं पे पेचकस के निशान है, या कहीं बुलेट का निशान भी हो सकता है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद में पता चल जाएगा।
8: दीपिका और उसके ससुराल वालों के बीच अनबन थी, लगातार झगड़े हो रहे थे। ये भी अभिशाप है कि माता पिता आखिरी वक्त तक ये चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर न उजड़े। वो चाहते हैं कि बेटी चाहे जिस भी परिस्थिति में हो वो ससुराल में ही रहे। दीपिका के साथ भी यही हुआ। कल उसके पिता बेटी से बात करने के लिए उसके घर गए थे। बेटी को समझा कर पिता घर आए और आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि दीपिका छत से गिर गई।
10: मेरी बेटी कई बार मुझे फोन किया और मैं कई बार वहां पे गया भी, और जाने के बाद में जैसे ही मैं उनसे बात करता था और उन्हें समझा के भी चला आता था, तो ऐसे ही मुझे कल भी मेरी बेटी का फोन आया और मैं वहां पे गया अपने साले के साथ। हमारे साले हैं अहमदाबाद गांव के, बाबूराम भाटी, तो हम दोनों वहां पे गए थे, जो कि हमने उन्हें समझाया, उन्हें बताया भी, और मेरी बेटी से भी मैंने बात की कि बेटा ऐसे नहीं है, अपने जैसे भी अपने घर को चलाओ। तो बाकी उन्होंने हमारे वहां से निकलने के आधे घंटे बाद ही बेटी को घर में मार कर और छत पे ऊपर ले जाकर उसे छत में एक्सीडेंट का रूप दिखाकर उसे नीचे छत से नीचे डाल दिया।
11: पुलिस ये कह रही है कि आत्महत्या का केस नजर आ रहा है, आप मानते हैं इसको?
10: आत्महत्या का तो मतलब ही नहीं है, वो इतनी हल्की लड़की नहीं थी कि वो आत्महत्या करेगी।
12: उसके तो सारे शरीर पे निशान,
10: उसपे तो सारे शरीर पे निशान है, मारपीट के निशान है, वो देख सकते हैं आप, जो
12: यहाँ घाव है,
10: घाव भी है और नील पड़े हुए हैं लड़की को, और उसके बेड पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ है आपस में वहाँ पे, जो है
12: उसका पूरा घाट
10: मतलब पूरा परिवार मतलब मिलके उसे मारने के बाद जब छत से ऊपर ले जाके जब डाला उसे।
8: दीपिका के घर वालों का दावा है कि शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था। शादी में एक स्कॉर्पियो कार दी थी, अब दूसरी गाड़ी फॉर्चुनर देने की डिमांड थी। इसके अलावा कन्यादान में 5,71,000 रुपए, बाकी दूसरी रस्मों में 6 से 7 लाख रुपए। इसके अलावा 16 अंगूठियां बेटी के ससुराल वालों को दूसरे सोने के गहने भी दिए गए थे, लेकिन अब 50 लाख रुपए नगद लाने की डिमांड की जा रही थी।
13: अपनी बेटी की जो शादी करी थी, मतलब एक समाज के हिसाब से और अपनी हैसियत के हिसाब से मतलब बहुत बेस्ट करी थी। उस टाइम भी हमने अपनी हैसियत से भी ज्यादा चीजें करी थी, ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि मतलब उनकी तो वो भरी नहीं रही थी। इतनी प्यारी बच्ची थी, इतनी सुंदर बच्ची थी कि मतलब कोई ऐसे भी ले जाता, मतलब इतनी सुंदर बेटी थी हमारी। लेकिन मेरे भाई कल मतलब वहां गए थे इस विषय में समझाने के लिए, बिल्कुल बातचीत हुई, अच्छे से सब कुछ हुआ, लेकिन मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया। जैसे वो वहां से विदा होकर घर पे आए, आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि बेटी मतलब गिर गई है। तो भाई ने मतलब पूछा कि कहां से गिर गई है, कैसे गिर गई, तो कोई जवाब नहीं दिया उस टाइम पे कि मतलब शारदा हॉस्पिटल आप आ जाइए। तो जैसे अब गिरने का क्या होता है, छोटी मोटी चोट होगी, हमें भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां जाके देखा तो हमारी बेटी मृत पड़ी हुई है। मतलब उसकी पूरी बॉडी पे निशान है मारपीट के, हर चीज के, और उसको इनफेक्ट उसके पेट में मतलब या तो कोई बुलेट का मतलब घाव है, वो इतना मोटा घाव है, और या मतलब कोई स्क्रू वगैरह, कोई सरिया वगैरह मतलब उससे मारा गया है उसको।
8: पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दीपिका के घर वालों का आरोप है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है।
14: मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है,
8: क्योंकि दीपिका का ससुर राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति बताया जा रहा है।
15: क्या रवैया रहा है प्रशासन का अभी तक, और इंसाफ मिलने की उम्मीद दिख रही है कहीं?
16: जी, पुलिस ने तो भी हमसे मिले बिना, हमारा कोई व्यू लिए बिना पहले ही बोल दिया है कि छत से जो उन्होंने आत्महत्या की है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो व्यक्ति है मनोज प्रधान, जो लड़की के ससुर लगते हैं, ये राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है और भू माफिया भी है। इसके खिलाफ पहले ही दर्जनों मुकदमे वहां के जो लोकल थाना है उसमें दर्ज है। तो ये तो जांच को पूरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, और हो सकता है इसने वहां पे लोकल चौकी या थाना स्तर पे पैसे भी पहुंचा दिए हों।
8: अब हकीकत क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दीपिका के शरीर पर मौजूद चोटें ये बता रही हैं कि पूरा केस संदिग्ध जरूर है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: और अब बात आम आदमी की, जो युद्ध की वजह से बेहाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे दी, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी हो गई और युद्ध खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा।
17: कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, टिकना करिए, फलाना करिए, कहना क्यों कहीं दोबारा वहाँ मुसीबत में न आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपकने जाए।
18: 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए तो 80 करोड़ को अनाज क्यों वाला कुतर्क करने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसते हुए कहा था, गरीबी से बाहर निकलना कितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी ये ध्यान रखना है कि लोग दोबारा गरीबी के दलदल में ना फंस जाएं।
17: गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे।
18: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम आवास योजना और पीएम किसान सम्मान निधि, मोदी सरकार की ऐसी कई योजनाओं का लक्ष्य लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकालना रहा। लेकिन पहले कोरोना और अब ईरान युद्ध से सारे किए धरे पर पानी फिरने की चेतावनी पीएम मोदी की तरफ से दुनिया को दी जा रही है।
19: ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
18: विश्व बैंक के मुताबिक भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के हिसाब से लोगों का अनुपात जो साल 2011 में 27.1% था, वो 2022-23 में गिरकर केवल 5.3% रह गया। लेकिन युद्ध की वजह से गरीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई और मुश्किल हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी है, जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर 96.35 रुपए पर पहुंच चुकी है, जिससे आने वाले दिनों में आर्थिक तकलीफ बढ़ सकती है।
20: तो टोटल इंपोर्ट बिल पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। हमारा इंपोर्ट बिल यहां से बढ़ेगा और इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी 7 अपील्स करी तो उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को जहन में रख के ही अपील्स करी कि विदेशी मुद्रा भंडार को इस समय हमें बचाना है। तो विदेशी मुद्रा भंडार पर और प्रेशर पड़ेगा, वो और जल्दी डिप्लीट होगा या और जल्दी वो खर्च होगा, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो।
18: रुपए में गिरावट का सबसे बुरा असर तेल के दाम पर होगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से आयात करता है। इसीलिए तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई को बढ़ावा देता है। फल सब्जी से लेकर ऑटो तक का किराया महंगा हो जाता है। ऐसा ना हो इसीलिए पीएम खुद मिसाल पेश करते हुए अपने काफिले को 2 गाड़ियों तक घटा देते हैं, जिसका असर तुरंत देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे शुरू किया, तो सीएम से लेकर मंत्री तक सभी मेट्रो पर सवार हो गए। हरियाणा में साइकिल पर मंत्री दिखे, तो गोरखपुर के सांसद कारपूलिंग करके नरेंद्र मोदी की अपील को मजबूत करते दिखे। भले ही बचत के संदेश पर सियासी बहस हो रही हो, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि सोना और तेल के आयात को कम करके ही मुसीबत से निपटा जा सकेगा।
21: तो जो हमारा खर्चा था बाहर का एक्सपोर्ट पे, जो इंपोर्ट कर रहे थे, वो हमारे जस्ट डबल हो चुका है। और आने वाले दिनों में भी अगर ये संकट सॉल्व भी हो जाता है 1 महीने बाद, तो भी अगले 6 महीने तक वो संकट जो हमारे रिजर्व खत्म हो चुके हैं उसको कंप्लीट करने में लगेंगे। तो आने वाले 2-4 महीने हमारे देश के लिए संकट के हैं, इसीलिए पीएम मोदी जी ने उसको 1 साल के लिए कहा है। तो हम सबका दायित्व यही है कि जो भी चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं उसको मिनिमम हम यूज़ करें।
18: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के महीने भर बाद यूएन की एक रिपोर्ट आई थी। दावा हुआ था कि ईरान युद्ध की वजह से 3 करोड़ लोगों के ऊपर गरीबी की तलवार लटक रही है। रिपोर्ट में गरीबी बढ़ने की बड़ी वजह ऊर्जा की किल्लत के साथ ही खाद की सप्लाई प्रभावित होना भी बताया गया, जिसका सीधा असर अनाज के उत्पादन पर पड़ने की आशंका है, जिससे खाद्य सुरक्षा कमजोर हो सकती है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को इसे लेकर खबरदार किया।
0: दशकों से गरीबी से निकलने की जो कोशिशें की गई हैं, वो सारी चीजें बेकार जा सकती हैं अगर ये युद्ध नहीं रुका। लेकिन शायद दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता, जिन्हें माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है।
18: चीन के दौरे से खाली हाथ लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमलावर हैं। इसीलिए आशंका है कि अमेरिका अगले 24 से 48 घंटों में ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखकर धमकाया, ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है, उन्हें बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, समय बहुत अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध और युद्ध मुआवजे को लेकर बातचीत अटक गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलो एनरिच यूरेनियम सौंप दे, सिर्फ एक परमाणु सुविधा चालू रखे। वहीं ईरान ने कहा है कि वो तभी बातचीत करेगा जब क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई रुके, प्रतिबंध हटाए जाएं और उसकी फ्रीज संपत्तियां जारी हो। तो सारे संकेत दोबारा जंग शुरू होने की आशंका को मजबूत करने लगे हैं।
2: ट्रंप और नेतन्याहू में न सिर्फ बातचीत हुई है बल्कि 24 घंटे में जर्मनी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से हथियार और गोला बारूद की खेप लेकर दर्जनों कार्गो विमान तेल अवीव पहुँचे। इसे ईरान के खिलाफ संभावित नए हमलों की तैयारी माना जा रहा है। इस बीच यूएई अप्रत्याशित तौर पर ईरान के निशाने पर है।
1: اومدم
3: تشکیل خط نشانه
1: بله بس پرچم اماراتو بگیرم
3: احسنت
1: خب
3: تشکیل خط نشانه رو بدین حبس نفس
1: آتش
3: با نام و یاد الله آتش
1: یا الله
2: دنیا یہ تصویر دیکھ کر حیران ہے جس میں ایران میں ٹی وی پر کھلے عام نہ صرف ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے بلکہ یو اے ای کو لے کر نفرت دیکھنے کو بھی مل رہی ہے جبکہ امریکی بیس کھاڑی دیشوں میں پھیلے ہیں लेकिन फिर भी यूएई पर ईरान हमलावर है। टीवी पर उसे नेतन्याहू और ट्रंप जैसा दुश्मन बताया जा रहा है।
22: خب حالا صدا اونو زامن کردین. از زامن خارج کنید.
1: رگبار یا تکتیر؟
22: تو حالت تکتیر.
1: بله.
22: یک بار گلنگدن بکشید.
1: بچه ها
22: رهاش کنید. بله. این سلاح مسلح شد.
2: امریکا اور ایران کے بیچ جنگ میں کیا یوएई بلی کا بکرا بن گیا؟ क्योंकि ईरान के पास अमेरिका पर हमले लायक क्षमता नहीं, इसलिए उसकी तरफ से यूएई जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हद तो ये हो गई कि यूएई का परमाणु हथियार हमले की जद में आ गया। यूएई के बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। शुरुआती जांच में ईरान पर शक जताया जा रहा है। ये पहली बार है जब यूएई के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। पता चला है कि यमन से इसे निशाना बनाया गया, जहां पर ईरान समर्थक हूती सक्रिय हैं।
23: और अब आपको नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर से खबरदार करते हैं, जहां महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस पेपर लीक मामले के तार कई नेताओं से जुड़े हो सकते हैं।

0: ये जो क्लास चलाने वाले लोग हैं ना, इनका हर कोई पॉलिटिकल लोगों से कनेक्शन रहता है अच्छे तरीके से। कैसे हो, क्या हो, मैं तुम्हारा चाहता हूं, मैं तुम्हारा भक्त हूं, ये भी कोई बाबा लोगों से कम नहीं है।
1: क्या यही साठगांठ उन्हें बचा रही थी अब तक?
0: यही साठगांठ की वजह से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जरूर जरूर मिलता है ऐसा। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे बर्थडे को होल्डिंग लगा देंगे, कोई जाहिरात दे देंगे, लगता है बाबा ठीक है ये भी सपोर्ट में है। लेकिन उसके वजह से बच्चों का कितना लॉस होता है ये कभी किसी ने सोचा नहीं। इसलिए अब इनको अटक होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए और इनके जो भी कुछ कारनामे वो सब सामने आना चाहिए।
2: नीट पेपर लीक मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 शहरों में जांच का केंद्र पहुंच रहा है, एक सीकर दूसरा लातूर। 2 छोटे शहर जो कोचिंग हब के तौर पर भी बहुत तेजी से विकसित होते गए, इन 2 शहरों में बहुत सारे टॉपर्स एक साथ आए। लेकिन पेपर लीक का सिरा जब इन शहरों से जुड़ा है तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पेपर लीक के एपिसेंटर्स हैं?
3: देश के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलाने वाले नीट परीक्षा के पेपर लीक में फिर आज तक नया खुलासा करने जा रहा है। क्या देश के 2 शहरों में ही नीट पेपर लीक कांड से आए भूकंप का एपिसेंटर रहा है? राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर, क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है? इस सवाल की सबसे बड़ी वजह है सीबीआई के हाथों हुई ये नई गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मुटगांवकर को गिरफ्तार किया। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मुटगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी RCC नाम का कोचिंग सेंटर चलता है। गिरफ्तार मुटगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ का टर्नओवर बताया जाता है। सीबीआई का आरोप है कि मुटगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स लीक उपलब्ध कराए।
4: मुटगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं। और अभी तक मोटेगांवकर को 5 अहम ग्राउंड्स पर अरेस्ट दिखाया गया है।
3: लातूर का एक कोचिंग वाला 5 दिन पहले वो नीट का पेपर पा जाता है जिसे सॉल्व करने के लिए जी जान लगाकर देश भर के लाखों बच्चे खाना पीना भूलकर पढ़ते रहे। तो क्या यही कुछ सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी होता आ रहा है?
5: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
3: बिवाल परिवार यानी दिनेश और मांगीलाल बिवाल के घर के 5 बच्चे पिछले साल 2025 में दावा है कि नीट का लीक पेपर लेकर ही पास हुए और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाए। जबकि परिवार बताता रहा कि उससे पहले भी नीट का पेपर लीक होकर राजस्थान में सीकर तक आता रहा।
6: इतना दिन से पेपर लीक हो रहा है, आज दुश्मन बन रहा है माखा।
7: कई साल से
6: 2 बच्चा पेपर दिया जाए, 2 बच्चा पेपर दे और कनी किस पेपर में भी
7: 2024 में भी लीक होगा।
6: बेटो चले मारो ऋषि,
7: कई बार गालवा कोरे
6: मारो बेटो, पहली बार नीट को पेपर दियो जो नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसा पागल आग रहा चाहे खेगा मैं दिन
8: अन्य खेंगे। आपके बेटे भी दिया थे?
6: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
8: इस बार बेटा दिया है ना?
6: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने पसा दिया मेरे आदमियों को।
3: क्या यही वजह है कि नीट 2024 पेपर लीक का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो NTA ने नीट का शहर दर शहर सेंटर पर सफल होने वाले छात्रों की सूची सौंपी और अगर उस पैटर्न को वापस अब की बार के नीट पेपर लीक से जोड़कर देखें तो हम 2024 के नीट रिजल्ट के शहरों में लातूर और सीकर का रिकॉर्ड देखना शुरू करते हैं। 2024 में सीकर में कुल 27,216 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी। तब देश में सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 बच्चे अकेले सीकर के थे। देश में तब सबसे ज्यादा 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 बच्चे सीकर के थे। देश में तब सबसे ज्यादा 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4779 बच्चे सीकर के ही थे। देश में सबसे ज्यादा तब 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6338 छात्र सीकर के थे और 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8225 छात्र भी सीकर के ही थे। इसी तरह छोटा सा शहर लातूर भी नीट कोचिंग का बड़ा अड्डा बनकर उभरा है। यहाँ से 24,611 छात्रों ने 2024 में नीट की परीक्षा दी थी, जिनमें 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 3,534 थी, जो देश में छठे स्थान पर था। अगर नीट के परीक्षा सेंटर की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा परिणाम देने वाले 50 नीट के परीक्षा सेंटर में 37 केवल सीकर के थे, जबकि 9 लातूर के थे। एक गजब संयोग ये भी मिला कि लातूर सीकर से जितने बच्चे मेडिकल एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर ले रहे हैं, उतने इंजीनियरिंग का इम्तिहान नहीं निकाल पाते न टॉपर बन पाते। इतने सारे संयोग के बीच सवाल उठा है, आखिर सीकर में ऐसा क्या है जो वहाँ से टॉपर भी ज्यादा निकलते हैं और पेपर लीक का कनेक्शन भी। जैसे बिवाल परिवार के बच्चे सीकर की CLC कोचिंग से टेस्ट सीरीज देते रहे, वो बच्चे जिन पर आरोप है 24 में पेपर लीक से दाखिला लिया, लेकिन कोचिंग वाले कहते रहे कि उन्हें बिवाल परिवार के नकांड का पता है, ना उनके बच्चों का उनकी कोचिंग में टेस्ट सीरीज पढ़ना पता है।
9: सीकर में क्यों इस तरह की आ रहा है कि सीकर में हर जगह ये गेस्ट पेपर बिका है?
10: सर ये बात मेरे को बहुत अशोक लग रही है। हम तो 3 मई से हमारे बच्चों के साथ लगे रहते हैं, मैं तो जब अखबार में आया उसके पता लगा सीकर में पेपर इस प्रकार से पेपर भरा है।
9: इन बच्चों के बारे में पहले आप जानकारी
10: नहीं? सर बिल्कुल मुझे इस बच्चों को जानकारी नहीं है।
9: किसी ने आप SOG वगैरह?
10: नहीं सर, मेरे पास आपसे पहले इस प्रकार कोई बात मेरे पास नहीं आई।
3: अब सब कुछ CBI जांच रही है। उम्मीद करिए कि लातूर से सीकर तक छोटे शहरों के बड़े पेपर लीक में शामिल होने का कच्चा चिट्ठा भी खुल जाए।
2: और अब युवाओं की नौकरी के हक की खबर से खबरदार करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत सारे युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाते हुए देखे गए। ये सब शिक्षा भर्ती के पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई है।
3: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
11: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
12: हमारे पास आप कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
11: ऐसे रैंक कराने की क्या जरूरत पड़
12: गई? हम इससे जो विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के आप भगवान बन चुके हैं, हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा, हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे। अब उन्हीं का जो बायोलॉजिकल पोते हैं, लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31 कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
11: सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही, इसलिए
12: सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारे मामला का निस्तारण हो जाएगा।
3: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है, तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
13: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
14: सही चीज तो यह है कि अब जाके हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हमें समझते थे कि कीड़े मकोड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकोड़े के ही काबिल हैं।
3: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
15: मंत्री आवास से पहले इनको रोक लिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थियों को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
3: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है, तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
2: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: कूल फैंस से घर को सजाएं।
2: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
1: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
4: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते।
5: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
6: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
7: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
8: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
7: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
9: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
10: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
11: पर मार्केट की समझना, बाउंसर जा रही है।
10: आप कैसे कर लेते हो?
12: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
13: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
14: नहीं
13: और म्यूचुअल फंड्स है
14: सही।
15: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
16: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
17: इसमें माइक्रो फाइबर है।
16: माइक्रो फाइबर यानी
17: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
16: हमारे सीमेंट में नहीं है?
17: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
18: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रोफाइबर है।
3: माइक्रोफाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है,
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
7: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
8: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
9: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
8: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
12: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर

0: कूल बना रही।
1: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है, तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो।
2: मेरी सबसे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इतना एक्सट्रीम स्टेप मत उठाइए। आपकी एंग्जाइटी को मैं समझ रहा हूं, मैंने भी IIT के एग्जाम दिए थे, मैंने UPSC के एग्जाम दिए थे। कितना स्ट्रेस के अंदर हम एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर दे के आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में या DM करके मुझे मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। आई विल गेट इन टच विद यू और हम मिलकर इसका समाधान निकालेंगे।
3: ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार पेपर लीक के कारण सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है और अब CBI की जांच बिठाकर जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि 22 लाख लोगों ने ईमानदारी से अगर कोशिश करी है और परीक्षा में बैठे हैं तो सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और जो पेपर लीक का हादसा वो जो पकड़ा गया है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। कुछ बच्चों ने जाके पुलिस में कंप्लेन करी, उसके बाद जाके इस पेपर को कैंसिल किया। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके नाक के नीचे लगातार ये तीसरी बार पेपर लीक हुआ है। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आगे आके जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: नमस्कार, मैं हूं अंजनाम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे बयान के बारे में बताएंगे जैसा बयान उन्होंने पिछले 12 साल के कार्यकाल में नहीं दिया। उन्होंने ऊर्जा संकट को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी है और स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसका तुरंत हल नहीं निकाला गया तो भारत की सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। जब देश और दुनिया ने कोविड जैसा भयानक दौर देखा तब भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन आज ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने हमारे रुपए, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से खिसक कर सीधे छठे स्थान पर आ गए हैं। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि यह संकट कैसे आपकी जेब, आपकी नौकरी, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद समाज की नसों में बहते उस जहर की बात करेंगे जो एक के बाद एक बेटियों को अपना शिकार बना रहा है। यह जहर है दहेज का, जिसे बदलते वक्त और कथित आधुनिक समाज ने बेशर्मी से गिफ्ट कहना शुरू कर दिया है। आज लड़कों का बाकायदा एक रेट कार्ड तय होता है। पढ़ाई पर हुए खर्च को इन्वेस्टमेंट रिकवरी मॉडल मानकर लड़की वालों से वसूली की जाती है। लड़का जो कमाता है उसके हिसाब से सौदेबाजी होती है और आए दिन कोई लड़की इसका शिकार बन जाती है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा और भोपाल में दो लड़कियों की जान चली गई। आपने भी अपने सोशल मीडिया पर इन बच्चियों के चेहरे बार बार देखे होंगे, दहेज के लिए मौत, तमाम चीजें पढ़ी होंगी। लेकिन ये सिर्फ दो लड़कियों की बात नहीं है, ये सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, ये हमारे समाज में जीवन का हिस्सा है। अनेकों बेटियों की सिसकियां हमारे कानों तक कभी नहीं पहुंच पाती हैं, वो ऐसे ही घुट घुट कर मर जाती हैं। कभी आग में कोई जल जाता है, कभी सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है और उनके बारे में कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन आज हमने सोचा कि आज ब्लैक एंड व्हाइट में ये मुद्दा हम आप तक पहुंचाएं ताकि आप अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में इस बात का ध्यान रखें कि ये जो लालची दरिंदे इस तरह के ढूंढते फिरते हैं लड़कियों को, उनसे कैसे अपनी बेटियों को बचाना है। हम सबको मिलकर काम करना होगा, इसका कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। कानून है, उस कानून को कोई देखता सुनता मानने वाला है नहीं इस देश में। ग्रेटर नोएडा में 24 साल की दीपिका नागर ने छत से कूदकर जान दे दी, ऐसी खबर आ रही है। परिवार वाले कुछ और कह रहे हैं। और दूसरी घटना भोपाल की है जहां एक रिटायर्ड जज की बहू, हम बार बार आपको बता रहे हैं, एक रिटायर्ड जज की बहू और मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। कैसे ऐसे मामलों में भी रसूख का इस्तेमाल होता है। और आखिर में आपको बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसने खलबली मचा दी है। सड़क पर नमाज के खिलाफ सख्त आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद और ईदगाह में जगह कम है तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क पर किसी भी हाल में नमाज की इजाजत नहीं मिलेगी। आदेश ना मानने वालों को उन्होंने बरेली वाला एक्शन फॉर्मूला भी याद दिलाया है। हम आपको भी बताएंगे कि बरेली वाला एक्शन क्या है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको उस जहर के बारे में बताना चाहते हैं जो आज भी हमारे समाज की नसों में लगातार बह रहा है, और ये जहर है दहेज का। ये तस्वीर प्रतीकात्मक है लेकिन इसमें पूरी कहानी है। आज खबरें तो कई हैं और देश में महंगाई, तेल की कीमतों में वृद्धि, ईरान युद्ध पर काफी चर्चा हो भी रही है और इन खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे भी आगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे दहेज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। भारत में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिनमें 90% शादियों में दहेज का लेन देन होता है। ऐसा लेन देन जो समाज को बिल्कुल अब शर्मिंदा भी नहीं करता। लोग गर्व से बताते हैं कि उन्हें उनके लड़के की शादी में कौन सी कार मिली, कितना सोना मिला, कितना बड़ा टीवी लड़की वालों के घर से आया है। यही नहीं, हमारा समाज वक्त के साथ इतना आधुनिक हो गया है कि उसने इस दहेज को भी अब गिफ्ट कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि गिफ्ट शब्द दहेज की तरह बुरा नहीं लगता। गिफ्ट कहिए और लेते जाइए लेते जाइए। लोग खुश होकर बताते हैं कि लड़की वालों के यहाँ से कौन कौन से गिफ्ट आए हैं, और इस तरह दहेज गिफ्ट का रूप लेकर सामान्य बन जाता है। इसके बाद लड़कों का भी एक रेट कार्ड होता है। अगर लड़का डॉक्टर या इंजीनियर है तो ज्यादा दहेज, अगर सरकारी नौकरी करता है तो और ज्यादा दहेज, और अगर विदेश में नौकरी करता है या उसका फैमिली बिजनेस है तो बहुत ज्यादा दहेज, जिसे ये लोग गिफ्ट कहते हैं। और लड़की इनके लिए क्या होती है हम आपको बताएंगे। लड़की इनके लिए एक इन्वेस्टमेंट रिकवरी मॉडल होती है, यानी लड़के की पढ़ाई पर जो खर्च हुआ उस खर्च के हिसाब से लड़के की मार्केट वैल्यू तय की जाती है, और उस मार्केट वैल्यू पर लड़की वालों से दहेज मांगा जाता है। माफ कीजिएगा, आज के समाज के हिसाब से गिफ्ट मांगा जाता है, और यह परंपरा चलती रही है, और इस गिफ्ट के कारण लड़कियां मरती रहती हैं। आज भी हमारे देश में दो लड़कियों ने दहेज के कारण दम तोड़ दिया है। ये तो दो खबरें हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। मुमकिन है कि इसी देश के किसी और कोने में, किसी छोटे से कस्बे में, किसी छोटे से गांव में कहीं किसी और बेटी ने दम तोड़ा होगा। एक घटना दिल्ली की है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में हुई है और दूसरी घटना भोपाल में हुई है। ग्रेटर नोएडा में जिस लड़की ने छत से कूदकर आत्महत्या की, ऐसा बताया जा रहा है, उसका नाम था दीपिका नागर। चेहरा देखिए, कैसा खुशियों का संसार बसाना चाहती होगी, कैसे सपने रहे होंगे इस बेटी के, और अपनी बेटी को बड़ा करते हुए उस माता पिता के सपनों के बारे में सोचिए जिसने अपनी फूल सी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं सोचा होगा। 24 साल इसकी उम्र थी। 11 दिसंबर 2024 को ऋतिक नाम के लड़के से शादी हुई। इस शादी पर दीपिका के परिवार ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 50 लाख रुपए का सोना, 1 स्कॉर्पियो कार, 5 लाख रुपया कैश लड़के वालों को दहेज में दिया। उस दिन ये सारा दहेज देखकर ऋतिक का परिवार खुश था, जबकि दीपिका के परिवार को भी लग रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। बेटी के परिवार वाले तो उसको जिम्मेदारी मानते हैं। समाज ऐसा बन चुका है, हमारा ताना बाना ऐसा बन चुका है, सिर्फ बेटी देना काफी नहीं है, बेटी के साथ सामान दो, टीवी, फ्रिज। कुछ लालची तो ऐसे होते हैं जो वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, मिक्सी, टोस्टर, ये सब भी ले लेते हैं। सब कुछ लाद कर जितना कुछ आ सकता है ना, मोबाइल, मतलब जो जो लूट सकते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। FIR के मुताबिक शादी के बाद से ही लड़के वालों ने और दहेज की मांग करनी शुरू कर दी। और पैसा चाहिए, और गाड़ी चाहिए, ये जो दिया है वो काफी नहीं है, और गाड़ी दो। ये जो तस्वीर हम आपको फॉर्च्यूनर की दिखा रहे हैं, ये कहा गया कि दीपिका के पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए एक फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख कैश उसके पति को नहीं दे सकते, इस बात का गुस्सा था। ये भी कहा गया कि जो कैश और गाड़ी घर में आएगी वो दीपिका और उसके पति की ही होगी, और इसे दहेज ना समझा जाए। शुरुआत में दीपिका ने ये सारी बातें अपने परिवार से छिपाई ताकि परिवार को सदमा ना लगे, वो परेशान ना हो। लेकिन आरोप है कि इसके बाद ये लालच बढ़ता गया और दीपिका का इस दहेज की मांग से दम घुटने लगा। और एक दिन पहले जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब दीपिका के पति ने फोन करके उसके पिता को अपने घर पर आने को कहा और उन्हें सामने बैठाकर उनसे दहेज की सीधा मांग कर दी। ये लीजिए, शादी पर जो दिया सो दिया, अब सामने बैठकर उस बेटी के पिता से सीधा मोल भाव, अब क्या दे सकते हो। किसी तरह विवाद को खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही दीपिका के पिता को अपने घर लौटे, उसके बाद उनकी लड़की ने अपने घर की छत से आरोपों के मुताबिक कूदकर जान दे दी और उसकी मौत हो गई। सोचिए, एक लड़की को दहेज के लिए, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए, सामान के लिए, कैश के लिए, एक लड़की को दहेज के खिलाफ लड़ने से ज्यादा आसान ये लगा कि वो अपनी ही जान दे दे। जब जीने का खतरा और जीने का बोझ मरने से भी भारी लगे और मरना ज्यादा आसान लगे, तब कोई ऐसा कदम उठाता है। और इस बात ने किसी को विचलित नहीं किया। आज दीपिका का परिवार रोते बिलखते हुए अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, लेकिन इसके बाकी परिवारों का जो बाकी परिवार के लोग हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, तब न जाने इस देश के कितने माता पिता और परिवार अपनी बेटियों के दहेज के लिए बचत कर रहे होंगे। हो सकता है एक स्कॉर्पियो काफी ना हो, हो सकता है कभी फॉर्च्यूनर की मांग कर दे, हो सकता है फॉर्च्यूनर की मांग पूरी ना होने पर वो मेरी बेटी की जान ले ले तो कुछ रुपए और बचा लेता हूं, कुछ रुपया इधर से बचा लेता हूं, कुछ रुपया उधर से इकट्ठा कर लेता हूं, कुछ अपनी जिंदगी में कटौती कर लेता हूं, कुछ अपने परिवार के जीने के तौर तरीके में कटौती कर लेता हूं, कुछ पैसा और बचा लेता हूं, क्योंकि एक लालची लड़का आएगा जो एक दिन फॉर्च्यूनर से भी खुश नहीं होगा, स्कॉर्पियो से भी खुश नहीं होगा, उसको बार बार कैश चाहिए होगा और वो मेरी बेटी का गला घोट देगा। लेकिन हमारे देश में ये होता है और इसे बुरा भी नहीं माना जाता है। पुलिस ने दहेज हत्या के इस मामले में दीपिका के पति और उसके ससुर को गिरफ्तार किया है, लेकिन दीपिका के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह अपील की है कि वो उनकी बेटी के हत्यारों का ऐसा एनकाउंटर कराएं कि भविष्य में फिर कभी किसी पिता को दहेज के कारण अपनी जवान बेटी को कंधे पर ना उठाना पड़े। सुनिए,
1: अब कार्रवाई तो बाकी सामने आएगी जी, क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी हमारी तो यही है कि ऐसे जल्लादों को जो एनकाउंटर होना चाहिए और समाज से बिल्कुल दूर करना चाहिए। ये सभी की बेटी है, कोई ऐसे नहीं है कि बेटी एक हमारी आज मरी है, आज हमारी है कल दूसरे की भी है।
0: पहले ऐसा माना जाता था कि दहेज का सबसे बड़ा कारण गरीबी है, अशिक्षा है, लड़का गरीब है, अशिक्षित होता है तो घर बसाने के लिए वो दहेज मांगता है, लेकिन ये सारे दलील धरे के धरे रह गए हैं। आज जिन परिवारों की हम बात कर रहे हैं, ये चमचमाती फॉर्च्यूनर, ये स्कॉर्पियो, ये एक फॉर्मर जज का परिवार, ये सब क्या गरीबी की वजह से कुछ पैसा चाहते थे? ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। उस पिता की सोचिए, ऐसी मौतें पता है कहां से शुरू होती हैं? शादी के उस न्योते वाले कार्ड से, और फिर शहनाई बजती है, गीत गाए जाते हैं खुशियों के, और एक नया संसार बनाने का दावा होता है, फिर उस बेटी की विदाई होती है और आंसुओं में भी सदा खुश रहो का एक आशीर्वाद होता है, लेकिन जब उस नए घर में जिसे ससुराल कहते हैं वहां पर पहुंचती है, तब धीरे धीरे ये लालच चीखता हुआ आंखों से निकलता है। कभी कैश की मांग बनकर, कभी गाड़ी की मांग बनकर, कभी घर की मांग बनकर, और धीरे धीरे वो उस बच्ची की जिंदगी को खत्म करता है। और शादी के न्योते वाले कार्ड से शुरू हुआ ये किस्सा सपनों की चिता पर अंत लेता है। इसीलिए कुछ मौतें मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होती हैं। इसी दलील को आधार बनाकर हमने आपको बताया ना कि गरीबी की वजह से ऐसा नहीं है कि लोग ज्यादा दहेज मांगते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ये लिखा गया कि अगर लोग अमीर हो जाएंगे, उनके पास एक दिन पैसा हो जाएगा भारत में, तब ये दहेज अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा जिन लोगों के पास पैसा आया वो और दहेज मांगने लगे। और ग्रेटर नोएडा की ये घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुनिए, ऋतिक नाम का जो लड़का 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर कार दीपिका के पिता से मांग रहा था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर महीने लाखों रुपए किराया आता था और परिवार के पास कई जमीनें थी, लेकिन फिर भी दहेज का जहर उसकी नसों में दौड़ रहा था। इसे छोड़िए और भोपाल की इस घटना को अब देखिए। 33 साल की त्रिशा शर्मा, संदिग्ध हालत में मौत, है ना एक सा किस्सा, क्योंकि टूटी हुई हड्डियां और जली हुई चमड़ी कहां ही बयान दर्ज करा पाती हैं। त्रिशा शर्मा ने कुछ ही महीने पहले समर्थ सिंह से शादी की थी। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। समर्थ सिंह पेशे से एक वकील हैं, जबकि उनकी मां एक रिटायर्ड जज, और त्रिशा का परिवार यही सोचता था कि उनकी बेटी को इससे अच्छा परिवार मिल ही नहीं सकता। लेकिन आरोप है कि इतने पढ़े लिखे परिवार ने भी दहेज के लिए सारी हदें पार कर दी। रिटायर्ड जज का परिवार। पुलिस और परिवार के मुताबिक त्रिशा के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार घरेलू हिंसा हुई। उसे इसलिए मारा गया ताकि वो अपने पिता से कैश और सोना लाकर अपने पति और उसके परिवार को दे। मेरे पास त्रिशा की एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें उसने अपनी सहेली से कहा था कि वो फंस चुकी है लेकिन तुम मत फंसना। ऐसी ऐसी चैट्स हैं इस बच्ची के अपने अपने मां के साथ जो चैट है व्हाट्सएप पर, उसमें उसने लिखा था कि मुझे यहां से ले जाओ, मैं इस परिवार में और रह ही नहीं सकती। हम आपको दिखाते हैं जो ये तमाम चैट्स हैं जिसमें मैं, मेरा प्रॉब्लम है मैं हैंडल कर लूंगी, क्यों फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है। इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूं इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में ये नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है। मेरा मूड इस वजह से खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ, ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूं। अपनी मां से बार बार कह रही थी कि मुझे घुटन हो रही है यहां पर, ये लोग ना हंसने की वजह देंगे ना मुझे रोने ही देंगे। ये वाला चैट देखिए जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, भाई के साथ ये चैट है उसका, जिसमें कोई भी ऐसी स्थिति में फंसी हुई बच्ची क्या ही बताएगी। और इसलिए वो लिख रही है, हां भाई बात करेगा नॉर्मल तो मैं भी कर लूंगी, जब बात की बात हो रही है मुझे कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है यहां, बात करो मत, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा किसी से भी बात करके। आपको क्या ही बताऊं, मतलब ये जो पूरी बातचीत है तो अम्मा को बोलना कि ऐसे कितने दिन चलेगा जब समर्थ को मेरे से, मतलब ये बच्ची इतनी परेशान थी, ये लगातार अपने भाई से, अपनी माँ से, अपनी फ्रेंड से, त्रिशा आस्किंग हर फ्रेंड नॉट टू मैरी, वो अपनी दोस्त को कह रही है आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना, कांट टॉक मच, आई विल कॉल व्हेन द टाइम इज राइट, मतलब मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती। मतलब ऐसी स्थिति में ये फंसी हुई थी जहां से अपने परिवार वालों, अपने फ्रेंड्स से बात करना भी उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि उसको लगता था कि इससे उसको सामने वाले अपने पति का गुस्सा ना झेलना पड़ जाए। त्रिशा एक अभिनेत्री और एक मॉडल थी, मिस पुणे प्रतियोगिता में भाग लिया था और वो महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें करती थी। लेकिन सोचिए दहेज के भूखे उन्हें भी निकल गए, और जिस घर में लड़के की मां एक रिटायर्ड जज थी वहां भी दहेज के कारण एक लड़की को मरना पड़ा। पुलिस का कहना है कि त्रिशा ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दी, जबकि त्रिशा के परिवार का कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है और पुलिस ने उस फंदे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा ही नहीं जिससे ये पहचान हो सके कि क्या त्रिशा के गले पर इसी फंदे के निशान है या उसकी हत्या करके उसके शव को बाद में इस फंदे पर लटकाया गया। ऐसा भी होता है। इस मामले में आरोपी लड़के की मां ने अदालत में एक जमानती आवेदन भी दायर किया है जिसमें यह लिखा है कि त्रिशा को ड्रग्स की लत थी। जब ऐसी घटना हो गई है तो उसके बाद अब लड़की को बदनाम करना ही सबसे पहला तरीका होता है। उठा कर देख लीजिए जितने भी ऐसे मामले आपको इस देश की अदालतों और थानों में दर्ज दिखाई देंगे। जब जब लड़की उत्पीड़न का शिकार होती है तो पहला काम सीधा उसके चरित्र पर हमला, और त्रिशा को ड्रग्स की लत बता रही है अब रिटायर्ड जज। और जब उसे ड्रग्स नहीं मिलता था, उनका दावा है, तो वो अपना नियंत्रण खो देती थी और शायद इसी वजह से उसने आत्महत्या की। हालांकि त्रिशा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स की लत उसे नहीं बल्कि समर्थ को थी और वो ड्रग्स लेने के बाद त्रिशा को खूब मारता था, पीटता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी त्रिशा के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि त्रिशा के साथ काफी हिंसा हो रही थी। लेकिन सोचिए यहां भी ये लड़की बच नहीं पाई। जब हम ट्विशा और समर्थ की शादी की इन तस्वीरों को देख रहे थे तो हमें लगा कि इस शादी में कहां कोई कमी थी। तस्वीरें परफेक्ट, इंतजाम परफेक्ट, मुस्कुराते हुए ये चेहरे भी एक परफेक्ट कहानी बता रहे थे। पढ़े लिखे परिवारों से थे, एक तरफ रिटायर्ड जज थे, जैसा हमने आपको बताया रिटायर्ड जज थी इस लड़के की मां, और शादी की इन तस्वीरों को देखकर कहां कोई भी कल्पना कर सकता है कि ये बच्ची जो खुशियों के साथ, सपनों के साथ और बहुत सारी उम्मीदों के साथ एक परिवार में अपना कदम बढ़ा रही है, वहां पर लाठियां और गुस्से में उठते हुए हाथ उसका इंतजार कर रहे हैं। समर तो खुद एक वकील था, उसकी मां एक रिटायर्ड जज, फिर भी ट्विशा को मरना पड़ा और उसका पति समर्थ फरार है। जी हां, रिटायर्ड जज का बेटा समर्थ फरार है। आज जितने भी लोग हमारा ये शो देख रहे होंगे उनके लिए ये नई घटना नहीं होगी। हमारे देश में दहेज हत्या को सामान्य मान लिया जाता है। कई मामलों में तो बहुत सारे लोग दहेज हत्या को गंभीरता से भी नहीं लेते और ये कहते हैं कि कोई और बात होगी, वरना दहेज के लिए कौन मरता है। जैसी सोच हो उस हिसाब से इस घटना को पलट देता है। लेकिन हकीकत में जिन परिवारों की लड़कियां दहेज के कारण मरती हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उन्होंने क्या क्या झेला है, कैसे उन लड़कियों की खुशियों की कीमत लगाई गई, कैसे उनसे कहा जाता है कि अपनी लड़की को हंसते हुए देखना है तो कैश दो, गाड़ी दो, सोना लेकर आओ। कई मामलों में तो लड़कियां अपने परिवारों से बोल भी नहीं पाती हैं। इन पतियों की मुस्कुराहट जानते हैं? इन पतियों की मुस्कुराहट, उसकी खुशी उतने ही हिसाब से निकलती है जितना पैसा उनके सामने खनकता है। ज्यादा पैसा लेकर आओ तो ज्यादा खुश दिखेंगे, सोने का कुछ ले आओ तो दांत और भी ज्यादा दिखेंगे, गाड़ी की चाबी आ गई तब तो आप ससुर जी वाकई अच्छे लगने लगेंगे और पत्नी भी। ये सच्चाई है। घुट घुट कर अपने ससुराल में मर जाती बच्चियों की बात आज कहनी जरूरी है। उनकी मौत दहेज के कारण हुई, ये कभा कई बार ये पता भी नहीं चल पाता। और कई मामलों में जो लड़के होते हैं वो जेल से छूटने के बाद दूसरी शादी भी कर लेते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल। लेकिन शादी की उन खूबसूरत तस्वीरों में से एक जो लड़की थी वो चली जाती है। और शायद इन मामलों में भी एक दो दिन के बाद दीपिका और ट्विशा को सब भूल जाएंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि इन्हें भूल जाने से दहेज हत्याएं बंद नहीं होंगी। और अब भी कहीं ना कहीं किसी कोने में कोई लड़की दहेज के कारण पिट रही होगी, आत्महत्या करने के बारे में सोच रही होगी या उसे जला दिया जाएगा, कहीं से लपटे निकल रही होंगी किसी घर से और बता दिया जाएगा कि किचन में आग लग गई या सिलेंडर फट गया। और ऐसा संदेश सोचिए, कहीं किसी कोने में बैठकर हो सकता है कोई बेटी इस वक्त अपने मां बाप को लिख रही हो कि मेरा यहां दम घुट रहा है, मुझे यहां बहुत मारते पीटते हैं, और मां बाप शायद ये सोचकर इंतजार कर रहे हो कि हो सकता है कल ठीक हो जाए, आज की लड़ाई है। ऐसा मुमकिन है कि किसी कोने में, किसी कमरे में, किसी छत पर कोई अपनी बीवी को दौड़ा रहा हो, अपनी पत्नी को, और गुस्से में हो रही लड़ाई किसी की मौत में, उस बेटी की मौत में बदल जाए। आज बहुत सारी एक से एक घटनाएं पूरे देश में होती हैं, लेकिन सबको दबा दिया जाता है। और हम फिर से आपको किसी दीपिका, किसी ट्विशा की कहानी मुमकिन है कि कुछ दिनों में फिर से दिखा रहे हो।
2: ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट रही मेरी बेटी की, तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है, तू गवार है, बिल्कुल कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी।
3: तो हमारी लड़ाई है कि आज कितने समय हो गया इन हीनियस क्राइम में तुरंत गिरफ्तारियां होती हैं, और ये सारा जो केस जिस बिना पर चलाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा।
4: हम चाहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम दोबारा हो, क्योंकि यहाँ पे उचित तरीके से इसको नहीं किया गया है। और समर सिंह जिसको भी गिरफ्तार करने गए हुए थे वो भी फरार है, उसकी अच्छे से जांच की जाए।
5: मेरी बेटी का गला काट के उसकी हत्या की है, उसका इंसाफ दो मेरे लिए।
6: इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी एविडेंस कलेक्शन होगा और उसके बाद जो है ना एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
0: जब हम ये देखते हैं कि दहेज हत्याओं की खबरें अब समाज को विचलित नहीं करती, तब हमें 1970 और 1980 का दशक याद आता है। उस वक्त हमारे अखबार ऐसी घटनाओं से भरे होते थे जिनमें दहेज के लिए लड़कियों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता था। और जलाया इसलिए जाता था क्योंकि उस दौर में रसोई में मिट्टी के तेल के स्टोव इस्तेमाल होते थे, और अगर किसी लड़की को दहेज के लिए जिंदा जलाया जाता था तो पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई जाती थी कि वो खाना बनाते वक्त जलकर मरी है और यह एक हादसा है। उस वक्त दहेज के लिए यह तरीका कई परिवारों ने अपनाया, हजारों महिलाएं दहेज के कारण मारी गईं और यह आग भी 1979 से शुरू हुई। उस वक्त साल 1979 में दिल्ली में 24 साल की तलविंदर कौर को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने केरोसिन डालकर आग लगा दी और बाद में इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई और दहेज के कारण लड़कियों को शादी से डर लगने लगा था। लेकिन सोचे उस वक्त से लेकर आज तक हमारे देश में क्या ही बदला। आज दहेज प्रथा एक इन्वेस्टमेंट रिकवरी मॉडल है। लड़के का परिवार यह सोचता है कि उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना खर्च किया, जितनी उसकी तनख्वाह है, उसके हिसाब से उन्हें दहेज मिलना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि ये लोग दहेज बोलना पसंद नहीं करते, वो गिफ्ट कहते हैं। कहते हैं आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, लेकिन नजर एक एक चीज पर रहती है। बीबीसी के मुताबिक 1960 से 2008 के बीच भारत में जो शादियां हुई उनमें 95% में दहेज का लेन देन हुआ, 95%। इनमें भी 60% शादियों में लड़के वालों ने दहेज प्रथा को गलत बताने के बाद भी लड़की वालों से फर्नीचर सोफा लेते हैं। सोफा ही नहीं लेते, सोफा के साथ कहते हैं कि सोफा का कवर भी चाहिए ताकि उस पर धूल पड़ने से वो गंदा ना हो। टेबल, सेंट्रल टेबल, सजावट का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, ये सामान लेने के बाद जानते हैं इन परिवारों ने क्या कहा। ये कहा कि उनकी बेटी ही तो इस सामान का इस्तेमाल करेगी। इन लोगों ने यह भी कहा कि दहेज भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, वो अपनी सिर्फ संस्कृति को निभा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। भारत में स्त्रीधन की परंपरा थी जिसमें लड़की के माता पिता अपनी इच्छा से बेटी को पैसा, गहना या संपत्ति देते थे, लेकिन उसके लिए देते थे ताकि उसको बुरे वक्त में काम आए। यह स्त्री धन होता था। इसके पीछे एक कारण यह था कि उस दौर में लड़कियों को अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। इस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए स्त्री धन लड़कियों को उनकी शादियों में दिया जाने लगा ताकि वो उनकी मुश्किल वक्त में काम आए। और ऐसा नहीं कि यह स्त्री धन देना जरूरी होता था, ये तो उन लालची लड़कों की नजरें उस पर पड़ी कि हमारे समाज में है जो पिता खुद अपनी बेटी के लिए पाई पाई जोड़ता है वो भी दूसरे घर की बेटी को लाते वक्त लालची नजरें कर लेता है कि वहां से लेंगे। कई परिवार एक जोड़ी कपड़े के साथ भी अपनी बेटियों को विदा करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे दहेज के खिलाफ कड़े कानून बने वैसे वैसे दहेज का चलन बढ़ता ही गया। जी हाँ, डेटा बताता है, आइडियाज फॉर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1920 में सिर्फ 20% शादियों में दहेज दिया जाता था, लेकिन 2005 में यह 40% हुआ और अब 90% हो गया है। इसका मतलब यह है कि दहेज की समस्या तो पुरानी है, लेकिन जितना दहेज आजकल की शादियों में लिया जा रहा है उतना दहेज पहले कभी नहीं लिया जाता था। आज हर 100 में से 90 शादियां दहेज के लेन देन से हो रही हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लड़की का परिवार औसतन अपने पूरे साल की कमाई दहेज में दे देता है, लेकिन इसके बाद भी कई लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है। इसके अलावा ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है कि आज कई लोग खुद खुशी से भी बड़ा दहेज देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज कहता है कि वाह कितनी बड़ी शादी हुई, इतनी कारें मिली, इतना सोना दिया। और मेरी नजर में इस तरह से गाड़ी, सोना और पैसा देने वाले लोग भी उतने ही बड़े कसूरवार हैं। यानी दहेज अब सामाजिक दिखावा बन गया है और इस दिखावे में हर कोई शामिल है, और यह दिखावा हर परिवार में कैसा दबाव बनाता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे देश में दहेज की समस्या का एक और कारण यह है कि महिलाएं शिक्षित तो हो रही हैं, लेकिन समाज उन्हें नौकरी करने की आजादी कई बार नहीं देता। बहुत सी महिलाएं नौकरी नहीं करती, शादी के बाद घर तक सीमित हो जाती है। परिवार सोचता है लड़की कमाएगी नहीं, इसके लिए लड़के वाले कहते हैं हमारा बेटा कमाता है तो दहेज दो। इसके अलावा आज कई परिवार बेटे की पढ़ाई पर लाखों खर्च करते हैं, आईआईटी, मेडिकल, विदेश में पढ़ाई, खूब पैसा खर्च हुआ, जितना खर्च उतना पैसा उनको वापस चाहिए। यानी बेटे की शिक्षा का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको आरओआई बना दिया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, 1980 के दशक में जब सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बहुत तेजी आई थी, तब भारत में लड़कियों की मृत्यु दर तेजी से बढ़ गई थी, और इसका कारण यह था कि बहुत सारे परिवार दहेज से डर गए। अगर आप 2018 से 2024 के इन आंकड़ों को देखेंगे तो हमारे देश में हर साल दहेज के लिए औसतन 12,000 मामले दर्ज होते हैं, जबकि दहेज के कारण हर साल 5,000 से ज्यादा लड़कियां मार दी जाती हैं, लेकिन इस पर कभी कोई बात नहीं करता। और मुमकिन है कि आप में से कई लोग ब्लैक एंड व्हाइट में ही आज ये खबर देखकर सोच रहे हो कि अरे छोड़िए इसमें क्या है, ये तो बस एक खबर है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हमारी इस खबर को देखकर दुख जता रहे होंगे, उन शादियों का न्योता मिलने पर दहेज का मुद्दा भूल जाएंगे, जिन शादियों में खूब चमक दमक होती है इसके पीछे दहेज का बहुत सारा पैसा लगा होता है। लेकिन हम बस इतना कहेंगे, एक सुझाव है और इस सुझाव को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हमारा सुझाव यह है कि अगर सच में दहेज की कुप्रथा को रोकना है तो समाज में दहेज को शर्म का प्रतीक बनाना होगा। कल्पना कीजिए अगर सरकार एक ऐसा ही कानून ले आए जिसमें दहेज में मिलने वाली हर चीज पर लिखना पड़े, दहेज में मिला टीवी, दहेज में मिली कार, दहेज में मिला फ्रिज, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दहेज में मिलने वाले हर सामान का एक तय रंग कर दे, फिर देखते हैं ये कितने लड़के जो शान में स्कॉर्पियो लेकर घूम रहे हैं अपनी पत्नी के पिता के पैसे पर वो ऐसा कर पाएंगे। मान लीजिए चमकीला पीला ऐसा कोई रंग है जैसे देखते ही दूर से समझ में आ जाए दहेज की मिली हुई कार है ये, यही भीख चाहिए थी तो लो। आज लोग दहेज इसलिए लेते हैं क्योंकि समाज उन्हें सम्मान देता है। बारात में महंगी गाड़ियां दिखती है, लोग कहते हैं वाह कितना बड़ा रिश्ता हुआ है, लेकिन लोग ये जानते नहीं है कि उसकी चाबी लड़की के पिता से ली गई है, उसका पैसा गाड़ी का लड़की के पिता ने दिया है। अगर वही गाड़ी सड़क पर चले और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा हो दहेज की कार, सोचिए क्या वही लोग गर्व महसूस करेंगे? शायद नहीं। दहेज की पूरी ताकत समाज की चुप स्वीकृति से आती है। जिस दिन दहेज सम्मान की जगह सार्वजनिक शर्म, सार्वजनिक अपमान का कारण बन जाएगा, उसी दिन इसका ढांचा हिलने लगेगा, क्योंकि अपराध हमेशा अंधेरे में पनपता है। और दहेज भी बंद कमरों, कानों की मांगने वाली फुसफुसाहट, सामाजिक दिखावा, नकली प्रतिष्ठा के पर्दे में फलता फूलता है। और अगर उस पर्दे को हटा दिया जाए, अगर दहेज को छुपाना संभव बना दिया जाए, तो शायद लोग खुद इससे दूर भागने लगेंगे। और अब तो कोई भी, अगर आप गाड़ी भी खरीदते हैं, आपको सारा पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से करना होता है, तो ऐसे में जब भी शादी में किसी पिता की तरफ से अकाउंट में पेमेंट होकर गाड़ी या कोई भी सामान खरीदा जा रहा है तो उसको ट्रैक करना बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा। ऐसा करना जरूरी क्यों है, इसके लिए आपको पिछले हफ्ते का ये वीडियो देखना होगा जिसमें मुस्लिम समुदाय की एक शादी में गर्व से बताया जा रहा था कि लड़की वालों ने कितना कैश, कितना गोल्ड, कौन सी गाड़ी दहेज में दी। सुनिए।
7: आ हाँ सही है।
8: एक करोड़, एक लाख 11,000 रुपए नगद और एक BMW भैया। नगवे वालों की तरफ से 11 हीरे की, 42 सोने की, 18 चांदी की, 71 चीज, जिसमें 11 चीज हीरे की, 42 चीज सोने की और 18 चीज चांदी की।
0: अनेकों हिंदू शादियों में भी आप अक्सर देखेंगे इसी तरह की बोलियां लगाई जाती हैं, इसी तरह से ऐलान किया जाता है। कई बार तिलक का जो फंक्शन होता है उसमें भी खुले तौर पर एक नुमाइश लगती है, यहां तक कि चांदी के कितने बर्तन, पीतल के कितने बर्तन, क्या कुछ मिला है, एक एक चीज का बाकायदा लिस्ट बनता है, हिसाब दिया जाता है और जमकर यह ऐलान होता है कि ऐसे दहेज मिला है।

0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त प्रशासनिक फैसले लेने वाले हिंदूवादी मुख्यमंत्री के तौर पर है और उन्हें इसको आगे ले जाने में कोई परहेज भी नहीं है। आज लखनऊ में उन्होंने अपनी इसी छवि के अनुरूप एक ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुस्लिम वर्ग को संदेश दिया कि अगर नमाज पढ़नी है और जगह की कमी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए, सड़क पर किसी भी हाल में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी।
1: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। और लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें, कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे।
0: योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब इसी महीने की 28 तारीख को ईद उल अजहा यानी बकरीद आने वाली है। अभी कल ही लखनऊ में मरकजी चांद कमेटी के सदस्य फिरंगी महली और अन्य सदस्य दूरबीन लेकर चांद देखने का प्रयास कर रहे थे। माना जाता है कि चांद दिखने के बाद से ही इस्लामिक कैलेंडर का जिल हिज महीना शुरू होता है जिसके 10वें दिन बकरीद मनाई जाती है। लेकिन इस महीने के पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने बकरीद पर सड़क पर नमाज की इजाजत मांगने वालों को सख्त संदेश दे दिया है।
1: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कहा भी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पर फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिए ताकत।
0: योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगने और इसकी जिद पकड़ने के बीच विकल्प दिया। उन्होंने नियमों का हवाला देकर साफ कहा कि शासन के साथ संवाद और संघर्ष दोनों विकल्प है। बरेली का उदाहरण उन्होंने इसी वजह से दिया कि अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद पकड़ी तो बरेली वाला एक्शन होगा। पिछले साल सितंबर में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर बरेली में जबरदस्त हंगामा हुआ था। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था। पुलिस प्रशासन ने इस प्रदर्शन की अनुमति ही नहीं दी थी। बावजूद इसके इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर यह प्रदर्शन खूब हुआ और जब पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ की गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान दंगाइयों की तरफ से फायरिंग तक की गई थी। दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और बाद में 80 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि यह पूरी हिंसा सुनियोजित थी और इसे तौकीर रजा ने प्लान किया था जो फिलहाल जेल में है। नियम न मानने वालों और बिना अनुमति मनमानी करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक्शन होता रहा है। यूपी के सीएम ने अपने बयान के जरिए उन लोगों को एक तरह की चेतावनी दी है जो बकरीद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद कर सकते हैं। योगी शासन की इस चेतावनी ने विपक्षी नेताओं और कई मुस्लिम संगठनों को बहुत नाराज और निराश किया है।
2: अब मुसलमान अगर एक 5 मिनट नमाज पढ़ लिया जुम्मा के दिन, वो भी क्योंकि जुम्मा नमाज फर्ज है, खुतबे के साथ पढ़ना है, उसको जमात के साथ पढ़ना है, इसलिए एक आदमी रस्ते के ऊपर पढ़ लिया तो किसके पेट में दर्द है? अगर कायदे कानून का पालन करते हुए किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए बिना किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है, इसलिए बताइए मेरे को।
3: ये चीजें बोल करके ना ये लोग जो है ना एक मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्ती नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति है, धर्म को जो है राजनीति में लाना बिल्कुल गलत है।
4: इस्लामिक जो कुरान हदीस है वो एक शब्द में कोई ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएगी तो दूसरा बार नमाज पढ़ने का सिस्टम है, पढ़ना चाहिए।
5: जो स्टेट का मुखिया होता है या मुल्क का मुखिया होता है वो एक संविधान की शपथ लेता है, वो कहता है कि मैं धर्म निरपेक्ष रहूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा।
6: एक मुख्यमंत्री इस तरीके के जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं।
7: ऑलरेडी मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं अदा करता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जाहिर सी बात है सड़कें जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं, पब्लिक के चलने के लिए हैं, तो उस पर बाकिया भी दीगर भी जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए।
0: बहुत से नेता, बहुत से मुस्लिम संगठन योगी आदित्यनाथ के बयान को मुस्लिम विरोधी, एंटी मुस्लिम बता रहे हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक एजेंडे की वजह से यूपी सरकार मुस्लिमों का शोषण करती है, उनका त्योहार मनाने से उनको रोका जा रहा है। कई लोग रामनवमी, हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं का उदाहरण देकर ये तर्क देते हैं कि उनमें उनसे भी सड़क जाम होती है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन एक्शन केवल सड़क पर नमाज पढ़ने से लेकर होता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि खास मौकों पर प्रशासन की अनुमति के साथ ही हिंदू समाज भी शोभा यात्राएं निकालता रहा है, उसके बिना वो नहीं निकाल सकता है। अगर किसी भी तय रूट के लिए पुलिस परमिशन ना हो तो किसी भी ऐसी शोभा यात्रा को कहीं भी रोका जा सकता है, और मुस्लिम समाज मुहर्रम और ईद मिलाद उन नबी के जुलूस भी निकालता है और कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। कई बार ये तर्क दिए जाते हैं कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह कम पड़ जाती है, जगह नहीं है, इसलिए लोग सड़क पर आते हैं, मस्जिद भर जाती है, वहां पर जगह नहीं बचती। लेकिन हम आपको कुछ बातें साफ करना चाहते हैं। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में करीब 3,84,00,000 मुस्लिम रहते हैं। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति का 27% हिस्सा यूपी में रहे है। यूपी में वक्फ बोर्ड की 2,14,707 अचल संपत्तियां हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ईदगाह है, अन्य संपत्ति है। यानी किसी भी मौके पर इन जगहों पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। बावजूद इसके ये तर्क दिया जाता है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ने देना धर्म के पालन का मौलिक अधिकार छीनने जैसा है। जबकि साल 2027 की फरवरी या मार्च में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में अपने कुछ एक्शन से एक अलग तरह की छवि बनाई। यूपी के लोगों ने इसको खूब पसंद भी किया, जैसे बुलडोजर हो, बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर एक्शन जो उनकी पहचान बन चुका है। खासतौर से माफिया के खिलाफ इसका खूब इस्तेमाल होता रहा है। जुलाई 2020 से अप्रैल 2024 तक यूपी के माफियाओं की 3,778 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसके अलावा अपराध पर फैसला ऑन द स्पॉट भी यूपी पुलिस और सरकार की पहचान बना है। उत्तर प्रदेश के योगी राज में यानी साल 2017 से 2024 तक 12,525 एनकाउंटर हुए, जिसमें 207 अपराधियों को मार गिराया गया, 27,000 से ज्यादा पकड़े गए। योगी राज में महिला सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई। साल 2024 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं यूपी के महिलाओं के अपहरण की जो घटनाएं हैं उनकी वो संख्या बता रहे हैं। उनका इन रिपोर्ट्स और इन नंबर्स के हिसाब से ये दावा है कि अपहरण की घटनाएं 45% गिरी हैं, रेप के मामले करीब 9% तक और छेड़छाड़ के 53% तक। योगी सरकार ने एक बात बार बार कही, राज्य में कानून और नियम से बड़ा कुछ नहीं। मुमकिन है कि योगी राज की इसी छवि को यूपी बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में भी एजेंडा बनाए। आगे बढ़ते हैं। लश्करे तैयबा का एक ट्रेंड कमांडो मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चाइनीज स्लीपर सेल बनने के मकसद से भारत में घुसा, लेकिन यहां आते ही उसका मिशन टेरर मिशन हेयर में बदल गया। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में आतंकी उस्मान को पट्टी पढ़ाई गई थी कि कश्मीर में लोग भूखे मर रहे हैं, वहां जुल्म हो रहा है। फिर क्या उस्मान दिल में नफरत, सिर पर गंजापन लेकर और आर पार आतंकी लड़ाई के लिए कश्मीर पहुंचा। लेकिन यहां आकर जब उसने देखा कि लोग मजे से जी रहे हैं, श्रीनगर चमक रहा है, हर तरफ रौनक है, खुशहाली है, सभी सुख सुविधाएं मौजूद है, तब उसकी समझ में आया कि कंगाली में तो पाकिस्तान जी रहा है, जहां आटे के लिए कत्लेआम मचा है। और फिर वो टेरर कैंप की सारी तालीम भूल गया और बंदूक उठाने के बजाय उसे सिर पर बाल उगाने की याद आई। उस्मान को लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसी लग्जरी सिर्फ अमेरिका और यूरोप में ही मिल सकती है, लेकिन जब उसकी मुलाकात श्रीनगर के एक ओवरग्राउंड वर्कर और लोकल दुकानदार से हुई जिसने खुद अपने बाल ट्रांसप्लांट करवाए थे, तो उस्मान अपने सिर पर बाल उगाने के लिए मचल उठा। उसने लश्कर के आकाओं को साइड में रखा और दुकानदार के आगे हाथ जोड़कर कहा कि जिहाद विहाद होता रहेगा, पहले उसके सिर पर बाल उगा दिए जाए। सोचिए, जो आतंकी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनने आया था, वो खुद अपने सिर के दर्द यानी गंजेपन का इलाज ढूंढने लगा श्रीनगर के एक आलिशान क्लिनिक में। उस्मान जट उर्फ चाइनीज का बाकायदा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। बाल उगाए तो सूरत के साथ उस्मान का मकसद भी बदल गया। ट्रांसप्लांट के बाद वो पैसेंजर गाड़ी में बैठकर जम्मू गया, वहां से स्लीपर बस पकड़कर पंजाब के मलेरकोटला पहुंच गया। यहां से वो आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर सीधे गल्फ भागने की फिराक में था और तब तक आराम से टर्किश ड्रामा देखने लगा और अंग्रेजी सीखने की कोचिंग भी लेने लगा। वो भाग पाता इससे पहले ही भारत की खुफिया एजेंसियों की पकड़ में आ गया, लेकिन जेल जाते जाते उसने पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। आतंकी उस्मान ने कहा कि जो पाकिस्तान में सिखाया जाता है, कश्मीर की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में ये कश्मीर की तरक्की का जादुई है कि वहां से आए आतंकी भी अपना मकसद भूलकर खुद को सवारने में और जिंदगी बनाने में लग जाते हैं। तभी हिंदुस्तान में तबाही के मकसद से आया आतंकी अब खुद की घाटी की तरक्की की गवाही दे रहा है और आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान को पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
3: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
2: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
4: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
5: कूल फैंस से घर को सजाएं।
6: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
5: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।
7: मैं करता हूं ना,
8: मैं करूंगा।
9: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
7: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
9: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
7: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
9: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
10: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
11: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
10: ज्यादा बड़ी ना है।
11: छोटे ऑन कर दे,
12: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
10: पैक कर दे समर कूल।
11: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
15: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
2: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
1: ज्यादा बड़ी ना है।
2: छोटे ऑन कर दे,
3: ऑन कर दे, ऑन कर
1: दे, पैक कर दे समर कूल।
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों लंबा वीआईपी काफिला नहीं दिख रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे शुरू किया तो सीएम से लेकर मंत्री तक सभी मेट्रो पर सवार दिखे।
1: चलाई गई है।
0: ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में सत्ता की राजनीति सचमुच बदल रही है?
2: जा रहे हैं।
0: भारत में इन तस्वीरों पर भरोसा जल्दी नहीं होता, क्योंकि इस देश ने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। फिलहाल चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम की साइकिल से दफ्तर जाने की तस्वीर हो या फिर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की कारपूलिंग की तस्वीरें फिलहाल अच्छे संकेत की तरफ इशारा करती हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लगातार पीएम मोदी के संदेश को आगे बढ़ाने में। ये हालात वैश्विक संकट से पहले नहीं थे, लेकिन हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद क्रूड ऑयल के दाम रॉकेट की तरह आसमान छूने लगे। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, यानी हर बढ़ती कीमत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस साल मार्च में जहां क्रूड ऑयल पर भारत को 1,17,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अप्रैल में 1,79,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। बचत की बहस को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना शायद गलत होगा, क्योंकि दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तेल सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं चला रहा, राजनीति युद्ध और वैश्विक ताकतों की दिशा भी तय कर रहा है। इसलिए नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बीच उन चुनौतियों का जिक्र किया जिनका सामना दुनिया कर रही है।
3: दी जाएगी।

तेल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी का टैंक महंगा नहीं भरता, सब्जी महंगी होती है, दवा महंगी होती है, खेती महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सोना चांदी सब महंगा हो जाता है और अंत में आम आदमी की जिंदगी भी महंगी हो जाती है। इसीलिए पीएम मोदी ने बचत के फॉर्मूले को देश के सामने रखा था। इस बीच हॉर्मुज में तनाव के बादल और घने हो गए। इसराइल में असलाह बारूद हथियार इकट्ठा होने की खबर और अमेरिका इसराइल ईरान का हर बयान बाजार में डर पैदा करता है। इसलिए भारत को संभल कर चलने की जरूरत है। पीएम की अपील का असर सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, विपक्ष के बीच भी अपील पहुंचनी चाहिए। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार भी है और कर्तव्य भी, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ सवाल पूछने तक खत्म हो जाती है? केरलम में सीएम पद के शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होते, हजारों कार्यकर्ता जुटते, जब बड़े बड़े मंच सजे, जब बसों और गाड़ियों के लंबे काफिले निकलते, तो क्या वहां ईंधन नहीं जलता? लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय संकट में सहभागिता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। और इतिहास गवाह है, जब दुनिया ऊर्जा संकट पे होती है तब राष्ट्र की असली पहचान उनकी सियासत से नहीं सामूहिक अनुशासन से होती है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में ईंधन बचत अब राजनीति नहीं राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन चुकी है? आज तक ब्यूरो।

0: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सफलता की ऊंचाई पर संतुलन और धीरज जरूरी है। आकाश कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, बैठने की जगह किसी को नहीं देता। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरीद से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाओ। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी पीए मर्डर केस में सीबीआई को मिली सफलता, यूपी के मुजफ्फरनगर से शूटर राजकुमार गिरफ्तार। और भोपाल के ट्विशिया केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक में बात एक मॉडल की मौत मिस्ट्री पर। भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। भोपाल पुलिस की जांच पर उंगलियां उठ रही है। कारण है भोपाल की हाई प्रोफाइल फैमिली में बहू की रहस्यमय मौत। पूरा मामला भोपाल में उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का है। न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की बहू त्रिशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती मिली। त्रिशा के घर वालों का आरोप है कि मामला सनसनीखेज हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में जुट गई। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या?
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक त्रिशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज त्रिशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख त्रिशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
4: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का। हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: आज त्रिशा इस दुनिया में नहीं है और त्रिशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर है। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने त्रिशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से त्रिशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
5: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो MP के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फेटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं। ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
3: घर वालों के मुताबिक त्रिशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गईं। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही त्रिशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर त्रिशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी त्रिशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले त्रिशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
4: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की। तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरिवाला सिंह ने तेरा हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
3: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
6: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
3: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
2: त्विशा के घर वालों का आरोप है कि चारदीवारी के अंदर हत्या को आत्महत्या का रंग दिया गया। इस आरोप के पीछे घर वालों की दलील है कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। त्विशा के अपराधियों को बचाने के लिए जांच टीम पर जज दबाव बना रही हैं। आरोपियों की जांच करने के बजाय उनके ओहदों की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया है।
3: त्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरिबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
5: ये रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं। जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा? हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
3: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदि बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
6: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ
4: जी। 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
3: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
7: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरीबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि समर्थ और गिरीबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह हैं और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
3: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था। एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्च्यूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
8: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा, छत से
9: शरीर पर भी काफी,
8: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
3: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
2: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है और उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई। योगी कह रहे हैं नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका भी हम अपनाएंगे। अब इसे आप तगड़ी नसीहत योगी आदित्यनाथ की कहें या फिर धमकी, योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बंगाल में भी नई सरकार ने यही फॉर्मूला लागू किया है। देखिए,
3: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज, प्यार से मानो तो ठीक वरना। 2027 का चुनाव, सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों। यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
10: लोग मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
3: इस बयान में सीएम योगी ने तीन बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
11: एक मुख्यमंत्री इस तरीके के जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे।
12: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
13: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
3: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
10: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
3: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
14: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहां गाली दे रहे हैं।
15: देखिए, किसी को रस्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रस्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
16: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
3: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
17: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
18: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
3: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
17: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
3: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब खबर नीट पेपर लीक की, आइए आपको दिखाते हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल। नीट पेपर लीक कांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और ऐसे गुरुओं ने बच्चों का भविष्य खराब किया है।
3: दिल्ली में NSUI के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
19: नीट UG पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSUI का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो NSUI के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। NSUI के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
3: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। CBI ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। CBI की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट UG का लीक पेपर बरामद हुआ।
2: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का महाखतरा। आप देखते रहिए दस्तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5/1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
21: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
22: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
21: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
23: It's your boy,
21: just
23: Jay-Z.
21: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
24: देते। विक्रम!
25: हिंट। बड़े आराम से

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार
3: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है?
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
14: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
15: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है। खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
17: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
18: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
19: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
20: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
21: नहीं,
20: और म्यूचुअल फंड से
21: सही।
22: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
23: Like I said before, we better hold this in.
24: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके। जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।
25: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
15: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
26: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
27: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।

अमेरिका इसराइल फिर ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं, रणनीति बन रही है, ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि फिर से युद्ध संकट के बीच ईरान की तैयारी क्या है? अगर फिर से भीषण हमला हुआ तो ईरान क्या करेगा? क्या अमेरिका इसराइल के हमले से पहले वो बातचीत की मेज पर लौटेगा या फिर से युद्ध का और भी खतरनाक मोर्चा खुलेगा? जंग की शुरुआत से सीजफायर तक ईरान का रुख एक जैसा है। दावा यही है कि हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। एक बार फिर युद्ध टालने के लिए अमेरिका को ईरान की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। दरअसल तेहरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए 5 शर्तें सामने रखी हैं और इन्हीं शर्तों को लेकर दोनों देशों में बातचीत अटकी हुई है। ईरान की मांग है कि लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान खत्म हो, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं, विदेश में जब्त ईरानी संपत्तियां जारी की जाएं, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की संप्रभुता को मान्यता दी जाए। अमेरिका इन शर्तों पर राजी नहीं और ईरान का रुख नरम नहीं पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद ईरान ने कहा है कि दुनिया अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा है कि दुनिया के बदलावों को ईरान ने तेज किया और भविष्य ग्लोबल साउथ का है। ऐसे बयानों से साफ है कि ईरान अपने रुख से पीछे नहीं हट रहा और ऐसे में अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच महायुद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दस्तक में स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और अब खबर महायुद्ध के महाखतरे की। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की संभावना बहुत कम है। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील की शर्तों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अंतिम चेतावनी दे दी। चेतावनी में यही कहा है कि पीस डील की शर्तों पर अगर ईरान राजी नहीं हुआ तो हमला तय। वहीं ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसके सैनिकों ने युद्ध के लिए ट्रिगर पर अपनी उंगलियां रख ली। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान विध्वंसक हमला करेगा। मतलब यही है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और किसी भी समय महायुद्ध ईरान अमेरिका के बीच शुरू हो सकता है।

0: ईरान पर नए हमले की उल्टी गिनती शुरू। ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में बड़ा फैसला। अगले कुछ घंटों में ईरान पर हमला संभव है। इजरायली सेना ने लॉक किए ईरान के टारगेट। अमेरिकी सेना को ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार। दुनिया पर मंडराता महायुद्ध का महाखतरा। पहले अमेरिकी सेना के टॉप अफसरों की इसराइल के टॉप सैन्य कमांडरों के साथ ईरान को लेकर मीटिंग हुई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों की तैयारी को लेकर नेतन्याहू से बातचीत की है। ट्रंप के साथ बातचीत के बाद नेतन्याहू ने यरूशलम में अपने टॉप मंत्रियों और अफसरों के साथ सुरक्षा बैठक बुलाई। वहीं चंद घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर चर्चा होगी। मीटिंग से पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए अपने बारूदी इरादे साफ कर दिए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है, उन्हें बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वक्त बेहद अहम है। ट्रंप की इस चेतावनी को ईरान पर हमले की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप की धमकी से पहले अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। डिफेंस एक्सपर्ट इसे हमले से पहले का रिहर्सल मान रहे हैं। तो ईरान उकसावे वाली कार्रवाई। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति हमले का आदेश दे सकते हैं। हमले की आशंका को देखते हुए ईरानी सेना ने यूएई के बराका परमाणु ठिकाने के साथ साथ सऊदी अरब पर ड्रोन से हमला किया है। यूएई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमले में परमाणु सेंटर की बाउंड्री के करीब एक जनरेटर को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ और न ही कोई रेडियो धर्मी रिसाव हुआ। यूएई के एटमी सेंटर पर हुए हमले की निंदा मिडिल ईस्ट के सभी मुल्कों ने की है, लेकिन ये हमले ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधी चेतावनी है। अगर फिर युद्ध शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट के मुल्क ईरान की हिट लिस्ट पर होंगे। अगर युद्ध छिड़ता है तो उसकी सशस्त्र सेनाएं दुश्मन के लिए नए आश्चर्य लेकर आएंगी। ईरान अपने विरोधियों को जवाब देना बखूबी जानता है। अमेरिका ने यह सीख लिया है कि धमकियां और आर्थिक दबाव ईरान को अपने अधिकारों का पालन करने से नहीं रोक सकते। दरअसल ईरान ने यूएई के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। ईरान का आरोप है कि युद्ध के दौरान यूएई ने अमेरिका और इसराइल के हमलों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, यहां तक कि यूएई ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए थे। ऐसे में यूएई के परमाणु ठिकाने पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। यूएई ने भी ईरान पर पलटवार के संकेत दिए हैं। मतलब यही है कि महायुद्ध का सायरन बजने लगा है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम का दावा है कि अब की बार ईरान के तेल ठिकानों पर हमले तय हैं, यानी खाद द्वीप पर हमले का आदेश ट्रंप दे सकते हैं। ईरान को तब तक चोट पहुंचाई जानी चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता। ईरान की ऊर्जा व्यवस्था उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो मैं ऊर्जा ढांचे को सबसे ऊपर रखूंगा। ईरान समय निकालने और खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की टीम भी मानती है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर अड़ा हुआ है, लिहाजा अब पीस डील की संभावना कम बची है। दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि हालात बहुत नाजुक हैं। ईरान के इरादों को देखते हुए ट्रंप एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। संभव है कि इस बार हमले ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ तेल और गैस के अड्डों पर हों।
1: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We had the other day there was a man that tried to get into the chute. You know, we saw there was a door that was blown to smithereens, and we know everything that's happening. If they ever moved on, and I told them that. If they have send a force over there to try where I see somebody's trying, all we'll do is just hit it with a couple of bombs, and that's going to be the end of that. They won't do it. I said, we have 9 cameras on that site, on those 3 sites, 24 hours a day. We know exactly what's happening.
0: ईरान ने भी अमेरिका के साथ दो दो हाथ की पूरी तैयारी कर रखी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी नहीं हटाई गई, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि घेराबंदी खत्म कर दें इससे पहले कि ओमान सागर उनकी कब्रगाह बन जाए। जितनी लंबी ये नौसैनिक नाकेबंदी चलेगी, दुनिया के देशों को उतना ज्यादा नुकसान होगा। अब अमेरिका को व्यवहार से साबित करना होगा कि वो भरोसेमंद है। हमारी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे बैठी है और साथ ही कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। अल जजीरा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगले 24 से 48 घंटे में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक बार फिर शुरू कर सकता है। इस दावे की बड़ी वजह है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत। आज तक ब्यूरो।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या अगले 48 घंटों में अमेरिका ईरान के बीच छिड़ सकता है महायुद्ध, क्योंकि अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि अगर ईरान को महायुद्ध से बचना है तो अमेरिका की 5 शर्तें ईरान को माननी ही होंगी, वरना तो ईरान हमले झेलने के लिए तैयार रहे। जबकि ईरान एक तरफ तो नए युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, ईरान की महिलाएं भी AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं, और दूसरी तरफ हॉर्मुज में भी ईरान ने अपने जहाजों की सुरक्षा के इंतजाम तगड़े कर दिए। ईरान अमेरिका के किसी भी हमले के लिए पूरी तरह से है तैयार।
0: ईरान के सामने ट्रंप ने रखी 5 शर्तें, आगे क्या होगा? क्या अगले 48 घंटों में छिड़ेगा महायुद्ध? क्या अमेरिका के नए हमले छेड़ने के लिए ईरान तैयार है? महायुद्ध की शुरुआत हॉर्मुज से होगी या ईरान पर जमीनी हमले से? ईरान ने नए हमले के पलटवार के लिए तैयारी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करके आ गए, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम होने के बजाय महायुद्ध के खतरे तक पहुंच रही है। और तो और, अब तक ये भी अंदेशा है कि अगले 48 घंटे में महायुद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पहली बार स्थायी रोक के बजाय 20 साल के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड करने की बात कही। साथ ही ईरान को चेतावनी दी कि उसका समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुल 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान इस युद्ध से बचना चाहता है तो उसे 5 शर्तें माननी होंगी। ईरान अपना सारा संवर्धित यानी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। अमेरिका ईरान को युद्ध या प्रतिबंधों का कोई मुआवजा नहीं देगा। विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा ही वापस किया जाएगा। ईरान लेबनन सहित अन्य मोर्चों पर चल रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी। एक तरफ तो अमेरिका ईरान से 5 शर्तें मनवाने के लिए पूरा दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के हैंडल पर भी युद्ध छेड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी झंडे वाला मध्य पूर्व का एक मैप पोस्ट किया, जिसमें सभी दिशाओं से ईरान में दाखिल होने का निशान दिख रहा है। क्या ये ईरान में चारों तरफ से जमीनी सैन्य आक्रमण है या कुछ और? चूंकि ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने AI से बनाई गई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वो दिखा रहे हैं कि अमेरिकी ड्रोन और लेजर की मदद से समंदर के ऊपर बनराने वाले ईरानी विमान और समंदर का चक्कर लगाने वाली ईरानी बोट नष्ट की जा चुकी हैं। इनके अलावा ट्रंप एक AI जनरेटेड वीडियो में ईरान के विमान को बटन दबाकर उड़ाने की एक्टिंग करते दिख रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच AI युद्ध। अगर ट्रंप ने ईरान पर AI से बनी तस्वीरों और वीडियो से निशाना साधा, तो ईरान ने भी ट्रंप पर फिल्मी तंज कसा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए फिल्म द अप्रेंटिस का एक वीडियो शेयर किया है। ये फिल्म ट्रंप के शुरुआती करियर पर आधारित है। वीडियो में ट्रंप के मेंटर रॉय कोहन जीतने के नियम बताते नजर आ रहे हैं। इसमें कहा गया है, चाहे कुछ भी हो, जीत का दावा करो और कभी हार मत मानो। वीडियो में यह भी कहा गया है कि सफल होने के लिए इंसान को किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार रहना पड़ता है। चूंकि ट्रंप लगातार ईरान पर जीत के दावे कर रहे हैं, लिहाजा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनके ही जीवन पर बनी फिल्म की क्लिप को पोस्ट कर उन्हें बेनकाब करना चाहा है। हुर्मुज पर ईरान ने किया अमेरिकी दावों का खंडन। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर यह दावा किया है कि हुर्मुज जल डबरू मध्य अब IRGC के सैन्य नियंत्रण में है। उसने ये ताजा वीडियो जारी कर दिखाया है कि हुर्मुज में ईरान ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। ईरान का कहना है कि किसी भी तरह की आवाजाही के लिए ईरानी पक्ष यानी सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ तालमेल बैठाना जरूरी होगा। IRGC की नौसेना ने हाल ही में घोषणा की है कि वो हुर्मुज जल डबरू मध्य पर अपने नियंत्रण और अधिकार के दायरे का विस्तार कर रही है। उनका कहना है कि हुर्मुज जल डबरू मध्य अब पूरी तरह से IRGC के सैन्य नियंत्रण में है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि किसी भी सैन्य जहाज या पोत को इस जल डबरू मध्य से गुजरने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मित्र देश के जहाजों और पोतों को तो यहाँ से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन विरोधी देशों के जहाजों को इस जल डबरू मध्य से गुजरने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। पिछले 2-3 दिन में लगभग 30 से 40 जहाज और पोत इस रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर चीनी कंपनियों के थे। समंदर में ईरान का नया टैक्स सिस्टम। अब ईरान का इरादा है कि वो हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले इंटरनेट केबल के बदले एक फीस वसूलेगा। अगर इस फीस को देने से इनकार किया गया तो उसने यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को तबाह करने की धमकी दी है जो इसी इलाके से होकर जाती है। अगर ऐसा हुआ तो बैंक, डिजिटल सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ठप पड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों की सर्विस के ठप होने की नौबत आ सकती है। ईरान की महिलाओं ने उठाई AK-47 असॉल्ट राइफलें। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान में युवा लड़कियों को AK-47 असॉल्ट राइफल जोड़ने और खोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को AK-47 को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया गया। हाल के दिनों में ईरानी सरकारी मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां आम नागरिकों को सैन्य तैयारी और सुरक्षा प्रशिक्षण से जुड़े वीडियो भी जारी कर रही है। इससे पहले ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC ट्रेनर लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आए थे। यानी ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका से टकराने को तो तैयार है, लेकिन अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। खासकर एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर ईरान अपनी नीति और नियत पर अड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के साथ सीज फायर के बीच इसराइल का एक्शन जारी है। जी हां, हमास और हिजबुल्ला के विरुद्ध इसराइल का युद्ध अब और भी अधिक आक्रामक हो गया है। लेबनान में इसराइली एयरफोर्स ने भारी तबाही मचाई, 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ गाजा में हमास का टॉप कमांडर और 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड इज़अल-दीन मारा गया।
3: लेबनान में घमासान, 3 की गई जान। इसराइल की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही। हमास ने माना गाजा में मारा गया उसका टॉप कमांडर। हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की जंग और तेज हो गई है। ईरान के साथ सीजफायर के दौरान इसराइल इन दोनों आतंकी संगठनों से निपटने में जुटा है जो ईरान का साथ देते आए हैं और इसराइल की सरहदों पर मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। लेबनान में इसराइल ने एक बार फिर तबाही मचाई है। इसराइली एयरफोर्स की अलग अलग इलाकों में की गई स्ट्राइक से 3 लोगों की जान चली गई और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये हमले तब हुए हैं जब अमेरिका ये दावा कर चुका है कि उसकी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम 45 दिन बढ़ा दिया गया है। अब अगली सैन्य मीटिंग 29 मई को तय की गई है। सीजफायर बढ़ने के बावजूद इसराइल ने कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और गोलाबारी की। इन हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान के गांव खाली हो रहे हैं। सईदा से बेरूत जाने वाले हाईवे पर बड़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़कर जाते दिखाई दिए हैं। हिजबुल्लाह भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के बुलडोजरों और सैनिकों को निशाना बनाया। साथ ही हदाथा शहर के बाहरी इलाके में मौजूद इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों पर रॉकेट दागे गए। बेका वैली में इजरायल ने 2 एयर स्ट्राइक की। कई जगह खतरे के सायरन की आवाजें सुनी गई और बमों की बरसात से लगी आग और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उधर गाजा में हमास के खिलाफ घमासान तेज हो गया है। इजरायल के दावे के बाद अब हमास ने मान लिया है कि उसकी कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर इस अल दीन अल हद्दाद की मौत हो गई है। उस पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले का

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का स्तर बहुत ही ज्यादा होने वाला है. खुली जगह में ज्यादा देर तक मत रुकिए और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स.
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट.
12: जेके मैक्स.
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स.
14: जेके मैक्स पेंट्स. खुशियों के रंग.
15: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था.
16: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था.
17: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते. म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ.
18: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए. अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
19: नहीं.
18: और म्यूचुअल फंड से
19: सही.
20: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
21: Like I said before, we better hold the sins.
5: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का स्तर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे.
22: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
23: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
24: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
22: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
25: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
23: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
22: जहां खबर वहां खबरदार.
26: In association with
27: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
28: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
29: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए. हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं. हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे. सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है. अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे. प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे. उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है. तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: गौतम अडानी और उनके भतीजे समीर अडानी को बड़ी राहत मिली है। फ्रॉड के अमेरिका में चल रहे केस को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपराधिक मामले को खत्म कर दिया गया है। न्यूयॉर्क से बड़ी खबर आई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने उद्योगपति गौतम अडानी उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। ये 2024 के अंत में मामला था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप ने हमारे देश भारत में सोलर ऊर्जा परियोजना से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए 26.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की योजना बनाई थी और अमेरिकी निवेशकों से ये जानकारी छिपाई थी। ये मामला चल रहा था। अब रोहित शर्मा न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता। रोहित, किस तरह से ये राहत अडानी को मिली?
3: देखिए सर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ दो केसेस जो है उसमें जो है केसेस चल रहे हैं और इसमें से एक में उन्हें जो है जो अभी ओफैक ने जो रिलीज किया है वो उसमें उन्हें राहत मिली है। अबाउट $275 मिलियन का सेटलमेंट किया है अडानी एंटरप्राइज ने और ये पर्टिकुलरली था वायलेशन ऑफ सैंक्शंस टारगेटिंग ईरान। यानी 2023 और 2025 के बीच में, नवंबर 2023 और जून 2025 के बीच में 191 मिलियन वर्थ ऑफ डॉलर्स की शिपमेंट्स जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, वो अडानी ने एक अडानी एंटरप्राइजेस ने एक दुबई बेस्ड ट्रेडर से खरीदी थी जो सैंक्शन था बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस केस में अडानी एंटरप्राइज जो है उनको एक सेटलमेंट करने को मिला है। हालांकि जो कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि इसमें अडानी एंटरप्राइज कहीं पे भी अपनी गलती नहीं मान रहा, लेकिन $275 में सेटलमेंट करके इस केस को बंद करने की घोषणा की है ओफैक ने। और जो दूसरा केस है जिसकी आप बात कर रहे थे उसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा है कि वो देख रहे हैं और शायद उस केस में भी अडानी एंटरप्राइजेस को एक सेटलमेंट और राहत मिल सकती है।
2: बहुत धन्यवाद रोहित। तो एक केस में राहत मिल गई है, दूसरे में राहत मिलने की उम्मीद अडानी को यहां पर है और ये बहुत बड़ी राहत गौतम अडानी और उनके भतीजे समीर अडानी। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, पूरी तरह से बंद किए सभी आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सास जज थी, पति वकील है और भाई भारतीय सेना में मेजर, मगर इसके बावजूद उसने खुद अपने हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा कस लिया, क्योंकि वो एक बहू थी, एक ऐसी बहू जिसकी लाश पिछले 6 दिनों से एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी है। पति फरार है और जज रह चुकी सास को इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि उन्होंने कानून की बहुत सेवा की थी।
2: इस सीसीटीवी कैमरे की घड़ी और तारीख दोनों गलत है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल सही। ये तस्वीर असल में 12 मई की रात 10 बजे के आसपास की है। ये टुशा है, इस घर की बहू, शायद हाथ में रस्सी जैसी कोई चीज ली है। ये सीढ़ी के रास्ते ऊपर छत पर जा रही है। ये उसी कैमरे में कैद दूसरी तस्वीर है। ऊपर सीढ़ी पर ट्यूशा का पति समर्थ उसे सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है, तभी नीचे से जज रह चुकी ट्यूशा की सास ऊपर आती है। हैरान करने वाली बात यह है कि वो सीढ़ी की तरफ ऊपर एक बार भी नहीं देखती, बल्कि सीढ़ी के बराबर वाले कमरे में दाखिल हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक और शख्स भागता हुआ सीढ़ी पर पहुंचता है। कुछ पल बाद ट्यूशा की सास उसी कमरे से बाहर निकलती है, इस बार ऊपर सीढ़ी की तरफ देखती है, पर अब भी वो बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ पल ऊपर देखने के बाद हाथ में शायद पर्स लिए ट्यूशा की जज रह चुकी सास नीचे चली जाती है। इसके बाद ट्यूशा के पति समर्थ सिंह 2 लोगों की मदद से ट्यूशा को उठाकर नीचे ले जाता हुआ कैमरे में कैद हो जाता है। तस्वीर यहीं खत्म हो जाती है और कहानी शुरू। क्या ट्यूशा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली? क्या ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया? या फिर उसके साथ कोई और साजिश हुई? क्यों 6 दिन से मुर्दा घर में है एक बेटी की लाश? ट्यूशा की शादी को बमुश्किल 5 महीने का वक्त ही गुजरा था, लेकिन इन्हीं 5 महीनों में उसकी शादीशुदा जिंदगी ऐसा अजाब बन चुकी थी जिसने आखिरकार ट्यूशा को लील लिया। वो आए दिन अपने मायके फोन कर अपने पति और ससुराल वालों द्वारा खुद को सताए जाने की शिकायतें किया करती थी। 12 मई की रात को भी ट्यूशा ने अपने घर वालों से रोते हुए ऐसी ही दर्द भरी बातें की, लेकिन इससे पहले कि मायके वाले ट्यूशा की शादीशुदा जिंदगी को नॉर्मल करने के लिए कोई असरदार कदम उठा पाते, ट्यूशा के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उसके पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। ट्यूशा की लाश उसके ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली। अब नोएडा से लेकर भोपाल तक अगर कुछ बाकी है तो वो है बेबसी, आंसू, चीखें और अफसोस। नोएडा की रहने वाली ट्यूशा एक बेहद खुशमिजाज लड़की थी। उसने कई अच्छे मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए तो साउथ इंडिया की कई फिल्मों में भी उसे काम करने का मौका मिला। एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उसकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले क्रिमिनल लॉयर और रिटायर्ड जज के बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई। दोनों ही परिवारों की रजामंदी से ट्यूशा की धूमधाम से शादी भी हुई, लेकिन शादी को लेकर ट्यूशा और उसके घर वालों ने जो सपने देखे थे, ट्यूशा की जिंदगी में ठीक उसके उल्टा हुआ। और आखिरकार इस कहानी का अंत फंदे में लटक रही ट्यूशा की लाश की सूरत में सामने आया। ट्यूशा की सास भोपाल में जज के तौर पर काम कर चुकी हैं, जबकि इन दिनों उपभोक्ता फोरम बेंच 2 की अध्यक्ष भी हैं। उनका अलग ही दबदबा है और अब ट्यूशा के घर वालों का इल्जाम है कि उसकी सास का यही दबदबा उन्हें अपनी बेटी के मौत के मामले में इंसाफ हासिल करने के आड़े आ रहा है। ट्यूशा की मौत अफसोसनाक तो है ही, इसे लेकर कई सवाल भी है, उन सवालों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि टुशा की जिंदगी की आखिरी घड़ी में क्या कुछ हो रहा था और उसकी आखिरी बार अपने घर वालों से क्या बातें हुई थी। 31 साल की टुशा के भाई हर्षित शर्मा सेना में मेजर हैं, देश के दुश्मनों से लोहा लेते हैं, लेकिन यहाँ खुद अपनी बहन की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए उन्हें जद्दोजहद करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ खुद वो अपनी बहन की जिंदगी नहीं बचा सके। घर वालों की माने तो टुशा ने मंगलवार 12 मई की रात को उन्हें फोन किया था। उसने रोते हुए कहा था कि उसका पति और उसकी सास उसे पिछले 8 दिनों से लगातार मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उसे छोटी छोटी बात पर लगातार जलील कर रहे हैं, मानसिक तौर पर सताया जा रहा है और अब वो ससुराल छोड़कर घर लौटना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो ससुराल से वापस मायके लौट पाती, उसकी मौत की खबर आ गई। टुशा के माता पिता का कहना है कि वो भी अपनी बेटी के पास जाना चाहते थे, लेकिन तब उन्हें टुशा की सास ने मौसम का बहाना बनाकर वहां आने से रोक दिया था।
3: 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा।
2: टुशा ने अपनी मौत से पहले इसी रात आखिरी बार अपनी माँ से बात की थी। टुशा के घर वालों के मुताबिक उस रोज रात 10:05 पर टुशा ने उन्हें कॉल किया था और कहा था कि वो बहुत परेशान हो चुकी है और अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन उससे और ज्यादा बात होती इससे पहले ही फोन कट गया और बमुश्किल 15 मिनट गुजरते गुजरते टुशा की सास गिरिबाला सिंह का फोन आ गया कि टुशा फंदे से लटक गई थी, वो सांस नहीं ले रही है और वो उसे इलाज के लिए एम्स लेकर जा रहे हैं।
3: हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में। फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
4: टुशा शर्मा का मामला जो है वो देश भर की सुर्खियों में है, लेकिन टुशा के आखिरी पलों में, उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में आखिर क्या कुछ चल रहा था। परिवार की माने तो 12 मई की रात को करीब 10:05 पर टुशा ने अपनी माँ को फोन किया था। इस दौरान फोन कट जाता है क्योंकि अचानक से परिवार के मुताबिक टुशा का पति शायद पीछे से कमरे में आया, उसकी आवाज उन्हें सुनाई दी और उसके बाद फोन कट गया। रात करीब 10:20 के लगभग टुशा के परिवार वालों को सूचना दी जाती है कि टुशा सांस नहीं ले रही है और हम उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। टुशा के परिवार के मुताबिक ये कॉल टुशा की सास गिरिबाला सिंह का था।
2: टुशा की मौत पर ससुराल वालों का अपना अलग ही पक्ष है। उनका कहना है कि रात 9:30 तक पूरा परिवार नीचे बैठकर टीवी देख रहा था। इसके बाद टुशा फोन लेकर छत पर गई। वो अक्सर छत पर जाकर ही बात किया करती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि टुशा छत पर एक्सरसाइज करने वाले रबर के सहारे लटकी हुई है। टुशा की सास और पति ने उसे किसी तरह फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टुशा के घर वाले तो खैर अपनी बेटी की मौत को संदिग्ध मानकर चल ही रहे थे। उनका कहना है कि उनकी बेटी का उसके पति और सास ने कत्ल कर दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जब टुशा के शरीर में मल्टीपल इंजरी यानी चोटों की बात सामने आई तो टुशा के घर वालों की शिकायत को और बल मिल गया। घर वालों की माने तो टुशा के साथ लगातार टॉर्चर किया जा रहा था और ये निशान उसी के सबूत है। फिलहाल हालत यह है कि टुशा की मौत को 6 दिनों का वक्त गुजर चुका है और घर वाले अब उसकी लाश का दोबारा एम्स में पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। कुछ इसी मांग को लेकर टुशा के शव का अब तक अंतिम संस्कार नहीं करवाया जा सका है। शव भोपाल की मोर्चरी में पड़ा है।
5: बॉडी हैंडओवर क्यों लिया जाए जब केस डूबीएस है, जब सरासर पीएम रिपोर्ट जो सजेस्ट कर रही है और जो सामने दिख रहे हैं साक्ष्य वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं सर। उसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं जो मैच नहीं कर रहे, इसलिए हमने PM2 के लिए अप्लाई किया है और PM2 के अप्लाई के लिए पहले कमिश्नर साहब ने उसको ओके कर दिया था, बाद में जो है जुडिशरी उन्होंने बोला कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं था, ये आपको जुडिशरी से परमिशन लेनी। जुडिशरी का मतलब इन्हीं के द्वारा जो सारा सिस्टम है उसी के नीचे हमको भटकना पड़ेगा ताकि ये मैक्सिमम टाइम ले पाएँ और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर पाएँ। तो मेरा चिंता ये है, यही हमारा निवेदन है कि संज्ञान ले सरकार।
2: हालांकि अब ट्विशा की सास ने उसके मायके वालों पर ही संगीन इल्जाम लगाए हैं
6: और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस। ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग। वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर।
2: ट्विशा की मौत के मामले को फंदे वाली बेल्ट की मिस्ट्री ने भी थोड़ा और पेचीदा बना दिया है। असल में ससुराल वालों ने बताया था कि ट्विशा ने एक्सरसाइज वाली इलास्टिक बेल्ट से फंदा लगाया था। ऐसे में भोपाल पुलिस को भी वो बेल्ट जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाना चाहिए था, मगर इल्जाम है कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जिससे बेल्ट के साथ ट्विशा के गले में बने लिगेचर मार्क का मिलान नहीं हो सका। हालांकि पुलिस ने बाद में ये क्लियर किया कि बेल्ट पुलिस ने जब्त कर ली थी, लेकिन उसे पहले जांच के लिए नहीं भिजवाई। पुलिस ने बताया है कि जल्द ही बेल्ट के और लिगेचर मार्क के मिलान की रिपोर्ट भी आने की उम्मीद है। वैसे ट्विशा की मौत को बेशक ससुराल वालों ने सुइसाइड बताया हो, लेकिन ट्विशा के शव के पास पुलिस को अब तक कोई सुइसाइड नोट नहीं मिला है। ये और बात है कि ट्विशा की अपने मायके वालों और दोस्त से हुई चैट और बातचीत की सूरत में कई ऐसे सबूत मौजूद हैं, जिसके सहारे उसके घर वाले ससुराल वालों पर ये गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। अब अपनी दोस्त मीनाक्षी के साथ ट्विशा की लास्ट चैट का ये स्क्रीन ग्रैब देखिए। ट्विशा इस चैट में अपनी दोस्त को ससुराल में किए जा रहे जुल्मो सितम के बारे में बताती हुई दिखाई दे रही है, जबकि उसकी दोस्त मीनाक्षी उसे ढांढस बंधा रही है। ट्विशा बताती है कि मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ, अब बस तुम मत फंसना, जबकि दोस्त उससे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। फिलहाल ट्विशा का परिवार भोपाल में डटा है, वो कटारा हिल्स थाने से लेकर CM हाउस तक के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ट्विशा की रसूखदार सास के आगे पूरा सिस्टम सरेंडर कर चुका है। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले की जांच के लिए ACP की अगुवाई में अलग से SIT बना दी है और ट्विशा की रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया जा चुका है। लेकिन यह भी सच है कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद ही कोर्ट ने उन्हें उम्र का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत भी दे दी है। खास बात यह है कि अपनी अग्रिम जमानत के लिए दी गई अर्जी में ट्विशा की सास और पूर्व जज ने ट्विशा के बारे में हैरान करने वाली बातें कही है। उन्होंने ट्विशा को ड्रग एडिक्ट बताया है और कहा है कि ट्विशा रेगुलर ड्रग लेती थी और जब उसे ड्रग नहीं मिलती थी तो उसके हाथ पांव कांपने लगते थे, उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता था। उन्होंने एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी बहू एक बार घर से 12 घंटे गायब रहे और इसके बारे में उन्हें कोई जवाब नहीं दिया।
6: एक आध दिन ठीक रहती थी लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन दैट इज दो तीन दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स पे थोड़ा शिवरिंग था विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद जैसे 30 तारीख को आई है उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही।
2: हालांकि ट्विशा के घर वाले कह रहे हैं कि अब ससुराल वाले उनकी बेटी की मौत के बाद उसका चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं।
4: ट्विशा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। शादी से पहले ट्विशा साउथ की फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, मिस पुणे रह चुकी थी और कई विज्ञापनों में भी उसने बतौर मॉडल काम किया था। एक महत्वाकांक्षी लड़की जिसके जीवन में कई बड़े सपने थे। ट्विशा की दिसंबर 2025 में जब समर्थ से शादी होती है तब भी वो एक कंपनी में काम कर रही थी। हालांकि इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि संदिग्ध परिस्थितियों में शादी के महज 5 महीने बाद ही ट्विशा की मौत हो जाती है।
2: रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
1: भोपाल में ट्विशा थी तो ग्रेटर नोएडा में मरने वाली बहू का नाम दीपिका है। 1.25 साल पहले ही दीपिका की धूमधाम से शादी हुई थी। घर वालों ने शादी पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे, लेकिन तब भी ससुराल वालों की भूख नहीं मिटी, लिहाजा दीपिका ने छत से छलांग लगा दी। हालांकि भोपाल वाले मामले में जज रही सास को तो जमानत मिल गई, लेकिन ग्रेटर नोएडा के मामले में पति के साथ साथ ससुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शायद ससुर ने कानून की सेवा नहीं की थी।
2: ग्रेटर नोएडा के रहने वाले संजय नागर अभी चंद मिनट पहले ही अपनी बेटी दीपिका के ससुराल से लौटे थे। बेटी ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट करने की शिकायत करती थी, लिहाजा एक बाप को तो अपनी बेटी का घर संभालने जाना ही था। मगर तकदीर का खेल देखिए कि अभी पिता वापस लौटे ही थे कि पीछे से बेटी की मौत की खबर आ गई। ससुराल वालों ने बताया कि दीपिका छत से नीचे गिर गई है, लेकिन अभी इससे भी बुरी खबर उनका इंतजार कर रही है। अस्पताल पहुंचने पर दीपिका के घर वालों को पता चला कि दीपिका अब इस दुनिया में ही नहीं है। तीसरी मंजिल से नीचे गिरने से उसकी मौत हो चुकी है। अब दीपिका के घर वालों का कहना है कि गिरने से लगी चोटों के अलावा दीपिका के शरीर पर इतने चोट के निशान हैं कि उन्हें देखकर साफ है कि दीपिका के साथ उसकी मौत से पहले भी मारपीट और ज्यादती की गई और उसकी जान ले ली गई। शायद उसे छत से नीचे धकेल दिया गया।
7: ससुराल पक्ष तो फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था।
8: आपने क्या दिया था पहले शादी में?
7: 1 स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर फर्स्ट मॉडल 1 स्कॉर्पियो एन हमने भी दी थी और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, पूरा काढ़े पे हमने जन क्या क्या दिया था, हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर।
2: ये मामला ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाना इलाके का। दीपिका के घर वाले कुड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जबकि उसका ससुराल जलपुरा में था। घर वालों का कहना है कि दीपिका के ससुराल वाले लगातार उनसे फॉर्च्यूनर समेत लाखों रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्होंने करीब 1.5 साल पहले दीपिका की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे और दामाद को स्कॉर्पियो दी थी, लेकिन इसके बावजूद बेटी को सताने का सिलसिला जारी था। फिलहाल पुलिस ने दीपिका के ससुर मनोज और पति ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
1: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
10: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
10: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.

0: और यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
2: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
3: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
4: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाया, ओके।
2: शुभेंदु अधिकारी,
1: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
5: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
6: अनुपम मिश्र,
7: अमित भारद्वाज,
8: पीयूष मिश्रा,
9: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: पुणे के पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार, पुणे की मनीषा मंधारे गिरफ्तार, पुणे की मनीषा वाघ मारे गिरफ्तार, नासिक का शुभम खैरनार गिरफ्तार, अहिल्यानगर का धनंजय लोखंडे गिरफ्तार। नीट पेपर लीक का खुलासा भले ही राजस्थान से हुआ हो, लेकिन इसके तार महाराष्ट्र से गहरे जुड़े हैं। इस लीक कांड का किनपिंग कुलकर्णी महाराष्ट्र का है। छात्रों तक पेपर पहुंचाने वाले आरोपी महाराष्ट्र के हैं और पेपर देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने वाले चेहरे महाराष्ट्र के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस केस की तह तक तहकीकात की बात कही थी और अब सीबीआई इस लीक की एक एक जड़ खंगाल रही है।
6: लेते हुए
5: इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए। दोनों पेशे से शिक्षक रहे, दोनों नीट के पेपर तैयार करने वाली प्रक्रिया में सीधे जुड़े रहे, लेकिन अब इस केस में आरोपी है। दिल्ली से गिरफ्तार मनीषा मंधारे नीट 2026 की प्रक्रिया में शामिल थी। एनटीए में उन्हें बतौर विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। ऐसे में बायो के प्रश्नों तक मनीषा मंधारे की सीधी पहुंच थी। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसे ये पता चल रहा है कि मनीषा मंधारे का पेपर लीक वाला पैटर्न भी ठीक वैसा ही था जैसे पहले गिरफ्तार हुए पीवी कुलकर्णी का। एग्जाम से ठीक पहले मनीषा मंधारे ने भी पुणे में छात्रों की स्पेशल कोचिंग क्लासेस ली, जिसमें छात्रों को बायो के प्रश्न बताए और नोटबुक में सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए। जो प्रश्न और उत्तर लिखवाए गए नीट पेपर में हूबहू वही सवाल आए। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही आरोप पीवी कुलकर्णी पर भी है कि उन्होंने मनीषा बाघमारे के साथ मिलकर परीक्षा से पहले छात्रों से मॉक सेशन कराए।
7: आपको
5: अब जरा आपको देश के सबसे बड़े पेपर लीक कांड की कड़ियां बताते हैं। ये बताते हैं कि इस पेपर लीक की पूरी कहानी में किसका क्या किरदार रहा। पीवी कुलकर्णी ने केमिस्ट्री का पेपर सेट किया, मनीषा मंधारे ने बायोलॉजी का पेपर सेट किया, दोनों ने अपने अपने छात्रों से उन्हीं सवालों के मॉक टेस्ट कराए। कुलकर्णी और मनीषा दोनों के जरिए सवाल मनीषा वाघमारे तक पहुंचे। वाघमारे ने ही दोनों प्रोफेसरों के साथ मिलकर छात्रों की परीक्षा की तैयारी करवाई। मनीषा वाघमारे से पेपर धनंजय लोखंडे और फिर शुभम खैरनार तक पहुंचता है। शुभम खैरनार से पेपर गुरुग्राम में यश यादव और राजस्थान के बिवाल परिवार तक पहुंचता है।
7: पूरी सर्कल समझिए, पूरा ग्रिड समझिए। पीवी कुलकर्णी पेपर सेट करते हैं, मनीषा वाघमारे के टच में आते हैं, वो मनीषा वाघमारे को सवाल बताते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सवाल बताते हैं। मनीषा वाघमारे स्टूडेंट्स जमा कर लाती है। मनीषा वाघमारे धनंजय लोखंडे को वो पेपर देती है, धनंजय लोखंडे शुभम खैरनार को वो पेपर देता है, शुभम खैरनार यश यादव को गुरुग्राम में पेपर देता है और यश यादव से राजस्थान जयपुर का बिवल परिवार ये पेपर लेता है। और उसके बाद बिवल परिवार की जांच जब शुरू होती है तब नीट पेपर लीक का पूरा खुलासा हुआ, इसीलिए किंग पिन पीवी कुलकर्णी को कहा जा रहा है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर मां का भरोसा प्यार से परोसा।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले अमित शाह, नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरीद से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: नीट पेपरली केस में 10वीं गिरफ्तारी, सीबीआई ने कोचिंग मालिक प्रोफेसर शिवराज को लातूर से पकड़ा, आरोपी महाराष्ट्र में केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर का मालिक है। महाराष्ट्र में अकोला में नीट पेपरली मामले में विरोध प्रदर्शन तेज हुए, मनसे कार्यकर्ताओं ने आरसीसी कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर शिवराज के पोस्टर पर काली स्याही पोती। नीट पेपरली मामले में महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान, बोले मास्टरमाइंड शिवराज और अन्य आरोपियों के तार बड़े बड़े राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक के विवाद के बाद अब महाराष्ट्र के सीटी 2025-26 के नतीजों पर भी उठे हैं सवाल, हालांकि महाराष्ट्र सीटी सेल ने सोशल मीडिया पर वायरल फर्जीवाड़े के दावों को खारिज किया। पालघर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बरातियों से भरे टेम्पो पर पलट गया कंटेनर, 13 की मौत हुई, 25 घायल हुए। महाराष्ट्र के वाशिम में दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर 20 लाख रुपए की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पास फायरिंग हुई, अवैध कारोबार को लेकर दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में, गैंगवार से इलाके में दहशत है, 6 की गिरफ्तारी की गई। नागपुर में महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, अमरावती में दफन युवती का शव दोबारा से निकाला गया, गला दबाने की आशंका के बीच जांच तेज। गुजरात के गिर सोमनाथ में भीषण सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार की टक्कर से पिता पुत्र की मौत हुई, मां और भतीजा गंभीर रूप से घायल हुए। जामनगर में इंस्टाग्राम हनी ट्रैप का भांडाफोड़, युवती समेत 5 की गिरफ्तारी, कई शहरों में 7 से ज्यादा लोगों को बनाया गया शिकार। वेलकम टू द जंगल का धमाकेदार टाइटल ट्रैक आउट हुआ है, गाने में दिखी सितारों की भीड़, फिल्म 26 जून को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। स्पोर्ट्स ड्रामा पैडी का ट्रेलर रिलीज किया गया, क्रिकेट से लेकर पहलवानी तक में रामचरण बने महारथी, एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी किया कमाल। कॉमेडी और मेलोड्रामा से भरपूर रजनी की बारात का ट्रेलर जारी किया गया, उल्का गुप्ता की नए अंदाज में वापसी, 29 मई को फिल्म रिलीज की जाएगी। कन्नड़ एक्शन ड्रामा बेल का टीजर आउट किया गया, शिव राजकुमार का दमदार लुक भी जारी, स्वैग और स्टाइल जीत रहा है फैंस का दिल। सिंघानी सिंह के नए सॉन्ग जवानी राखी का फर्स्ट लुक आउट हुआ, पूरा गाना 6 जून को हनी सिंह के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक केस की जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने महाराष्ट्र से आज एक और अहम किरदार को गिरफ्तार कर लिया है। लातूर, नांदेड़ और संभाजीनगर में नीट की तैयारी करने वाली, कोचिंग चलाने वाले शिवराज रघुनाथ को हिरासत में लिया गया और सीबीआई ने पूछताछ की है। ऐसी खबरें हैं कि लीक कांड में शिवराज एनटीए के सरकारी कर्मचारियों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल था।
2: नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से कई किरदार सामने आ चुके हैं। फिलहाल लातूर से आरसीसी के नाम से कोचिंग क्लास चलाने वाला शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर नीट केस का सबसे नया किरदार है। सीबीआई की गिरफ्त में आया शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर पर आरोप है कि इस कोचिंग माफिया ने नीट के 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। शिवराज मोटेगांवकर का टर्नओवर करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा का है। सीबीआई की 10 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान शिवराज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वहीं पेपर लीक के मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी से भी इसके संबंधों का खुलासा हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को 9 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। शिवराज पर आरोप है कि उसने नीट यूजी परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र और उनके उत्तर परीक्षा से करीब एक हफ्ते पहले यानी 23 अप्रैल को हासिल कर लिए थे। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि आरोपी ने परीक्षा खत्म होने के बाद लीक हुए पेपर को नष्ट कर दिया और इस तरह उसने सबूतों को मिटा दिया। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर के मोबाइल फोन में भी लीक हुए प्रश्न मिले हैं। शिवराज ने लीक हुए प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी विवेक पाटिल के साथ कई लोगों को उपलब्ध कराई।
3: नीट पेपर लीक स्कैम में अब लातूर का बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि लातूर के शिवराज मोटेगांवकर, जिनका एक आरसीसी यानी कि कोचिंग क्लासेस था, उन्हें लगभग 8 से 10 घंटे उनकी इंक्वायरी हुई, क्वेश्चनिंग हुई और उसी के बाद पुणे के इस सीबीआई दफ्तर में लाया गया। यहीं पूरी क्वेश्चनिंग की गई और बाद में उन्हें अब हिरासत में लिया गया है। थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में उनकी पेशी होगी, सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है दिल्ली में वहां उनकी पेशी होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं। और अभी तक मोटेगांवकर को 5 अहम ग्राउंड्स पर अरेस्ट दिखाया गया है।
2: लातूर में आरसीसी क्लासेस का संचालक शिवराज मोटेगांवकर खुद केमिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रोफेसर है। उसकी कोचिंग में 25,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, जिसमें छात्रों से सालाना 50,000 तक फीस ली जाती है। लातूर के साथ ही नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर में भी आरसीसी क्लासेस की शाखाएं हैं। आज तक को सीबीआई के रिमांड पेपर मिले हैं, जिससे खुलासा हुआ है कि मोटेगांवकर एनटीए से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के साथ आपराधिक साजिश में शामिल था। इसी महीने हुई 3 तारीख को नीट एग्जाम के बाद भी शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला था।
4: नीट 2026 आत्ताच पेपर झाला, माझ्यासोबत प्रणिती आहे, तिने आत्ताच पेपर देऊन आला। प्रणिती, आरसीसी मॉक मधून आरसीसी टेस्ट मधून क्वेश्चन आले,
5: त्याच्या बाहेर क्वेश्चन आलाच ना,
4: तुम्ही खुश आहात आरसीसीला?
5: हो,
4: खरंच खुश आहात। बायोलॉजी काय म्हणते?
5: सगळं एनसीआरटी बेस मॉक टेस्ट मध्ये जे विचारलं ते चालू।
4: आपल्या मॉक पेस्ट सोपं होतं का अवघड होतं?
5: सोपं।
4: वा छान। आणि माझ्या तुझं नाव ताई? ऋतुजा पण आहे। ऋतू, ऋतुजा बेटा, कसा गेला पेपर तुला केमिस्ट्री फिजिक्स बायो?
6: खूप छान गेला सर। आणि तुम्ही जे 100 क्वेश्चन दिले होते ना, त्या 100 क्वेश्चन मधून मोस्ट ऑफ द त्याच्यामध्ये आले होते।
2: इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक पेरेंट्स ने लातूर के एसपी ऑफिस में मोटेगांवकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीबीआई अब शिवराज से उनके पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। नीट लीक केस में लगातार हो रहे खुलासे से छात्रों में काफी आक्रोश है। नांदेड़ में नाराज छात्रों ने स्याही फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी के बाद नांदेड़ में मोटेगांवकर की कोचिंग क्लासेस की ब्रांच को बंद कर दिया गया है। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र से लीक कांड के और किरदार भी सामने आने वाले हैं?
7: प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर, जो कि आरसीसी कोचिंग क्लास चलाते थे लातूर में, इस क्लास की कुल 9 ब्रांचेस थी पूरे महाराष्ट्र में। और आपको बता दें, 10 बच्चों से शुरू हुई ये कोचिंग क्लास, जो 1999 में शुरू हुई थी, अब जाकर 20-25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इन क्लासेस में पढ़ते थे, जहां पर वो सीटी, नीट और जेईई की तैयारी करने आते थे। 100 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर था आरसीसी कोचिंग क्लास का। शिवराज मोटेगांवकर पर शक सीबीआई को तब हुआ जब ये पता चला कि उन्होंने जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे, वही क्वेश्चन नीट मई 2026 के क्वेश्चन पेपर में भी आए थे। और इसके बाद जांच शुरू हुई और फिर से उनके दफ्तर की छापेमारी की गई। फिर कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो संदिग्ध थे। उनका पीवी कुलकर्णी, पूर्व में जो प्रोफेसर, केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी अरेस्ट हुए हैं, उन्हें भी वो करीब से जानते थे। पीवी कुलकर्णी कुछ वक्त के लिए मोटेगांवकर के साथ काम भी कर चुके थे, इसीलिए मोटेगांवकर को अरेस्ट किया गया और उन्हें अब सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। और अब ये पता लगाने की कोशिश चल रही है कि मोटेगांवकर ने किन किन लोगों को ये पेपर दिया था। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: नीट पेपर लीक मामले में शिवसेना कोटे से मंत्री संजय शिरसाट ने बड़ा आरोप लगा दिया है। शिरसाट का आरोप यह है कि इस पूरे घोटाले के तार जुड़े हैं कई बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ। उन्होंने कहा कि सरकार सभी आरोपियों की संपत्तियों को तुरंत जब्त करे।
8: क्या महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री विभाग जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है।
9: देखो होम मिनिस्ट्री कोई फेल हुआ नहीं, आप बात एक समझ लो कि ये जो पेपर फूटी का जो सामने आया है वो पहली बार नहीं है, हमेशा ऐसा होता है और इसके पीछे एक रैकेट काम करता है, पूरी टीम है ये। ये हमारे माटेगांवकर तो उन्होंने खुलेआम कहा था क्लास में कि मैं जो ये क्वेश्चन बोल रहा हूं यही पेपर में आने वाले, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मतलब इन्होंने सोची साजिश, ये साजिश की है और उसके वजह से ही आज 22-23 लाख बच्चों को उसका भुगतान करना पड़ रहा है, उनके ऊपर ये संकट ये लोगों की वजह से है। ये जो क्लास चलाने वाले लोग हैं ना, इनका हर कोई पॉलिटिकल लोगों से कनेक्शन रहता है अच्छे तरीके से, कैसे हो क्या हो मैं तुम्हारा चाहता हूं, मैं तुम्हारा भक्त हूं, ये भी कोई बाबा लोगों से कम नहीं है।
8: यही साठगांठ उन्हें बचा रही थी अब तक,
9: यही साठगांठ की वजह से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जरूर जरूर मिलता है ऐसा। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे बर्थडे को होल्डिंग लगा देंगे, कोई जाहिरात दे देंगे, लगता है बाबा ठीक है ये भी सपोर्ट में है, लेकिन उसके वजह से बच्चों का कितना लॉस होता है ये कभी किसी ने सोचा नहीं। इसलिए अब इनको अटक होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए और इनके जो भी कुछ कारनामे वो सब सामने आना चाहिए।
8: सर एक बड़ी बात कही आपने, राजनीतिक संबंध होते हैं ऐसे लोगों के, कौन सी ऐसी हस्तियां हैं, कौन से ऐसे चेहरे, क्योंकि अमित देशमुख जो कांग्रेस के विधायक है, विलासराव देशमुख पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे, कौन है इससे जुड़ा हुआ?
9: अरे बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसा, अब हर किसी का नाम लेना उचित नहीं है, आप देखेंगे ना किसी की जाहिरात में इनके फोटो रहते हैं सब लोगों के, ये क्लास वालों के फोटो तो रहते ही रहते हैं, नहीं तो वो क्लास में बुला के या तो बच्चों को कोई प्रेजेंट देते होगा तो उनकी फोटो छाप निकाल लेते और बड़ी जाहिरात कर देते।
0: नीट पेपर लीक केस के बाद अब महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी MHCET 2025-26 के नतीजों को लेकर भी विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने कुछ आंकड़े वाले चौंकाने वाले आंकड़े जारी कर दिए हुए हैं और फर्जीवाड़े के संकेत भी दिए हैं। हालांकि महाराष्ट्र सीईटी सेल के आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आ चुके हैं, उन्होंने साफ कहा है आरोपों को खारिज करते हुए कि उम्मीदवारों की श्रेणियां कक्षा 10 और 12वीं के अंक और संबंधित सीईटी परसेंटाइल स्कोर किसी भी प्रमाणिक सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, इसीलिए छात्र और अभिभावक वायरल भ्रामक तस्वीरों पर भरोसा बिल्कुल न करें।
10: महाराष्ट्र सीईटी की सीईटी कमीशन ने टॉप 20 जो बच्चे सामने आए हैं उनकी सूची डिक्लेयर की है और इस सूची का अभ्यास करने के बाद, अध्ययन करने के बाद बहुत ही अफसोसजनक और गंभीर बातें सामने आई हैं कि इनमें से कुछ विद्यार्थियों के 12वीं और 10वीं के मार्क्स हमने देखे पीसीएम के, तो उसमें उनको 40-45% मार्क मिले हैं। जिस बच्चे को 40-45% मार्क पीसीएम में 10वीं और 12वीं में लगातार मिल रहे हैं, वही बच्चे को MHCET में 100% मार्क कैसे मिल सकते हैं, 100% मार्क? इसका जवाब अभी राज्य के उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल जी ने देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।
8: नीट के साथ साथ महाराष्ट्र की जो सीईटी की एग्जाम होती है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। कुछ 7 लोग टॉपर लिस्ट में आए हैं जिन्हें 100% मिला है, लेकिन उनके 10वीं या 12वीं के मार्क देखे जाए तो वो लगभग 35-40% के आसपास है। तो अब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, दिल्ली से सवाल उठाया जा रहा है, क्या सीईटी में ऐसी धांधली नजर आ रही है?
9: देखिए इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर ऐसा होगा, इतना एक साल में ही आदमी इतना अप होता है ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, 35-40% वाला 100% तक जाता है, ये तो एक अजूबा हो सकता है, इसलिए अगर किसी ने मांग की तो उसकी जांच होना चाहिए।
8: नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और इसके तार अब महाराष्ट्र से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावन ने एक और बड़ा दावा किया है MHCET को लेकर, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के 2025 और 26 के बीटेक के टॉपर की जो मेरिट लिस्ट है वो एक एक्सपोस्ट पर पोस्ट की गई थी और उसके आधार पर उन्होंने आरोप किया है कि पहले 8 विद्यार्थियों को 100% मिले हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं में 35 से 45% मार्क्स मिले थे, यानी इसमें भी कथित घोटाला हो सकता है ऐसा दावा कांग्रेस कर रही है। हम आपको दिखा दे कि असलियत क्या है। यहां पे देखिए सीटी सेल महाराष्ट्र जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम अगर जाते हैं और यहां पर मैं आपको दिखा दूं ये कैप 2025-26 ईयर में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बीई और बीटेक का जो सेक्शन है उसे खोलते ही दो तरह की मेरिट लिस्ट सामने आती है, एक फाइनल मेरिट लिस्ट है और एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। जिस ट्वीट को लेकर बवाल खड़ा हुआ है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और उसे खोलने पर हम साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कुल मिलाकर 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिनको 100% पीसीएम में मार्क्स मिले हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है जब उन्हें एचएससी यानी 12वीं कक्षा में किसी को 51, किसी को 85, किसी को 55, किसी को 89 पीसीएम में परसेंटेज मिले हो और एक साल में ऐसा क्या हो जाता है कि उन्हें 100% मिलते हैं, यानी क्या एमएचसीटी में भी घोटाला है। अब इस बारे में हमने जब सीटी सेल महाराष्ट्र के कमिश्नर और उनके ऑफिशियल से बात की तो हमें ये जानकारी मिली कि जो लिस्ट ट्वीट की गई है और जो लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है उसमें काफी हद तक सिमिलैरिटी नहीं है। सीटी सेल महाराष्ट्र इसे सिरे से नकार रहा है, हालांकि वो आगे जाकर इसको अधिकृत तौर पर भी उसकी सफाई देने वाले हैं, हम वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तब तक नीट के तार जो महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अब एमएससीटी महाराष्ट्र की परीक्षाओं में क्या धांधली हो रही है ये सवाल सामने आ रहा है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: ईरान अमेरिका युद्ध से आम से लेकर खास लोग तक प्रभावित हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उनका युद्ध से निजी तौर पर करोड़ों का नुकसान हुआ है।
11: मैं शुगर से डिटर्जेंट बनाता हूं, मेरी हाथ का मैं नहीं देखता, मेरी बहू देखती है। तो मेरे 100 कंटेनर अमेरिका में जाते थे, जैसे लड़ाई शुरू हुई कंटेनर पूरे जाना बंद हो गए तो बिजनेस चौपट हो गया। तो उसने फिर मार्केट में देना शुरू किया, फिर स्ट्रगल किया, चालू किया। फिर एक मेरा लड़का देखता था वो यहां से केले बेचता था, ईरान से एप्पल लाता था, तो पच्छा मिल रहा था उसको, चल रहा था। एक दिन 200 कंटेनर एप्पल चढ़ गए और 400 कंटेनर केले चढ़ गए। इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देते, वो मुझे लड़का बोला कि भैया बाबा मेरा बहुत नुकसान, मैं चिंता मत कर और काम कर, हो जाएगा। द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर मैदान छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। और लाइफ इज ए गेम ऑफ स्ट्रगल, इसलिए निराश मत हो जाइए, चलते रहिए।
0: मुंबई का देवनार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस साल के आखिरी तक शुरू हो जाएगा और बीएमसी के डंपिंग ग्राउंड पर बना यह पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है। यहां मुंबई में हर दिन निकलने वाली 600 टन कचरे को प्रोसेस करके 7-8 एमडब्ल्यू बिजली बना दी जाएगी और यह प्रोजेक्ट 82% पूरा किया जा चुका है।
12: इस वक्त हम मुंबई के पास देवनार डंपिंग ग्राउंड में, जैसे आप जानते हैं कि मुंबई का जो सारा वेस्ट है वो यहीं पर इस देवनार डंपिंग ग्राउंड में आता है। तकरीबन 7000 टन कचरा हर रोज़ मुंबई में जनरेट होता है, उतना ही डेब्री और बाकी जो मटेरियल है वो जनरेट होता है। इस पूरे कचरे के साथ क्या किया जाए, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग अलग इनिशिएटिव इस वक्त ले रही है, जिसमें से एक है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो कि इस ही देवनार डंपिंग ग्राउंड में बन रहा है। ये प्लांट जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, तकरीबन 82% वर्क जो है इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है। 2026 खत्म होते होते ये प्लांट जो है ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अभिजीत दत्ता जुड़ रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं रामकी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस से। सर, ये जानना चाहेंगे कि कितना टन कचरा जो है इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में आप रिसाइकल करेंगे और कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्लान है।
13: नमस्ते, यहाँ पे 600 टन पर डे कचरा हम इसको प्रोसेस करेंगे।
12: सॉलिड वेस्ट होगा फ्रेश,
13: सॉलिड फ्रेश वेस्ट म्यूनसिपल सॉलिड फ्रेश वेस्ट हम लोग लेंगे। और आप देख रहे हैं कि सामने जो बड़ा वाला जो शेड है उस शेड में हम रिसीव करेंगे, उसके बाद वहाँ पे प्री प्रोसेस करेंगे, तो जो ड्राई फ्रैक्शन है वो हमारा आ जाएगा ये MSW पीट।
12: ये जो प्री आपने बताया उसमें आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर ऐसा वेस्ट मिलता भी है जिसमें थोड़ा मॉइस्ट है या वेट वेस्ट है तो वो भी आप उसको ड्राई वेस्ट करके उसके बाद उसको पिकअप किया जाए।
13: हम वहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेट करके जो कम्बस्टेबल है उसको हम बॉयलर में कम्बस्टेबल पार्ट को हम वहाँ पे इंसिनरेट करेंगे,
12: ठीक
13: वहाँ पे जलाएंगे। तो वो जो आप

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तान कर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरीद से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग।

प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे इंडिया बिजनेस एंड रिसर्च समिट का उद्घाटन किया। नॉर्वे के दिग्गज सीईओस के साथ बड़ी बैठक। बिजनेस समिट में बोले प्रधानमंत्री, 12 साल के बाद बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 32वां वैश्विक सम्मान जो देश के नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शिरकत की। द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन किया गया। नॉर्वे में सबसे बड़े सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताया। बोले 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है ये। बस्तर में गृहमंत्री अमित शाह का विकास मॉडल। नक्सल मुक्त बस्तर की तकदीर बदलने का दिया गया भरोसा। बोले सरकारी नौकरी में भी आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले गृहमंत्री अमित शाह, 31 मार्च के बाद बस्तर में आजादी का सूर्योदय भारत में खत्म हो चुका है। नक्सलवाद अब अध्याय की शुरुआत। गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के दौरान जब सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया गया, महिलाओं से बातचीत भी की गई। जगदलपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शहीदों के परिजनों और जवानों, छत्तीसगढ़ के पुलिस, नक्सल पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। जगदलपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, जवानों का त्याग कभी भी बेकार नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान रायपुर में 400 डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स गाड़ियां और 33 विधा मोबाइल फॉरेंसिक लैब को गृहमंत्री शाह ने हरी झंडी दिखाई। राज्यों को मिलेगी विकास की रफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी ने पहली बार जनता दरबार का आयोजन किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक में सीधे सुनी आम लोगों की समस्याएं। शिवेंद्र अधिकारी की दूसरी कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। 20 लाख कर्मचारियों को मिला तोहफा। 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। शिवेंद्र अधिकारी ने सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को 1 जून से 3,000 रुपए बसों में मुफ्त यात्रा का भी ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के मदरसों पर सीएम शुभेंदु ने कसा है शिकंजा। धर्म आधारित योजनाओं पर लगाई गई पाबंदी। सरकार 1 जून से इमामों और पुजारियों को मिलने वाले धार्मिक भत्ते को भी बंद करेगी। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में सीएम शुभेंदु की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले संस्थागत भ्रष्टाचार खत्म करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जांच कमेटी आयोग का गठन कर दिया है। कोलकाता के पार्क सर्कस पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी आदमी का हाथ पुलिस पर उठा तो मुझसे खराब कोई नहीं होगा। शुभेंदु ने पीए की हत्या के केस में बंगाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। शूटर राजकुमार मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया। फलता में पुनर्मतदान में जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तारी से छूटा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी उम्मीदवार को राहत दे दी है। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा ने कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पेशी के दौरान परिवार से मिलकर भावुक हो गए थे। पंजाब सरकार के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। 1 जून को होगी दोबारा से पेशी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने यूपीएससी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। का पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं का भविष्य सुरक्षित। यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले सड़कें चलने के लिए हैं, इसीलिए सड़कों पर नमाज बिल्कुल नहीं। नमाजियों को सीएम योगी की सलाह। कहा, यदि धार्मिक स्थानों पर संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़िए। निर्देश का पालन न करने वालों को सख्त चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी ने बयान पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने कहा, मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते। सभी धर्मों के जुलूस और कार्यक्रमों पर भी समान नियम लागू होने चाहिए। सीएम योगी के आदेश का समर्थन करते हुए ईद से पहले बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की लोगों से अपील। बोले सड़क पर नमाज न पढ़ें, शिफ्ट में अदा करें नमाज और खुले में कुर्बानी से बचें। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए के चेयरपर्सन तलब। संसदीय समिति ने 21 मई तक मांगी है जांच रिपोर्ट। नीट पेपर लीक केस में 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने कोचिंग मालिक प्रोफेसर शिवराज को लातूर से पकड़ा। आरोपी महाराष्ट्र में केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर है। महाराष्ट्र के अकोला में नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। मनसे कार्यकर्ताओं ने आरसीसी कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर शिवराज के पोस्टर्स पर कालिख पोती। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान। बोले मास्टरमाइंड शिवराज और अन्य आरोपियों के तार बड़े राजनीतिक नेताओं से जुड़े हैं। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया। 336 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे गए पत्र। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार। 155 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर भड़के अरविंद केजरीवाल। बोले उसने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, इसीलिए अरेस्ट कर लिया। दिल्ली में मंडे मेट्रो अभियान की शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर डीएमआरसी की बड़ी पहल शुरू हुई है। डीएमआरसी की ओर से हर सोमवार को चलाई जाएगी 6 अतिरिक्त मेट्रो। दिन भर में 24 फेरे अतिरिक्त लगेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे पहल के तहत मेट्रो से सफर किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, मेट्रो सफर से ईंधन बचाने के साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। ईंधन बचाने की पहल को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए। मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी मेट्रो ट्रेन से यात्रा की।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों से मेट्रो में सफर करने की अपील की। डीएमआरसी वाइस चेयरपर्सन कुलजीत भी साथ में मौजूद थे। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की अपील के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी अपना काफिला छोड़ा, साइकिल चलाकर पहुंचे सचिवालय। गाजीपुर में पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी नेताओं ने पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के बीच तेल आपूर्ति को लेकर इंडियन ऑयल ने जताया भरोसा, कहा सभी पेट्रोल पंपों पर सामान्य सप्लाई जारी है, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई। ऊर्जा संकट के बीच दिल्ली के राजेश चौरंगी ने कार पूलिंग को बनाया है मिशन, रूट का स्टिकर लगाकर रोज राहगीरों को देते हैं मुफ्त लिफ्ट, ईंधन बचाने का संदेश। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का कानपुर में विरोध, वकीलों ने काम बंद करके प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अधिवक्ताओं ने रोष दिखाया, देश भर में हड़ताल की चेतावनी। अमृतसर में सड़क पर बहाया गया हजारों लीटर दूध, मिलावटखोरी के खिलाफ डीसी दफ्तर के बाहर किसानों और दूधिया यूनियन का हंगामा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एंटी टेरर मॉक ड्रिल का सफल अभ्यास, दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ एनएसजी समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें हिस्सा लिया। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में महेंद्र सिंह धोनी ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ, जवानों के साथ फिटनेस पर भी बात की। 56 साल की उम्र में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े नेपाल के कामी रिता शेरपा, खुद का ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास। वहीं महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11वीं बार सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे याप्या शेरपा। उत्तराखंड के चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले गए, भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों में देखा गया भारी उत्साह। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान 45 डिग्री तक बढ़ने और तेज धूप की चेतावनी दी। राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप से लोगों को बढ़ी गई है परेशानी, लोगों से दोपहर में जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की अपील। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है, नॉर्थ ईस्ट में 23 मई तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार। वाराणसी में भीषण गर्मी का कहर, 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वाराणसी में चिलचिलाती धूप के कारण सड़कों पर पसरा है सन्नाटा, गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन ने सड़कों पर करवाया पानी का छिड़काव। धौलपुर में भी तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा है, गर्म हवाओं और बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में अब तक का सबसे गर्म दिन, पारा 45 डिग्री के पार, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ जाएगा। प्रयागराज के सिविल लाइंस में होटल में लगी थी भीषण आग, ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद लपटों से मचा था हड़कंप। इंदौर में धू धू कर जला टेंट हाउस का गोदाम, दूर तक छाए धुएं के गुबार, मौके पर मच गई थी अफरा तफरी। एमपी के ग्वालियर में फोमो कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगी, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया था काबू। पटना के किराना गोदाम में भीषण आग लगी, 4 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई थी आग, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में 14 महीने पहले हुई थी शादी, दर्दनाक घटना में तब्दील हुई, विवाहिता ने छत से कूदकर जान दी, परिजनों ने दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए, पति और ससुर गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा, गलत लेन में जाकर ट्रक से टकरा गई मैजिक, मौके पर 10 लोगों की मौत हुई, 4 की हालत गंभीर, सीट के बीच में कई लोगों के फंसने से गई जान। लखीमपुर सड़क हादसे में सीएम योगी ने जताया है दुख, मृतकों के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। सोनीपत में दो पक्षों के बीच मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ, कुछ युवकों ने महिलाओं को लाठी डंडों से जमकर पीटा। अलवर में दिनदहाड़े कुरियर बॉय बनकर फ्लैट में घुस गए थे बदमाश, लूटपाट की, चाकू की नोक पर महिलाओं और मासूमों को बनाया था बंधक, जेवर और नकदी लेकर फरार। अमृतसर पुलिस की ड्रग तस्करों के बड़े गिरोह के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, मौके से 7 पिस्तौल और 2 किलो हेरोइन बरामद की गई, पाकिस्तानी तस्करों से जुड़े हुए हैं तार। महाराष्ट्र के वाशिम में दिनदहाड़े कार का शीशा तोड़कर 20 लाख रुपए की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के पास फायरिंग, अवैध कारोबार को लेकर 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में गैंग वॉर की आशंका, 6 की गिरफ्तारी। नागपुर में महिला की संदिग्ध मौत का मामला, अमरावती में दफन युवती का शव बाहर निकाला गया, गला दबने की आशंका। गुजरात के गिर सोमनाथ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार में पिता और पुत्र की मौत हुई है, मां और भतीजा गंभीर रूप से घायल। जामनगर में इंस्टाग्राम हनी ट्रैप का भांडाफोड़ हुआ, युवती समेत 5 की गिरफ्तारी, कई शहरों में 7 से ज्यादा लोगों को बनाया था शिकार। वेलकम टू द जंगल का धमाकेदार टाइटल ट्रैक आउट हुआ, गाने में दिखी सितारों की भीड़, फिल्म 26 जून को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। बॉक्स ड्रामा पैडी का ट्रेलर रिलीज किया गया, क्रिकेट से लेकर पहलवानी तक में रामचरण बने हैं महारथी, एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी दिखाया कमाल।
कॉमेडी और मेलो ड्रामा से भरपूर रजनी की बारात का ट्रेलर जारी किया गया। उल्का गुप्ता की नए अंदाज में वापसी, 29 मई को फिल्म को रिलीज किया जाएगा। कन्नड़ एक्शन ड्रामा बेल का टीजर आउट को किया गया। शिव राजकुमार का दमदार लुक भी नजर आया। सिंघानी सिंह के नए सॉन्ग जवानी राखी का फर्स्ट लुक आउट हुआ। पूरा गाना 6 जून को हनी सिंह के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के एआई हेड ने 12 से 18 महीनों में एआई के असर से ऑफिस जॉब्स खत्म होने की आशंका जताई है। कानून, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोडिंग जैसे काम तेजी से ऑटोमेटिक होने का दावा किया गया। मुंबई में मारुति टाटा होंडा ने ग्राहकों को लुभाने के लिए एसयूवीज पर तगड़े डिस्काउंट्स ऑफर दिए हैं। ब्रेजा, क्रेटा और नेक्सॉन जैसे पॉपुलर मॉडल्स पर ग्राहकों को भारी छूट का ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 3 दिनों में सीएनजी की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी की है। कुल 3 रुपए किलो के इजाफे के बाद दिल्ली में सीएनजी पहली बार पहुंची 80 रुपए के पार। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गया है। रुपए की इस कमजोरी से देश में ऑयल होने वाले कच्चे तेल और दूसरे सामान महंगे होने की आशंका। फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से रोजमर्रा का सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां फिर से बढ़ा सकती हैं दाम। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से साबुन, तेल और बिस्किट 5-10% तक महंगे होने की आशंका। दुनिया में संकट के बीच पेरिस में G7 वित्त मंत्रियों की अहम बैठक हुई। ईरान युद्ध, हॉर्मुज संकट और ट्रंप टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा। यूक्रेन के वित्त मंत्री ने G7 की बैठक में शामिल होकर कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश करेगा यूक्रेन। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा, अमेरिका को भेजे प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के जरिए मिला। इसराइल ने गाजा जा रहे जहाजों के बेड़े को समुद्र में रोका। तुर्की से गाजा के लिए रवाना हुए 50 से ज्यादा जहाजों को समुद्र में घेरा गया। यूक्रेन के ओडिशा में डिनिप्रो में रूस का भीषण हमला, दोनों ही हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूस की सेना ने नागरिक ठिकानों को बनाया निशाना। काला सागर के पास रूसी ड्रोन से चीनी मालवाहक जहाज पर हमला, यूक्रेन की सेना ने किया था बड़ा हमला। ओडिशा के पास रूसी ड्रोन ने चीनी KSL जहाज को निशाना बनाया। बेलारूस के रास्ते नेटो पर हमले का यूक्रेन का दावा खारिज। क्रेमलिन ने कहा जेलेंस्की का बयान जवाब के लायक ही नहीं है। चीन के दक्षिणी इलाके में ग्वांशी में भूकंप से भारी तबाही, 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नीदरलैंड्स पहुंचा हंता वायरस से प्रभावित क्रूज शिप MV हॉन्डियस। क्रूज पर सवार 23 क्रू मेंबर्स और मेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन करने की तैयारियां शुरू की गई। टैक्स चोरी के मामले में कोलंबिया पॉप स्टार शकीरा को बड़ी राहत। स्पेन की कोर्ट ने शकीरा को किया है बरी। कोर्ट का आदेश है कि सिंगर शकीरा को ब्याज समेत लौटाए जाएं 60 मिलियन यूरो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे बयान के बारे में बताएंगे जैसा बयान उन्होंने पिछले 12 साल के कार्यकाल में नहीं दिया। उन्होंने ऊर्जा संकट को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी है और स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसका तुरंत हल नहीं निकाला गया तो भारत की सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। जब देश और दुनिया ने कोविड जैसा भयानक दौर देखा तब भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन आज ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने हमारे रुपए, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से खिसक कर सीधे छठे स्थान पर आ गए हैं। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि यह संकट कैसे आपकी जेब, आपकी नौकरी, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद समाज की नसों में बहते उस जहर की बात करेंगे जो एक के बाद एक बेटियों को अपना शिकार बना रहा है। यह जहर है दहेज का, जिसे बदलते वक्त और कथित आधुनिक समाज ने बेशर्मी से गिफ्ट कहना शुरू कर दिया है। आज लड़कों का बाकायदा एक रेट कार्ड तय होता है। पढ़ाई पर हुए खर्च को इन्वेस्टमेंट रिकवरी मॉडल मानकर लड़की वालों से वसूली की जाती है। लड़का जो कमाता है उसके हिसाब से सौदेबाजी होती है और आए दिन कोई लड़की इसका शिकार बन जाती है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा और भोपाल में दो लड़कियों की जान चली गई। आपने भी अपने सोशल मीडिया पर इन बच्चियों के चेहरे बार बार देखे होंगे, दहेज के लिए मौत, तमाम चीजें पढ़ी होंगी। लेकिन ये सिर्फ दो लड़कियों की बात नहीं है, ये सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, ये हमारे समाज में जीवन का हिस्सा है। अनेकों बेटियों की सिसकियां हमारे कानों तक कभी नहीं पहुंच पाती हैं, वो ऐसे ही घुट घुट कर मर जाती हैं। कभी आग में कोई जल जाता है, कभी सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है और उनके बारे में कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन आज हमने सोचा कि आज ब्लैक एंड व्हाइट में ये मुद्दा हम आप तक पहुंचाएं ताकि आप अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में इस बात का ध्यान रखें कि ये जो लालची दरिंदे इस तरह के ढूंढते फिरते हैं लड़कियों को, उनसे कैसे अपनी बेटियों को बचाना है। हम सबको मिलकर काम करना होगा, इसका कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। कानून है, उस कानून को कोई देखता सुनता मानने वाला है नहीं इस देश में। ग्रेटर नोएडा में 24 साल की दीपिका नागर ने छत से कूदकर जान दे दी, ऐसी खबर आ रही है। परिवार वाले कुछ और कह रहे हैं। और दूसरी घटना भोपाल की है जहां एक रिटायर्ड जज की बहू, हम बार बार आपको बता रहे हैं, एक रिटायर्ड जज की बहू और मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। कैसे ऐसे मामलों में भी रसूख का इस्तेमाल होता है। और आखिर में आपको बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसने खलबली मचा दी है। सड़क पर नमाज के खिलाफ सख्त आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद और ईदगाह में जगह कम है तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क पर किसी भी हाल में नमाज की इजाजत नहीं मिलेगी। आदेश ना मानने वालों को उन्होंने बरेली वाला एक्शन फॉर्मूला भी याद दिलाया है। हम आपको भी बताएंगे कि बरेली वाला एक्शन क्या है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको उस जहर के बारे में बताना चाहते हैं जो आज भी हमारे समाज की नसों में लगातार बह रहा है, और ये जहर है दहेज का। ये तस्वीर प्रतीकात्मक है लेकिन इसमें पूरी कहानी है। आज खबरें तो कई हैं और देश में महंगाई, तेल की कीमतों में वृद्धि, ईरान युद्ध पर काफी चर्चा हो भी रही है और इन खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे भी आगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे दहेज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। भारत में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिनमें 90% शादियों में दहेज का लेन देन होता है। ऐसा लेन देन जो समाज को बिल्कुल अब शर्मिंदा भी नहीं करता। लोग गर्व से बताते हैं कि उन्हें उनके लड़के की शादी में कौन सी कार मिली, कितना सोना मिला, कितना बड़ा टीवी लड़की वालों के घर से आया है। यही नहीं, हमारा समाज वक्त के साथ इतना आधुनिक हो गया है कि उसने इस दहेज को भी अब गिफ्ट कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि गिफ्ट शब्द दहेज की तरह बुरा नहीं लगता। गिफ्ट कहिए और लेते जाइए लेते जाइए। लोग खुश होकर बताते हैं कि लड़की वालों के यहां से कौन कौन से गिफ्ट आए हैं, और इस तरह दहेज गिफ्ट का रूप लेकर सामान्य बन जाता है। इसके बाद लड़कों का भी एक रेट कार्ड होता है, अगर लड़का डॉक्टर या इंजीनियर है तो ज्यादा दहेज, अगर सरकारी नौकरी करता है तो और ज्यादा दहेज, और अगर विदेश में नौकरी करता है या उसका फैमिली बिजनेस है तो बहुत ज्यादा दहेज, जिसे ये लोग गिफ्ट कहते हैं। और लड़की इनके लिए क्या होती है हम आपको बताएंगे। लड़की इनके लिए एक इन्वेस्टमेंट रिकवरी मॉडल होती है, यानी लड़के की पढ़ाई पर जो खर्च हुआ उस खर्च के हिसाब से लड़के की मार्केट वैल्यू तय की जाती है, और उस मार्केट वैल्यू पर लड़की वालों से दहेज मांगा जाता है। माफ कीजिएगा, आज के समाज के हिसाब से गिफ्ट मांगा जाता है, और यह परंपरा चलती रही है, और इस गिफ्ट के कारण लड़कियां मरती रहती हैं। आज भी हमारे देश में दो लड़कियों ने दहेज के कारण दम तोड़ दिया है। ये तो दो खबरें हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। मुमकिन है कि इसी देश के किसी और कोने में, किसी छोटे से कस्बे में, किसी छोटे से गांव में कहीं किसी और बेटी ने दम तोड़ा होगा। एक घटना दिल्ली की है जो आज हम आपको बताने वाले हैं, दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में हुई है, और दूसरी घटना भोपाल में हुई है। ग्रेटर नोएडा में जिस लड़की ने छत से कूदकर आत्महत्या की, ऐसा बताया जा रहा है, उसका नाम था दीपिका नागर। चेहरा देखिए, कैसा खुशियों का संसार बसाना चाहती होगी, कैसे सपने रहे होंगे इस बेटी के, और अपनी बेटी को बड़ा करते हुए उस माता पिता के सपनों के बारे में सोचिए जिसने अपनी फूल सी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं सोचा होगा। 24 साल इसकी उम्र थी। 11 दिसंबर 2024 को ऋतिक नाम के लड़के से शादी हुई। इस शादी पर दीपिका के परिवार ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 50 लाख रुपए का सोना, 1 स्कॉर्पियो कार, 5 लाख रुपया कैश लड़के वालों को दहेज में दिया। उस दिन ये सारा दहेज देखकर ऋतिक का परिवार खुश था, जबकि दीपिका के परिवार को भी लग रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। बेटी के परिवार वाले तो इसको जिम्मेदारी मानते हैं, समाज ऐसा बन चुका है, हमारा ताना बाना ऐसा बन चुका है, सिर्फ बेटी देना काफी नहीं है, बेटी के साथ सामान दो, टीवी, फ्रिज, कुछ लालची तो ऐसे होते हैं जो वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, मिक्सी, टोस्टर, ये सब भी ले लेते हैं। सब कुछ लाद कर जितना कुछ आ सकता है ना, मोबाइल, मतलब जो जो लूट सकते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। FIR के मुताबिक शादी के बाद से ही लड़के वालों ने और दहेज की मांग करनी शुरू कर दी, और पैसा चाहिए और गाड़ी चाहिए, ये जो दिया है वो काफी नहीं है, और गाड़ी दो। ये जो तस्वीर हम आपको फॉर्च्यूनर की दिखा रहे हैं, ये कहा गया कि दीपिका के पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए 1 फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख कैश उसके पति को नहीं दे सकते, इस बात का गुस्सा था। ये भी कहा गया कि जो कैश और गाड़ी घर में आएगी वो दीपिका और उसके पति की ही होगी, और इसे दहेज ना समझा जाए। शुरुआत में दीपिका ने ये सारी बातें अपने परिवार से छिपाई ताकि परिवार को सदमा ना लगे, वो परेशान ना हो, लेकिन आरोप है कि इसके बाद ये लालच बढ़ता गया और दीपिका का इस दहेज की मांग से दम घुटने लगा। और एक दिन पहले जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब दीपिका के पति ने फोन करके उसके पिता को अपने घर पर आने को कहा और उन्हें सामने बैठाकर उनसे दहेज की सीधा मांग कर दी। ये लीजिए, शादी पर जो दिया सो दिया, अब सामने बैठकर उस बेटी के पिता से सीधा मोल भाव, अब क्या दे सकते हो। किसी तरह विवाद को खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही दीपिका के पिता को अपने घर लौटे, उसके बाद उनकी लड़की ने अपने घर की छत से आरोपों के मुताबिक कूदकर जान दे दी और उसकी मौत हो गई। सोचिए, एक लड़की को दहेज के लिए, 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए, सामान के लिए, कैश के लिए, एक लड़की को दहेज के खिलाफ लड़ने से ज्यादा आसान ये लगा कि वो अपनी ही जान दे दे। जब जीने का खतरा और जीने का बोझ मरने से भी भारी लगे और मरना ज्यादा आसान लगे, तब कोई ऐसा कदम उठाता है। और इस बात ने किसी को विचलित नहीं किया। आज दीपिका का परिवार रोते बिलखते हुए अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, लेकिन इसके बाकी परिवारों का, जो बाकी परिवार के लोग हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, तब न जाने इस देश के कितने माता पिता और परिवार अपनी बेटियों के दहेज के लिए बचत कर रहे होंगे। हो सकता है एक स्कॉर्पियो काफी ना हो सकता है कभी फॉर्च्यूनर की मांग कर दे, हो सकता है फॉर्च्यूनर की मांग पूरी ना होने पर वो मेरी बेटी की जान ले ले, तो कुछ रुपया और बचा लेता हूं, कुछ रुपया इधर से बचा लेता हूं, कुछ रुपया उधर से इकट्ठा कर लेता हूं, कुछ अपनी जिंदगी में कटौती कर लेता हूं, कुछ अपने परिवार के जीने के तौर तरीके में कटौती कर लेता हूं, कुछ पैसा और बचा लेता हूं, क्योंकि एक लालची लड़का आएगा जो एक दिन फॉर्च्यूनर से भी खुश नहीं होगा, स्कॉर्पियो से भी खुश नहीं होगा, उसको बार बार कैश चाहिए होगा और वो मेरी बेटी का गला घोट देगा। लेकिन हमारे देश में ये होता है और इसे बुरा भी नहीं माना जाता है। पुलिस ने दहेज हत्या के इस मामले में दीपिका के पति और उसके ससुर को गिरफ्तार किया है, लेकिन दीपिका के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह अपील की है कि वो उनकी बेटी के हत्यारों का ऐसा एनकाउंटर कराएं कि भविष्य में फिर कभी किसी पिता को दहेज के कारण अपनी जवान बेटी को कंधे पर ना उठाना पड़े। सुनिए,
1: अब कार्रवाई तो अब आगे सामने आएगी जी, क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी हमारी तो यही है कि ऐसे जल्लादों को जो एनकाउंटर होना चाहिए और समाज से बिल्कुल दूर करना चाहिए। ये सभी की बेटी है, कोई ऐसे नहीं है कि बेटी एक हमारी आज मरी है, आज हमारी है कल दूसरे की भी है।
0: पहले ऐसा माना जाता था कि दहेज का सबसे बड़ा कारण गरीबी है, अशिक्षा है, लड़का गरीब है, अशिक्षित होता है तो घर बसाने के लिए वो दहेज मांगता है, लेकिन ये सारे दलील धरे के धरे रह गए हैं। आज जिन परिवारों की हम बात कर रहे हैं, ये चमचमाती फॉर्च्यूनर, ये स्कॉर्पियो, ये एक फॉर्मर जज का परिवार, ये सब क्या गरीबी की वजह से कुछ पैसा चाहते थे? ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। उस पिता की सोचिए, ऐसी मौतें पता है कहां से शुरू होती हैं? शादी के उस न्योते वाले कार्ड से, और फिर शहनाई बजती है, गीत गाए जाते हैं खुशियों के, और एक नया संसार बनाने का दावा होता है, फिर उस बेटी की विदाई होती है और आंसुओं में भी सदा खुश रहो का एक आशीर्वाद होता है। लेकिन जब उस नए घर में, जिसे ससुराल कहते हैं, वहां पर पहुंचती है, तब धीरे धीरे ये लालच चीखता हुआ आंखों से निकलता है। कभी कैश की मांग बनकर, कभी गाड़ी की मांग बनकर, कभी घर की मांग बनकर, और धीरे धीरे वो उस बच्ची की जिंदगी को खत्म करता है। और शादी के न्योते वाले कार्ड से शुरू हुआ यह किस्सा सपनों की चिता पर अंत लेता है। इसीलिए कुछ मौतें मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होती हैं। इसी दलील को आधार बनाकर हमने आपको बताया ना कि गरीबी की वजह से ऐसा नहीं है कि लोग ज्यादा दहेज मांगते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में यह लिखा गया कि अगर लोग अमीर हो जाएंगे, उनके पास एक दिन पैसा हो जाएगा भारत में, तब यह दहेज अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा जिन लोगों के पास पैसा आया वो और दहेज मांगने लगे। और ग्रेटर नोएडा की यह घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुनिए, ऋतिक नाम का जो लड़का 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर कार दीपिका के पिता से मांग रहा था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर महीने लाखों रुपए किराया आता था और परिवार के पास कई जमीनें थी, लेकिन फिर भी दहेज का जहर उसकी नसों में दौड़ रहा था। इसे छोड़िए और भोपाल की इस घटना को अब देखिए। 33 साल की ट्रिशा शर्मा, संदिग्ध हालत में मौत, है ना एक सा किस्सा, क्योंकि टूटी हुई हड्डियां और जली हुई चमड़ी कहां ही बयान दर्ज करा पाती हैं। ट्रिशा शर्मा ने कुछ ही महीने पहले समर्थ सिंह से शादी की थी। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। समर्थ सिंह पेशे से एक वकील हैं, जबकि उनकी मां एक रिटायर्ड जज, और ट्रिशा का परिवार यही सोचता था कि उनकी बेटी को इससे अच्छा परिवार मिल ही नहीं सकता। लेकिन आरोप है कि इतने पढ़े लिखे परिवार ने भी दहेज के लिए सारी हदें पार कर दी। रिटायर्ड जज का परिवार। पुलिस और परिवार के मुताबिक त्रिशा के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार घरेलू हिंसा हुई। उसे इसलिए मारा गया ताकि वो अपने पिता से कैश और सोना लाकर अपने पति और उसके परिवार को दे। मेरे पास त्रिशा की एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें उसने अपनी सहेली से कहा था कि वो फंस चुकी है लेकिन तुम मत फंसना। ऐसी ऐसी चैट्स हैं इस बच्ची के अपने अपने मां के साथ जो चैट है व्हाट्सएप पर, उसमें उसने लिखा था कि मुझे यहां से ले जाओ, मैं इस परिवार में और रह ही नहीं सकती। हम आपको दिखाते हैं जो ये तमाम चैट्स हैं जिसमें मैं, मेरा प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी, क्यों फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूं इसलिए मेरा मूड खराब रहता है, बस एक भी बार दिल में ये नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से खराब हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ, ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूं। अपनी मां से बार बार कह रही थी कि मुझे घुटन हो रही है यहां पर, ये लोग ना हंसने की वजह देंगे ना मुझे रोने ही देंगे। ये वाला चैट देखिए जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, भाई के साथ ये चैट है उसका, जिसमें कोई भी ऐसी स्थिति में फंसी हुई बच्ची क्या ही बताएगी, और इसलिए वो लिख रही है हां भाई बात करेगा नॉर्मल तो मैं भी कर लूंगी, जब बात की बात हो रही है मुझे कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है यहां, बात करो मत, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा किसी से भी बात करके। आपको क्या ही बताऊं, मतलब ये जो पूरी बातचीत है तो अम्मा को बोलना कि ऐसे कितने दिन चलेगा जब समर्थ को मेरे से, मतलब ये बच्ची इतनी परेशान थी, ये लगातार अपने भाई से, अपनी माँ से, अपनी फ्रेंड से, त्रिशा आस्किंग हर फ्रेंड नॉट टू मैरी, वो अपनी अपनी दोस्त को कह रही है आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना, कांट टॉक मच, आई विल कॉल व्हेन द टाइम इज राइट, मतलब मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती, मतलब ऐसी स्थिति में ये फंसी हुई थी जहां से अपने परिवार वालों अपने फ्रेंड्स से बात करना भी उसके लिए मुश्किल था क्योंकि उसको लगता था कि इससे उसको सामने वाले अपने पति का गुस्सा ना झेलना पड़ जाए। त्रिशा एक अभिनेत्री और एक मॉडल थी, मिस पुणे प्रतियोगिता में भाग लिया था और वो महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन सोचिए दहेज के भूखे उन्हें भी निकल गए, और जिस घर में लड़के की मां एक रिटायर्ड जज थी वहां भी दहेज के कारण एक लड़की को मरना पड़ा। पुलिस का कहना है कि त्रिशा ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दी, जबकि त्रिशा के परिवार का कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है और पुलिस ने उस फंदे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा ही नहीं जिससे यह पहचान हो सके कि क्या त्रिशा के गले पर इसी फंदे के निशान है या उसकी हत्या करके उसके शव को बाद में इस फंदे पर लटकाया गया। ऐसा भी होता है। इस मामले में आरोपी लड़के की मां ने अदालत में एक जमानती आवेदन भी दायर किया है जिसमें यह लिखा है कि त्रिशा को ड्रग्स की लत थी। जब ऐसी घटना हो गई है तो उसके बाद अब लड़की को बदनाम करना ही सबसे पहला तरीका होता है। उठा कर देख लीजिए जितने भी ऐसे मामले आपको इस देश की अदालतों और थानों में दर्ज दिखाई देंगे। जब जब लड़की उत्पीड़न का शिकार होती है तो पहला काम सीधा उसके चरित्र पर हमला, और त्रिशा को ड्रग्स की लत बता रही है रिटायर्ड जज, और जब उसे ड्रग्स नहीं मिलता था उनका दावा है तो वो अपना नियंत्रण खो देती थी और शायद इसी वजह से उसने आत्महत्या की। हालांकि त्रिशा के परिवार का कहना है कि ड्रग्स की लत उसे नहीं बल्कि समर्थ को थी और वो ड्रग्स लेने के बाद त्रिशा को खूब मारता था, पीटता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी त्रिशा के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि त्रिशा के साथ काफी हिंसा हो रही थी। लेकिन सोचिए यहां भी ये लड़की बच नहीं पाई। जब हम ट्विशा और समर्थ की शादी की इन तस्वीरों को देख रहे थे तो हमें लगा कि इस शादी में कहां कोई कमी थी। तस्वीरें परफेक्ट, इंतजाम परफेक्ट, मुस्कुराते हुए ये चेहरे भी एक परफेक्ट कहानी बता रहे थे। पढ़े लिखे परिवारों से थे, एक तरफ रिटायर्ड जज थे, जैसा हमने आपको बताया रिटायर्ड जज थी इस लड़के की मां, और शादी की इन तस्वीरों को देखकर कहां कोई भी कल्पना कर सकता है कि ये बच्ची जो खुशियों के साथ, सपनों के साथ और बहुत सारी उम्मीदों के साथ एक परिवार में अपना कदम बढ़ा रही है, वहां पर लाठियां और गुस्से में उठते हुए हाथ उसका इंतजार कर रहे हैं। समर तो खुद एक वकील था, उसकी मां एक रिटायर्ड जज, फिर भी ट्विशा को मरना पड़ा और उसका पति समर्थ फरार है। जी हां, रिटायर्ड जज का बेटा समर्थ फरार है। आज जितने भी लोग हमारा ये शो देख रहे होंगे उनके लिए ये नई घटना नहीं होगी। हमारे देश में दहेज हत्या को सामान्य मान लिया जाता है। कई मामलों में तो बहुत सारे लोग दहेज हत्या को गंभीरता से भी नहीं लेते और ये कहते हैं कि कोई और बात होगी, वरना दहेज के लिए कौन मरता है। जैसी सोच हो उस हिसाब से इस घटना को पलट देता है। लेकिन हकीकत में जिन परिवारों की लड़कियां दहेज के कारण मरती हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उन्होंने क्या क्या झेला है, कैसे उन लड़कियों की खुशियों की कीमत लगाई गई, कैसे उनसे कहा जाता है कि अपनी लड़की को हंसते हुए देखना है तो कैश दो, गाड़ी दो, सोना लेकर आओ। कई मामलों में तो लड़कियां अपने परिवारों से बोल भी नहीं पाती हैं। इन पतियों की मुस्कुराहट जानते हैं? इन पतियों की मुस्कुराहट, उसकी खुशी उतने ही हिसाब से निकलती है जितना पैसा उनके सामने खनकता है। ज्यादा पैसा लेकर आओ तो ज्यादा खुश दिखेंगे, सोने का कुछ ले आओ तो दांत और भी ज्यादा दिखेंगे। गाड़ी की चाबी आ गई तब तो आप ससुर जी वाकई अच्छे लगने लगेंगे और पत्नी भी। ये सच्चाई है। घुट घुट कर अपने ससुराल में मर जाती बच्चियों की बात आज कहनी जरूरी है। उनकी मौत दहेज के कारण हुई ये कभा कई बार ये पता भी नहीं चल पाता। और कई मामलों में जो लड़के होते हैं वो जेल से छूटने के बाद दूसरी शादी भी कर लेते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल। लेकिन शादी की उन खूबसूरत तस्वीरों में से एक जो लड़की थी वो चली जाती है। और शायद इन मामलों में भी एक दो दिन के बाद दीपिका और ट्विशा को सब भूल जाएंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि इन्हें भूल जाने से दहेज हत्याएं बंद नहीं होंगी। और अब भी कहीं ना कहीं किसी कोने में कोई लड़की दहेज के कारण पिट रही होगी, आत्महत्या करने के बारे में सोच रही होगी या उसे जला दिया जाएगा, कहीं से लपटे निकल रही होंगी किसी घर से और बता दिया जाएगा कि किचन में आग लग गई या सिलेंडर फट गया। और ऐसा संदेश सोचिए, कहीं किसी कोने में बैठकर हो सकता है कोई बेटी इस वक्त अपने माँ बाप को लिख रही हो कि मेरा यहां दम घुट रहा है, मुझे यहां बहुत मारते पीटते हैं, और माँ बाप शायद ये सोचकर इंतजार कर रहे हो कि हो सकता है कल ठीक हो जाए, आज की लड़ाई है। ऐसा मुमकिन है कि किसी कोने में, किसी कमरे में, किसी छत पर कोई अपनी बीवी को दौड़ा रहा हो, अपनी पत्नी को, और गुस्से में हो रही लड़ाई किसी की मौत में, उस बेटी की मौत में बदल जाए। आज बहुत सारी एक से एक घटनाएं पूरे देश में होती हैं लेकिन सबको दबा दिया जाता है। और हम फिर से आपको किसी दीपिका, किसी ट्विशा की कहानी मुमकिन है कि कुछ दिनों में फिर से दिखा रहे हों।
2: ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट रही मेरी बेटी की, तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया है, बिल्कुल गवार है, तू गवार है, बिल्कुल कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी।
3: ये तो हमारी लड़ाई है कि आज कितने समय हो गया इन हीनियस क्राइम में तुरंत गिरफ्तारियां होती हैं, और ये सारा जो केस जिस बिना पर चलाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा।
4: उस लड़के को नहीं पकड़ पा रही, मतलब को नहीं पकड़ पा रही पुलिस, और हमें रोकने के लिए डंडे लगा लगा के खड़े कर रहे हैं यहाँ पे। कोई लड़की शादी करने से पहले हजार बार सोचेगी भोपाल शहर में, श्री बिना और पूरा भोपाल मिला हुआ है।
5: हम चाहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम दोबारा हो, क्योंकि यहाँ पे उचित तरीके से इसको नहीं किया गया है। और समर सिंह जिसको भी इसे गिरफ्तार करने गए हुए थे वो भी फरार है, उसकी अच्छे से जांच की जाए।
6: मेरी बेटी का गला काट के उसकी हत्या की है, उसका इंसाफ दो मेरे।
7: इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी एविडेंस कलेक्शन होगा और उसके बाद जो है ना एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
0: जब हम ये देखते हैं कि दहेज हत्याओं की खबरें अब समाज को विचलित नहीं करती, तब हमें 1970 और 1980 का दशक याद आता है। उस वक्त हमारे अखबार ऐसी घटनाओं से भरे होते थे जिनमें दहेज के लिए लड़कियों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता था, और जलाया इसलिए जाता था क्योंकि उस दौर में रसोई में मिट्टी के तेल के स्टोव इस्तेमाल होते थे, और अगर किसी लड़की को दहेज के लिए जिंदा जलाया जाता था तो पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई जाती थी कि वो खाना बनाते वक्त जलकर मरी है, और यह एक हादसा है। उस वक्त दहेज के लिए यह तरीका कई परिवारों ने अपनाया, हजारों महिलाएं दहेज के कारण मारी गईं, और यह आग भी 1979 से शुरू हुई। उस वक्त साल 1979 में दिल्ली में 24 साल की तलविंदर कौर को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने केरोसिन डालकर आग लगा दी, और बाद में इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई और दहेज के कारण लड़कियों को शादी से डर लगने लगा था। लेकिन सोचे उस वक्त से लेकर आज तक हमारे देश में क्या ही बदला। आज दहेज प्रथा एक इन्वेस्टमेंट रिकवरी मॉडल है। लड़के का परिवार यह सोचता है कि उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना खर्च किया, जितनी उसकी तनख्वाह है, उसके हिसाब से उन्हें दहेज मिलना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि ये लोग दहेज बोलना पसंद नहीं करते, वो गिफ्ट कहते हैं। कहते हैं आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, लेकिन नजर एक एक चीज पर रहती है। बीबीसी के मुताबिक 1960 से 2008 के बीच भारत में जो शादियां हुई उनमें 95% में दहेज का लेन देन हुआ, 95%। इनमें भी 60% शादियों में लड़के वालों ने दहेज प्रथा को गलत बताने के बाद भी लड़की वालों से फर्नीचर सोफा लेते हैं। सोफा ही नहीं लेते, सोफा के साथ कहते हैं कि सोफा का कवर भी चाहिए ताकि उस पर धूल पड़ने से वो गंदा ना। टेबल, सेंट्रल टेबल, सजावट का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, ये सामान लेने के बाद जानते हैं इन परिवारों ने क्या कहा। ये कहा कि उनकी बेटी ही तो इस सामान का इस्तेमाल करेगी। इन लोगों ने यह भी कहा कि दहेज भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, वो अपनी सिर्फ संस्कृति को निभा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। भारत में स्त्रीधन की परंपरा थी जिसमें लड़की के माता पिता अपनी इच्छा से बेटी को पैसा, गहना या संपत्ति देते थे, लेकिन उसके लिए देते थे ताकि उसको बुरे वक्त में काम आए। यह स्त्री धन होता था। इसके पीछे एक कारण यह था कि उस दौर में लड़कियों को अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। इस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए स्त्री धन लड़कियों को उनकी शादियों में दिया जाने लगा ताकि वो उनकी मुश्किल वक्त में काम आए। और ऐसा नहीं कि यह स्त्री धन देना जरूरी होता था, ये तो उन लालची लड़कों की नजरें उस पर पड़ी कि हमारे समाज में है जो पिता खुद अपनी बेटी के लिए पाई पाई जोड़ता है वो भी दूसरे घर की बेटी को लाते वक्त लालची नजरें कर लेता है कि वहां से लेंगे। कई परिवार एक जोड़ी कपड़े के साथ भी अपनी बेटियों को विदा करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे दहेज के खिलाफ कड़े कानून बने वैसे वैसे दहेज का चलन बढ़ता ही गया। जी हाँ, डेटा बताता है, आइडियाज फॉर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1920 में सिर्फ 20% शादियों में दहेज दिया जाता था, लेकिन 2005 में यह 40% हुआ और अब 90% हो गया है। इसका मतलब यह है कि दहेज की समस्या तो पुरानी है, लेकिन जितना दहेज आजकल की शादियों में लिया जा रहा है उतना दहेज पहले कभी नहीं लिया जाता था। आज हर 100 में से 90 शादियां दहेज के लेन देन से हो रही हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लड़की का परिवार औसतन अपने पूरे साल की कमाई दहेज में दे देता है, लेकिन इसके बाद भी कई लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है। इसके अलावा ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है कि आज कई लोग खुद खुशी से भी बड़ा दहेज देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज कहता है कि वाह कितनी बड़ी शादी हुई, इतनी कारें मिली, इतना सोना दिया। और मेरी नजर में इस तरह से गाड़ी, सोना और पैसा देने वाले लोग भी उतने ही बड़े कसूरवार हैं। यानी दहेज अब सामाजिक दिखावा बन गया है और इस दिखावे में हर कोई शामिल है, और यह दिखावा हर परिवार में कैसा दबाव बनाता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे देश में दहेज की समस्या का एक और कारण यह है कि महिलाएं शिक्षित तो हो रही हैं, लेकिन समाज उन्हें नौकरी करने की आजादी कई बार नहीं देता। बहुत सी महिलाएं नौकरी नहीं करती, शादी के बाद घर तक सीमित हो जाती हैं। परिवार सोचता है लड़की कमाएगी नहीं, इसके लिए लड़के वाले कहते हैं हमारा बेटा कमाता है तो दहेज दो। इसके अलावा आज कई परिवार बेटे की पढ़ाई पर लाखों खर्च करते हैं, IIT मेडिकल, विदेश में पढ़ाई, खूब पैसा खर्च हुआ, जितना खर्च उतना पैसा उनको वापस चाहिए। यानी बेटे की शिक्षा का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको ROI बना दिया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, 1980 के दशक में जब सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बहुत तेजी आई थी, तब भारत में लड़कियों की मृत्यु दर तेजी से बढ़ गई थी, और इसका कारण यह था कि बहुत सारे परिवार दहेज से डर गए। अगर आप 2018 से 2024 के इन आंकड़ों को देखेंगे तो हमारे देश में हर साल दहेज के लिए औसतन 12,000 मामले दर्ज होते हैं, जबकि दहेज के कारण हर साल 5,000 से ज्यादा लड़कियां मार दी जाती हैं, लेकिन इस पर कभी कोई बात नहीं करता। और मुमकिन है कि आप में से कई लोग ब्लैक एंड व्हाइट में ही आज ये खबर देखकर सोच रहे हो कि अरे छोड़िए इसमें क्या है, ये तो बस एक खबर है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हमारी इस खबर को देखकर दुख जता रहे होंगे, उन शादियों का न्योता मिलने पर दहेज का मुद्दा भूल जाएंगे, जिन शादियों में खूब चमक दमक होती है इसके पीछे दहेज का बहुत सारा पैसा लगा होता है। लेकिन हम बस इतना कहेंगे, एक सुझाव है और इस सुझाव को बहुत

ध्यान से सुनिएगा। आज हमारा सुझाव यह है कि अगर सच में दहेज की कुप्रथा को रोकना है तो समाज में दहेज को शर्म का प्रतीक बनाना होगा। कल्पना कीजिए अगर सरकार एक ऐसा ही कानून ले आए जिसमें दहेज में मिलने वाली हर चीज पर लिखना पड़े, दहेज में मिला टीवी, दहेज में मिली कार, दहेज में मिला फ्रिज, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दहेज में मिलने वाले हर सामान का एक तय रंग कर दे। फिर देखते हैं ये कितने लड़के जो शान में स्कॉर्पियो लेकर घूम रहे हैं अपनी पत्नी के पिता के पैसे पर, वो ऐसा कर पाएंगे? मान लीजिए चमकीला पीला ऐसा कोई रंग है जैसे देखते ही दूर से समझ में आ जाए दहेज की मिली हुई कार है ये, यही भीख चाहिए थी तो लो। आज लोग दहेज इसलिए लेते हैं क्योंकि समाज उन्हें सम्मान देता है। बारात में महंगी गाड़ियां दिखती है, लोग कहते हैं वाह कितना बड़ा रिश्ता हुआ है, लेकिन लोग ये जानते नहीं है कि उसकी चाबी लड़की के पिता से ली गई है, उसका पैसा गाड़ी का लड़की के पिता ने दिया है। अगर वही गाड़ी सड़क पर चले और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा हो दहेज की कार, सोचिए क्या वही लोग गर्व महसूस करेंगे? शायद नहीं। दहेज की पूरी ताकत समाज की चुप स्वीकृति से आती है। जिस दिन दहेज सम्मान की जगह सार्वजनिक शर्म, सार्वजनिक अपमान का कारण बन जाएगा, उसी दिन इसका ढांचा हिलने लगेगा, क्योंकि अपराध हमेशा अंधेरे में पनपता है। और दहेज भी बंद कमरों, कानों की मांगने वाली फुसफुसाहट, सामाजिक दिखावा, नकली प्रतिष्ठा के पर्दे में फलता फूलता है। और अगर उस पर्दे को हटा दिया जाए, अगर दहेज को छुपाना असंभव बना दिया जाए, तो शायद लोग खुद इससे दूर भागने लगेंगे। और अब तो कोई भी, अगर आप गाड़ी भी खरीदते हैं, आपको सारा पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से करना होता है। तो ऐसे में जब भी शादी में किसी पिता की तरफ से अकाउंट में पेमेंट होकर गाड़ी या कोई भी सामान खरीदा जा रहा है तो उसको ट्रैक करना बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा। ऐसा करना जरूरी क्यों है, इसके लिए आपको पिछले हफ्ते का ये वीडियो देखना होगा जिसमें मुस्लिम समुदाय की एक शादी में गर्व से बताया जा रहा था कि लड़की वालों ने कितना कैश, कितना गोल्ड, कौन सी गाड़ी दहेज में दी। सुनिए। अनेकों हिंदू शादियों में भी आप अक्सर देखेंगे इसी तरह की बोलियां लगाई जाती हैं, इसी तरह से ऐलान किया जाता है। कई बार तिलक का जो फंक्शन होता है उसमें भी खुले तौर पर एक नुमाइश लगती है, यहां तक कि चांदी के कितने बर्तन, पीतल के कितने बर्तन, क्या कुछ मिला है, एक एक चीज का बाकायदा लिस्ट बनता है, हिसाब दिया जाता है और जमकर यह ऐलान होता है कि ऐसे दहेज मिला है।

0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त प्रशासनिक फैसले लेने वाले हिंदूवादी मुख्यमंत्री के तौर पर है और उन्हें इसको आगे ले जाने में कोई परहेज भी नहीं है। आज लखनऊ में उन्होंने अपनी इसी छवि के अनुरूप एक ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुस्लिम वर्ग को संदेश दिया कि अगर नमाज पढ़नी है और जगह की कमी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए, सड़क पर किसी भी हाल में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी।
1: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना

0: समान रूप से लागू करेंगे।
1: योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब इसी महीने की 28 तारीख को ईद उल अजहा यानी बकरीद आने वाली है। अभी कल ही लखनऊ में मरकजी चांद कमेटी के सदस्य फिरंगी महली और अन्य सदस्य दूरबीन लेकर चांद देखने का प्रयास कर रहे थे। माना जाता है कि चांद दिखने के बाद से ही इस्लामिक कैलेंडर का जिल हिज महीना शुरू होता है, जिसके 10वें दिन बकरीद मनाई जाती है। लेकिन इस महीने के पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने बकरीद पर सड़क पर नमाज की इजाजत मांगने वालों को सख्त संदेश दे दिया है।
0: नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कहा भी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पर फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।
1: योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगने और इसकी जिद पकड़ने के बीच विकल्प दिया। उन्होंने नियमों का हवाला देकर साफ कहा कि शासन के साथ संवाद और संघर्ष दोनों विकल्प है। बरेली का उदाहरण उन्होंने इसी वजह से दिया कि अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद पकड़ी तो बरेली वाला एक्शन होगा। पिछले साल सितंबर में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर बरेली में जबरदस्त हंगामा हुआ था। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था। पुलिस प्रशासन ने इस प्रदर्शन की अनुमति ही नहीं दी थी। बावजूद इसके इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर यह प्रदर्शन खूब हुआ और जब पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ की गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान दंगाइयों की तरफ से फायरिंग तक की गई थी। दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और बाद में 80 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि यह पूरी हिंसा सुनियोजित थी और इसे तौकीर रजा ने प्लान किया था, जो फिलहाल जेल में है। नियम न मानने वालों और बिना अनुमति मनमानी करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक्शन होता रहा है। यूपी के सीएम ने अपने बयान के जरिए उन लोगों को एक तरह की चेतावनी दी है जो बकरीद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद कर सकते हैं। योगी शासन की इस चेतावनी ने विपक्षी नेताओं और कई मुस्लिम संगठनों को बहुत नाराज और निराश किया है।
2: अब मुसलमान अगर एक 5 मिनट नमाज पढ़ लिया जुम्मा के दिन, वो भी क्योंकि जुम्मा नमाज फर्ज है, खुतबे के साथ पढ़ना है, उसको जमात के साथ पढ़ना है, इसलिए एक आदमी रस्ते के ऊपर पढ़ लिया तो किसके पेट पर दर्द होगा? अगर कायदे कानून का पालन करते हुए किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए बिना, किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है, इसलिए बताइए मेरे को।
3: ये चीजें बोल करके ना ये लोग जो है ना एक मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्ती नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्रेटिक राजनीति है, धर्म को जो है राजनीति में लाना बिल्कुल गलत है।
4: इस्लामिक जो कुरान हदीस है वो एक साथ में कोई ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएगी तो दूसरा बार नमाज पढ़ने का सिस्टम है, पढ़ना चाहिए।
5: जो स्टेट का मुखिया होता है या मुल्क का मुखिया होता है वो एक संविधान की शपथ लेता है, वो कहता है कि मैं धर्म निरपेक्ष रहूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा।
6: एक मुख्यमंत्री इस तरीके के जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके के जबान का इस्तेमाल करेंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं।
7: ऑलरेडी मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं अदा करता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जाहिर सी बात है सड़कें जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं, पब्लिक के चलने के लिए हैं, तो उस पर बाकिया भी दीगर भी जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए।
1: बहुत से नेता, बहुत से मुस्लिम संगठन योगी आदित्यनाथ के बयान को मुस्लिम विरोधी, एंटी मुस्लिम बता रहे हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक एजेंडे की वजह से यूपी सरकार मुस्लिमों का शोषण करती है, उनका त्योहार मनाने से उनको रोका जा रहा है। कई लोग रामनवमी, हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं का उदाहरण देकर ये तर्क देते हैं कि उनमें उनसे भी सड़क जाम होती है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन एक्शन केवल सड़क पर नमाज पढ़ने से लेकर होता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि खास मौकों पर प्रशासन की अनुमति के साथ ही हिंदू समाज भी शोभा यात्राएं निकालता रहा है, उसके

है वो नहीं निकाल सकता है। अगर किसी भी तय रूट के लिए पुलिस परमिशन ना हो तो किसी भी ऐसी शोभा यात्रा को कहीं भी रोका जा सकता है। और मुस्लिम समाज मुहर्रम और ईद मिलाद उन नबी के जुलूस भी निकालता है और कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। कई बार ये तर्क दिए जाते हैं कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह कम पड़ जाती है, जगह नहीं है, इसलिए लोग सड़क पर आते हैं, मस्जिद भर जाती है, वहां पर जगह नहीं बचती। लेकिन हम आपको कुछ बातें साफ करना चाहते हैं। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में करीब 3,84,00,000 मुस्लिम रहते हैं। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति का 27% हिस्सा यूपी में रहे हैं। यूपी में वक्फ बोर्ड की 2,14,707 अचल संपत्तियां हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ईदगाह है, अन्य संपत्ति है। यानी किसी भी मौके पर इन जगहों पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। बावजूद इसके ये तर्क दिया जाता है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ने देना धर्म के पालन का मौलिक अधिकार छीनने जैसा है। जबकि साल 2027 की फरवरी या मार्च में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में अपने कुछ एक्शन से एक अलग तरह की छवि बनाई। यूपी के लोगों ने इसको खूब पसंद भी किया, जैसे बुलडोजर हो, बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर एक्शन जो उनकी पहचान बन चुका है। खासतौर से माफिया के खिलाफ इसका खूब इस्तेमाल होता रहा है। जुलाई 2020 से अप्रैल 2024 तक यूपी के माफियाओं की 3,778 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसके अलावा अपराध पर फैसला ऑन द स्पॉट भी यूपी पुलिस और सरकार की पहचान बना है। उत्तर प्रदेश के योगी राज में यानी साल 2017 से 2024 तक 12,525 एनकाउंटर हुए, जिसमें 207 अपराधियों को मार गिराया गया, 27,000 से ज्यादा पकड़े गए। योगी राज में महिला सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई। साल 2024 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं यूपी के महिलाओं के अपहरण की जो घटनाएं हैं उनकी वो संख्या बता रहे हैं। उनका इन रिपोर्ट्स और इन नंबर्स के हिसाब से ये दावा है कि अपहरण की घटनाएं 45% गिरी हैं, रेप के मामले करीब 9% तक और छेड़छाड़ के 53% तक। योगी सरकार ने एक बात बार बार कही, राज्य में कानून और नियम से बड़ा कुछ नहीं। मुमकिन है कि योगी राज की इसी छवि को यूपी बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में भी एजेंडा बनाए। आगे बढ़ते हैं। लश्कर ए तैयबा का एक ट्रेंड कमांडो मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चाइनीज स्लीपर सेल बनने के मकसद से भारत में घुसा, लेकिन यहां आते ही उसका मिशन टेरर मिशन हेयर में बदल गया। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में आतंकी उस्मान को पट्टी पढ़ाई गई थी कि कश्मीर में लोग भूखे मर रहे हैं, वहां जुल्म हो रहा है। फिर क्या उस्मान दिल में नफरत, सिर पर गंजापन लेकर और आर पार आतंकी लड़ाई के लिए कश्मीर पहुंचा। लेकिन यहां आकर जब उसने देखा कि लोग मजे से जी रहे हैं, श्रीनगर चमक रहा है, हर तरफ रौनक है, खुशहाली है, सभी सुख सुविधाएं मौजूद है, तब उसकी समझ में आया कि कंगाली में तो पाकिस्तान जी रहा है, जहां आटे के लिए कत्लेआम मचा है। और फिर वो टेरर कैंप की सारी तालीम भूल गया और बंदूक उठाने के बजाय उसे सिर पर बाल उगाने की याद आई। उस्मान को लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसी लग्जरी सिर्फ अमेरिका और यूरोप में ही मिल सकती है, लेकिन जब उसकी मुलाकात श्रीनगर के एक ओवरग्राउंड वर्कर और लोकल दुकानदार से हुई जिसने खुद अपने बाल ट्रांसप्लांट करवाए थे, तो उस्मान अपने सिर पर बाल उगाने के लिए मचल उठा। उसने लश्कर के आकाओं को साइड में रखा और दुकानदार के आगे हाथ जोड़कर कहा कि जिहाद विहाद होता रहेगा, पहले उसके सिर पर बाल उगा दिए जाए। सोचिए, जो आतंकी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनने आया था, वो खुद अपने सिर के दर्द यानी गंजेपन का इलाज ढूंढने लगा श्रीनगर के एक आलिशान क्लिनिक में। उस्मान जट उर्फ चाइनीज का बाकायदा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। बाल उगाए तो सूरत के साथ उस्मान का मकसद भी बदल गया। ट्रांसप्लांट के बाद वो पैसेंजर गाड़ी में बैठकर जम्मू गया, वहां से स्लीपर बस पकड़कर पंजाब के मलेरकोटला पहुंच गया। यहां से वो आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर सीधे गल्फ भागने की फिराक में था और तब तक आराम से टर्किश ड्रामा देखने लगा और अंग्रेजी सीखने की कोचिंग भी लेने लगा। वो भाग पाता इससे पहले ही भारत की खुफिया एजेंसियों की पकड़ में आ गया, लेकिन जेल जाते जाते उसने पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। आतंकी उस्मान ने कहा कि जो पाकिस्तान में सिखाया जाता है, कश्मीर की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में ये कश्मीर की तरक्की का जादुई है कि वहां से आए आतंकी भी अपना मकसद भूलकर खुद को सवारने में और जिंदगी बनाने में लग जाते हैं। तभी हिंदुस्तान में तबाही के मकसद से आया आतंकी अब खुद की घाटी की तरक्की की
गवाही दे रहा है और आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान को पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सफलता की ऊंचाई पर संतुलन और धीरज जरूरी है। आकाश कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, बैठने की जगह किसी को नहीं देता। नमस्कार।

0: और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में त्रिशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू त्रिशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। त्रिशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मां के रख रहे हैं, हमें क्यों ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं? समर्थ को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? कहाँ है वो?
2: ये आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं वहाँ हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक त्रिशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज त्रिशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख त्रिशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
4: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: आज त्रिशा इस दुनिया में नहीं है और त्रिशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने त्रिशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से त्रिशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
5: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो MP के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फेटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
3: घर वालों के मुताबिक त्रिशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गई। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही त्रिशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर त्रिशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी त्रिशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले त्रिशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
4: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरिवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
3: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्रिशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्रिशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्रिशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर 3, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर 4, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
6: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं, समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
3: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
0: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया, आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
3: त्विशा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरीबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
5: जी, रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया, वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
3: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदी बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
6: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग, ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ।
4: जी, 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी, तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
3: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
7: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरीबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि समर्थ और गिरीबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है, और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह हैं और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
3: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था। एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्च्यूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
8: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गिरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा छत से।
9: शरीर पर भी काफी,
8: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
3: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
0: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है, तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज प्यार से मानो तो ठीक, वरना 2027 का चुनाव सीएम योगी का फिर 80-20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों? यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है, और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
10: लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
3: इस बयान में सीएम योगी ने 3 बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
11: एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे?
12: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
13: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है, और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
3: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80-20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं, और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
10: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
3: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं, प्यार से मानोगे तो ठीक वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
14: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहाँ गाली दे रहे हैं।
15: देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
16: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
3: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
17: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
18: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
3: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
17: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
3: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल। जी हां, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा मांधरे ने एनटीए से पेपर चुराए। अब पेपर लीक के गुरु घंटालों की पूरी कुंडली खुल रही है। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था।
3: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
19: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका ये सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं बैन एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
3: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी RCC नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
20: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों NTA के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
3: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
21: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद CBI अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
3: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर PV कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे ने NTA से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। CBI को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात युवाओं की नौकरी के हक की खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे, और ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप है विभाग पर केस लटकाने के।
22: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
23: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
24: हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
23: ऐसे रैंक कराने की क्या जरूरत पड़
24: गई? हम इससे जो विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम, आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के भगवान बन चुके हैं, हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा, हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे। और उन्हीं का आज ये बायोलॉजिकल पोते हैं, लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक एक तिसामा कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
1: सर सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही इसलिए?
24: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारे मामला का निस्तारण हो जाएगा।
22: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगी, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
2: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
4: सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हमें समझते थे कि कीड़े मकौड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकौड़े के ही काबिल हैं।
22: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
5: मंत्री आवास से पहले इनको रोक लिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थियों को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
22: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले अमित शाह, नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरीद से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, हमें क्यों ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं, समर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, कहाँ है वो?
2: ये आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्विशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्विशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख ट्विशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
4: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है और ट्विशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ट्विशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
5: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फैटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
3: घर वालों के मुताबिक ट्विशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गई। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही ट्विशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर ट्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी ट्विशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले ट्विशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
4: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ। तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने तेरा हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
3: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
6: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
3: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
0: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया। आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
3: त्विशा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरीबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
5: जी रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
3: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदि बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
6: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ।
4: जी 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
3: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
7: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरीबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि समर्थ और गिरीबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह है और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
3: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था, एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्चूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
8: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा, छत से
9: शरीर पर भी काफी,
8: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
3: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
0: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है, तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज, प्यार से मानो तो ठीक वरना। 2027 का चुनाव, सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों? यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है, और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
10: लोग मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
3: इस बयान में सीएम योगी ने तीन बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
11: एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे।
12: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
13: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
3: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
10: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
3: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
14: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहां गाली दे रहे हैं।
15: देखिए, किसी को रस्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
16: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
3: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
17: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
18: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
3: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
17: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
3: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल। जी हां, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा मांधरे ने एनटीए से पेपर चुराए। अब पेपर लीक के गुरु घंटालों की पूरी कुंडली खुल रही है। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था।
3: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
19: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका ये सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
3: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
20: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर

0: एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
1: अब सवाल ये है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
2: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
1: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ माद्रे ने एनटीए से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। सीबीआई को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात युवाओं की नौकरी के हक की खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे, और ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप है विभाग पर केस लटकाने के।
4: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
5: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
6: हमारे पास साहब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
5: ऐसे रैंक कराने की क्या जरूरत पड़ गई?
6: हम सिर्फ यह विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के आप भगवान बन चुके हैं, हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा, हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे। अब उन्हीं के आज बायोलॉजिकल पोते हैं लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31वां कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
5: सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही, इसलिए
6: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लगी उसी दिन हमारा मामला का निस्तारण हो जाएगा।
4: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
7: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
8: सही चीज तो यह है कि अब जाके हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हम ये समझते थे कि कीड़े मकौड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकौड़े के ही काबिल हैं।
4: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
9: मंत्री।

0: आवास से पहले इनको रोक लिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थियों को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
1: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
2: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तान कर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरी से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, हमें क्यों ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं? समर्थ को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? कहाँ है वो?
2: ये आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं वहाँ हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्विशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्विशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख ट्विशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
4: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है और ट्विशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ट्विशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
5: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फैटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
3: घर वालों के मुताबिक ट्विशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गई। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही ट्विशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर ट्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी ट्विशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले ट्विशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
4: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
3: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
6: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं, समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
3: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
0: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया, आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
3: त्विशा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरीबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
5: जी, रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये एक बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
3: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदी बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
6: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ।
4: जी 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
3: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
7: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरिबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह हैं और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
3: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया था। एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्चूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
8: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा, छत से
9: शरीर पर भी काफी
8: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
3: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
0: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज प्यार से मानो तो ठीक वरना 2027 का चुनाव सीएम योगी का फिर 80-20। मौलाना बोले सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों। यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
10: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
3: इस बयान में सीएम योगी ने 3 बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
9: एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे।
11: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
12: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
3: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
10: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
3: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
13: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहां गाली दे रहे हैं।
14: देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
15: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
3: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
16: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
17: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
3: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
16: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
3: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल। जी हां, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा मांधरे ने एनटीए से पेपर चुराए। अब पेपर लीक के गुरु घंटालों की पूरी कुंडली खुल रही है। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा
3: इस्तीफा मांग रहे हैं।
18: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका ये सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
3: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
19: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
3: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
20: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के

0: सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था।
1: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे ने एनटीए से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। सीबीआई को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात युवाओं की नौकरी के हक की खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे और ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप है विभाग पर केस लटकाने के।
3: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
4: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
5: हमारे पास साहब कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। हमारे पास कोई मौका नहीं है।
4: ऐसे रेंग कराने की क्या जरूरत पड़ गई?
5: हम इससे जो विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के भगवान बन चुके हैं। हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा। हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे। अब उन्हीं का जो बायोलॉजिकल पोते हैं लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक एक तिसामा कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
4: सर सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही इसलिए?
5: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारा मामला का निस्तारण हो जाएगा।
3: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
6: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
7: सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हमें समझते थे कि कीड़े मकौड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकौड़े के ही काबिल हैं।
3: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
8: मंत्री आवास से पहले इनको रोक लिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थियों को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती।
3: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।

0: अब बात वहां की जहां प्रधानमंत्री के बचत मंत्र का कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने केरल में 10 साल बाद सत्ता वापसी का जश्न बाजे गाजे के साथ मनाया है। बीडी सतीशन ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और इस समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे समेत तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।
1: केरला संसार के मुख्यमंत्री एन्न निलयिल।
2: इसी के साथ ही केरलम में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई और वीडी सतीशन केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाई जिसमें 20 मंत्री शामिल थे। ऐसा 64 साल के बाद हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली हो। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। केरलम की कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन तस्वीरों में एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार साफ देखी गई, जहां इंडिया गठबंधन का एक भी नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तान कर बोले अमित शाह, नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरी से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, हमें क्यों ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं, समर्थ को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, कहाँ है वो?
2: ये आवाज को बंद करना चाहते, ये चाहते कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं वहाँ हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्विशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्विशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5

0: महीने बाद ही 12 मई की तारीख त्विशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
1: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, अब नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद। तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
0: आज त्विशा इस दुनिया में नहीं है और त्विशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने त्विशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से त्विशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
2: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फैटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं। ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा था।
0: घर वालों के मुताबिक त्विशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गईं। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही त्विशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर त्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी त्विशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले त्विशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
1: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
0: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
3: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
0: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
4: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया, आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
0: त्विशा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई।

0: जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरिबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: जी रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं जो ये एक बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
0: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदि बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
2: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है। इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बात दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है। मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। मुझे ना रोने देंगे ये लोग, ना हंसने की वजह देंगे। मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ
3: जी। 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था। वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट गई मेरी बेटी की। फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गंवार है, तू गंवार है बिल्कुल। कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना। 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
0: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
4: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरिबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह है और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
0: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था। SUV गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्चूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
5: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा छत से।
6: शरीर पर भी काफी,
5: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
0: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
7: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
0: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का

0: मैसेज प्यार से मानो तो ठीक, वरना 2027 का चुनाव सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों? यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है, और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
1: लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
0: इस बयान में सीएम योगी ने तीन बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
2: एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे?
3: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
4: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है, और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
0: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं, और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
1: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
0: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
5: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं, और आप यहां गाली दे रहे हैं।
6: देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
7: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
0: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी

0: ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
1: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है। उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
2: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
0: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
1: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
0: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल। जी हां, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा मांधरे ने एनटीए से पेपर चुराए। अब पेपर लीक के गुरु घंटालों की पूरी कुंडली खुल रही है। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था।
0: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
4: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
0: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी RCC नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
5: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
0: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है? राजस्थान का सीकर और

0: महाराष्ट्र का लातूर, क्या ये वो दो शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है।
1: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों, देश के दूसरे हिस्सों में

0: लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था।
1: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ माद्री ने एनटीए से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। सीबीआई को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात युवाओं की नौकरी के हक की खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे और ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप है विभाग पर केस लटकाने के।
3: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है।
4: लोटन
3: लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
5: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
6: हमारे पास साहब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
5: ऐसे रेंग कराने की क्या जरूरत पड़ गई?
6: हम इससे जो विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के आप भगवान बन चुके हैं। हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे। अब उन्हीं के आज बायोलॉजिकल पोते हैं लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31 कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया।
5: सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही इसलिए
6: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारा मामला का निस्तारण हो जाएगा।
3: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
7: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
8: सही चीज तो यह है कि अब जाके हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हम ये समझते थे कि कीड़े मकौड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकौड़े के ही काबिल हैं।
3: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
9: मंत्री ने आवास से पहले इनको रोक लिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थी को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती।
3: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं?

0: संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
1: अब बात वहां की, जहां प्रधानमंत्री के बचत मंत्र का कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने केरल में 10 साल बाद सत्ता वापसी का जश्न बाजे गाजे के साथ मनाया है। बीडी सतीशन ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और इस समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे समेत तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।
2: श्री दामोदर मेनोन सतीशन എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ।
3: इसी के साथ ही केरलम में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई और बीडी सतीशन केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाई, जिसमें 20 मंत्री शामिल थे। ऐसा 64 साल के बाद हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली हो। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। केरलम की कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन तस्वीरों में एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार साफ देखी गई, जहां इंडिया गठबंधन का एक भी नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तान कर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरी से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, हमें क्यों ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं? समर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? कहाँ है वो?
2: ये आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं वहाँ हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्विशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्विशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख ट्विशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
4: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है और ट्विशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ट्विशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
5: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फेटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
3: घर वालों के मुताबिक ट्विशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गई। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही ट्विशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर ट्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी ट्विशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले ट्विशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
4: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की। तो उनकी मदर इन लॉ ने, गिरीवाला सिंह ने, तेरा हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में, सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक, हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
3: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुइसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
6: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
3: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
0: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया। आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
3: त्विशा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरीबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
5: जी, रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये एक बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
3: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदी बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
6: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग, ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ।
4: जी, 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी, तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था। इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
3: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
7: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरीबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि समर्थ और गिरीबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह है और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
3: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था। एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्च्यूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
8: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा, छत से
9: शरीर पर भी काफी
8: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
3: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
0: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है, तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज, प्यार से मानो तो ठीक वरना। 2027 का चुनाव, सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों। यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है, और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
10: लोग मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
3: इस बयान में सीएम योगी ने तीन बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
11: एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे।
12: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी یہی رویہ اختیار کیا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے.
13: سڑک پہ نماز قطعی طور پہ ادا نہیں کی جاتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی باقی مذاہب کے مذہبی رسومات ہیں, چاہے جلسے جلوس ہوں یا اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں, وہ بھی اسی طریقے سے سڑکوں پر کرنے کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے.
3: یہ سب جانتے ہیں کہ سی ایم یوگی ہندوتو کے برانڈ امبیسڈر ہیں. یو پی میں 80 بنام 20 کا نعرہ بھی سی ایم یوگی کھلے طور پر دے چکے ہیں, اور اب 2027 کا ودھان سبھا چناؤ ہے. تو کیا بقرعید سے عین پہلے سڑک پر نماز کو لے کر بیان چیتاونی کے ساتھ سوچ سمجھ کر آیا ہے؟
10: راجکتا نہیں سڑکوں پہ پھیلنے دیں گے. پیار سے مانیں گے ٹھیک بات ہے, نہیں مانیں گے تو دوسرا طریقہ اپنائیں گے. ہمارا کام ہے سمباد بنانا, آپ سمباد سے مانیں گے سمباد سے, نہیں تو سنگھر سے بھی دیکھ لو. بریلی میں لوگوں نے ہاتھ آزمانے کا کاریہ کیا, دیکھ لیے طاقت. اس لیے سرکار ان سسٹم کے ساتھ پوری ویوستھا کو جوڑنا چاہتی ہے.
3: یوگی آدتیہ ناتھ صرف اور صرف ہندوتو کی پالیٹکس کرتے ہیں, اور اب سی ایم یوگی سڑک پر نماز پڑھنے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں پیار سے مانو گے تو ٹھیک, ورنہ طریقے دوسرے بھی ہیں. اب وپکش اسی پر سوار ہے.
14: یہ بیان یہ درساتا ہے کہ ماننیہ مکھیہ منتری جی کے من میں کسی دھرم کو لے کر کے یا سماج کو لے کر کے کتنی نفرت بھری ہے. ماننیہ پردھان منتری جی یو اے ای گئے, وہ وہاں شیخ کو کس طریقے سے ہاتھ پھیلا کر کے گلے لگا رہے ہیں, اور آپ یہاں گالی دے رہے ہیں.
15: دیکھیں, کسی کو رستے پہ دھوپ میں بارش میں نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا, یہ تو مسجد میں جگہ نہیں ہوتی ہے اس کے کارن کوئی 5 منٹ نماز پڑھ لیا رستے میں تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے کیا؟ ارے ہم تو کبھی نہیں آبجیکشن دیتے, ہمارے ہندو بھائیوں کو ہم نے دیکھا کتنی بار ٹرینوں کے اندر ایئرپورٹ کے اوپر بھجن کیرتن کرتے ہوئے پرارتھنا کرتے ہوئے, ہم تو کبھی کوئی آپتی نہیں اٹھاتا.
16: بڑے ہنومان جی کا مندر لکھنؤ یونیورسٹی کے سامنے پوری کی پوری ایک سڑک پرماننٹلی بند کر کے مندر کو دے دی گئی اور ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. یہ قانون کا راج ہے کہ مسلمان تو نماز نہیں پڑھ سکتا سڑک پر, لیکن پوری سڑک بند کر کے مندر کے حوالے کر دی گئی.
3: اور اب یو پی کی طرز پر پشچم بنگال میں سی ایم شبھیندو ادھیکاری نے کرسی سنبھالتے ہی ہندوتو کا پریوگ شروع کر دیا ہے. بنگال میں گائے کاٹنے پر روک لگا دی گئی ہے. بنا فٹنس سرٹیفکیٹ کے کسی بھی مویشی یا بھینس کو کاٹنا پوری طرح سے بین ہے. بنا لائسنس کے چلنے والے سبھی پشو بازاروں کو بین کر دیا گیا ہے. سکولوں میں وندے ماترم گائن انیوارے کر دیا گیا ہے. سڑک پر نماز کو لے کر بھی آدیش دیا گیا ہے کہ سڑکوں پر نماز کو برداشت نہیں کیا جائے گا. مسجد میں اب لاؤڈ سپیکر پر اذان کو بین کر دیا گیا ہے. اویدھ نرماڑوں پر بھی بلڈوزر کی پرمیشن دے دی گئی ہے.
17: 12 سال کا سوشیل داس نے وندے ماترم بولا تھا, اس کو 12 چابک مارا گیا تھا. اتنا سیکریفائز اس اور سماج کو اتنا بڑا پریرنا دیا جو سنگیت, وہ بنگال میں گانے کے لیے اس کو انمتی نہیں ہے. اس کا ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کیا ہے اور آج سے ہر اسکول میں اس کا گائن ہوگا.
18: دیکھیے, بلڈوزر تو پورا دیش میں چلے گا, جہاں جہاں اویدھ روپ سے نرمان ہوگا دخلداری ہوگا بلڈوزر چلے گا. اور ہماری بنگال کی سرکار جو نئی سرکار آئی ہے بی جے پی کی, پہلے دن سے یہ کام ہم نے شروع کیا ہے. سرکاری جگہ پر اتکرمن قطعی ہم اس کا برداشت نہیں کریں.
3: شبھیندو سرکار میں منتری دلیپ گھوش نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بنگال میں حالات جموں کشمیر سے بھی بدتر ہیں, لیکن اب سرکار بدل گئی ہے.
17: بار بار ہم بولتے ہیں کہ بنگال کا حالت جموں کشمیر سے بھی خراب ہے, پتہ چل رہا ہے, لیکن بھول جانا چاہیے, نہیں بھولنا چاہیے کہ سرکار بدل گیا ہے, کلچر بدل گیا ہے. رام نومی میں کسی بس میں اگر اور اونکار کا جھنڈا تھا اس کو اتار دیا گیا, یہ ہم بھولے نہیں ہیں, سب کا حساب ہوگا.
3: اب یو پی اور بنگال دونوں میں ہندوتو کا ماڈل چل رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہندوتو کے ماڈل پر بنگال میں پہلی بار بی جے پی کی سرکار آئی ہے, جبکہ یو پی میں ہندوتو کے ماڈل پر بی جے پی سرکار کی ہیٹرک کی تیاری شروع ہو گئی ہے. آج تک بیورو.
0: اور اب بات کریں گے نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں, جو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پیپر لیک کے گرو گھنٹال. جی ہاں, کیسے ایک اسسٹنٹ پروفیسر پی وی کلکرنی اور سینئر ٹیچر منیشا ماندرے نے این ٹی اے سے پیپر چرائے. اب پیپر لیک کے گرو گھنٹالوں کی پوری کنڈلی کھل رہی ہے. नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था।
3: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
19: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। समय में तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका ये सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
3: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
20: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसको क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
3: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
21: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब दीवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
3: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे ने एनटीए से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। सीबीआई को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात युवाओं की नौकरी के हक की खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे, और ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप है विभाग पर केस लटकाने के।
22: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
1: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो जाति हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
2: हमारे पास साहब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
1: ऐसे रैंक कराने की क्या जरूरत पड़ गई?
2: हम इससे ज्यादा विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर क्या भगवान बन चुके हैं, हम लोग कहाँ जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा, हम लोग जाए तो कहाँ जाए। हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे, और उन्हीं का जो बायोलॉजिकल पोते हैं लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31वां कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
1: सर सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही इसलिए?
2: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारा मामला का निस्तारण हो जाएगा।
22: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
5: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले।
23: सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हम ये समझते थे कि कीड़े मकोड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकोड़े के ही काबिल है।
22: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
24: मंत्री ने आवास से पहले इनको रोक लिया गया है, और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थियों को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं, और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
22: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले अमित शाह, नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरीद से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, हमें क्यों ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं, समर्थ को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, कहाँ है वो?
2: ये आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्विशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्विशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख ट्विशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
4: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है और ट्विशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ट्विशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
5: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फैटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
3: घर वालों के मुताबिक ट्विशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गईं। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही ट्विशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर ट्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी ट्विशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले ट्विशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
4: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ। तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
3: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
6: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
3: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
0: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया। आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
3: त्विशा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरीबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
5: जी, रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये एक बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
3: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदि बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
6: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बात दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ।
4: जी 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
3: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
7: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरीबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि समर्थ और गिरीबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह है और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
3: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था, एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्चूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
8: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा, छत से
9: शरीर पर भी काफी
8: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
3: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
0: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज, प्यार से मानो तो ठीक वरना। 2027 का चुनाव, सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों? यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
10: लोग मुझसे पूछते हैं साहब, आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
3: इस बयान में सीएम योगी ने तीन बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
11: एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे।
12: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
13: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
3: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
10: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
3: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
14: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहां गाली दे रहे हैं।
15: देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन लेते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
16: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
3: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
17: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
18: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
3: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
17: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
3: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल। जी हां, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा मांधरे ने एनटीए से पेपर चुराए। अब पेपर लीक के गुरु घंटालों की पूरी कुंडली खुल रही है। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा गोरखधंधा चलाया जा रहा था।
3: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
19: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
3: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
20: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसको क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
3: अब सवाल ये है कि क्या देश के दो शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो दो शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
21: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
3: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांधरे ने एनटीए से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। सीबीआई को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा

0: के बेरोजगार हैं, जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप हैं विभाग पर केस लटकाने के।
1: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है।
2: लोटन
1: लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
3: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
4: हमारे पास आप कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
3: ऐसे रेंग कराने की क्या जरूरत पड़ गई?
4: हम इससे जो विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के आप भगवान बन चुके हैं, हम लोग कहाँ जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा, हम लोग जाए तो कहाँ जाए। हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे, और उन्हीं का आज बायोलॉजिकल पोते हैं लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31वां कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
3: सिर्फ सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही, इसलिए
4: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लगी उसी दिन हमारा मामला का निस्तारण हो जाएगा।
1: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
5: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
6: सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हम ये समझते थे कि कीड़े मकौड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकौड़े के ही काबिल हैं।
1: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
7: मंत्री आवास से पहले इनको रोक लिया गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थी को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
1: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अब बात वहां की जहां प्रधानमंत्री के बचत मंत्र का कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने केरल में 10 साल बाद सत्ता वापसी का जश्न बाजे गाजे के साथ मनाया है। बीडी सतीशन ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और इस समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे समेत तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।
8: केरल संस्थान मुख्यमंत्री नीले।
9: इसी के साथ ही केरलम में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई और वीडी सतीशन केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाई, जिसमें 20 मंत्री शामिल थे। ऐसा 64 साल के बाद हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली हो। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। केरलम की कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली।

0: शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन तस्वीरों में एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार साफ देखी गई, जहां इंडिया गठबंधन का एक भी नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरी से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, हमें क्यों ये लोग गिरफ्तार करने आए, समर्थ को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे, कहाँ है वो?
2: आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं वहाँ हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्विशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्विशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख ट्विशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
4: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है और ट्विशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ट्विशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
5: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फैटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
3: घर वालों के मुताबिक ट्विशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गई। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही ट्विशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर ट्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी ट्विशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले ट्विशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
4: हम एक बार गए थे, जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, ये फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
3: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
6: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
3: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
0: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया, आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
3: त्विशा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरीबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
5: जी, रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
3: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदी बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
6: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ।
4: जी 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
3: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
7: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरिबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह हैं और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
3: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था। एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्चूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
8: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा, छत से
9: शरीर पर भी काफी
8: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
3: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
0: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज प्यार से मानो तो ठीक वरना 2027 का चुनाव सीएम योगी का फिर 80-20। मौलाना बोले सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों। यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
10: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा, कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
3: इस बयान में सीएम योगी ने 3 बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
9: एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे।
11: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
12: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
3: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
10: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
3: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
13: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहां गाली दे रहे हैं।
14: देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन लेते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
15: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
3: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
16: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
17: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
3: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
16: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
3: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल। जी हां, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा मांधरे ने एनटीए से पेपर चुराए। अब पेपर लीक के गुरु घंटालों की पूरी कुंडली खुल रही है। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था।
3: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
18: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका ये सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
3: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
19: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
3: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
20: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
3: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांधरे ने एनटीए से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। सीबीआई को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात युवाओं की नौकरी के हक की खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे, और ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप है विभाग पर केस लटकाने के।
21: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार
1: जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है।
21: लोटन
1: लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
21: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
22: हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
21: ऐसे रेंग कर आने की क्या जरूरत पड़ गई?
22: हम सिर्फ यह विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के आप भगवान बन चुके हैं, हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा, हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे, और उन्हीं का आज बायोलॉजिकल पोते हैं लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31 कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
21: सर सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही इसलिए?
22: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारा मामला का निस्तारण हो जाएगा।
1: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
23: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
24: सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हमें समझते थे कि कीड़े मकौड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकौड़े के ही काबिल हैं।
1: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
25: मंत्री आवास से पहले इनको रोक लिया गया है, और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थी को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं, और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
1: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अब बात वहां की जहां प्रधानमंत्री के बचत मंत्र का कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने केरल में 10 साल बाद सत्ता वापसी का जश्न बाजे गाजे के साथ मनाया है। बीडी सतीशन ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और इस समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे समेत तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।
26: केरल संस्थान के मुख्यमंत्री एन नीले।
27: इसी के साथ ही केरलम में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई और वीडी सतीशन केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाई जिसमें 20 मंत्री शामिल थे। ऐसा 64 साल के बाद हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली हो। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। केरलम की कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन तस्वीरों में एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार साफ देखी गई, जहां इंडिया गठबंधन का एक भी नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरी से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, हमें क्यों ये लोग गिरफ्तार करने आए, समर्थ को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे, कहाँ है वो?
2: आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्विशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्विशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख ट्विशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
4: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है और ट्विशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ट्विशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
5: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फैटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
3: घर वालों के मुताबिक ट्विशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गई। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही ट्विशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर ट्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी ट्विशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले ट्विशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
4: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
3: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी माँ से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
6: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं, समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
3: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
0: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया, आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
3: त्विशा की सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाई कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरीबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
5: ये रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये एक बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
3: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदी बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
6: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ।
4: जी 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना, 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
3: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
7: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरीबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि समर्थ और गिरीबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह हैं और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
3: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था। एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्चूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
8: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा, छत से
9: शरीर पर भी काफी
8: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
3: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
0: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज प्यार से मानो तो ठीक वरना 2027 का चुनाव सीएम योगी का फिर 80-20। मौलाना बोले सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों। यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
10: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा, कहा साहब कैसे होगा हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं।
3: इस बयान में सीएम योगी ने 3 बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
9: एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे।
11: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
12: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
3: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
10: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
3: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं, प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
13: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहां गाली दे रहे हैं।
14: देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
15: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
3: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
16: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
17: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
3: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
16: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
3: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल। जी हां, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा मांद्रे ने एनटीए से पेपर चुराए। अब पेपर लीक के गुरु घंटालों की पूरी कुंडली खुल रही है। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था।
3: दिल्ली में एनएसयूआई के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
18: नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस समय मैं तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका ये सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
3: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटेगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
19: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांड्रे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों एनटीए के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
3: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा।
0: और अब बात युवाओं की नौकरी के हक की खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे, और ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप है विभाग पर केस लटकाने के।
20: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से

0: लोटल
1: नहीं कोई हमारा सुन।
2: लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
0: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
1: हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
0: ऐसे रैंक कराने की क्या जरूरत पड़ गई?
1: हम इससे जो है विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर क्या भगवान बन चुके हैं, हम लोग कहाँ जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा, हम लोग जाए तो कहाँ जाए। हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे, और उन्हीं का जो बायोलॉजिकल पोते हैं लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31 कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
0: सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही, इसलिए
1: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारा मामला का निस्तारण हो जाएगा।
2: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
3: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
4: सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हम ये समझते थे कि कीड़े मकोड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकोड़े के ही काबिल हैं।
2: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
5: मंत्री ने आवास से पहले इनको रोक लिया गया है, और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थियों को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं, और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
2: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
6: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सीना तान कर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरी से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: बंद करना चाहते, ये चाहते कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं वहाँ हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
2: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्विशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्विशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख ट्विशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
3: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
2: आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है और ट्विशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ट्विशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
4: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो MP के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फेटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
2: घर वालों के मुताबिक ट्विशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गई। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही ट्विशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर ट्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी ट्विशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले ट्विशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
3: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे, ये फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरिवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए, तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का, क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे पास मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहती है कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे, कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में।
2: 12 मई को संदिग्ध हालात में त्विशा की डेड बॉडी कोठी की छत पर फंदे से लटकती हुई मिली। ससुराल वालों की तरफ से त्विशा की मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन सुसाइड की थ्योरी में कई पेच हैं। सवाल नंबर एक, त्विशा ने घर की छत पर सुसाइड का खौफनाक कदम क्यों उठाया? सवाल नंबर दो, क्या हत्या के बाद त्विशा की डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? सवाल नंबर तीन, त्विशा की लाश लेने के बाद पीएम रिपोर्ट सौंपने की शर्त प्रशासन ने क्यों रखी? सवाल नंबर चार, क्या सास गिरीबाला के दबाव में भोपाल पुलिस मामले को दबाने में जुटी है? त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों की वजह है, चंद दिन पहले त्विशा ने अपनी मां से अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी, वो भी मौत से चंद दिन पहले। त्विशा ने लिखा,
5: बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि किसका बच्चा है मेरे पेट में, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे।
2: त्विशा ने ससुराल में हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की खौफनाक दास्तान माँ से बयान की थी। त्विशा ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके लौटना चाहती थी। अब सवाल यही है कि अगर त्विशा को आत्महत्या करनी होती तो अपने घर वालों से खुद को ले जाने के लिए क्यों कहती?
0: त्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि चार दीवारी के भीतर हत्या को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, और इन आरोपों के पीछे घर वालों की दलीलें हैं कि त्विशा की सास जज हैं और उनके कई रिश्तेदार मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। त्विशा के गुनहगारों को बचाने के लिए जांच टीम पर दबाव बनाया गया, आरोपियों की जांच करने की बजाय उनके ओहदे की ठसक ने कानून के लंबे हाथों को बांध दिया।
2: त्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ के खिलाफ घर वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन सास को कोर्ट से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर अग्रिम जमानत मिल गई, जबकि पति समर्थ फरार चल रहा है। जिला अदालत से सास को मिली जमानत के खिलाफ घर वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। घर वालों का आरोप यही है कि गिरिबाला और उनके रिश्तेदार अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
4: ये रिटायर्ड जज हैं, वो आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और भी जुडिशरी में लोग हैं, जो ये बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा, हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है।
2: ससुराल वालों ने त्विशा पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। दावा यही है कि मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, और त्विशा के घर वालों की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी में गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू को ड्रग्स का आदि बताया है। यही नहीं, ये भी दावा किया है कि त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन त्विशा के घर वालों ने ससुराल वालों के आरोपों का जवाब उस चैट के जरिए दिया है जिसमें त्विशा ने ड्रग्स को लेकर बड़ा दावा किया था। त्विशा ने माँ को भेजे मैसेज में लिखा था,
5: मेरी दिक्कत है, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसीलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बात दिल में नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी तो खराब हो सकता है। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मुझे ना रोने देंगे ये लोग, ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ
3: जी। 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था, वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तू तो कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब जॉब छूट गई मेरी बेटी की, फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था, तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है, उसको इतना कर दिया, बिल्कुल गवार है तू, गवार है बिल्कुल, कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है बीच बीच में, उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी मेरे को इतना कुछ उसे सुना। 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
2: जांच पर सवाल उठाते हुए घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, त्विशा के लिए इंसाफ की मांग की। घर वालों के प्रदर्शन के बाद भोपाल प्रशासन की नींद टूटी और त्विशा के फरार पति के सिर पर 10,000 का इनाम रखा गया। वहीं कोर्ट ने भी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
6: इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब समर्थ और गिरिबाला के वकील सोमवार शाम को मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि समर्थ और गिरिबाला के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके झूठे और बेबुनियाद है और इसीलिए परिवार किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, क्योंकि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले में बेगुनाह है और उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
2: भोपाल में त्विशा के लिए घर वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में दीपिका की मौत को घर वाले हत्या बता रहे हैं। घर वालों का आरोप है कि 18 महीने पहले धूमधाम से दीपिका की शादी ऋतिक से हुई थी। घर वालों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया था, एसयूवी गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से फॉर्च्यूनर कार के साथ साथ 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। आरोप यही है कि दहेज के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दीपिका की हत्या कर दी गई।
7: कैसे गिर जाएगी बेटी, किसी तरह प्रताड़ना कर रहे हैं, वो गेरी गई है, कुछ ना कुछ तो होगा, छत से कौन गिर जाएगा छत से।
8: शरीर पर भी काफी
7: शरीर पे इतने चोट के निशान है कि देखो आप, और अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो देखो क्या है, उसके पेट में भी चाकू लगा हुआ है जिसकी वीडियो फोटो है हमारे पास में, सारे शरीर पे उसके नील पड़े हुए हैं।
2: दीपिका के ससुर और पति ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मांग है कि बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि दहेज के दानवों का कलेजा कांप उठे।
0: और अब बात सड़क पर धर्म संकट की बात करेंगे, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, सीएम ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है तो एक बड़ी बहस इस पर छिड़ चुकी है। योगी कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
2: सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज, प्यार से मानो तो ठीक वरना। 2027 का चुनाव, सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले, सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों। यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है, और वो चेतावनी क्या है आप भी सुन लीजिए।
9: लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे
2: हैं। इस बयान में सीएम योगी ने 3 बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए।
10: एक मुख्यमंत्री इस तरीके के जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे।
11: हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है।
12: सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है, और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मजाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।
2: ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है?
9: अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना, आप संवाद से मानेंगे संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ अजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।
2: योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है।
13: ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहाँ गाली दे रहे हैं।
14: देखिए, किसी को रस्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता, ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रस्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते, हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता।
15: बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई।
2: और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है।
16: 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा।
17: देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।
2: शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहां तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है।
16: बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा।
2: अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर लीक के गुरु घंटाल। जी हां, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा मांधरे ने एनटीए से पेपर चुराए, अब पेपर लीक के गुरु घंटालों की पूरी कुंडली खुल रही है। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवनाथ रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे नीट पेपर लीक का पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था।
2: दिल्ली में NSUI के छात्र नीट पेपर लीक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं।
18: नीट UG पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSUI का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। समय में तस्वीरें आपको शास्त्री भवन के बाहर की दिखाना चाहूंगा, जहां कभी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। वहां आप देख सकते हैं कि जो NSUI के कार्यकर्ता हैं, यहां पर एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। NSUI के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शव यात्रा है, उनका सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन है। हाथ में तख्तियां लेकर वो पहुंचे हैं। बैन NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बंद करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
2: दिल्ली में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई। CBI ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। CBI की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट UG का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी RCC नाम का कोचिंग सेंटर है। गिरफ्तार मोटे गांव का कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। CBI का आरोप है कि मोटे गांव का ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स उपलब्ध कराए हैं।
19: सबसे अहम बात यह है कि नीट का जो पेपर लीक स्कैम है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, मनीषा मांडरे और प्रहलाद कुलकर्णी, जो दोनों NTA के बॉडी पर थे, जो दोनों पेपर सेट करते थे, उन्हीं के साथ अब इस मोटेगांवकर का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। मोटेगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मोटेगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं।
2: अब सवाल यह है कि क्या देश के 2 शहरों में नीट पेपर लीक का पूरा एपिसेंटर रहा है, राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर? क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है?
20: पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद CBI अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था?
2: 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल प्रश्न पत्र और रिजर्व में रखे गए सेट, दोनों के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल एक क्वेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। जांच में सामने आया है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर PV कुलकर्णी और बायोलॉजी सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ माद्रे ने NTA से प्रश्न पत्र चुराए थे। दोनों ही पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे। CBI को इसी पैटर्न पर फिजिक्स के कुछ सवालों के लीक होने के संकेत भी मिले हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। अब सारे गुरु घंटालों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात युवाओं की नौकरी के हक की खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत से युवा रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जाने लगे, और ये उस शिक्षक भर्ती से जुड़े पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी 8 साल से लटकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आरोप है विभाग पर केस लटकाने के।
21: मैं धनंजय गुप्ता
22: रेंगने को मजबूर ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार जिन्हें इस तरह घिसटने के लिए 8 साल से लाचार किया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर अब की बार ये रेंगते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
23: अभ्यर्थी संदीप सिंह के घर तक लौटते हुए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फरियाद सुनी जाए, इनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो सुना जाए। तो अब ये लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है।
24: हमारे पास साहब कोई ऑप्शन नहीं है,
1: हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। पिछले 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, हमारे पास कोई मौका नहीं है।
23: ऐसे रैंक कराने की क्या जरूरत पड़
1: गई? हम सिर्फ आप विनती करने आए हैं, जिस तरह भगवान के लिए विनती किया जाता है उस तरह विनती करने आए कि हे महामहिम, आप लोग सुन लीजिए, हमारा वोट लेकर के आप भगवान बन चुके हैं। हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जो है पिछले 30 डेट हो गया, एक बार भी अधिवक्ता नहीं पहुंचा। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग यही बाबूजी सिंह कल्याण सिंह जी रहते थे, कहते थे कि आपका अगर जो कोई आरक्षण छीनता है तो थप्पड़ मार करे। और उन्हीं का आज बायोलॉजिकल पोते हैं, लेकिन वैचारिक से बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का जो है अभी तक 31 कल डेट है, अभी तक कोई भी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नहीं गया है।
23: सरकार की तरफ से पैरवी नहीं हो पा रही, इसलिए
1: सर सरकार नियुक्ता है, सरकार जिस दिन पैरवी कर लेगी उसी दिन हमारे मामला का निस्तारण हो जाएगा।
22: ये वो लोग हैं जिनके लिए कहने को तो सरकार कह देती है अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से ज्यादा वक्त से अटका पड़ा है तो दावा है कि विभाग अपना वकील तक समय से नहीं भेजता।
4: वैसे भी हमारी जिंदगी कीड़े मकौड़ों से ही बदतर है, तो अब यहाँ पर हम कम से कम अपने जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो एक टीचर जो बोलते हैं कि सभ्य समाज को बनाने का काम करता है, कम से कम हमारे शिक्षा मंत्री को पता तो चले कि हम उस शिक्षकों को कीड़े मकौड़ों की तरह बना दिए हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं।
5: सही चीज तो यह है कि अब जाकर हम लोग को पता चला कि सही में जगह हम लोग का यही था। अब तक हम ये समझते थे कि कीड़े मकौड़े नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि हम लोग कीड़े मकौड़े के ही काबिल हैं।
22: हालत ये है कि आज तक इन युवाओं के दर्जनों प्रदर्शन को कवर करके सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाता है, लेकिन शिक्षा विभाग मानो कान में तेल डालकर बैठा है, जहां से हर बार पुलिस इन्हें उठाती है और हटा देती है।
21: मंत्री ने आवास से पहले इनको रोक लिया गया है, और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिर्फ इनकी मांग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में सरकार पैरवी करे, सरकार की तरफ से वकील खड़े हों और कम से कम इस केस का निस्तारण हो सके। अब अभ्यर्थियों को यहां रोक लिया गया है, तमाम अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि ऐसी कड़ी धूप में वो रेंगते हुए आए हैं, साष्टांग की मुद्रा में आए हैं, और सभी के हाथ में पोस्टर है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, योगी जी अब न्याय कीजिए, हम बच्चों पर रहम कीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती।
22: चुनावी सियासत में जिन पिछड़ों का झंडा नेता बुलंद करते हैं, उन्हीं पिछड़ों को यूं अगर रेंग कर न्याय अपनी नौकरी के लिए मांगना पड़ रहा है तो फिर सरकारी भरोसे की दलीलें क्या सारी झूठी हैं? संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: अब बात वहां की जहां प्रधानमंत्री के बचत मंत्र का कोई असर नहीं दिखा। कांग्रेस ने केरल में 10 साल बाद सत्ता वापसी का जश्न बाजे गाजे के साथ मनाया है। बीडी सतीशन ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और इस समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे समेत तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।
24: കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ
25: ഇസിക്ക് സാഥി കേരളം മേ കോൺഗ്രസ് എക് ബാർ ഫിർ സത്ത മേ ആയി ഓർ വി ഡി സതീശൻ കേരളം കെ 13വേ മുഖ്യമന്ത്രി ബനെ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने उनके अलावा पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाई जिसमें 20 मंत्री शामिल थे। ऐसा 64 साल के बाद हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली हो। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। केरलम की कैबिनेट में 14 विधायकों ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन तस्वीरों में एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार साफ देखी गई, जहां इंडिया गठबंधन का एक भी नेता शपथ समारोह में शामिल नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला।

0: नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिजनेस समिट में बोले 12 साल में बदला भारत का इकोनॉमिक डीएनए। अमेरिका में चल रहे केस को लेकर अडानी समूह को बड़ी राहत, बंद किए आपराधिक मामले, न्याय विभाग का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीना तान कर बोले अमित शाह, अब नक्सल मुक्त बस्तर में नए अध्याय की शुरुआत, आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण। बकरीद से पहले सीएम योगी की सख्त हिदायत, यूपी में सड़कों पर नमाज मंजूर नहीं, जगह की कमी है तो जनसंख्या घटाएं। और भोपाल में ट्विशा केस में नया मोड़, छत पर जाने का आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। और अब बात करेंगे एक मॉडल की मौत मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर एक जज सवालों के घेरे में है। पूरा मामला है भोपाल में उपभोक्ता फोरम की न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर का। गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी घर की छत पर फंदे से झूलती हुई मिली। ट्विशा के घर वालों का आरोप यह है कि मामला हत्या का है, लेकिन न्यायाधीश के दबाव में पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। आखिर जज की मॉडल बहू की उलझी हुई मौत की कहानी है क्या, जानिए।
1: हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांगे रख रहे हैं, हमें क्यों ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं, समर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, कहाँ है वो?
2: ये आवाज को बंद करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ तक हम आवाज उठा रहे हैं वहाँ हर आवाज को दबाया जाएगा और हमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जिससे कि हम समर सिंह के बारे में कुछ कह नहीं पाए।
3: मॉडलिंग की दुनिया से लेकर साउथ की फिल्मों तक ट्विशा शर्मा ने खूब नाम कमाया। घर वालों को बेटी पर नाज था क्योंकि वो पढ़ाई में अव्वल रही और लाइट कैमरा और एक्शन की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे पता था कि रसूखदार परिवार के घर की बहू बनते ही खुश मिजाज ट्विशा की तमाम खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। 5 महीने पहले शादी हुई, लेकिन 5 महीने बाद ही 12 मई की तारीख ट्विशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुई।
4: 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद, तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल।
3: आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है और ट्विशा की मौत के आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके पति और सास पर हैं। पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और सास गिरिबाला सिंह भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम में जज हैं। भोपाल पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बेटी को हमेशा के लिए खो चुके घर वालों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ट्विशा की हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई।
5: हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई यहाँ के लोकायुक्त जो एमपी के हैं उनके परिवार से, यहाँ पर इस सिस्टम में बैठे हुए उनके ही रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो जुडिशरी में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, मेडिकल फेटर्निटी में बैठे हुए बड़े बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, ये हम जब से आए हैं तब से हम एक लड़ाई सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें हर जगह रोका जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी को किसी तरीके से ले लें, क्रिमिनेट करें, तरह तरह का हम पर प्रेशर बनाया जा रहा।
3: घर वालों के मुताबिक ट्विशा और समर्थ की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। शादी हुई तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन बहुत जल्द ही खुशियां काफूर हो गई। आरोप है कि शादी के चंद दिन बाद से ही ट्विशा के पति और सास दहेज के लिए दबाव बनाने लगे, यहाँ तक कि घर की चार दीवारी के अंदर ट्विशा को प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल में ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी ट्विशा ने अपने घर वालों को दी। विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा में रहने वाले ट्विशा के माँ बाप चंद दिन पहले भोपाल जाने वाले थे, लेकिन घर वालों को रोक दिया गया और फिर उन्हें मिली बेटी की मौत की खबर।
4: हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ, तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने